0: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर नवरात्रि के पांचवे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी।
0: आज के दिन उपांग ललिता व्रत किया जाएगा। रेडियो मधुबन के संग नवरात्रि के रंग
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। नवरात्रि की दिल से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। बहुत सुंदर समय चल रहा है, हमें अपने स्वमान में भी रहना है। मैं शिव शक्ति हूँ, अष्टभुजाधारी हूँ, मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। तो जिस स्मृति में रहेंगे वैसी हमारी स्थिति बनती जाएगी। हम इस चीज पे ध्यान दें, आज हम ले रहे हैं निर्णय करने की शक्ति। निर्णय हमें रोज हर कदम पर वैसे भी करने पड़ते हैं, कभी कभी बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, सेवाओं के भी निर्णय लेने पड़ते हैं। कोई बड़ा कार्य आप कर रहे, बिजनेस कर रहे, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं, किसी लोन ले रहे हैं, सब जगह हमें निर्णय करने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आजकल लोग अपनों को पैसा दे देते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने हैं तो लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं करते, कोई सर उनके पास सबूत नहीं रहता, और फिर इसमें बहुत धोखा होता है। तो हम सब जानते हैं कि हर कदम पर हमें निर्णय शक्ति की जरूरत होती है। जितना हमारा मन शांत होगा उतना ही निर्णय परफेक्ट होंगे। इसलिए अगर आपको कभी इम्पोर्टेंट निर्णय लेने हैं तो सवेरे उठकर योग करके जब चित्त शांत हो जाए तब उस बात पे विचार करेंगे, बाबा का भी आह्वान करके, तो वो निर्णय परफेक्ट होगा, सुखदायी होगा, लाभकारी हो जाएगा। अगर आपने जल्दीबाजी में निर्णय कर लिया तो गड़बड़ होगी। जैसे कई लोग ऑफिस से किसी से भी तंग होकर, किसी ऑफिसर ने कुछ बुरा भला कह दिया, उससे तंग होकर तुरंत रिजाइन लिख देते हैं, इंतजार नहीं करते, निर्णय परफेक्ट नहीं लेते, और फिर जीवन भर पछताते हैं। तो जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय, उतावलेपन में लिया गया निर्णय कभी भी मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं होता। इसलिए कोई भी निर्णय उतावलेपन में नहीं लेना चाहिए। अनेक लोग इस कला को नहीं जानते, बहुतों को अपना चित्त शांत करना नहीं आता। पर सच्चा ज्ञानी, सच्चा विवेकशील व्यक्ति वही है जो अपने चित्त को शांत करने की कला सीख ले। तो सवेरे उठकर इम्पोर्टेंट निर्णय लेंगे और कुछ दिन तक लगातार 21 दिन एक अभ्यास करेंगे। सवेरे उठते ही जब चित्त शांत हो, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ, मेरे पास बाबा की दी हुई सर्व शक्तियाँ हैं, इसमें बहुत विश्वास करेंगे, मेरी निर्णय शक्ति परफेक्ट है, बहुत कॉन्फिडेंटली ये संकल्प करेंगे तो निर्णय शक्ति बढ़ने लगेगी और बहुत ही अच्छे अनुभव हो जाएंगे। तो हम इस शक्ति को बढ़ाते चलें और नवरात्रि के जो दिन चल रहे हैं शक्तियों से भी आप वरदान लेते चलें, दुआएं दें सभी को, तो हम सबको भी बहुत बहुत दुआएं मिलती रहेंगी। नवरात्रि आपके लिए बहुत शुभ हो, कल्याणकारी हो, आपको सर्व विघ्नों से मुक्त करने वाली, जीवन में सफलता का वरदान देने वाली हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
1: ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। आज पांचवा दिन माँ स्कंद माता का दिन है और माँ स्कंद विशेष योद्धा के रूप में दिखाई गई है, जो कहा जाता है कि देवों की सेना की मुख्य योद्धा के रूप में उसको दिखाया गया है। माँ स्कंद, माँ स्कंद भी माँ दुर्गा का ही दूसरा स्वरूप है। माँ स्कंद कहा जाता है कि वो कार्तिकेय की माता थी, जिसको देवों ने चुना था असुरों के सामने विशेष युद्ध करने के लिए मुख्य योद्धा के रूप में। कहा जाता है कि माँ स्कंद ने अपने बेटे को एक हाथ में उठाया है, इसीलिए उसके हाथ में छोटा बच्चा भी दिखाया है और साथ में उसको चार भुजाधारी और तीन नेत्रधारी दिखाया गया है। उसके हाथ में अपने बेटे और दूसरा हाथ जो आशीर्वाद की मुद्रा में है और साथ ही साथ तीसरे हाथ में कमल जो पवित्रता का प्रतीक है। कहने का भावार्थ कि वो सभी भक्तों की रक्षा करने वाली, विशेष अपने भक्तों कहो या बच्चे के समान सभी बच्चों की रक्षा करने वाली और पवित्रता से उनके जीवन को भर देने वाली, उनके जीवन के अंदर अनेक आशीर्वादों से उसका जीवन संपन्न करने वाली माँ स्कंद की पूजा होती है। कहा जाता है कि जिसके ऊपर माँ स्कंद की मेहर हो जाए तो एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। ऐसी विशेष विशेषता माँ स्कंद की दिखाई गई है। कहने का भावार्थ कि आज पांचवें दिन पर माँ स्कंद की पूजा, अर्थात कि जो हर एक भक्तों की, हर एक बच्चों की रक्षा करने वाली और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी बना देने की क्षमता रखने वाली माँ स्कंद है।

ये नवरात्र में शक्ति के नौ रूपों का आह्वान करते हैं। माँ स्कंद माता का रूप सुखदाई है, हम भी सभी से अपना आचार व्यवहार मीठा रखें और सुख दें, तो माँ के सच्चे भक्त कहला सकेंगे। रेडियो मधुबन की ओर से नवरात्र के पांचवें दिन की आप सभी

0: आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जो भी शक्ति आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकती है, वह कहीं बाहर से खरीद कर लानी नहीं पड़ती, वह तो आपके अंदर ही है। इस एक शक्ति के अनेक रूप हैं, जिन्हें आप पहचान नहीं पाते। जोड़ने की शक्ति, सृजन शक्ति, संकल्प की शक्ति, दृढ़ विश्वास की शक्ति, इन सबसे बड़ी शक्ति है आपकी नवीनता, आपकी मौलिकता। इन सब विशेषताओं से ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसके पश्चात ही बहुत से लोग आपको अपना नेता मान सकते हैं, अग्रणी मान सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो ही लोग आपकी जय जयकार करेंगे। इसके सहारे ही आप ऊंचे उठ सकते हैं, आपकी सफलता के द्वार भी खुल सकते हैं। आपके पास बुद्धि है, शक्ति है, फिर आप क्यों दूसरे लोगों की ओर देखते रहते हैं? क्यों दूसरों से अपने को छोटा समझते हैं? यह तो मानवता का ही अपमान है कि इंसान हर जगह, हर स्थान पर दूसरों से ही कुछ न कुछ मांगता रहे। ऐसे लोगों को मैं यह बता देना चाहती हूँ कि मांगे हुए विचार, उधार ली गई योजनाएं, दूसरों के किए गए निर्णय, अपने पर विश्वास न करके दूसरों पर विश्वास करना, छोटी छोटी बातों को समझने के लिए दूसरों से सहायता लेना, इससे आपके मन में सदा हीन भावना ही पैदा होगी। आज जब हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो हमें साफ पता चलता है कि पुराने जमाने के तौर तरीके, पुराने फार्मूलों के आधार पर ही नई जिंदगी को जीना, यह सब कुछ क्या आपको आगे ले जाएगा? यकीन रखिए, यह सब कुछ तो आपको पीछे ही खींच सकते हैं, यदि आपके मालिक आपको इन पुराने तौर तरीकों को अपना लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो आप अपनी बुद्धि को नष्ट करने की बजाय उनकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दें, नहीं तो आप एक पुरानी जंगली मशीन बनकर रह जाएंगे जो किसी भी काम की नहीं।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

आप अपनी बुद्धि को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? क्या आपको इस बात का पता नहीं कि इस संसार को नए नए तरीकों के कारोबार की अधिक आवश्यकता है? सारे संसार में लोग कारखानों, मिलों, फैक्ट्रियों में माल बनाते थे, सभी अपने अपने माल को बेचते थे। लेकिन आप उस आदमी को कैसे भूल सकते हैं जिसने यह सोचा था कि विज्ञापन के सिर पर तो हम अपने माल को घर घर पहुंचा सकते हैं, और आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में बढ़िया से बढ़िया माल बेचने के लिए बड़ी से बड़ी कंपनी को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। आज वही लोग अपने कारोबार में सफल हैं जो विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। विज्ञापन के सहारे तो मिट्टी भी बेची जा सकती है, बढ़िया माल का तो कहना ही क्या है। यह रास्ता किसने खोला? केवल एक आदमी के मस्तिष्क ने। उसका लाभ भी आज पूरे विश्व के कारोबारी लोग उठा रहे हैं। इसे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि पुरानी शराब नई बोतलों में, यानी चीजें तो सब वही हैं, मगर विज्ञापनों ने उन्हें नया ढंग, नया रूप दे दिया है। जिन चीजों के नाम भी लोगों ने नहीं सुने थे, वे सब की सब हाथों हाथ बिकने लगी। यहाँ तक कि बच्चों ने भी उन चीजों का नाम रट लिया। इसे कहते हैं बुद्धि का कमाल। आज जिस मशीनरी को आप बहुत अच्छा समझते हैं, वही हो सकता है कि कुछ समय के पश्चात मिट्टी हो जाए। करोड़ों अरबों रुपयों की मशीनें जब पुरानी हो जाती हैं, तो बड़ी कंपनियां उन्हें सागर में फेंक देती हैं। जब भी नए मॉडल बाजार में आ जाते हैं, तो पुराने मॉडलों को मिट्टी के भाव बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। मशीन कोई भी हो, जब वह पुरानी हो जाती है और उसके पश्चात नवीनतम मॉडल आ जाते हैं, तो बहुत तेजी से काम करते हैं। उन मशीनों से कहीं अधिक तेज काम होता हो तो वह मशीनें बेकार ही हो जाती हैं, अथवा उनकी कीमत कम हो जाती है। यह बात हम हर क्षेत्र में देखते हैं, यानी नए के आगे पुराना पिछड़ा नजर आता है। ऐसे कई लोग भी आज समाज में हैं जो नए मॉडलों की निंदा करते हैं। असल में वही लोग उन्नति के रास्ते का रोड़ा होते हैं। हमें नवीनता को स्वीकार करना चाहिए, बल्कि उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम पुरानी चीजों को ही पकड़ के बैठे रहेंगे, तो जमाना कहीं और आगे निकल जाएगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
1: ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। आज पांचवा दिन माँ स्कंद माता का दिन है और माँ स्कंद विशेष योद्धा के रूप में दिखाई गई है, जो कहा जाता है कि देवों की सेना की मुख्य योद्धा के रूप में उसको दिखाया गया है माँ स्कंद। माँ स्कंद भी माँ दुर्गा का ही दूसरा स्वरूप है। माँ स्कंद कहा जाता है कि वो कार्तिकेय की माता थी, जिसको देवों ने चुना था असुरों के सामने विशेष युद्ध करने के लिए मुख्य योद्धा के रूप में। कहा जाता है कि माँ स्कंद ने अपने बेटे को एक हाथ में उठाया है, इसीलिए उसके हाथ में छोटा बच्चा भी दिखाया है और साथ में उसको चार भुजाधारी और तीन नेत्रधारी दिखाया गया है। उसके हाथ में अपने बेटे और दूसरा हाथ जो आशीर्वाद की मुद्रा में है और साथ ही साथ तीसरे हाथ में कमल जो पवित्रता का प्रतीक है। कहने का भावार्थ कि वो सभी भक्तों की रक्षा करने वाली, विशेष अपने भक्तों कहो या बच्चे के समान सभी बच्चों की रक्षा करने वाली और पवित्रता से उनके जीवन को भर देने वाली, उनके जीवन के अंदर अनेक आशीर्वादों से उसका जीवन संपन्न करने वाली माँ स्कंद की पूजा होती है। कहा जाता है कि जिसके ऊपर माँ स्कंद की मेहर हो जाए तो एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। ऐसी विशेष विशेषता माँ स्कंद की दिखाई गई है। कहने का भावार्थ कि आज पांचवें दिन पर माँ स्कंद की पूजा, अर्थात कि जो हरेक भक्तों की, हरेक बच्चों की रक्षा करने वाली और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी बना देने की क्षमता रखने वाली माँ स्कंद है।

आधुनिक युग की शक्ति के आगे रूढ़िवाद दम तोड़ देता है। जो लोग समय के साथ नहीं बदलते, उन्हें समय स्वयं बदल देता है, अथवा समय उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो लोग पुरानी वस्तुओं, रीति रिवाजों और कामकाज के पुराने तौर तरीकों को ही पसंद करते हैं, उनके लिए कोई स्थान नहीं रहता। हर अच्छी सभा सोसाइटी से वे कट हो जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नए विचारों के लोगों को पुराने युग रूढ़िवाद के उदाहरण देकर पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। ऐसा करते समय वे यह बात भूल जाते हैं कि मानव जाति की प्रगति का सबसे बड़ा कारण ही आधुनिक युग है। आज मानव जाति को जीवन के जितने सुख प्राप्त हैं, क्या आपका रूढ़िवाद उन्हें दे पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रूढ़िवाद हमें जहाज और तेज गति से चलने वाली गाड़ियां, नई नई आधुनिक सुविधाओं से युक्त कारें, एयर कंडीशनर, पंखे, बिजली, टेलीफोन, जीवन के अनेक सुख कहां से देगा? यह सारे सुख आपको नवीनतम विचारधारा ने ही दिए हैं। ये सब के सब आविष्कार उन इंसानों ने ही किए हैं जो रूढ़िवाद के विरुद्ध थे। अतीत में भी और वर्तमान में भी संसार रूढ़ी मंजकों का ही कृतज्ञ है। यदि पुरानी प्रथाओं को तोड़ने वाले न होते तो आज कोई भी आदमी इतिहास को पढ़ने का प्रयत्न नहीं करता। इतिहास स्वयं में ही एक बेकार विषय बनकर रह जाता। रूढ़िवाद और आधुनिक युग सदा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पुरानी हर चीज इतिहास बन जाती है और यही इतिहास नए युग की प्रेरणा बनता है। आधुनिक विज्ञान के सामने रूढ़िवाद कहाँ टिक पाता है? आप देख रहे हैं, कंप्यूटर ने हर रूढ़िवादी का भ्रम तोड़ कर रख दिया है। सालों के काम दिनों में पूरा करना और कई कई सौ आदमियों का काम एक ही कंप्यूटर मशीन द्वारा पूरा करना, क्या यह कम बात है?

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर नवरात्रि के पांचवे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी।
0: आज के दिन उपांग ललिता व्रत किया जाएगा। रेडियो मधुबन के संग नवरात्रि के रंग
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।

प्रगति की इस तेज धारा ने पूरे रूढ़िवाद को एक झटके में बहाकर फेंक दिया है। मानव का अंतरिक्ष में प्रवेश और चांद पर जाकर एक नई दुनिया बसाने की ओर कदम बढ़ाने के सामने रूढ़िवाद क्या करेगा? रूढ़िवाद एक इतिहास है, एक अतीत है। इसे आधुनिक युग के रास्ते की दीवार मत बनाओ। वह तो अतीत की एक चिता है, एक ऐसे महापुरुष की चिता है जिसके ज्ञान रूपी प्रकाश से आप लाभ उठा सकते हैं। उस अतीत के ज्ञान के प्रकाश के सहारे आप आगे तो बढ़ सकते हैं, मगर इस चिता को ही मूलाधार मानकर उसे पकड़कर बैठे रहने का तो कोई लाभ नहीं। अतीत आपको कुछ नहीं दे सकता, वह तो केवल यादों की मिट्टी है जो अपनी इच्छा से अब हिल भी नहीं सकती। तो आप उसे सीने से लगाकर रोते हुए क्या पाएंगे? ऐसी कल्पना करना भी आपकी प्रगति के रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। आगे देखिए कि क्या हो रहा है, पीछे झांकने से क्या मिलेगा। विश्व के महान आविष्कारक पुरानी प्रथाओं के गुलाम नहीं थे, उन्होंने पुरानी प्रथाओं को तोड़कर ही नई दुनिया में पांव रखा। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि उन रूढ़िवादियों और भोले भाले लोगों को लूटने वालों ने हर आविष्कारक को पागल तक कहा? कुछ एक को तो जेलों में भी बंद करवा दिया गया, मगर ऐसा करने से क्या वे लोग डर गए? नहीं, जो लोग केवल मानव सेवा के भाव से कुछ करते हैं उन्हें कोई डरा नहीं सकता, और नहीं शत्रुओं की धमकियां उनका रास्ता रोक सकती हैं। उसका कारण एकमात्र यही होता है कि प्रकृति उनके साथ होती है और ईश्वर ही उनका रक्षक होता है। यही एक मूल मंत्र है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ, फिर आप जो कुछ चाहोगे वही पालोगे। यही एक मूल मंत्र है आपकी इच्छाओं की पूर्ति का और सफलता का। यदि अपने उद्देश्य में सफलता चाहते हो तो नए विचारों से डरो मत। अपने अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा कर लो कि लोग आपसे प्रेरणा लें। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
1: ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। आज पांचवा दिन माँ स्कंद माता का दिन है और माँ स्कंद विशेष योद्धा के रूप में दिखाई गई है, जो कहा जाता है कि देवों की सेना की मुख्य योद्धा के रूप में उसको दिखाया गया है। माँ स्कंद, माँ स्कंद भी माँ दुर्गा का ही दूसरा स्वरूप है। माँ स्कंद कहा जाता है कि वो कार्तिकेय की माता थी, जिसको देवों ने चुना था असुरों के सामने विशेष युद्ध करने के लिए मुख्य योद्धा के रूप में। कहा जाता है कि माँ स्कंद ने अपने बेटे को एक हाथ में उठाया है, इसीलिए उसके हाथ में छोटा बच्चा भी दिखाया है और साथ में उसको चार भुजाधारी और तीन नेत्रधारी दिखाया गया है। उसके हाथ में अपने बेटे और दूसरा हाथ जो आशीर्वाद की मुद्रा में है और साथ ही साथ तीसरे हाथ में कमल जो पवित्रता का प्रतीक है। कहने का भावार्थ कि वो सभी भक्तों की रक्षा करने वाली विशेष अपने भक्तों कहो या बच्चे के समान सभी बच्चों की रक्षा करने वाली और पवित्रता से उनके जीवन को भर देने वाली, उनके जीवन के अंदर अनेक आशीर्वादों से उसका जीवन संपन्न करने वाली माँ स्कंद की पूजा होती है। कहा जाता है कि जिसके ऊपर माँ स्कंद की मेहर हो जाए तो एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। ऐसी विशेष विशेषता माँ स्कंद की दिखाई गई है। कहने का भावार्थ कि आज पांचवें दिन पर माँ स्कंद की पूजा, अर्थात कि जो हर एक भक्तों की हर एक बच्चों की रक्षा करने वाली और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी बना देने की क्षमता रखने वाली माँ स्कंद है।

0: समय की रफ्तार को कौन थाम पाया है। ठीक वैसे ही जब सृष्टि परिवर्तन का बीज पड़ गया हो और उसे आध्यात्मिक शक्ति रूपी जल से सींचा जा रहा हो, तो भला कौन उसके अंकुरण को रोक सकता है। मैंने यानी काल चक्र ने भी देखा है कि कैसे समाज द्वारा खड़े किए गए अवरोधों, चुनौतियों एवं मनुष्य आत्माओं के स्वयं के अंतर विरोधों, आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए ब्रह्मा बाबा अपनी रूहानी यात्रा पर अग्रसर रहे। उनके जीवन परिवर्तन की कहानी कल्पनातीत अवश्य है, परंतु उसने लाखों करोड़ों लोगों को नरक से मुक्ति एवं स्वर्ग में जाने का असली रास्ता दिखाया। मात्र शक्ति को उनका उचित अधिकार दिलाया, उन्हें शिव शक्ति के रूप में संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा बाबा ने स्वयं न किसी कार्य को हीन समझा और न दूसरों को समझने दिया। सदैव बहनों एवं माताओं को आगे रखा, उन्हें हर विधा में कुशल बनाया। आइए खुद राजयोगिनी सुदेश दीदी जी के मुख से सुनते हैं ब्रह्मा बाबा के जीवन के अलौकिक कार्यों के बारे में और जानते हैं कि कैसे उन्होंने बाल्यावस्था में ही बहनों में आध्यात्मिकता का इतना सशक्त बीज बोया कि सिंध पाकिस्तान से भारत आने के उपरांत ईश्वरीय सेवाओं का दिनों दिन विस्तार होता चला गया।
1: अब आप सुनेंगे ब्रह्मा बाबा से जुड़े हुए उनके जीवन के कुछ कहे अनकहे अनुभवों के पल, उन राजयोगियों के मुखारविंद से जिन्होंने साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से

0: बाबा ने छोटे बच्चों को बहनों द्वारा ही कभी ड्रामा करना सिखाया तो बाबा ने फिर उनका चित्र बनवाया, फोटोग्राफ बनवाया। फोटोग्राफ में जैसे कि वो प्रिंसेस की ड्रेस पहन करके फोटो खिंचवाया। साधारण तपस्या कैसे बने, ये किस प्रकार से बने? तपस्या के बल से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो ये जो बचपन से चाहे ड्रामा के रूप में, चाहे आपसी डायलॉग के रूप में, चाहे कोई समझो किसी को दूसरी आत्माओं का उद्धार करना है, तो एक ये बच्चों को सिखाते थे भूला भाई सौदाई। और दूसरा व्यक्ति जो है वो समझदार ज्ञानी आत्मा है, तो आपस में डायलॉग करते थे। यानी कोई क्वेश्चन बहने ही बना के देती थी, बाबा ही उनको डायरेक्शन देते थे और बनवा के एग्जाम्पल बताते थे। आत्मा कैसे है, कहाँ से आती है, आत्मा के गुण क्या हैं, और अथवा बाकी बातें जो जो भक्ति की बातें परमात्मा के बारे में सुनी हुई हैं, और जितना जितना वो रहस्य खुलता गया उसका वास्तव अर्थ क्या है, तो वो डायलॉग में। तो बचपन से उन्होंने ज्ञान की भी बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया, जीवन के अंदर व्यवहार में भी सुंदरता से कैसे स्नेह से सम्मान से आपस में मिल करके रहना, साइलेंस का भी अभ्यास किया, और सेवा बाहर जाकर किसी मनुष्य बाहर वालों की नहीं की, परंतु अंदर में रहने वालों का ही आपस में जो वार्तालाप छोटे बच्चों का या बहनों का इस प्रकार से होता था, तो एक सेवा का संस्कार भी बन गया। और बाबा कहते थे ये जो तुम सीख रहे हो ये तुमको लाखों को सुनाना होगा, अनेकों को बताना होगा, बच्ची ये सबको संदेश देना है। तो बाबा इंजेक्ट कर रहे थे वो, तो वो जो बाबा ने उत्साह भरा, उनको लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य से तो माउंट आबू आए। परंतु तो कोई सेवा तो नहीं थी माउंट आबू में, उस माउंट आबू में तो एक स्थान ऐसा जहाँ पर विजिटर भी उस समय इतने नहीं होते थे। आज जो माउंट आबू एक स्वर्ग जैसा बन गया है, उस समय माउंट आबू एक विलेज था, टूटा फूटा कुछ, कोई इतना स्वच्छता थी ना कुछ, वहाँ का इतने सुंदर वातावरण था। तो फिर जब वो बाबा ने वो माउंट आबू में आए तो उनका भविष्य का उद्धार होना चाहिए। बाबा ने दो दो बहनों को, अभी वो तो बहुत जब आ गई तो बहुत डिपेंडेंट हो गए बाबा के साथ ही रहने को,
1: बिल्कुल।
0: और बाबा नहीं चाहते थे कि उनका ये जो इनकी प्रोग्रेस है वो रुक जावे। प्यार है ठीक है, बाबा की छत्र छाया में बहुत अच्छा है, पर तो इनको इनका विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। तो फार साइटेड विश्व कल्याण की भावना से बाबा ने कहते किसी के भी दो दिन वारंट निकलेंगे।
1: हाँ।
0: तो दो दो बहनों को फिर अलग अलग शहरों में भेजना शुरू किया। अब वो बहनें ना कभी ट्रेन में अलग से चढ़ी हैं, ना किसी शहर में गई है, परंतु बाबा कहते थे तुम जाओगी ना सब साधन सहज हो जाएंगे। तो उनकी दिव्यता, उनकी सादगी, उनकी स्वच्छता और पवित्रता, उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता था और वो सुनाते थे। ऐसे सुनते सुनते और सुनाते अनेक साथी बने, अनेक सहयोग मिलने लगे। तो इस प्रकार से ये प्रचार प्रभाव शब्दों से नहीं हुआ है, जीवन से जीवन बनाने का की कला थी उनके पास।
1: दीदी जब इस ज्ञान में बाबा के पास लोग आए, खासकर महिलाएं जब आईं, और उन्हें जब ब्रह्मचर्य पवित्रता के व्रत का पालन करने का निर्णय लिया उन्होंने, तो परिवारों में उनका विरोध हुआ
0: जी,
1: माताओं का बड़ा विरोध होने लगा, बाबा को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा, सहन करना पड़ा होगा, तो बाबा ने कैसे इस चुनौती का सामना किया?
0: बाबा ने माताओं में शक्ति भरी और उन्हें स्मृति दिलाई कि आप कौन हो, और ये जो पवित्रता की बात है इसमें कोई बाहर के कारण पवित्रता नहीं, किसी के कहने से पवित्रता नहीं आती है, ना अपने आप को फोर्स करने से पवित्रता आती है, पर रियलाइजेशन से पवित्रता बढ़ती है। तो बाबा ने माताओं को ये रियलाइज कराया कि आप शिव शक्तियां हो और जितनी भी देवियां हैं वो पवित्रता की मूर्ति हैं। फिर रही घर में रहने की बात, तो बाबा ने उनको भी यही कहा कि आपको ये निर्णय करना है कि आपको अपना जीवन कैसे बनाना है। तो एक ड्रामा किया हुआ था, छोटी बच्ची ने, बाबा ने एक गीत बनाया था, उस गीत में था कुमारियां, छोटे बच्चे तो थे ही, वही उनकी मदर, मिसाल के तौर पर कुमारका दादी, प्रकाशमणि दादी की बहन, उन बहन की बेटी कुंज बहन, वो बच्चों का ग्रुप था, उनको एक गीत लिख के दिया था बाबा ने, और माताओं के ग्रुप में वो कन्याओं ने गीत गाया। अमी तुम पिंजरे की मैना, फंसी तुम भूषण और गहना, और तुमने नथ निराली पहनी है, हथकड़ी डाली है, देखो हम कितनी निराले जीवन में फ्री हैं। ये गीत इतना टच किया माताओं को कि हम पशुओं की तरह हैं, बराबर हथकड़ी है, किस लिए? गहने के कारण। हमारे अंदर की कोई जरूरी तो नहीं हमको कि हमको भूषण चाहिए। हमारा अंदर की सुंदरता स्वच्छता कौन सी है? तो स्वाभिमान जागृत हुआ।

0: किया, जैसे कि प्यार से स्वागत कर रहे। तो उन्होंने कहा ये क्या करती हो हार जैसे। उन्होंने कहा निर्मल शांता दादी ने कि अब तक मैंने एक मनुष्य को वरा हुआ था, आज मैं एक देवता को वरण कर रही हूँ। तो हृदय का भावना प्यार भी दिखाया कि मुझे कैसा आपको देवता बन करके रहना है, और मेरे अंदर ये भावना है कि अभी हम पहले नर और नारी के रूप में रहते थे, अभी मैं लक्ष्मी और नारायण के रूप में आपको देखना चाहती हूँ। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं अमृत पीना चाहती हूँ, आप मुझे छुट्टी देंगे। उन्होंने कहा तुम भले पियो अमृत, मतलब ये यानी ज्ञान अमृत पीना चाहती हूँ। तो कोइयों ने अपनी दिव्यता से, एक आध्यात्मिक विवेक से, एक शुभ भावना शुभ कामना से स्वीकार करवाया और कहा आप स्वतंत्र हैं, आपके पास स्वतंत्र विचार हैं, आप जैसे चाहो वैसे करो, पर मुझे अमृत पीने, मुझे आप छुट्टी दो, लिख करके दो कि हाँ तुम अमृत, मेरी छुट्टी अमृत पीने की। तो ऐसे कईयों ने फिर लिख करके नहीं दिया माताओं को, थोड़ा फोर्स किया, अत्याचार भी किया, तालों में भी बंद किया, मार भी पड़ी, परंतु उन्होंने कहा कि हम पशु नहीं हैं, हम मन शात्मा हैं, तो जो मेरे मन की भावना है। तो ये एक आत्मिक बल कहें, एक दृढ़ता की शक्ति, स्वतंत्रता का संस्कार जागृत हुआ, और अंदर ये नशा था कि हम हमारा रक्षक कौन है, परमपिता परमात्मा शिव है, भगवान के हम बच्चे हैं। अपनी शीलिंद्रा दादी बहुत अच्छा अनुभव सुनाती है कि हम अमृत वेले योग करने आते थे, तो घर से जब आते थे तो कोई ना कोई आता था, एक दिन का नहीं हम नहीं जाएंगे, कोई साथ नहीं आना चाहता था क्योंकि वो चाहते थे नहीं जावे। ये तो निकलती, मैं तो निकल पड़ी, रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे तो मेरे को अंदर आया, डॉग का बच्चा डॉग, गॉड का बच्चा गॉड, डॉग का बच्चा डॉग, मैं तो ईश्वर की संतान हूँ। तो नशा था अंदर, तो एक कोई दूसरे के सिखाने की बात नहीं थी, अपना अंदर जो निश्चय और नशा था उससे वो जो ऑटोमेटिकली अंत में वही, पर चाहे बाहर भी गए, परिस्थिति भी आई, लोगों को उसी निश्चय से, अपने अनुभव से, रूहानियत के जो धारणाएं थी, पालना स्नेह से पालना देनी है, उसके आधार पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माताओं को के हाथ में सारी जो बागडोर थी बाबा ने दी, और सब बताया जरूर कि जैसे भाइयों को माताओं का सम्मान रखना है, सम्मान देना है, और माताओं को भाइयों को सम्मान देना है।
1: जी, जैसे आप माताओं की बात करते हैं, सत्संगों में आम तौर पे पुरुष ही शास्त्र सुनाते हैं, वहां पर कथा करते हैं, ज्यादातर तो पुरुष ही होते हैं, लेकिन बाबा ने महिलाओं को ईश्वरीय ज्ञान देने के कार्य के लिए निमित्त बनाया, इसका तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रतिक्रिया हुई इस चीज से?
0: समाज पर तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि छोटी छोटी उम्र वाली थी, जो भी बहने हैं उस समय 25 साल की, 28 वर्ष की, कोई बड़ी नहीं थी, और वो कुमारियां थी। तो एक तो उनकी पवित्रता का प्रभाव, एक उनकी दृष्टि कहीं किसी बाहर नहीं जाती है, उनका जीवन का जो चरित्र था ना, चरित्र का प्रभाव पड़ा, और जो वो सुनाती थी वो कोई रटी हुई चीज नहीं सुनाती थी, वो जो उनको योग में अनुभव होते थे, बाबा की मुरली से जो सुनते थे, और बाबा की मुरली के जो महावाक्य आते थे वो भी बड़े भोले भाव से सुना रहे हैं, मैंपन नहीं था। तो उनका जो अपने आप से मैंपन के न्यारे होने से जो ज्ञान सुनाने का भाव था, वो पंडित की तरह नहीं था, वो कोई जो योग तपस्या पुजारियों की तरह नहीं थी, वो जीवन के अनुभव की बातें थी। तो समाज पर तो बहुत अच्छा पड़ा, परंतु जो

0: धर्म को मानने वाले थे उनके लिए तो चैलेंज था
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि कथा सुनाने वाला पंडित ही है, पुरुष ही है। तो उस समय थोड़ा विरोध हुआ, परंतु जो माताएं आती थी, परिवार वाले जो चलने लगे, तो उन्होंने ने कहा कि ये तो शिव शक्तियां हैं, ये तो देवियां हैं, बहुत लोग तो देवी जी बुलाते थे उस समय, नाम से नहीं, देवी देवियां आई है, देवी आई है। इसलिए बहुत एक डिफरेंट प्रभाव था, चाहे मिनिस्टर्स के पास जाना होता था, चाहे किसी जाना तो होता था, क्यों कि निमंत्रण देने के लिए कोई उसका मैं न्यूज़पेपर में था, छपाने की बात नहीं थी और कोई ज़्यादा भाई भी नहीं थे पहले, दो तीन अगर भाई है सेवा से बताते हैं कैसे करनी है, करने वाली तो बहने ही थी, तो बहने ही जाती थी, दो बहनें हमेशा मिल करके जाती थी।
1: दीदी जब पिकेटिंग की बात आती है, संस्था के विरोध में कई सारे लोगों ने पिकेटिंग की, इसके पीछे अलग अलग कारण रहे होंगे, एक तो महिलाओं को ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए एक ऐसा स्थान देना, फिर पवित्रता ब्रह्मचर्य इत्यादि के व्रत को फॉलो करना, इन सब चीजों के लिए समाज उस घड़ी तैयार नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया, कई लोगों ने पिकेटिंग की, ये पिकेटिंग क्या थी, बाबा ने उसका कैसे सामना किया?
0: नहीं, ये बीच का पार्ट था जो हमने सुनाया
1: जी।
0: ये था जब वो माउंट आबू में आ गए
1: जी।
0: और फिर सेवा करने निकले तो उनके जीवन का प्रभाव क्या, ये सिंध हैदराबाद की पिकेटिंग की बात है
1: जी।
0: तो उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनकी युगल, उनके साथी, जब वो वहाँ रह जाके रहने लगे तो वो समझते थे कि हम इस संस्था को बंद करें ताकि हमारे बच्चे फिर से हमारे परिवार वाले हमारे घर में ही आ जावें। परंतु जो बाबा की शिक्षाएं थी उससे जीवन कैसे बनता है, तो जब उन्होंने देखा जब वो पिकेटिंग में छोटे छोटे बच्चे वो कितने घंटे खड़े अंदर नहीं गए, एक तो अंदर से उनको अपना भी बराबर ये हुआ होगा, फिर भी मानव का हृदय है, उन्होंने विरोध ब्रह्मा बाबा का किया, परंतु तो अपने बच्चों की तो फिर भी भावना रहती है ना। और दूसरा विशेष जो था, जो नहीं कदम ले सके, वो जो वहाँ की जो जो मुख्य म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन या जो भी वहाँ के जो विशेष व्यक्ति थे, उनको उन्होंने सुना था कि इन्होंने जो आने वाले हैं उनके जीवन में परिवर्तन क्या आया है, तो उसमें से एक ये जब उनको दिखाया कि हमारा हमको ये क्यों हम बंद करें, क्यों नहीं हम इस संस्था में जावे जबकि हमारा जीवन इतना चरित्र बन रहा है, और मार पड़ती है तो हमको मार से तो सुधार नहीं होता है ना, तो जब रियलिटी गवर्नमेंट के सामने आई तो नेचुरली फिर वो पिकेटिंग की तो फिर पावर नहीं रही ना
1: जी। जैसे कराची की ही एक बात है, सिंध हैदराबाद की बात है, यहाँ पर विभाजन के दौर पे जब भारत का विभाजन होना था उस समय पर कराची में किस प्रकार की तपस्या चली, क्या दिनचर्या होती थी, बाबा किस प्रकार की प्रेरणाएं देते थे, कैसे बच्चों का मनोबल बढ़ाया बाबा ने?
0: 1947 से 50 तक, पहले तो समझो वो बाबा लेके जाते थे समुद्र किनारे, एक्सरसाइज कराते थे, माताओं को भी ये भाव नहीं कि हम माताएं हैं, वो भी एक्सरसाइज करती थी, ड्रिल करते थे, वो दौड़ लगाते थे, बाबा ने ये भुलवा दिया था कि आप नारी हो, बाबा ने ये शक्ति भरी कि आप आत्मा तो नर नारी से परे है, बाबा ने उन माताओं को बस साफ करनी है, माताएं साफ करती थी, रीसेट करना है माताओं को करना है, जो भी डिपार्टमेंट पहरा देना है माताओं को देना है, बाबा ने इंजीनियर भी बनाया तो माताओं को बनाया, तो कारपेंटर भी माताओं को बनाया, तो कॉबलर भी माताओं को बनाया, मोची भी उनकी अपनी बेटी, किस प्रकार से बाबा ने हर प्रकार की स्किल सिखाई। निर्मल शांता दादी अपना अनुभव सुनाती हैं कि मेरी चप्पल टूट गई, उस समय तो बाहर तो जाते नहीं थे क्योंकि कुछ समय तक तो ये बाहर जाते थे पर ग्रुप में ही जाते थे, बाबा कहते योग युक्त होकर के जाओ, खरीदारी के लिए तो कोई नहीं जाता था। तो उसने बाबा को कहा, बाबा मेरी चप्पल टूट गई है। बाबा ने कहा, मोची जितनी भी अक्ल नहीं है, मोची चेपे चेहर कर सकता है ना, तुम मेरे पैर कर सकती हो। उसने रिपेयर किया, जो भी जोड़ना था सुआ लेके मोटा धागा लेके अपनी चप्पल को जोड़ लिया। अभी किसी की भी चप्पल टूटती थी निर्मल शांता दादी के पास आते। धीरे धीरे चप्पल का जो तैयार करने का ड्यूटी निर्मल शांता को मिल गई। ऐसे ही बाबा के पास ये संबंध का भान बिल्कुल नहीं था। सब इक्वल सेवाधारी हैं। भूल जाए कि हम लखपति के घर से आई हैं, करोड़पति के घर की बहू हैं, लखपति के घर की बेटी हैं। नहीं, आप आत्मा हो और आप आत्मा सेवाधारी हो। तो निर्मल शांता दादी एक दूसरा अनुभव सुनाती है कि मेरे को ड्यूटी मिली, ये जो बड़े बर्तन होते हैं खाना बनाते हैं वो साफ करने की, पतीले बड़े बड़े 350 का खाना बनता है और बड़ा शाही खाना बनता था। मिठाई भी बनती थी, तो पुलाव भी रोज बनता था, सब चीजें बनती थी। खाना भी सिंधी खाना, एक बहुत रिच खाना है उनका, सिस्टम यही है। सब चीजें बहुत करके तली हुई होती हैं और घी वाली होती हैं। तो एक बारी पतीला जो साफ कर रही थी तो वो अंदर से थोड़ा लग गया, जल गया था कुछ, उतारना चाहा तो निकला नहीं। तो कहती है, मैं अब साफ तो करना है, छोड़ तो नहीं सकती, मेरी ड्यूटी है पतीले साफ करने की। कहती है, मैं अंदर कूद गई और मैं फिर उसको रगड़ के साफ कर रही थी। तो अब जब मैं साफ कर रही थी तो जब मैं घूमती थी तो पतीला घूमता था। बाबा और मम्मा ने क्रॉस किया, बाई चांस चक्कर लगाने आए, कहा ये पतीला अपने आप कैसे घूम रहा है। आके देखा तो क्या, निर्मल शांता दादी पतीले के अंदर है, साफ कर रही है। बाबा ने कहा, बच्ची तुम अंदर क्यों गई साहब। कहा, बाबा साफ नहीं होता था, हाथ तो पहुंचता नहीं था उसको, तो मैं इसलिए अंदर कूद गई साफ करने के लिए। तो बाबा के पास ये नहीं था कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, इसलिए इनको कोई ऑर्डिनरी काम नहीं देना है। उनके पास इतना न्यारापन था, साक्षीपन था, सेवा का भाव था, उसमें जिनकी विशेषता थी उनको वो स्थान देते थे, ड्यूटी देते थे, और कोई अहम भाव ना रहे इसलिए विशेषता होते हुए भी दूसरी ड्यूटी देते थे, ताकि निरंकारित बना जावे। तो समा भी जागृत कराया और अभिमान भी तुड़वाया, पर बड़े प्यार से करवाया। ये था बाबा की विशेषता।
2: स्वर्ग सा सुंदर था हमारा भारत देश, देवी देवता करते थे यहाँ राज, चहुं ओर थी सुख एवं शांति, बहती थी दूध की नदियां, शेर और बकरी पीते थे एक घाट पर पानी, जंगल में था मंगल। परंतु आज तो इस जंगल में ही आग लगी हुई है, तमो प्रधानता एवं विकारों की अग्नि में झुलस रहा है मानव। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरी सुरंग के बाद उजाला जरूर होता है, समय का पहिया निरंतर घूम रहा है, ये सृष्टि चक्र अनादि है, दुख का संसार सुख के संसार में परिवर्तित होना ही है, कलयुग के बाद सतयुग को आना ही है, ब्रह्मा बाबा ने स्वयं उसका साक्षात्कार किया था।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जीवन को जीने के लिए जो हमें नहीं मालूम थी और शायद इसीलिए हमारा जीवन इतना खाली था। अपने विचारों की ताकत को समझा कि कितने पावरफुल हैं हमारे थॉट्स और कितनी तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। सबसे पावरफुल और डैमेजिंग थॉट्स, जो टॉक्सिक थॉट्स जिनका हम देखते हैं, उनका हमें पता चल जाता है कि किस तरह से, चाहे वो गुस्सा है, नफरत है या ये सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और दूसरी तरफ देखें तो हमारे साथ पॉजिटिव थॉट्स हैं, राइट थॉट्स हैं, एलिवेटेड थॉट्स हैं। हमारे साथ जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी दोनों हैं, उनसे बात करते हैं इस थॉट पावर के बारे में। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, जो डिफरेंट तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उनको हमने डिटेल में जानने की कोशिश की है, अभी बात हमने करनी है राइट थॉट्स और एलिवेटेड थॉट्स। व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय राइट थॉट्स?
1: सबसे पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग लोगों को मुश्किल लगता है, परंतु एक आम व्यक्ति भी इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि परिस्थिति जैसी है वैसी ही हमें देखनी चाहिए। म्यूजियम में जब हम जाते हैं, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में नहीं, कोई मोटा दिखता है, दुबला दिखता है, ऊंचा दिखता है तो हम हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता है। परंतु सचमुच यही हम अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ कर रहे हैं, परिस्थितियों को विकृत रूप दे रहे हैं। ऐसा तो कम से कम नहीं करना चाहिए। परिस्थिति जैसी है वैसी ही देखे। करीब 9 अलग अलग प्रकार के मिरर्स में हम अपने आप को देखते हैं। इसको कहेंगे रॉन्ग थॉट्स। उस रॉन्ग थॉट्स को समझ लेंगे तो फिर राइट थिंकिंग करना भी सहज होगा।
0: ओके, तो मतलब किस तरह से जो है वो हम अपने जो पूरी सिचुएशंस हैं उनको देखें। इनफैक्ट शिवानी, जब पिछली बार बात हुई थी कि पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं, कैसे क्रिएट किया जाए, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो क्रिएट नहीं कर पाते, यू नो, समझ भी रहे हैं क्योंकि फील गुड के साथ हमने जोड़ा था कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव थॉट और अ नेगेटिव थॉट, लेकिन वो हो नहीं पा रहा प्रैक्टिकली। यहाँ बैठ के फॉर्मूला की तरह बात करें तो लगता है कि ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में डे टू डे सिचुएशंस में आते हैं, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट।
2: छोटी सी एक्सरसाइज करके देखें। एक, कुछ समय के लिए अपने आप को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से बचा के रखें। अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, टू मच ऑफ न्यूज़ इन द टेलीविजन, बहुत सारे विजुअल्स एंड ऑडियो जो हम नेगेटिव भर रहे हैं, ये हमारी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो कुछ दिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करें और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर भरना शुरू करें। हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के 130 कंट्रीज में 8500 से ऊपर सेंटर्स हैं। इतने सेंटर्स क्यों चाहिए? हर शहर में हम जहां भी रहते हैं विदिन 5 to 6 किलोमीटर्स एक सेंटर है। ये किस लिए चाहिए? ताकि सभी भाई बहने वहां पर आकर आधे घंटे के लिए, चाहे सुबह चाहे शाम, प्रेफरेबली सुबह, परमात्मा का वो ज्ञान लेते हैं, विच इज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ प्योर पॉजिटिव एलिवेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हमने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया कि सुबह सुबह अखबार रेडियो टेलीविजन की बजाय सुबह सुबह ज्ञान लेना शुरू किया। इतना सा परिवर्तन, पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल होने लगा। जो भोजन खाएंगे वही एनर्जी क्रिएट होगी। तो एक तो ये ट्राई करें कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन स्टॉप, ट्राई टू क्रिएट कुछ एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ले। दूसरा, सारा दिन कॉन्शियस अटेंशन। और तीसरा, जैसे पहले भी गिरीश भाई ने कहा, लिखो, लिख दे ये नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आ रही है, लेट्स से ये काम मेरे से नहीं हो पा रहा। मैं करने की भी कोशिश करता हूँ ना, लोग इसमें ऑब्स्टिकल डालते हैं, यू नो, द होल सीरीज, राइट इट डाउन और बैठकर उसका पॉजिटिव लिखे कि इस सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव क्या सोचना है। इट्स लाइक अ चाइल्ड लर्निंग टू राइट एंड रीड, नाउ लर्निंग टू थिंक। हमने कभी राइट सोचना ये नहीं सीखा था। एक बच्चे की तरह हमें ABCD से इसको स्टार्ट करना होगा। तो लिखें, उस नेगेटिव को लिखें, और फिर किसी और को अगर समझाते तो क्या पॉजिटिव समझाते उस समय, तो अपने आप को वो पॉजिटिव समझाएं, उसको लिखें। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत जल्दी इट विल बिकम अ नेचुरल प्रोसेस।
1: एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज करेंगे तो आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा।
0: डॉक्टर पटेल, आपने कहा कि कई तरह के राइट थॉट्स हैं, अगर पॉजिटिव हम नहीं भी क्रिएट कर पाए, आपने हमें थोड़ी सी सहूलियत दी थी कि जो भी सिचुएशन है उसको वैसे ही देखें, लेकिन शायद हम भी अवेयर नहीं है कि हम कौन से वो 9 मिरर्स लगाकर हैं, वो हमारे साथ अगर आप शेयर करें।
1: सबसे पहला तो है कि मैग्नीफाइंग मिरर, कि परिस्थिति है, 20% प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम 90% बना देते हैं,
0: हाइपर हो जाते हैं जो,
1: तो मैग्नीफाइंग ना करें, हम ये पहले जज करें, थोड़े डिटैच होकर कि ये समस्या है परंतु कितनी है, 10% समस्या है, तो 10% ही मुझे सोचना है, उसको 15% भी नहीं करना है। ये मैग्नीफाइंग भी हम खत्म कर दे तो बहुत बड़ा फायदा होगा।
0: वेरी ट्रू। यू नो, बच्चा का रिजल्ट वहां से स्कूल से कुछ आ गई, एक कॉल आ गई, और भाई के पेरेंट टीचर मीटिंग में कुछ कह दिया, किसी और चीज
1: का,
0: हस्बैंड के बारे में कुछ पता चल गया, छोटा सा एक
2: सीख, जैसे भाई साहब ने कहा ना, मेकिंग अ बिग इश्यू आउट ऑफ इट। जब कोई और एक बड़ा इश्यू बना रहा होता है ना, हमें दिखाई दे रहा होता है, देखो बात तो इतनी सी है और इसको ये क्या बना रहे हैं, तो डिटैच होकर जब देखते हैं, हमें क्लियर दिखाई देता है परिस्थिति इतनी है, इसको ये देखो कितना बड़ा बना रहे हैं। अब सिर्फ वो चीज अपने में देखनी है, दूसरे को तो कहना इजी है कि बात तो बहुत छोटी है, आप उसको बहुत बड़ा बना रहे हो, ये बहुत कॉमन हमें दिखाई देता है आज। अब सिर्फ जो औरों के अंदर दिखाई देता है, उसको अपने अंदर देखना है कि कैसे हम छोटी बात को कितना बढ़ाते।
0: तो जब भी हमें लगे कुछ बड़ा हो रहा है, बहुत मुश्किल हो गया, वी शुड स्टॉप
1: इवन एवरीथिंग। जो भी हमारे में थोड़ा भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, सोचे कि भी मैं मैग्नीफाइंग तो नहीं कर रहा हूँ, सचमुच परिस्थिति कितनी है, बस उतना ही उसे इम्पोर्टेंस देना है, ज्यादा नहीं देना है। दूसरा है ऑल और नन अप्रोच, कि व्यक्ति जो है परिस्थिति वो एक्सट्रीम में सोचता है, उसके लिए समस्या ब्लैक एंड वाइट ही होती है, परंतु जीवन ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इट इज डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। एक आपको उदाहरण दूंगा, एक डॉक्टर का बच्चा 10वीं कक्षा में था, तो उसके फादर ने कहा बेटे मेडिकल में एडमिशन चाहिए, मेडिकल में एडमिशन चाहिए तो 95% होने चाहिए। उसने मेहनत तो की परंतु अनफॉर्चुनेटली उसके 88

0: परसेंटेज आए। तो पिताजी ने क्या क्या सुनाया उसे कि बस मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अभी तुम कोई काम के नहीं रहे, कम से कम 90 तो आने ही चाहिए थे, मैं किसको मुंह नहीं दिखा सकता हूँ, मेरे बेटे के 88% ही आए, ऐसे एक दो घंटा खूब सुनाया। तो बच्चा एकदम साइलेंस में चला गया। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उसको शॉक लगा है कि कम परसेंटेज आए, हमने भी उसको डांटा, लेकिन सच मानिए 2 दिन के बाद वो पागल हो गया। आज भी वो पागल है, कई साइकेट्रिस्ट ने उसका इलाज किया है, मैंने भी उसका इलाज किया, वो ठीक नहीं होता है। भले एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, परंतु फिर भी
1: इसके लिए वो माँ बाप का एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट
2: होगा। नहीं, लेकिन ये एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन हमें ये मैग्नीट्यूड तो दिखा सकता है ना कि हमारी जो ये बातें हैं जो हम कह देते हैं उस समय, वो चलो हमारे बच्चों पर कितना इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, हर बच्चा इस एक्सट्रीम पे नहीं जा रहा, लेकिन कुछ तो डैमेज हर एक का हो रहा होगा जब इस तरह से बोला।
0: सुसाइड करते हैं कई बार, तो ये ऑल और नन अप्रोच का ही वो हिस्सा है। अब इसमें राइट थिंकिंग क्या होता, अगर वो बच्चे को ये कहा जाता कि बेटा हमारे कम से कम 90 का एक्सपेक्टेशन था, तुम्हारे 88% आए, अभी चलो देखते हैं, प्रॉब्लम इज देयर डेफिनेटली, लेकिन आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की, आप अपनी स्टडी टेक्निक को कैसे इम्प्रूव कर सकते थे, हम आपको क्या मदद कर सकते थे, इस सब बातों के बारे में अच्छे से सोचा होता, कोई ठीक से प्लान बनाया होता, तो HSC में जरूर उसके 92 या 95 आते। तो दिस इज राइट थिंकिंग ऑफ दैट नो ऑल और नन अप्रोच,
1: इनफैक्ट लुकिंग एट द सिचुएशन इन द रियल सेंस
2: एंड एक्चुअली ट्राई टू मेक द सिचुएशन स्मॉलर।
0: या बेस्ट इज स्मॉलर,
2: ये भी करो कि कई बार अगर, क्योंकि हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है बात तो हमारे लिए बहुत बड़ी है, अगर कोई और भी हमें कहे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, हम कहेंगे आपको क्या पता, ये बात तो मेरे सामने आई है ना।
1: कई बार ऐसा भी हो रहा था कि अगर मैंने अभी नहीं कहा तो इनको समझ नहीं आएगा, यू नो लाइक वी शुड हिट इट व्हेन इट्स हॉट, दैट्स व्हाट वी से।
2: एम हैज टू बी कि कितनी भी बड़ी हो हमें उसको बिल्कुल बिल्कुल छोटा करना है, बिल्कुल छोटा करना है, और ये एक गेम है, यू नो जितना करते जाओगे यू विल रियलाइज कि एक्चुअली बातें तो कुछ भी नहीं होती है, हम उनके बारे में सोच सोच के, बोल बोल के, आपस में डिस्कस करके उसको कितना बड़ा बनाते हैं। टेक इट लाइक अ गेम, एक गेम को खेलो कि आपके सामने एक चीज आई है जो बहुत बड़ी है, आपको उसको एकदम छोटा करना है। एवरीबडी नोज हाउ टू डू इट, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू डू इट।
1: व्हाई वी डोंट डू इट,
2: सी अगेन पावर नहीं है ना, हम बहुत डर जाते हैं एकदम से। अभी इस केस में भी डर गए ना, कितने सारे थॉट्स आ गए होंगे, फियर ऑफ फ्यूचर, क्या होगा बच्चे का, क्या होगा मैं लोगों को क्या कहूंगा, मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना, उसका तो बच्चा डॉक्टर बन गया, लुक एट द सीरीज ऑफ थॉट्स दैट विल कम। उस समय ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ सोच लिया, तो जो इम्पोर्टेंट था वो तो सोचा ही नहीं, और इतने सारे थॉट्स जितने बनते, एंड दैट्स व्हाई वी से सिचुएशन उतनी ही बड़ी है जितने आपके थॉट्स उसको बनाते हैं, और कुछ भी नहीं है। जितना आप इससे थॉट क्रिएट करेंगे क्या होगा कैसे होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट द सिचुएशन इज वेरी वेरी बिग, इट विल सीम टू यू कि इससे बुरा तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं
1: सकता। हम वो बना ही देते हैं, फिर फाइनली वो बनी जाती है,
2: क्योंकि हम उसके साथ इतने सारे चीजें अटैच कर रहे हैं ना, लोग क्या कहेंगे, इसका फ्यूचर क्या, इसकी शादी नहीं होगी, आगे करियर, मतलब सो मेनी थिंग्स वी विल अटैच। तो बात तो बड़ी लगेगी उस टाइम, अब हमें डिसाइड करना है उस सिचुएशन में कैसा सोचेंगे, तो सिचुएशन एकदम उतनी छोटी हो जाएगी।
0: ये भी पक्का कर ले, बस राइट थिंकिंग करना है ना, सही मिरर में अपने आप को देखना है, ऑल और नन के मिरर में बिल्कुल नहीं देखना है। तीसरी बात है जंपिंग टू कंक्लूजन, कि कुछ होता है तो तुरंत हम कुछ निर्णय पर आ जाते हैं, बस ऐसे ही है,
1: और अब भी लेना डिसीजन, अब भी लेना, अब भी करना, यू नो ये जो एक हमारे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं रह गया कि अभी मैंने सिचुएशन में डिसीजन नहीं लिया तो कुछ कुछ गलत हो जाएगा। ये
0: व्यक्ति के बारे में भी हम वी जंप टू कंक्लूजन, एक कंपनी में प्रेसिडेंट थे, उस कंपनी का यूनियन लीडर सवेरे सवेरे उन्हें मिलने आया, सेक्रेटरी को आके कहा कि साहब को मिलना है, सोचा अरे सवेरे सवेरे यूनियन लीडर मतलब बहुत सारी डिमांड लेकर के आया होगा, बस समस्या होगी, अभी मॉर्निंग में नहीं चाहिए, उसको कहा कि कहो कि साहब अभी बिजी है कुछ देर के बाद आना, फिर से आया, सोचा जरूर इसकी बहुत डिमांड होगी, कहा नहीं नहीं थोड़ी देर के बाद आना, अभी साहब मीटिंग में बिजी है, ऐसे उस दिन वो 5 बार आया, लेकिन कोई ना कोई बहाना बता करके उसे वापस भेज दिया, क्योंकि जंप टू कंक्लूजन दैट यूनियन लीडर मीन्स प्रॉब्लम्स। फिर 7 दिन तक वो दिखाई नहीं दिया, 8वें दिन रास्ते में मिल गया, तो उन्होंने सोचा अभी तो पूछूं, अब तक तो उसकी डिमांड शायद बहुत कम हो गई होगी, अब उसको पूछता हूँ और सोल्यूशन लाता हूँ। तो कहा भैया क्या उस दिन तो आए थे, क्या प्रॉब्लम था? उसने कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया। कहते नहीं नहीं बताओ कुछ तो होगा, मैं तुझे मदद कर सकता हूँ। कहा नहीं नहीं साहब कुछ नहीं कर सकते। कहा नहीं कुछ तो कर सकते, बोलो क्या था। कहा नहीं नहीं साहब वो काम तो हो गया। कहते क्या हुआ? कहते साहब मेरे बेटे के मैरिज थे, मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया था, कल ही मैरिज सेरेमनी पूरी हो गई, आज मैं काम पर आ गया, वो तो हो गया। तो देखो जंपिंग टू कंक्लूजन कि भी यूनियन लीडर मींस वो डिमांड लेकर के आया होगा, तो एक बहुत अच्छा सा मौका गंवा दिया।
1: तो हाँ, क्योंकि रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा डेवलप कर सकते
0: डेवलप होता उससे। तो ऐसा कभी नहीं करना है। कुछ भी हो नेवर जंप टू कंक्लूजन।
1: ओ यस सो मेनी टाइम्स वी डू दैट
0: यस नो हर परिस्थिति तो एक है तो बस एनालिसिस करना है क्या बात है, अच्छे से एनालिसिस करूं और फिर सोचूं कि क्या करूं।
1: और पहले सुन तो ले, पहले हम देख तो ले कि है क्या है।
0: ठीक से एनालिसिस कर
2: ले। रहे हैं हम उसको भी नहीं ले रहे होते, हम फिर भी कुछ और सोच रहे होते हैं,
1: पहले तय कर रहे होते हैं।
2: कोई अगर हमसे अच्छी तरह से भी बात कर रहा है उसके पीछे भी हम सोच रहे होंगे इसके पीछे क्या, इसको क्या चाहिए मेरे से, ये मेरे से इस तरह से बात कर रहा है। वैसे यू नो सो मच, दिस इज ऑल्सो जम्पिंग टू सो मेनी कंक्लूजन्स। और उसकी वजह से वो जो अच्छी सीन भी आपके सामने आई थी उसमें भी आपकी थिंकिंग किस तरफ चली गई, इट वेंट टुवर्ड्स रॉन्ग थिंकिंग। सो सिचुएशंस आर पॉजिटिव, लेकिन हमें आदत पड़ गई है उस पॉजिटिव सिचुएशन में भी कोई ना कोई इस तरह की रॉन्ग थॉट क्रिएट करने की।
0: जब भी थॉट है तभी सोचना है कि इसमें से कोई तो मैं नहीं कर रहा हूँ। चौथा है ऑलवेज मेंटालिटी।
1: एक सेकंड पहले हम थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करते हैं कि पहला था मैग्नीफाई, ऑल और नन, मतलब या तो मुझे सब कुछ मिले या कुछ नहीं, एंड थर्ड इज जंपिंग टू कंक्लूजन, फोर्थ हम आते हैं,
0: फोर्थ इज ऑलवेज मेंटालिटी। अच्छा, भी कुछ हुआ हम समझते सदैव मेरे साथ ही होता है।
1: अच्छा, ऑलवेज मी।
0: हाँ, ऑलवेज मी। कि जब अगर बॉस आपको डांट दे तो सोचते बॉस ऑलवेज मुझे ही डांटता है, या तो मुझे ही सदैव डांट पड़ती है,
1: मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। हाँ। मेरे साथ जिंदगी में ये मेरे अपनों के साथ होता रहता है, मेरे बच्चों के साथ ही होता है, मेरे साथ जिंदगी में ये चलता है,
0: मेरे साथ सदैव बुरा होता है,
2: विक्टिम फीलिंग भी आ
0: जाती है। बिल्कुल,
2: सो मच ऑफ अ विक्टिम फीलिंग कि ये मेरे साथ ही हो रहा है सारा कुछ।
1: लेकिन अगर ये होता जा रहा हो तो
0: नहीं, तब भी डिटैच हो गए। अगर सचमुच नहीं, कितना भी बुरा होता आप सोचेंगे ना कुछ बातें अच्छी भी हुई है, भल कुछ बुरी भी हुई है, लेकिन 20% 25% अच्छी बातें भी हुई है, उसका भी एक लिस्ट रखना चाहिए कि भी अच्छी बातें हुई है। हो सकता है भी मास में एक बार कुछ हुआ, 6 मास में एक बार हुआ, ये सदैव नहीं होता है। ये भी इसमें राइट थिंकिंग करना चाहिए कि भल मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ, औरों के साथ और प्रॉब्लम भी होते हैं ना, क्योंकि मुझे अपना ही दिखाई देता है इसलिए मैं सोचता हूँ कि आई एम ओनली सफरिंग। तो इस प्रकार से जो ऑलवेज मेंटालिटी है उस पर भी विजय प्राप्त करना जरूरी है।
2: एक बार हम एक काउंसलर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा लोग आते हैं इतनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं अपनी, और उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद लगता है मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उससे पहले हम अपनी इतनी सी भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बनाकर बैठे थे। एक बार हम ऐसे एक ग्रुप में बैठे और हर एक से पूछा आपके जीवन में चिंता का कारण क्या है, एवरीवन जस्ट शेयर व्हाट्स द कॉज ऑफ योर स्ट्रेस। तो एक कपल था, उन्होंने कहा हमारे बेटे को चश्मा लग गया है बहुत यंग एज में, छोटा सा था, अबाउट 7-8 years old, कि हमारे बेटे को चश्मा लग गया, ये सोच सोच के तो हमें बहुत चिंता हो रही है। तो साथ में किसी और ने कहा कोई और प्रॉब्लम नहीं आई है ना सामने अभी, तो इसी बात को लेकर सी मतलब एक मेंटालिटी बन गई है कि कोई ना कोई बात को लेकर तो मुझे करनी ही है वो थॉट। तो अब जैसे ही अब अगर ये थॉट है कि मेरे बच्चे को चश्मा लग गया, जिस दिन कोई और बड़ी बात आ जाएगी ये बात कोई बात नहीं लगेगी। और यही अगर हम प्रैक्टिस करें कि हर सीन में पॉजिटिव, तो कितनी भी बड़ी बात आ जाएगी हमें वो बात नहीं लगेगी। इट हैज बिकम आर यू नो पर्सनैलिटी आर नेचर टू थिंक ओनली ऑन द वरी एंग्जाइटी नेगेटिव साइड, इसीलिए वो हर टाइम लगता है कि आई एम द विक्टिम, मेरे साथ थोड़ा सा भी कुछ मेरे साथ हुआ तो मेरे साथ ही ऐसा होता है। दिस इज अ वेरी डीप संस्कार जो हमारा बनता जा रहा है कि हर टाइम मेरे साथ ऐसा होता है, एंड हर टाइम जो मेरे साथ बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं
1: वो मैं देखती
2: हूं, दैट इज इग्नोर्ड।
1: क्यों नहीं, क्यों मुझे विक्टिम बनना आसान लगता है? क्या विक्टिम बनते ही जिम्मेदारी किसी और की हो जाती है, ऐसा है?
2: और उदास फील करना जस्टिफाइड हो जाता है।
1: पर हम उदास, अच्छा उदास तो हम फील सी हम उदास फील तो नहीं करना चाहते ना, लेकिन हम फील कर रहे हैं,
2: उदास फील कर रहे हैं। अब हमें कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर हम उसकी
1: ब्लेम
2: डालते हैं,
0: जस्टिफिकेशन
2: है ना कि सिचुएशन ये मेरे साथ हर बार ऐसी हो रही है, हाउ कैन आई बी हैप्पी, दैट इज द थिंग। जैसे कोई रीजन मिल गया ब्लेम करने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई एंड आई टेल माई सेल्फ ये ठीक है आप जैसा फील कर रहे हो ऐसा ही फील करना है इस परिस्थिति के अंदर एंड देन वी लिव विद दैट पेन फॉर अ लॉन्ग टाइम।
1: हमने कितनी सारी अपनी जस्टिफिकेशन तो परिस्थितियां तैयार की हुई हैं
0: और ऐसा सोच के हम औरों की सिंपथी गेन करना भी चाहते हैं कि जब जस्टिफिकेशन है तो लोग मुझे सिंपथी देंगे। छठी बात है लेबलिंग, हमने आगे भी डिस्कस किया था लेकिन राइट थिंकिंग में भी हम कई बार गलत रूप से लोगों को लेबल करते हैं। आपके अंडर में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो उनमें से आप लेबल करते हैं कि ये स्मार्ट है, ये बिल्कुल गलतियां करता रहता है, और जब आप लेबल करते हैं तो इमीडिएटली वो आ जाता है कि इसने किया गलत ही किया होगा, वो भी रॉन्ग है। कभी भी लेबल किसी को नहीं करो।
2: जैसे सपोज कोई टाइम पर नहीं आता तो हम कहते हैं ये तो है ही लेट लतीफ, ये तो हमेशा ही लेट आएगा, इसको कितना भी बोल दो ये नहीं। सो दिस इज नो दैट पर्सन माइट बी सिंसियरली ट्राइंग टू कम ऑन टाइम, नाउ ही जस्ट नीड्स द राइट एनर्जी।
0: हमने
1: अपने मन में उसको
2: लेबल लगा दिया उसको।
1: अच्छा तो पर उसे कहना तो चाहिए, कहा तो जा सकता है।
0: एक बार लेट आया ठीक है,
1: रिकॉग्नाइज हमने करा, रिकॉग्नाइज करके हमने रजिस्टर किया, तो रजिस्टर करके हमारे पास तो रहती है वो वीकनेस।
2: जैसे हम लेबल कर देते हैं ना, इट फील्स के ये ऐसा ही है, मतलब देयर इज नो मार्जिन टू चेंज। वो तो है कि किसी के ऊपर जैसे ना स्टैंप लगा दी कि ये तो है ही ऐसा, एंड फिर वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं, वो लेबल और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर होता है और सभी फिर यही लेबल से वर्क करते हैं। आप उस व्यक्ति को उस लेबल के थ्रू देखना शुरू करते हो, यू नो नहीं ये तो है ही ऐसा, तो इवन इफ ही इज ट्राइंग टू चेंज, अगर कोई टाइम पे आएगा ना आज, कहेंगे बाय चांस आज टाइम पर आ गया था, कल नहीं आएगा ये टाइम पर। इतना बिलीफ सिस्टम वो स्ट्रांग हो जाता है। ये एक दो दिन की बात है, अच्छा 4 दिन वो टाइम पर आ रहा है, देखते हैं कब तक चलता है इसका ये चेंज, क्योंकि मेरा लेबल इतना स्ट्रांग है कि वो तो टाइम पर नहीं आ सकता है। सो दैट्स द एनर्जी देन बी ट्रांसमिट टू हिम।
0: नेगेटिव एनर्जी हम दे रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है फिर भी शायद तो नहीं,
2: और इसको वर्बल भी कर देते हैं हम, मतलब हम बोल देते हैं एक दूसरे को,
1: आज तो यू नो सूरज नहीं निकला, सूरज कहाँ से निकला, आज आप टाइम पे कैसे आए, और ये सब कुछ। यस,
0: सातवीं बात है वाई मी एटीट्यूड। वाई मी एटीट्यूड का बहुत ही अच्छा उदाहरण है आर्थर एसे की, जो विम्बलडन में लीगेंड थे, उनको वर्ल्ड चैंपियन भी रहे, और जब रिटायर हुए उसके कुछ समय के बाद उनको कैंसर हुआ, तो एक उनके फैन ने लिखा कि भी कैसी दुखद बात है कि आप इतने फेमस व्यक्ति थे, आप इतने हाई पोजीशन पर पहुंचे थे, फिर भी भगवान ने आपको कैंसर दे दिया। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि भी 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलने की कोशिश करते हैं, उसमें से करीब 50 लाख ही है या तो 5 लाख ही उसको अच्छे से सीख पाते हैं, उसमें से जो प्रोफेशनल है 50,000 ही बनते हैं, उसमें से 50 ही विंबलडन तक पहुंचते हैं, उसमें से 8 ही है जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, 4 ही सेमीफाइनल में होते हैं, 2 ही फाइनल में पहुंचते हैं, और अंत में 1 ही चैंपियन ऑफ द चैंपियन डिक्लेयर होता है। जब मेरे हाथ में कप था और मेरा नाम चैंपियन ऑफ द चैंपियन में दिया गया था, तब मैंने भगवान को यह नहीं कहा वाई मी, तो आज मुझे बीमारी हुई है तो भी यह नहीं कहना चाहिए वाई मी। तो बस यही बात, इससे बहुत प्रेरणा मिल सकती है। कोई भी समस्या आए कभी यह नहीं कहो वाई मी, यह सोचो कि भी मेरे को यह प्रॉब्लम है, औरों को और कुछ प्रॉब्लम है,
1: इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस एक्चुअली।
0: उल्टा कहते हैं वाई मी नहीं कहो, ट्राई मी लॉर्ड।
1: तो ये हमने 7 तरह की अपने रॉन्ग थॉट्स को, ये दीज आर द रॉन्ग थॉट्स,
0: दिस आर हाउ उसको रॉन्ग थॉट्स राइट में करना है।
1: आपने कहा 10 होते हैं,
0: हाँ, और भी 8वां जो है जिसको कहा फ्लाई मेंटालिटी,
1: ओ भागना
0: नहीं, मक्खी की जैसी मेंटालिटी।
1: अच्छा अच्छा हाँ,
0: कहते भी मक्खी के सामने मिठाई भी रखो और गंदगी भी रखो तो कहाँ बैठेगी, गंदगी पे ही बैठेगी। तो ऐसे ही लाइफ में भी होता है कि भी जीवन में अच्छी भी बातें हैं, बुरी भी बातें हैं। जिनके पास फ्लाई मेंटेलिटी, वो व्यक्ति बुरे पे बैठता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। बस ये भी सोचना चाहिए हमें कि भी मेरे में फ्लाई मेंटेलिटी तो नहीं है, बस दोनों चीजें साथ साथ है, मुझे अच्छे पे ही बैठना है। 9वीं बात है जिसको कहते हैं नॉटिंग। नॉटिंग मतलब क्या है कि भी कोई चीज को हम फोर्सिबली भूलने की कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट्स के साथ होता है कि भी उनको पढ़ाई करनी है परंतु दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, या तो आप पूजा भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरे कमरे में कोई टीवी देख रहा है, तो आपका ध्यान कंटिन्यूअस वो टीवी के प्रति है, आप फोर्सिबली उसको भूलने की कोशिश करते, भूल नहीं पाते, आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, उल्टा टीवी का प्रोग्राम और क्लियरली आपको सुनाई देता है, तो ये नॉटिंग भी नहीं करे। अगर नॉटिंग होता है तो ये सोचो कि टीवी को भूलना नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे जो कंसंट्रेशन पढ़ाई में देना है, अगर पढ़ाई में मैं कंसंट्रेट हो गया ऑटोमेटिकली टीवी से ध्यान चला जाएगा। मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे मेडिटेशन में कंसंट्रेट करना है, ऑटोमेटिक मेरा ध्यान है वह वहां से हट जाएगा,
1: क्योंकि वो तो वहां एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, उसकी एग्जिस्टेंस को तो आप डिनाई नहीं कर सकते।
0: हाँ, लेकिन उसको हमें फोर्सिबली नहीं भूलना है।
1: लेकिन डॉक्टर साहब, इट्स नॉट पॉसिबल। सी, यूजुअली जब आप पढ़ रहे हैं और टीवी चल रहा है, मन वहां है, तो आपका मन वहीं जाता ही है,
2: इसलिए क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा इंटरेस्ट करती है। माइंड कहाँ जाएगा, जो दोनों में से आपको चीजें ज्यादा इंटरेस्ट करेंगी। यही अगर आप टीवी देख रहे हैं, सपोज आप टीवी देख रहे हैं और एक्चुअली कोई आपको बुला रहा है कि पढ़ लो, शोर भी मचा रहा है, आ जाओ पढ़ लो, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे क्योंकि आपका पूरा इंटरेस्ट किस में है, टीवी देखने में। प्रोवाइडेड यू आर डूइंग समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग यू, आपको दूसरी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसी में हमें अपने आप की फिर थॉट्स को चेंज करनी है कि वहाँ एक चीज़ चल रही है, यहाँ एक चीज़ चल रही है, मेरे लिए इस समय कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है। फिर अपने आप, इट्स सेड के वेर एवर योर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो देयर। नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी अटेंशन कहाँ जाए, हमारी अटेंशन एक्चुअली वहाँ जाती है तो फिर एनर्जी भी उसी तरफ जाएगी। लेट मी फोकस कि ये मुझे ये करना है, नहीं हो रहा है, माइट एज वेल गो एंड सिट देयर। लेकिन ये जो संघर्ष चलता रहेगा, इट वॉन्ट हैपन। एंड वो सिर्फ इस चीज़ों में नहीं, सारा दिन में बहुत सारी चीज़ों में चल रहा है, ऑफिस में भी काम मुझे अपने पर करना है, इवन वट एवर वर्क आई एम डूइंग, लेकिन मेरा ज्यादा ध्यान दूसरी चीजों में जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, देन आई एम ट्राइंग टू फोर्सफुली टेक माई सेल्फ बैक फ्रॉम देयर। द अदर वे अराउंड, मुझे क्या करना है एंड आई फोकस माई एनर्जी टोटली ऑन दैट, अपने आप अटेंशन वहां से हटेगा। मतलब वो कुछ और चीज भूलने की बजाय इसको याद करना है। जैसे परमात्मा भी हमें सिखाते कि मुझे गुस्सा नहीं करना, ये नहीं सोचना है, आई एम अ पीसफुल सोल, इस पर अटेंशन रखना है, एनर्जी विल ऑटोमेटिकली गेट क्रिएटेड, नहीं तो वो माइंड और भी उसके कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है,
1: ऊपर जा रहा है तो फिर अटेंशन उधर ही
2: उसी तरफ चला जाता है।
0: और दसवां है डिस्क्वालीफाइंग द गुड। कई बार अच्छी चीजें होती है हमारे जीवन, लेकिन उसको भी हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। एक महिला ने एक दिन बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, तो लोगों ने बहुत उसको प्रेज किया कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, बहुत अच्छी साड़ी, सबको कहते क्या बेकार की साड़ी है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं पहनती हूँ, आज कोई मौका कुछ नहीं मिला तो इसी को पहनना पड़ा, क्योंकि मेरी सास ने प्रेजेंट की थी। तो दिस इज डिस्क्वालीफाइंग द गुड, नो, सो मच गुड वॉज देयर, नो, शी कुड हैव इम्प्रूव हर सेल्फ एस्टीम, औरों को भी अच्छा लगता, शी वुड हैव फेल्ट गुड ऑल्सो अबाउट इट, लेकिन उसको भी भाई सास ने प्रेजेंट की थी कह के सब कुछ वॉश आउट कर दिया,
1: क्योंकि वो एक थॉट के लिए आया कहां से, वहां पे रिश्ता ठीक नहीं था,
0: वो जरूरी नहीं था, कोई वो पूछ नहीं रहा था, लेबल भी नहीं लगा था कि किसने प्रेजेंट किया आपको। तो इसलिए जब भी अच्छा होता है रियली उसका हम आनंद ले, अपने स्वमान को बढ़ाए, इवन एंथुसियाज्म को इम्प्रूव करे, अच्छी चीज को भी डिस्क्वालीफाई ना कर दे,
1: जो अच्छा है उसे अच्छा ही अच्छे रूप में ही देखें। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, वक्त का पता नहीं चलता जब हम अपने विचारों के इस ताने बाने में उलझ जाते हैं, लेकिन आज जो बातें समझ में आई कि जो 10 तरह के ऐसे थॉट्स जिन्हें एक्चुअली अगर नेचुरली देखा जाए तो राइट होना चाहिए, बट हम किस मिरर से देखते हैं, आपने कहा कि कौन सा ग्लास लगाकर हम देख रहे हैं और सारी चीजें उल्टी होती जा रही है। शिवानी, डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच, ओम शांति। आज हमने उन 10 सिचुएशंस को देखा, वो ऐसे थॉट्स जो शायद मैं अवेयर भी नहीं हूँ, मतलब ये चीजें अपने आप होती जाती रही हैं अभी तक जीवन में, लेकिन थोड़ा सा अगर बैठकर देखेंगे तो सचमुच, चाहे वो किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को मैग्नीफाई करने की बात हो, चाहे एक जो कहा वाई मी ऑलवेज मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ, और जो 10 थॉट्स हमने आज रियलाइज किए हैं, आज देखे हैं, जरा अपने थॉट्स को देखें और कैटेगराइज करें कि इनमें से कौन कौन से इन कैटेगरीज में आते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि इन्हें परिवर्तित कैसे करना है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि ये रॉन्ग है, क्योंकि मेरे दर्द ये मैंने क्रिएट किए, मतलब मेरे दर्द की क्रिएशन भी मैं हूँ, तो अब उसको चेंज कैसे करना है, पॉजिटिविटी और जो पीसफुलनेस या हैप्पीनेस है उसे कैसे क्रिएट करना है, इस पर बात करेंगे आने वाली कड़ी में। आप हमारे साथ रहिएगा, कोशिश करेंगे, ये स्किल सीखेंगे कि कैसे रॉन्ग को राइट करना है। आपसे विदा लेते हैं, हम शांति।

0: नमस्ते,
1: कैसे हैं आप?
0: बस बढ़िया।
1: आपका शुभ नाम क्या है?
0: मेरा नाम मंजू कुमारी है।
1: और मंजू कहाँ पढ़ती है?
0: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुदरला
1: जी। और आपने रिसेंटली हमारे स्टेट को भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट को गौरव किया है ना
0: जी।
1: हम सभी आपके लिए प्राउड फील करते हैं। तो क्या किया आपने, हमारे श्रोताओं को बताओ कि क्या अचीव किया?
0: मैं तीरंदाजी पहली बार सीख रही थी और हमारे स्कूल से सभी टीचरों का सहयोग और हमारे बीके से हमको सहयोग मिला। और हम ज़्यादा ही, मेरे को नहीं समय हुआ, थोड़ा ही समय था। और मेरे अच्छी प्रयास से मैं जिला स्तर पर प्रथम आई। फिर मेरा चयन राज्य स्तर पर हुआ, वहाँ पर गई तो मुझे सारा देखने का मिला। अरे इतने कंपटीशन होता है, ऐसा होता है और ऐसे कैसा खेलना, कैसी अभ्यास करके आना चाहिए। तो वहाँ पर मैं खेलने गई तो वहाँ पर मेरा स्कोर 216 हो गया, तो मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया था
1: जी।
0: हाँ, और मुझे अच्छा लगा कि हाँ, खेलने आते तो इतना ऐसा देखना पड़ता है, अच्छा चांदी ने दूर जाने को मिलता है, ऐसे बाहर से ऐसे आते हैं और ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो मेरे को अभी और अभ्यास करनी है, और अभी मैं और मेरे को प्रयास करनी है, और मैं अब की बार और जाऊंगी और खेलने, और
1: अगले बार देश को रिप्रेजेंट
0: हाँ,
1: करना है,
0: देश को,
1: देश के लिए खेलना
0: हाँ,
1: है।
0: देश के लिए खेलना है।
1: थोड़ा डर लगा कि नहीं लगा?
0: हाँ, पहली बार गई तो डर तो ऐसे थोड़ा था, पर फिर मैं, हमारी मैम ने बोला कि ऐसे सोचा, सोचो बच्चा कि मैं अकेली खेल रही हूँ बस, और कोई नहीं है। तो मैंने ऐसे पूरा मन अच्छे से रख कर, फिर पूरे मन से, अच्छा मेरे ऐसा, और सर ने हमको सिखाया और बिक्का वालों ने हमको ऐसे, और हम तपोवन में जाते प्रैक्टिस करने गए थे उधर भी, और हमको टारगेट मिला, यहाँ से हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही। नहीं तो पहले से हम बोरी से हमारा वो टारगेट बनाया, फिर बोरी से खेल रहे थे, तो फिर हमको बिक्के वालों ने टारगेट दिया अच्छे से, धनुष दी है हमको, फिर हमारी ऐसी
1: आपको इक्विपमेंट्स दिए,
0: हाँ,
1: जो जो चाहिए था
0: जो जो
1: आपको।
0: सही है वो हमको सारा दिया। तो हमारी सभी स्टूडेंट की अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और मैंने अच्छा ही, और हम वहां पर राज्य स्तर पर गई तो वहां पर मेरा क्वालिफाई हुआ, तो मुझे सर्टिफिकेट मिला था।
1: बहुत बहुत मुबारक हो, हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। आज सिरोही की बेटी हो आप, तो आपके कौन आदर्श है जानना चाहेंगे इस तीरंदाजी में? कौन आदर्श है आप,
0: हमारी
1: कौन पसंद है आपको, मतलब किसको देख देख के आपको खेलना पसंद?
0: खिलाड़ियों में
1: अगले बार सोच के आना।
2: ठीक है, बैठिए।
1: नेक्स्ट, हेलो,
2: नमस्कार। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी खुशियों के साथ। और खुशी की बात यह है कि आज हम लोग ये जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, ये खास मधुरला में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है राज्य का, राजस्थान का, तो वहाँ के जो बच्चियाँ हैं, जिसमें महपाल भाई ने उन सभी बच्चियों को खेल के लिए प्रोत्साहन किया, ट्रेनिंग दिया उन्हें तीरंदाजी में। तो इन सारी बच्चियों ने जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का कंपटीशन खेलकर आए हैं, तो उनका हमने रिकॉर्डिंग कल किया और उनको सम्मानित भी किया है। तो आइए, सभी जो भी बच्चियां गई हैं वहां पर और उन्होंने कंपटीशन खेल कर आई हैं, उनका एक साक्षात्कार आपको सुनाते हैं अभी।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: आपका शुभ नाम?
0: मेरा नाम काली कुमारी है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ, मुदिल्ला स्कूल में पढ़ती
1: जी। और आप भी गए थे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने के लिए?
0: हाँ, गए थे।
1: कब से प्रैक्टिस कर रहे हो?
0: हमारी प्रैक्टिस तो 2-3 महीने से हो रही थी, तो पहले हमारी प्रैक्टिस इतनी नहीं थी, हमने तो सोचा था कि हमारे तीर भी नहीं जा रहे थे और हम ऐसे ही खेल रहे थे। फिर धीरे धीरे सर ने हमको सिखाया, फिर हमारे तीर जाने लगे थे, फिर 40 और 30 मीटर से हमारे तीर लगने लगे थे, पहले तो ऐसे लगते भी नहीं थे।
1: आपको बोलना कौन सिखाया? तीरंदाजी तो ठीक है, ऐसे बोलना है, किसने ट्रेनिंग दी है? जैसे है ना, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं एकदम, मतलब लीडर होके, ये भी ट्रेनिंग देते हैं?
0: हाँ।
1: ओके, चलो बढ़िया। तो आगे बड़े होकर के या फिर अगले प्रतियोगिता में कहाँ जाना चाहते हैं आप, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं?
0: राज्य स्तर पर जाना चाहती हूँ।
1: राज्य स्तर पर भारत को भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं?
0: हाँ।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो।
3: हेलो, नमस्ते।
4: नमस्ते,
3: आपका शुभ नाम?
4: मेरा नाम पार्वती कुमारी है, मैं 11 क्लास की छात्रा हूँ और मेरा आज माध्यमिक विद्यालय मुदल्ला में पढ़ती हूँ।
3: जी, पढ़ने के साथ साथ और क्या क्या करते हैं आप?
4: हम पढ़ने के साथ साथ खेलते भी हैं और हमारे घर का काम भी करते हैं और खेतों में भी मदद करवाते हैं मम्मी पापा के साथ।
3: जी, तो खेलना आपको पसंद है?
4: हाँ, खेलना मेरे को पसंद है।
3: ओके, तो कब से खेल रहे हो आप?
4: मुझे 3 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
3: सिर्फ 3 महीने प्रैक्टिस करके आप सभी राज्य स्तरीय चले गए?
4: हाँ,
3: पहली बार में।
4: हाँ,
3: पहली बार।
4: हमारे सारे टीचर्स हमें सहयोग देते थे तो हम तरह से खेलते थे।
3: तो आगे आपका क्या लक्ष्य है?
4: मेरा लक्ष्य है कि मैं भी कल्पना चावला की तरह
3: कल्पना चावला जैसे बनना है। अंतरिक्ष में जाना
4: है?
2: क्या बात,
3: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके लिए क्या करते हो मेहनत?
4: पढ़ाई करते हैं।
3: पढ़ाई भी सही है और ये भी साथ साथ करते हैं। अच्छा, जो लड़कियां आपको सुन रहे हैं सिरोही जिले में, मुदल्ला के आसपास, यहाँ सारे गांव के आसपास, उनको क्या कहना चाहोगे आप?
4: मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियां पढ़ती नहीं है, छोटी उम्र में शादी कर लेती है, इसलिए मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप भी पढ़ाई करो और देश का नाम रोशन करो
3: जैसे आप सभी कर रहे हो वैसे।
4: हाँ,
3: है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।
5: नमस्ते,
3: क्या शुभ नाम है आपका?
5: मेरा नाम सीमा कुमारी, साइलेंटली माध्यमिक विद्यालय मुदल्ला।
3: अच्छा, तो आप को भी तीरंदाजी पसंद है?
5: जी।
3: कब से खेल रहे हैं आप? कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं?
5: 3 महीने से।
3: 3 महीने, सिर्फ 3 महीने में आप लोग राज्य स्तरीय चले गए। तो आगे आपका कुछ लक्ष्य है?
5: जी।
3: क्या लक्ष्य है बताइए?
5: मेरे को टीचर बनना है।
3: टीचर बनना है, किस में? पीटी में बनना है, खेल में बनना है कि कुछ और सब्जेक्ट में बनना है?
5: मैं पढ़ाई में।
3: पढ़ाई में बनना है, बीएड वगैरह करना है
5: जी।
3: ओके, टीचर क्यों बनना है? कौन आदर्श टीचर है आपके? आपके स्कूल में जो भी टीचर्स आते हैं आपको कौन पसंद है? मैडम सर कौन पसंद है? जरूर नहीं सर का नाम बताना। सरस्वती मैम क्यों पसंद है?
5: वो अच्छा पढ़ाती है।
3: पढ़ाते अच्छे हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं जी। चलो, तो मैथ पसंद है आपको?
5: जी।
3: तो मैथ टीचर बनेंगे?
5: जी।
3: चलो, बहुत बढ़िया। और तीरंदाजी भी साथ साथ करेंगे
5: जी।
3: तो आगे आप हमारे देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं
5: जी?
3: ओके, आपकी मम्मी पापा का नाम क्या है?
5: मेरा मम्मी का नाम है कांता देवी, मेरा पापा का नाम है नाथाराम जी।
3: तो वो लोग कुछ कहते तो नहीं है तीरंदाजी करने के?
5: नहीं,
3: आपको प्रेरित करते हैं
5: जी।
3: चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ बोलना है? नमस्ते।
6: नमस्ते,
3: आपका शुभ नाम?
6: मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं कक्षा 9th में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल का नाम है उच्च माध्यमिक विद्यालय मुदल्ला।
3: जी, तो आप भी 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं
6: जी?
3: कैसा लग रहा है आपको?
6: बहुत अच्छा।
3: आपके सीनियर्स भी आपके साथ हैं, आपके जूनियर्स भी आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं
6: जी?
3: तो कैसा माहौल रहता है स्कूल में जब सब लड़कियां मिल करके प्रैक्टिस करते हैं?
6: बहुत अच्छा लगता है।
3: बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना, आपके जैसे खेलते नहीं है, आपके गांव के आसपास जो लड़कियां हैं उन्हें कभी जाके आपने बोला है कि देखो हम लोग खेल रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं
6: जी?
3: तो क्या कहते हैं वो लोग?
6: वो तो बोलते हैं बहुत अच्छा है,
3: काश उनको भी चांस मिलता
6: जी।
3: उनको प्रेरित करते हो स्कूल आने के लिए?
6: बोलते
3: हैं। ओके, तो आगे आपका क्या लक्ष्य है तीरंदाजी में?
6: राज्य स्तरीय जाना चाहती हूँ।
3: राज्य स्तरीय जाना चाहते हैं? ओके, और इंडिया को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? तो अपने राज्य को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जी? बहुत बढ़िया। और क्या करना पसंद है आपको खाली टाइम में?
6: खाली टाइम में खेलना।
3: खेलना पसंद है जी। और बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो आप?
6: टीचर्स।
3: टीचर बनना चाहते हो और इसको भी कंटिन्यू करना है
6: जी?
3: चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको क्या फायदा हुआ है जब आपके पास उपकरण नहीं थे पहले और बाद में जब उपकरण उपलब्ध कराए गए आपको, तो क्या फायदा महसूस किया? कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा
6: हुआ? सर्टिफिकेट मिला।
3: सर्टिफिकेट मिला, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए
6: जी
3: उपकरण मिलने से
6: जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।
7: नमस्ते,
3: क्या नाम है आपका?
7: मेरा नाम है अनिता कुमारी, मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक मुदल्ला, मैं 9th की छात्रा हूँ
3: जी। 9th क्लास में पढ़ते हैं आप, है ना। तो आप भी 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो या उससे पहले भी करते थे कभी कभी?
7: 3 महीने से।
3: 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, उपकरण जो आपको मिला है जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उससे क्या सहज हो रहा है चीजें?
1: पहले से बेहतर हो रहा है
7: जी।
1: ओके, तो आप भी राज्य स्तरीय अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया आपने, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गए थे आप, कैसा लगा आपको वहाँ का माहौल देख के?
7: हमें बहुत अच्छा लगा कि इस उधर जाकर बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे लोग होते, बड़े बड़े लोग होते, सारी मैम आती है स्कूल की,
1: तो सबको देख के आपको प्रेरणा मिली और कि हम और अच्छा कर सकते हैं, हमारे जैसे ही सफर है, अच्छा लगा। ओके, कंपटीशन महसूस हुई कि थोड़ा बेहतर करना चाहिए, हमको भी अच्छा सीखना चाहिए। ओके चलो, और बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
7: टीचर।
1: सभी टीचर बन अच्छा, किनके जैसे बनना चाहते हैं आप, कौन से ऐसे टीचर है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, प्रेरणा दी कि टीचर बनना चाहिए, शिक्षक बनना चाहिए, कौन से ऐसे शिक्षिका है या शिक्षक है जो आपको प्रेरणा देते हैं आपके स्कूल में?
7: आरती मैम।
1: आरती मैम क्या पढ़ाती हैं?
7: विज्ञान।
1: विज्ञान पढ़ाती हैं, अच्छा, तो आपको विज्ञान पसंद है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। अब दो जने, नमस्ते।
8: नमस्ते,
1: क्या नाम है आपका?
8: मेरा नाम अरुणा है, कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिथिला है।
1: तो अरुणा अभी 3 महीने से प्रैक्टिस कर रही है। ओके, आप भी गए थे अपने दोस्तों के साथ राज्य स्तर में खेलने के लिए, कैसा लगा आपको वहाँ पे माहौल?
8: बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा मतलब क्या, खाना पीना अच्छा था या फिर लोग अच्छे थे, क्या था? खाना पीना अच्छा था वहाँ पे, अच्छे से मतलब जो भी भोजन मिलता था वो प्रोटीन युक्त, ये सब पौष्टिक आहार था वहाँ पे जहाँ पे आप खेलने गए थे? अच्छा, जब उपकरण मिले आपको और बिना उपकरण में जब आप थोड़ा सा खेल रहे थे तो क्या फर्क देखा आपने कुछ? क्या फर्क देखा? अच्छे से प्रैक्टिस

0: Botar se tú cerca.
1: ¿Qué me tu meño? Lele Miranda.
0: महिपाल जी सर, तो हम भी रेडियो मधुबन के ओर से महिपाल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं, और आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और हम सब आपके लिए गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप लोग हमारे सिरोही की बेटियां जो आज राज्य स्तर पर हमारे नाम रोशन कर रहे हो और आगे हमारे देश का नाम भी रोशन करेंगे, है ना।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सदगुरुवार की बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। तो आइए अभी आप सुबह सुबह जो है मधुरला की कुमारियों की आवाज़ें आपने सुनी और खुशी हो रहा है सभी यहाँ के लोगों को, क्योंकि बच्चों ने स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन देख कर वहाँ जा कर आए। तो अपने आप में किसी गांव से बच्चे अगर स्टेट लेवल तक पहुंचते हैं तो ये भी बहुत बड़ा काम का है, और आशा करूंगा आप सभी को भी अच्छा फील कराया है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं। नवरात्र चल रहे हैं तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज के दिन को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। और आप भी बताइए कि आपको आज के दिन की क्या अनुभूति है, और आज जैसे कि पांचवा दिन है ना नवरात्रि का, ये पांचवा दिन आप सबके लिए क्या संदेश लेकर आया है, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और पांचवा दिन है आज, और आज माँ स्कंद माता को याद किया जाता है। पंचमी है आज, और येलो यानी पीला कलर का वस्त्र आपको पहनना है। कल आपने रॉयल ब्लू पहना था, और आने वाला जो कल है कत्यायनी, उस दिन आप पहनेंगे हरा कलर के कपड़े। तो आज पीले कलर के कपड़े पहनने हैं आप सभी को। अक्टूबर 15 आज का तारीख है। तो आइए आज बात करते हैं माँ स्कंद माता स्कंद माता का एक बहुत ही सुंदर आरती आपको कार्यक्रम के शुरुआत में सुना देते हैं, पंचमी का। और नवरात्रि में पंचमी अपने आप में एक अनूठा शक्ति लेकर आया है। तो चलिए स्कंद माता का जो सुंदर अनुभूति है वो करते हैं, और फिर आपको ले चलते हैं सीधे अभी

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आइए आगे बढ़ते हैं। और आज पांचवा दिन है, पंचमी है नवरात्रि का। स्कंद माता की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार बाबू, हमारा खुद कल्याण ग्रंथ सर।
0: आपका कल्याण हुआ पड़ा है।
1: हमारे रेडियो में आवाज नहीं आ रही है बाबू, हनुमानी से फोन करके रहते हैं, क्या बात हो रही है दुनिया में अंदर, हम घूमे जिंदा कैसे रहना हमारे को।
0: अच्छा, अभी पांचवा दिन चल रहा है नवरात्रि के। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप किसी बंदे को जो है बुला लीजिए, उसके पास एंड्रॉइड फोन होगा तो आपका काम बन जाएगा। सुरेश जी भी बोल रहे थे जी।
1: हेलो,
0: हाँ आ जा, इस तरफ आ जा। हाँ, थोड़ा सा उसी में वो ब्रिज के पास ही आ जाना, बाहर ही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है गुरुराम जी, मैं बात करके फिर आपको बताता हूँ क्या करना है ना। शुक्रिया शुक्रिया। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं और आशा करूंगा आप भी तप में लीन होंगे या फिर आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को जो है थोड़ा सा आध्यात्मिक स्वरूप में याद कर रहे होंगे या आध्यात्मिक अनुभूति करने की कोशिश में आप लगे होंगे। और अगर आप देवी के भक्त हैं तो निश्चित तौर पर आप सुबह और शाम की आरती के साथ साथ रात में गरबा रास वगैरह भी करते होंगे। तो ये गरबा के पीछे हमारा जो टेक्निक यही है कि भाई आप अगर पूरे साल में इस 9 दिनों में अपने खान पान पर ध्यान रखते हैं और थोड़ा सा अच्छी तरह से आप डांस वगैरह करते हैं, खुशी में रहते हैं, तो ये आपके पूरे साल भर के लिए हेल्दी वेल्दी रखने का काम करता है। ये एक तरह का जो है, आप जब शांत रहते हैं, कम बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा जमा हो जाती है। आप सात्विक अन्न खाते हैं तो भी आपकी जो है शारीरिक क्षमता को एक नया ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। तो एक तरह का रिन्यूवेशन कार्य जो है आंतरिक और आत्मिक और शारीरिक रूप से दोनों का काम चलता है। तो निश्चित तौर पर आप जो विधि विधान जितना भी आप कर सकें ज़रूर करें, ताकि आपको पूरे साल भर हेल्दी और हैप्पी रहने का बहुत ही सुंदर जो है ये हमारा भारतीय संस्कृति में ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये इसलिए भारत देश महान कहा जाता है क्योंकि भारत की संस्कृति सभ्यता और यहाँ के रीति रिवाज जो है लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ। और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पंचमी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्कंद माता के आरती और भजन आपको सुना रहे हैं, क्योंकि आज स्कंद माता स्वरूप में दुर्गा देवी को, दुर्गा शक्ति को याद किया जाता है। तो आइए, आज एक खास व्यक्ति का जन्मदिन भी है जिनके बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं, और जो संगीतकार शंकर, इनका जन्मदिन है, क्योंकि शंकर जयकिशन ये जोड़ी फिल्मी इंडस्ट्री में खास करके म्यूज़िक के लिए फेमस रहा, तो उसमें शंकर जी का आज जन्मदिन है और इनके बारे में बात करते हैं। भारतीय सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर संगीतकार थे। अपनी जोड़ी संगीतकार जयशंकर के साथ, जयकिशन के साथ इन्होंने मिलकर बनाई थी, और इसलिए इनका जो नाम आता था शंकर जयकिशन करके, म्यूज़िक जिनसे प्रोड्यूस किया गया है वो गाने के साथ साथ में ये बताया जाता था। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। 15 अक्टूबर 1922 को जन्मे शंकर के पिता राम सिंह रघुवंशी मूलतः मध्य प्रदेश के थे और काम के सिलसिले में हैदराबाद में बस गए थे। शंकर को शुरू से ही कुश्ती का बड़ा शौक था और उनका कसरती बदन बचपन से ही इसी शौक का परिणाम था, और घर के पास के एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान तबला वादक का वादन भी बचपन में ही उनको आकर्षण करने लगा। मंदिर में किसी का तबला बजाते हुए देखना इनके जीवन का, संगीत का जो है एक उदय अंदर से निकला, और तबला बजाने की लगन जो है इनको इतनी बढ़ गई कि वो महफिलों में तबला बजाने लग गए। उस्ताद नासिर खान की निगाह उन पर पड़ी और शंकर उनके चेले हो गए, और माली हालत ऐसी थी कि ट्यूशन भी करना मुश्किल हो जाता। कहते हैं कि हैदराबाद में ही एक बार किसी गली से गुजरते हुए तबला सुनकर शंकर एक कोटे पर चले गए और वहां तबला वादक को गलत बजाने पर टोक भी दिया, और बात बढ़ी तो शंकर ने इस सफाई से बजाकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया था कि वहां के सभी लोग शंकर के वाह वाह करने लगे। शंकर अपनी कला को और निखारने के लिए एक नाट्य मंडली में शामिल हो गए जिसके संचालक मास्टर सत्यनारायण थे, और हेमावती ने मुंबई जाकर पृथ्वी थिएटर्स में नौकरी कर ली। शंकर भी 75 रुपये प्रति माह पर पृथ्वी थिएटर्स में ही तबला वादक बन गए। तो इस तरह से तबला बजाने के लिए पृथ्वी थिएटर्स के नाटकों में कुछ कुछ छोटी छोटी भूमिकाएं निभाते हुए शंकर अपना सितार, तबला, ये सारी चीज़ें बजाने लगे। तो यहाँ से उनकी करियर जो है तबले की या म्यूज़िक की शुरू हो गई। तो अच्छा लगा आपको? तो चलिए, शंकर जी की कहानी अब आपको ले चलते हैं सीधे नवरात्रि का एक और खूबसूरत भजन आपको सुनाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जिया नई किरण, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, लखबीर सिंह का बहुत ही प्यारा सा गीत माता रानी पर सुन रहे थे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया समाचारों का और समाचार आ चुके हैं। अभी सीधे दिल्ली से सुनते हैं 15 अक्टूबर का ये समाचार आपके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फहद नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
3: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
3: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटका और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरूआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
5: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
6: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
5: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
7: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
5: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
8: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है।

0: ताइची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
1: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत करिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम बूंद जाओ गांव। जी हां, शंकर जी के बारे में बातें हो रही थी। शंकर और इनकी जय किशन जी से मुलाकात कैसी हुई? वो बेढंगी ढंग से अजीब तरीके का एक कजू है। जय किशन जी से मुलाकात हुई, शंकर जय किशन की मुलाकात भी अजीब ढंग से, जैसे कि ओपेरा हाउस थिएटर के पास में एक व्यायामशाला में कसरत के लिए शंकर जाया करते थे और वही दत्ताराम से उनकी मुलाकात हुई। दत्ताराम शंकर से तबले और ढोलक की बारीकियां सीखने लगे और एक दिन उन्हें फिल्मों में संगीत का काम दिलाने के लिए दादर में गुजराती फिल्मकार चंद्रा वंदन भट्ट के पास ले गए और वहीं जयशंकर भी फिल्मों में काम की तलाश में आए हुए थे। इंतजार के क्षणों में बाहर दोनों आपस में मिले और बातों बातों में शंकर को पता चला कि जय किशन हारमोनियम अच्छा बजाते हैं। तो उस समय सौभाग्य से पृथ्वी थिएटर, जहां पर शंकर जी काम करते थे, वहीं पर हारमोनियम मास्टर की जगह खाली थी। तो शंकर ने बोला, अरे इसके लिए आप यहां क्यों आए, मेरे साथ ही आ जाओ और वहां पर काम कर सकते हैं। शंकर ने प्रस्ताव रखा तो जय किशन जी जट से मान गए और इस तरह पृथ्वी थिएटर्स के परचम तले शंकर और जय किशन साथ साथ काम करने लगे और काम करते हुए दोस्ती बढ़ी। पाटन में दोनों के साथ साथ अभिनय भी हुआ उनके और काम के साथ साथ दोस्ती बढ़ती गई और प्रगाढ़ हुई। फिर शंकर साथ साथ हुस्नलाल भगतराम के लिए भी तबला बजाने का काम करते थे और दोनों भाइयों में भी संगीत की कई बारीकियां सीखने को मिली वहां पर। तो इस तरह से पृथ्वी थिएटर में काम करते करते शंकर और जय किशन जो है फिर एक अच्छे दोस्त बन गए और अच्छे संगीतकार धीरे धीरे। जब राज कपूर उनके साथ मिले तो राज कपूर उनके साथ जब कोई अपनी फिल्म का संगीत को लेकर ढूंढ रहे थे नए संगीतकार को, तो उनकी नज़र जो है शंकर जय किशन पर आकर रुकी और फिर उन्होंने इन दोनों को एक फिल्म के लिए संगीत के बारे में बताया और संगीत का कार्य शुरू हो गया। तो इस तरह से इनका जो है शंकर जय किशन की जोड़ी संगीतकार के रूप में यहाँ से शुरू हो गई। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब संगीत की बातें हो रही तो हमारे साथ उदय जी भी हैं, उनसे भी उदय जी एक सुंदर गीत लेकर हमारे बीच आए हुए हैं और वो गीत सुनते हैं अभी। ना ये चांद होगा ना तारे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हुए सीधे

0: जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया
0: जी जी जी जी।
1: गुड मॉर्निंग रमेश भाई।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए सुनते हैं गीत। म्यूजिक सुनाई दे रहे हैं आप लोगों को?

चलिए उदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आइए आगे बढ़ते हुए 9:24 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। बातें चल रही थी शंकर जयकिशन के बारे में और निश्चित तौर पे आप सभी को शंकर जयकिशन की जोड़ी कैसे निर्मित हुई उसके बारे में पता चल गया। पृथ्वी थिएटर से ही काम करते करते शंकर और जयकिशन दोनों ने समय बिताए करीब का। हालांकि राज कपूर की पहली फिल्म के संगीतकार थे पृथ्वी थिएटर्स के वरिष्ठ संगीतकार राम गांगुली और शंकर जयकिशन उनके सहायक थे, लेकिन बारात के लिए संगीत की रिकॉर्डिंग के शुरुआती दौर में जब राज कपूर को पता चला कि बरसात के लिए बनाई एक धुन राम गांगुली उसी समय बन रही एक दूसरी फिल्म के लिए काम कर रहे हैं या उसके लिए उपयोग कर रहे हैं तो वो आपा खो बैठे। और शंकर जयकिशन की प्रतिभा के तो वो कायल थे ही, और जब उन्हें शंकर के द्वारा उनकी लिखी कंपोजिशन अम्बुआ का पेड़ है वही मुंडेर है मेरे बनमा अब काहे की देर है इस बनाई गई धुनी धुन को सुना तो उन्होंने राम गांगुली की जगह शंकर जयकिशन को ही बरसात का संगीत सौंप दिया और यहीं से उनकी शुरू हो गई। और फिर बाद में ये धुन जिया बेकरार है चाई बहार है के रूप में बरसात में आई। तो फिल्म बरसात की उनकी जोड़ी जिया बेकरार है और बरसात में हमसे मिले तुम साजन जैसे सुपरहिट संगीत उनको मिला। और फिल्म की कामयाबी के बाद शंकर जयकिशन बतौर संगीतकार सेट हो गए और उनकी पहचान सफल हो गई। और मजहब एक संयोग ही कह सकते हैं, फिल्म बरसात में ही गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने भी अपने सिने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म बरसात की सफलता के बाद शंकर जयकिशन राज कपूर के चहेते संगीतकारों में से एक बन गए। इसके बाद राज कपूर की फिल्मों के लिए लगातार शंकर जयकिशन ने बेमिसाल संगीत देकर उनकी फिल्मों को सफल बनाने में एक अच्छी भूमिका निभाई। तो ये शंकर और जयकिशन जी की जोड़ी का कमाल था। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए फिर एक बार आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राज कपूर का एक गीत, शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ और आशा करूँगा कि आप सभी को शंकर जयकिशन जी के संगीत के गाने जो हैं बहुत पसंद आते होंगे। तो एक खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बोल राधा बोल, शंकर जयकिशन का सुपर डुपर हिट गाना आप सुन रहे थे अभी। और इस तरह से जो चीज़ें बनी उनके जीवन में और खूबसूरत जोड़ी बनी और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर किया उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
1: हमने काम शुरू किया था, एक साथ ही हम इसमें पढ़े और इसमें ही फले फूले, इसी में नाम कमाया और साथ साथ बड़ा लंबा सफर तय किया अपनी अपनी जिंदगी में।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और अजीब दास्ता है ये गीत, वंदना जी ने याद किया है, तो चलिए एक और गीत शंकर जयकिशन का आपको सुनाते हैं। अभी सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए, आज वक्त आगे बढ़ता जा रहा है और बात करते हैं आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आज है। जी हाँ, 15 अक्टूबर को जन्मे उन लोगों के बारे में बातें करते हैं। तो बात करते हैं भारतीय राजनेता आसाम के करीमंग निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा में सदस्य रहे कृपनाथ मल्हा। इनका जन्मदिन आज ही के दिन 1973 को हुआ था। भारतीय राजनीतिक है जो 17वीं लोकसभा में संसद के सदस्य हैं। मगुंटा श्रीनिवास लू रेड्डी 1953 में इनका जन्म हुआ। भारतीय राजनीतिक जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है महेंद्रनाथ पांडे 1948 में इनका जन्म हुआ। छत्तीसगढ़ के संगीतज्ञ तथा प्रसिद्ध लोक गायक हैं मदन सिंह चौहान 1947 में आज ही के दिन इनके साथ हुआ। और भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1931 को हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी।
1: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सुरेश जी बोलता हूँ जेठाना से। सर
0: बोलिए। सुरेश जी स्वागत है आपका। बढ़िया है,
1: बस हम भी अच्छे हैं। आज मदन लाल की तरह हम आज लेट हो गए अभी ये वक्त मदन लाल फोन करने का, लेकिन हम आज आपसे लेट हो गए हैं बात करने में। तो चलो आपको और हमारी सभी मित्रों को आपके दिन की शुभकामनाएं। सर मुझमा
0: जी जी
1: नॉर्थ का शुरू हो गया है नवरात्रि का, तो बस जाने तो हम बहुत अच्छे से कूद रहे हैं आज। तो पुराने गाने आज हमारे
0: जी जी
1: तो संगीतकार बताया आपने
0: शंकर जी का जी जी।
1: हाँ हाँ, तो सभी को नमस्ते सर। और सतगुरुवार हैं, बाबा का वार है, तो सभी को गुरु की कृपा बनी रहे। नमस्ते सर। ओम शांति।
0: ओम शांति। नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। और मदन सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के संगीतज्ञ तथा प्रसिद्ध लोक गायक हैं। 1947 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है महेंद्रनाथ पांडे, इनका भी जन्मदिन आज है। 1948 में इनका जन्म हुआ। और मीरा नायर भारतीय निर्देशक, 1957 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। मदन लाल खुराना, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1936 को हुआ। मुख्तार अब्बास नकवी, 1957 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। रमन सिंह राजनीतिक, छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री के रहे हैं। 1952 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय अभिनेता विक्टर बैनर्जी, 1946 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल थे के शंकर नारायण, 1932 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। हीरा लाल देवपुरा राजस्थान के भूतपूर्व 11वें मुख्यमंत्री थे, 1925 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन, 1922 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। मोहम्मद जाहिर शाह अफगानिस्तान के अंतिम राजा थे, 1914 में आज ही के दिन। मनु भाई राजाराम पंचोली गुजरात भाषा के उपन्यासकार, लेखक, शिक्षाविद और राजनीतिक थे, 1914 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। अकबर मुगल शासक, 1542 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। और जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। शाम मिलते हैं 4 बजे सफर कार्यक्रम में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।
1: सुबह की कोमल धूप के साथ कुछ जानकारियाँ और मनोरंजन, ये है नई किरण।
2: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर के पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर नवरात्रि के पांचवे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी।
0: आज के दिन उपांग ललिता व्रत किया जाएगा। रेडियो मधुबन के संग नवरात्रि के रंग
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।
2: माँ की ममता का रूप निराला। माँ की ममता का रूप निराला, भक्तों को लगता है माँ का सहारा प्यारा। गोद में स्कंद, मुख पर तेज अपार। गोद में स्कंद, मुख पर तेज अपार। माँ स्कंद माता करती है सबका उद्धार। प्रेम और करुणा की बहती रहे धारा, प्रेम और करुणा की बहती रहे धारा। माँ के आशीर्वाद से जीवन में हो उजियारा, माँ के आशीर्वाद से जीवन में हो उजियारा। तो आप सभी को नवरात्रि के पांचवा दिन स्कंद माता दिन के, आज है स्कंद माता का दिन, तो इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। राक्षस दुर्गमा सुर का वध करने से माता रानी का एक नाम दुर्गा भी पड़ा। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग घरेलू उपाय आज आपको देने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खास नुस्खे रहेंगे आज के। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे, लेकिन कौन सा वो आप आशाना सुनिए, जान जाएंगे। और आज की पहेली भी बहुत सुंदर रहेगी। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार बहुत ही अच्छा है। राक्षस दुर्गमासुर का वध करने से माता रानी का एक नाम दुर्गा भी पड़ा, कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक बहुत ही सुंदर कहानी के साथ करना चाहूँगी। नवरात्र चल रहा है, जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा, है ना। दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है नवरात्र के त्यौहार को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ भगवती को माँ दुर्गा क्यों कहा जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री हरि ने वरा अवतार लेकर के राक्षस हिरणाक्ष का वध किया था और पृथ्वी को अपनी जगह पुनर्स्थापित किया था, जिससे सृष्टि में आया व्यवधान दूर हुआ था। कालांतर में इसी हिरणाक्ष के वंश में एक दैत्यराज रुरु हुआ था और दैत्यराज रुरु का पुत्र हुआ दुर्गम। ये दुर्गम ब्रह्मांड के तीनों लोकों पर शासन करना चाहता था, लेकिन तीनों लोकों पर शासन हेतु देवताओं को हराना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। इसलिए दुर्गमासुर ने विचार किया कि देवताओं की शक्ति वेद में निहित है, उस समय एक ही वेद थे, तो अगर किसी तरह वेद नष्ट हो जाए या विलुप्त हो जाए तो देवतागण खुद ही नष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त वेद के विलुप्त हो जाने से यज्ञ आदि भी नहीं हो पाएंगे, जिससे देवताओं को भोग नहीं मिल पाएगा और वे शक्तिहीन हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें जीतना आसान हो जाएगा। इसलिए राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने उसे सलाह दी कि देवताओं को हराने के लिए वेद का लुप्त होना आवश्यक है। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य के निर्देशों पर दुर्गमासुर हिमालय में जाकर के कठोर तपस्या करने लगा। दुर्गमासुर के इस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देते हुए वर मांगने को कहा। मौके का फायदा उठाते दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी से वेद मांग लिया और साथ ही साथ मांग लिया कि वेदों के समस्त ज्ञान मुझ तक ही सीमित रहे। वेद के अतिरिक्त दुर्गमासुर ने सर्वशक्तिशाली होने तथा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश से अवध माने नहीं मरने का वरदान भी हासिल कर लिया। ब्रह्मा जी द्वारा तथास्तु कहते ही सारे देव और मनुष्य वेद को भूल गए। वेद का स्मरण भूलते ही ब्रह्मांड में जप तप स्नान ध्यान यज्ञ पूजा सदाचार आदि धार्मिक क्रियाएं थम गई, जिससे हर जगह धर्म की जगह अनाचार और पाप का बोलबाला होने लगा। ब्रह्मा जी के ऐसे वरदान से बेहद ही अजीब स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि यज्ञ आदि में भाग मिलने से देवता पुष्ट होते थे, लेकिन वेद के लुप्त हो जाने के कारण यज्ञ आदि बंद हो गए, जिससे देवता निर्बल होने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान से ताकतवर हुआ दुर्गमासुर दैत्यों और राक्षसों की भारी सेना लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। लेकिन यज्ञ आदि की

इन सभी चीजों के लिए। ऐसी विकट स्थिति में पृथ्वी पर जो थोड़े बहुत सज्जन लोग बचे थे वे हिमालय की कंदराओं में जाकर के बहुत ही कारुणिक रूप से माँ भगवती को पुकारना शुरू कर दिया। उनकी कारुणिक पुकार सुनकर के माँ भगवती प्रकट हुई। उस समय उन्होंने भूख प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाकमूल को धारण किया हुआ था। माता भगवती के प्रकट होते ही देवतागण भी बाहर आ गए, जो दुर्बल हो जाने के कारण दुर्गमासुर के भय से इधर उधर छुपे हुए थे। सबने मिलकर माता भगवती को सारा वृतांत बताया। माता भगवती ने सारा वृतांत सुनकर उन्हें भरोसा दिलाया और तत्काल में उन्हें खाने के लिए शाक और फल दिए। इसी घटना के कारण मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, माँ भगवती का एक नाम शाकंभरी भी पड़ा। उधर जब दुर्गमासुर ने अपने दूत से यह सारा वृतांत सुना तो वो क्रोधित होकर के एक बहुत बड़ी सेना लेकर मनुष्य और देवताओं को दंड देने के लिए निकल पड़ा। दुर्गमासुर को सेना सहित आता देखकर मानव और देवताओं में भय व्याप्त हो गया और वे माँ भगवती से रक्षा हेतु निवेदन करने लगे, जिसके बाद देवी भगवती ने चक्र को सारे मानव और देवताओं की रक्षा का आदेश दिया, जिससे चक्र देवता और मनुष्यों की रक्षा करते हुए उनके चारों ओर घूमने लगा। देवी भगवती और राक्षसी सेना के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया और देवी भगवती के श्री विग्रह से कालिका, तारा, भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, बगला वगैरह वगैरह 32 शक्तियां प्रकट हुई तथा 10 दिन के घनघोर युद्ध के बाद सारी राक्षसी सेना विनाश को प्राप्त हुई। अपनी सेना के विनाश की खबर सुनकर के 11वें दिन दुर्गमासुर खुद युद्ध भूमि में आया, लेकिन माँ भगवती के हाथों मारा गया। इस तरह माँ भगवती ने दुर्गमासुर का अंत कर वेद को पुनर्स्थापित किया और इसी दुर्दांत दुर्गमासुर के वध के कारण ही माँ भगवती को माँ दुर्गा भी कहा जाता है। तो आप समझ गए ना कि क्यों माता रानी का एक नाम दुर्गा पड़ा, वो आपने जाना है। आइए अब फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नवरात्र में शक्ति के नौ रूपों का आवाहन करते हैं। माँ स्कंद माता का रूप सुखदाई और ममता मई है। हम भी सभी अपना आचार व्यवहार मीठा रखें और सुख दें, तभी देवी माँ के सच्चे भक्त कहलाएंगे। नवरात्र के पांचवें दिन की आप सभी सुनने वालों को

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे अब आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय। जी हाँ, अगर सर्दी जुकाम से बचना चाहते हैं तो मुंह में पानी भर करके स्नान करिएगा। ठीक है, स्नान करते समय थोड़ा पानी मुंह में लीजिएगा, मुंह फूले नहीं इतना ध्यान देना है। ठीक है, फिर श्वास नाक से लेना है। स्नान करने के बाद आप कपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद इस पानी को फेंकिएगा, अंदर जितना भी कफ है ना सब निकल जाएगा। परिणाम ये होगा कि इससे सर्दी जुकाम का प्रभाव कम से कम होगा, अगर होगा तो भी थोड़े समय में प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सर्दी जुकाम से बचना चाहते हैं तो मुंह में पानी भर करके स्नान करिएगा। स्नान करते समय थोड़ा पानी मुंह में रखिएगा, मुंह फुलाइए नहीं, खाली मुंह में रखना है। स्नान करने के बाद कपड़े पहन लो, उसके बाद पानी फेंकिए, अंदर जितना भी कफ है ना सब बाहर निकल जाएगा, सर्दी जुकाम का प्रभाव कम से कम हो जाएगा और थोड़े समय में ये प्रभाव सारा समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम सर्दी जुकाम से बच सकते हैं। देखिए, दूसरा उपाय भी बहुत ही सुंदर है। सर्दी में होंठ नहीं फटे, शरीर में खुश्की नहीं आवे, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप ये करेंगे कि रोज स्नान करने से पहले अंगुली, मतलब एक अंगुली तेल नाभि में लगाइएगा, सरसों का तेल। ठीक है, इससे सारे शरीर में ताजगी आ जाएगी, सारा शरीर स्नेहल हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि शरीर में खुश्की नहीं आएगी, होंठ नहीं फटेंगे। यह आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं, एक दो बूंद आप सरसों के तेल नाभि में डाल सकते हैं, इससे भी होंठ नहीं फटेंगे और शरीर की खुश्की नहीं रहेगी। ठीक है, तो सर्दी में अगर आप चाहते हैं कि हमारे होंठ नहीं फटे, शरीर में खुश्की नहीं रहे, ड्राइनेस आती है तो खुजली चलती है, ये समस्या हो जाती है, तो इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप? नहाते समय एक अंगुली सरसों का तेल नाभि में लगाइएगा, इससे सारे शरीर, पूरा जो शरीर है स्नेहल हो जाएगा और खुश्की नहीं रहेगी, होंठ नहीं फटेंगे। तीसरा उपाय भी बहुत सुंदर है। आंखों की ज्योति बढ़ाना चाहते तो इसके लिए क्या करेंगे? पैर के दोनों अंगूठे है ना, इसके आगे के भाग में नाखूनों पर सरसों का तेल लगाइएगा रोज, इससे आंखों की ज्योति बढ़ेगी। पैरों के दोनों अंगूठों के आगे के भाग में नाखूनों पर सरसों का तेल रोज लगाइएगा, इससे आंखों की ज्योति बढ़ेगी। अगला उपाय भी बहुत सुंदर है। आई फ्लू हो गया हो तो क्या करेंगे? माने आई फ्लू माने आंखों में संक्रमण हो गया हो तो क्या करेंगे? पैर के दोनों अंगूठों के नाखूनों में आंख माने अर्क, जो आंख होता है ना, आंख का दूध लगाइएगा, इससे आंखों में आई ललाई जलन ये सब ठीक हो जाएगा। तो एक दिन में ही इसका फर्क आपको महसूस होगा, दूसरे में भी रोग नहीं फैलेगा। तो आंखों में संक्रमण है, आई फ्लू हो गया है, तो पैर के दोनों अंगूठों के नाखूनों में आंख का दूध लगाइए। हम कहते हैं ना आकड़ा धतूरा, तो आंख का दूध लगाना है, इससे आंखों में आई ललाई जलन एक दिन में ठीक हो जाएगी, दूसरों में भी ये रोग नहीं फैलेगा। अगर मलेरिया हो तो क्या करेंगे? नीम के 2.5 ताजा पत्ते और 2 काली मिर्च घोट करके थोड़े पानी में मिला करके पीजिएगा, 2 बार लेने पर ये रोग ठीक हो जाएगा। मलेरिया होने पर नीम के 2.5 ताजा पत्ते और 2 काली मिर्च दोनों को घोट कर थोड़ा सा पानी मिलाकर पीजिएगा, दिन में 2 बार लेने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। शरीर में हाथ व पैर दोनों के 20 नाखूनों पर आग का दूध रात को सोते समय लगाना, दोनों हाथों पर रुमाल बांध लेना ताकि दूध आंखों को न लगे, इससे भी मलेरिया ठीक हो जाएगा। शरीर में हाथ व पैर दोनों के 20 नाखूनों पर आग का दूध रात को सोते समय लगाइएगा, दोनों हाथों पर रुमाल बांध लेना है ताकि दूध आंख को नहीं लगे और इससे मलेरिया भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है। साई टीका, जिसको ग्रदसी भी कहते हैं, तो साई टीका इस रोग में पैर की नसों में ऊपर से नीचे तक भयंकर वेदना होती है, रोगी दर्द से छटपटाता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही सुंदर उपाय आपको बता रही हूँ। पारिजात
जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, तो हार श्रृंगार के पेड़ के एक तोले ताजा पत्ते लीजिए। इसमें 250 ग्राम पानी लेना है, मतलब 250 लीटर पानी लेना है। इसमें उबालना है इन पत्तों को। जब पानी एक कप या फिर आधा रह जाए तो उतार कर ठंडा करके छानिए, फिर इसमें मिश्री मिला करके पीजिएगा। लगातार एक महीना करेंगे तो ये साइटिका की तकलीफ ठीक हो जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखना है, गरिष्ठ भोजन से आपको बचना है। तो साइटिका की जिसको भी समस्या है, इस रोग में पैर के नसों में ऊपर से नीचे तक भयंकर दर्द रहता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और रोगी दर्द से छटपटाता है। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर आपको उपाय बता रही हूँ, पारिजात, जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं। पारिजात के पेड़ के एक तोले ताजा पत्ते लीजिए, 250 ग्राम पानी में उबालिए। जब पानी आधा कप रह जाए तब उतार करके इसको ठंडा होने दीजिए, फिर मिश्री में लगा करके पीजिएगा। महीना भर आपको इस तरह लेना

करना है तो इससे आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा, घरिष्ठ भोजन से आपको बचना है। तो ये सारे उपाय बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। आइए अब आपको आज की पहेली सुना देते हैं, बहुत ही सुंदर पहेली है, ध्यान से सुनिएगा। 9 दिनों के पर्व में मेरा 5वां स्थान, 9 दिनों के पर्व में मेरा 5वां स्थान, गोद में पुत्र, मुख पर दिव्य मुस्कान, कमल पर विराजू, ममता मेरी पहचान। बताइए आशियाना सुनने वाले मेरे प्यारे श्रोता बंधु, क्या है मेरी पहचान? यह है आज की पहेली। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। सरल रहिए ताकि सब आपसे हिलमिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सके। क्या कहेंगे आप? आज का विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, बहुत ही सुंदर विषय है। आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर है। 9 दिनों के पर्व में मेरा 5वां स्थान, गोद में पुत्र मुख पर दिव्य मुस्कान, कमल पर विराजू ममता मेरी पहचान। बताइए आशियाना सुनने वाले श्रोता बंधु, क्या है मेरी पहचान? तो जिन्होंने भी आज का विचार सुना होगा तो जरूर वो जवाब दे सकेंगे। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं, प्रश्न का आज की पहेली का जवाब भी दे सकते हैं और आज के विषय में अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। आप फिर शिकायत मत करिएगा कि फोन नहीं लगता है, बहुत सारा गैप मिलता है अभी और इस गैप में आप फोन कर ही सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर विषय है, सरल रहिए ताकि सब आपसे हिलमिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सके। क्या कहेंगे? अभी देखिए दिन भी इतने खास चल रहे हैं माता रानी के दिन कि हम वो कहते हैं ना चारों तरफ भक्तमय माहौल है। तो भाई भक्तमय माहौल ऐसे ही तो नहीं होता है ना, आगे पीछे की बातों को भुला करके सभी अभी भक्ति में लीन है, गरबा में, भक्ति में, तपस्या में, इन सब में लीन है। कहते हैं ना नवरात्र में तो जितनी तपस्या करो उतनी कम है, तो बहुत जने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, कोई निस्वार्थ भाव से तपस्या करते हैं, लेकिन करते जरूर है तो मन निर्मल हो जाता है ना। तो विषय भी आज का इसी प्रकार है कि सरल रहिए ताकि सब आपसे हिलमिल सके। उकड़ू स्वभाव होगा ना तो सब आपसे दूर भागेंगे, सरल स्वभाव होगा तो कोई भी बात में हिचकिचाएंगे नहीं, अरे चलिए ना उनसे पूछ लेते हैं, बहुत सरल स्वभाव के है वो, अपने साथ ऐसा ऊंच नीच नहीं करते। जैसे बहुत पैसे वाले भी है ना तो भी सरल स्वभाव है तो लोग उनको पूछने के लिए जाएंगे और बड़े प्यार से उनको जवाब देंगे, बड़े प्यार से बिठाएंगे और उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये उकड़ू स्वभाव वाले कुछ नहीं है पास में फिर भी उकड़ू उकड़ू रहता है, कोई कुछ पूछ ले उसके पहले ही वो इतना झल्ला करके बोलता है कि ऐसा लगता है भाई फलाने से बच के रहना ही अच्छी बात है। हेलो,
1: हाँ बुरा राम बोल रहा हूँ उषा दीदी।
0: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम, कैसे हो आप?
1: बहुत दिनों के बाद मैं फोन लगा, जब लगा तो वो क्या मेरा रेडियो खराब है क्या, आपका वो प्रोग्राम बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
0: अच्छा अब सब कुछ चालू है?
1: अभी चालू है, आज तो चालू है, मैं लगा के देखता हूँ तो चालू मिला, नहीं तो कभी शुरू करके कोई आवाज नहीं थी।
0: अच्छा चलिए अच्छा है कि चालू हो गया।
1: और बाकी मधुबन भाइयों को मैं सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम, और आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ। क्या विषय क्या है कुछ?
0: आज की पहेली है, 9 दिनों के पर्व में मेरा 5वां स्थान, गोद में पुत्र मुख पर दिव्य मुस्कान, कमल पर विराजू ममता मेरी पहचान। बताइए आप आशियाना सुन रहे हैं ना, तो क्या है मेरी पहचान? आज 5वां दिन है माता रानी का, तो बस इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकती मैं, उस हिसाब से जवाब दीजिएगा ठीक है। और आज का विषय, हाँ जी, आज का विषय है सरल रहिए ताकि सब आपसे हिलमिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सके। क्या कहेंगे?
1: बरोबर, मतलब आदमी को कभी भी बोले तो ऐसा घमंड से बातें करना, किसी से टकराव से बातें करना, और ऐसा नहीं है, सरल आदमी सरल रहता है, उसका मान में नहीं बढ़ता है, इज्जत भी होती है, और कभी भी बोले तो कई दो लोगों में हम व्यवहार से बातें करेंगे तो अपनी कदर होती है, और फिर उनके आगे का किसी का अनुसर करेंगे तो फिर वही अपने को ये तो सबसे तो मिल मिल के रहना है तो सब है कि, तो इससे अपने संबंध भी बनते हैं, रिश्ते भी बनते हैं, और सब भाइयों के मिलजुल भी बढ़ता है, मतलब सरल आदमी का व्यवहार अच्छा है, बाकी तो क्या बोल सकता।
0: जी जी जी, और आज की पहेली का जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है?
1: हाँ करता हूँ मैं।
0: हाँ जी, और स्वास्थ्य बढ़िया आपका?
1: ठीक है सर, थोड़ा जम की प्रकार से अभी बैठा घर पे, और क्या करें अभी, सुनता और प्रोग्राम सुनता और बात करता।
0: जी जी बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, चलिए बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे भूरा राम जी, ओर से आपने भी विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है। अब देखते हैं कौन झूठते और अपनी बात को रखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के पहेली का भी जवाब दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सको। कितनी सुंदर बात है। जैसे आप शक्कर ले लीजिए, शक्कर को आप जिसमें भी डालोगे उसमें मिक्स हो जाएगी, ठीक है? आप हलवा में डालो, चावल में डालो, आप दूध में डालो, शक्कर दिखाई नहीं देगी और सब में घुल मिल जाएगी। ऐसा स्वभाव हमें बना के रखना है कि हर परिस्थिति में हर एक के साथ हम घुल मिल करके रह सके। तो प्रैक्टिकल विषय है, देखते हैं कौन जुड़ते और अपनी बात को रखते हैं। भाई हम तो बैठे ही है, लेकिन हम तो आपके द्वारा जानना चाहते हैं। फोन करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कट जा रहा है। फिर भी कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप कोशिश करते रहिए, आपका फोन जरूर लगेगा। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है जिसमें आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। क्या बात है, हमारे इतने श्रोता बंधु है, अभी सभी तपस्या में व्यस्त है लगता है। 9 दिन उपवास भी करते हैं, कोई कोई तो बिल्कुल खाली पेट उपवास करते, कुछ भी खाते पीते नहीं, कोई लिक्विड पर रहते हैं, कोई फल पर रहते हैं, तो कोई फराल भी लेते हैं, कोई व्रत भी करते हैं, और कोई तो नकोड़ा उपवास, मतलब कुछ भी खाते पीते नहीं, इस तरह भी तपस्या करते हैं। देखो भाई, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करिएगा। हेलो
1: जी, नमस्ते सुरेश।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो?
1: मैं जब से फोन कर रहा हूँ लेकिन फोन में पता नहीं, जल्दी फोन लगता नहीं, लगता है कट जाता है, थोड़ा सा कोई दिक्कत का प्रॉब्लम है।
0: अच्छा,
1: तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन फिर भी चलो फर्स्ट तो मैं कर रहा था, लग गया है
0: जी।
1: तो क्या विषय है दीदी, आज मैं फोन में लगा रहा था, पता नहीं क्या बोला क्या।
0: अच्छा, आज का विषय है सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सको।
1: वो तो सही है दीदी, देखो हम इससे कई कई बार क्या हम मुस्कुराते रहते हैं, एकदम खिचताने रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो हम दूसरे के साथ कैसे हिल पाएंगे दीदी। लेकिन हम आराम से शांति से रहेंगे, हल्के से रहेंगे, यानी कि किसी के साथ ऐसा कोई बर्ताव भी नहीं करेंगे और प्रेम से रहेंगे, तो एक दूसरे के साथ हम हिलमिल भी रहेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे
0: जी।
1: वरना तो देखो आज कई लोगों को ऐसा होता है कि कई लोग इसको बुलाते नहीं थे, इसको जाने दो, इसका माइंड नहीं है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है
0: जी,
1: तो हम बुलाएंगे तो कुछ बोलेंगे अच्छा नहीं बोलेंगे, कोई गुस्से से बोलेंगे, तो ये सही नहीं है दीदी। आज देखो किसी के साथ हम बात करते हैं, किसी को बुलाते हैं तो एकदम चिढ़ के बोलते हैं, अरे भाई हम भूत रहे हैं आपको, ऐसे चिड़ के बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए हल्का रहना है, माइंड को फ्रेश से एकदम रखना है
0: जी।
1: नो टेंशन दीदी, कभी कभी टेंशन आता है तो लोग एकदम चिड़ पड़ाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, तो किसी के ऊपर टेंशन होता है तो हम बुलाते हैं, तो एक दौर से बोलते हैं भाई मेरे काम में तुझे आता है, बाद में आना, तो ऐसा भी रहता है, लेकिन भी हो लेकिन हल्का रहना है, बस हल्के रहेंगे तो ही तो सबके साथ मिल के रहेंगे, सबके अच्छे रहेंगे, वरना तो कोई हमको बुलाएंगे नहीं
0: जी।
1: ठीक है दीदी,
0: बिल्कुल जी, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से। अब इस विषय को और भी कंटिन्यू करेंगे लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक। बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर नवरात्रि के पांचवे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी।
0: आज के दिन उपांग ललिता व्रत किया जाएगा। रेडियो मधुबन के संग नवरात्रि के रंग
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है, सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सको। यह आज का विषय है खुशनुमा जीवन का। आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। और आज का आज की पहली भी दोहरा देती हूँ जो बहुत ही सुंदर है। 9 दिनों के पर्व में मेरा 5वां स्थान, गोद में पुत्र, मुख पर दिव्य मुस्कान, कमल पर बिराजू, ममता मेरी पहचान। बताइए आशियाना सुनने वालों, क्या है मेरी पहचान? ये आज की पहेली है। क्या बात है, कहाँ खो गए हैं आप सभी? गरबा का आनंद ले रहे हैं? चलिए अच्छी बात है, रेडियो में भी बहुत ही अच्छे अच्छे गरबा आपको सुना रहे हैं ताकि आप घर बैठे भी गरबा कर सको। हेलो,
3: चालू हो गया लाइव?
2: हाँ जी हाँ जी, नमस्कार सुभाष भाई।
3: तो आपको रेडियो मधुबन परिवार और हमारे सभी छोटे भाई बहनों को सुभाष भाई का नमस्कार, और नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की सभी को आशीर्वाद, कृपा, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, शक्ति, लाभो, सभी का जीवन सुख शांति में जाइए, हमारी प्रार्थना भी है। तो सवाल का जवाब तो दे दिया है। तो
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: स्कंद माता को कमल का फूल भी बहुत ही अच्छा लगता है, कमल का फूल और लाल रंग के फूल, पीले फूल चलाए जाते हैं, दोनों हाथों में कमल भी दिखाए है।
2: आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? आज का विषय है सरल रहिए ताकि सब आपसे घुल मिल सके, मतलब सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में गुल मिल सको, क्या कहेंगे आप?
3: जो मैं सुनाता हूँ ना दीदी, देखो अभी मेरा ही मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं 70 पार कर लिया है, पैरालिसिस का स्ट्रोक के कारण थोड़ा बोलते नहीं आता है, लेकिन मेरे सभी काम मैं स्वयं करता हूँ, किसी की भी मदद नहीं लेता हूँ, और जो भी मिला है, जो भी है, उसमें मैं निभा लेता हूँ, और सभी से छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो मैं सरल रहता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, चाहे उसको थोड़ा टाइम बुरा भी लगे, लेकिन स्पष्ट रहता हूँ, सरल रहता हूँ, बाद में उनको समझ में आता है कि ये निस्वार्थ भावना से प्रेम करता है, ये सरल आदमी। तो जो है दिखावा मत करो, शॉर्ट में जो हमारे पास है उसमें सुखी से रहो, संतुष्ट से रहो, और सभी से सरल रह के प्रेम करो। थैंक यू दीदी, ओम शांति, सभी को नमस्कार।
2: बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, और अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है और आप जुड़ सकते, प्रैक्टिकल विषय है, सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सको। तो ये खुद का ही आप चेक करके भी कह सकते हैं। आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर है, तो दोनों में ही जुड़िएगा। अगर पहेली में जुड़ नहीं पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी जवाब भेज सकते हैं, ठीक है। हेलो,
4: हेलो उषा बहन जी, कंचन भाई बोल रहा।
2: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते, कैसे हैं आप?
4: नमस्ते,
2: सुप्रभात। हाँ जी,
4: बस ये दुकान पे है, थोड़ा बुखार सा जो रहता है, थोड़ा क्या करे, दो ऋतु है न, तो अस्पताल गए थे कल तो दिखाया तो बोले कि भाई वायरस का आपको बुखार है
2: जी,
4: और जो धूल है, कोई दुआ है वहाँ आपको नहीं रहना है, थोड़ी दवाइयाँ दी है तो अब थोड़ा ठीक है, आप तो जुड़ा हो, ठीक है
2: जी।
4: हेलो,
2: हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ मैं।
4: हाँ तो बहुत है, बात है
2: जी जी।
4: सवाल का जवाब तो मैं देता हूँ, ठीक है?
2: ठीक है, ठीक है।
4: और क्या है आपका थोड़ा
2: विषय है? सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में गुल मिल सको।
4: बिल्कुल बहन जी, सरल रहना है, हमें कोई घमंड नहीं रखना है, पैसों का घमंड आदि घमंड क्या है। एक मैं बात करूं तो हमारे जो नवरात्रि शुरू हुई तो हम मीटिंग हमें बुलाया था, बड़े बुजुर्गों को, युवा लोग ये करते हैं, एक ही हमारे गांव में माडवड़ी करते हैं
2: जी,
4: तो इसका आयोजन कैसे करे, क्या करे, क्या करे, तो हमने जो 10 साल तक ये सब करते थे हम पहले, तो हमने हमारा अनुभव बताया कि ऐसा रहना है, सरल रहना है, उग्र स्वभाव नहीं रखना है, कोई भी मुसीबत आए, कोई ऐसा हो जाए तो हमें हम सा बताना है हमें। तो युवाओं ने बोला कि भाई आपको 11 बजे 12 बजे तक यहाँ बैठना है, कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी, तो आपको बड़े बुजुर्गों को बैठना है। हम बैठे थे कल परसों की बात करते हैं कि तो लाने की बात निकले कि भाई यहाँ कोई ऐसा हो जाए, नाश्ता की व्यवस्था, लाने की व्यवस्था, तो एक भाई थोड़ा उग्र स्वभाव में थोड़ा बोल गए। तो हमने बोला कि भाई हमको क्यों बुलाया, पहले दिन जो मीटिंग की थी तो बोला था, इसलिए हम तो आए हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, सदा सूचन कोई हमने किया है इतने सालों से, तो हम थोड़ा ये देते हैं शांति से। जनरेशन है ना बहन जी, आजकल की जनरेशन उग्र स्वभाव में आ जाती
2: जी,
4: नहीं रखना है, सीखना है बड़े बुजुर्गों को बात पे कैसे बोलना है, क्या बात कर रहे हैं वो हमें जवाब कैसे देना है, वो आजकल की जनरेशन को ये ध्यान में रखना, ठीक है
2: जी,
4: तो
2: जी,
4: उग्र स्वभाव नहीं रखना, शांति से पेश आना
2: जी।
4: आपकी बात भी ठीक है लेकिन क्या करे, इतना ये नहीं कर पाते, तो ये बात अलग है
2: जी,
4: तो इसके मैंने थोड़ी ये शांति से पेशाना है, स्वभाव नहीं, और ये मिलेगा बड़े बुजुर्गों के पास ही बातें मिलेगी, क्या करे? कई दिन उन्होंने देखे हैं, कई को देखे हैं, ये अनुभव से बात करते हैं तो सुनना। थैंक यू बहन जी, सभी दोस्तों को आपको नमस्कार
2: जी, बहुत बहुत आभार आपका
4: जी।
2: तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है, कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, स्वभाव सरल रखिए ताकि कोई भी आपसे किसी भी समय कुछ आपसे सलाह लेने की आवश्यकता है, या कभी कहते हैं ना कि जीवन में उदासी आ जाती है तो भी सरल लोगों के पास बैठना पसंद करते कि चलो वो कुछ सॉल्यूशन भी निकालेंगे, और उनका सरल स्वभाव है, उनके साथ हम अपने पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं तो वो आपके पास आएंगे, है ना। और कैसे भी लोग हो, कैसा भी वातावरण हो, आप उन हर एक में एडजस्ट हो जाइए, घुल मिल कर रहिए सभी के साथ, तभी तो कहेंगे कि अरे वाह फलाना व्यक्ति तो क्या भाई, थोड़ी देर के लिए रहा लेकिन सचमुच वो अमूट अपनी अमिट छाप छोड़ के गया, उसको हम भूल ही नहीं सकते आजीवन। कोई कोई इंसान बहुत कम समय के लिए मिलते हैं, संपर्क में आते हैं, लेकिन हम लाइफ टाइम उसको याद रखते हैं कि नहीं फलाना व्यक्ति के तो भाई बात ही अलग है, क्योंकि वो मिलनसार था, घुलनशील था, सभी के साथ घुल मिल करके अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा सबके दिलों को जीत करके गया है, तो उन्हें भूल नहीं सकते। और चाहे हमारे साथ रहते हो भाई, कोई कोई तो संपर्क में आकर चले जाते हैं, कोई कोई तो हम रोज ही साथ में रहते हैं ना, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए कि बस किसी के भी मन में संकल्प नहीं चले और खुल करके बिंदास होकर के आपके पास आ सके। बाकी कोई कोई तो ऐसे मूड से रहते हैं कि उनसे बात करते भी लोग कतराते हैं कि अरे भाई नहीं नहीं उसका मूड पता नहीं कैसा हो, एक ही दो सुनने को मिले इससे अच्छा दूर से ही नमस्कार है भाई राम राम है। तो अब ये स्वयं पर छोड़ा है कि स्वयं का नेचर कैसा बनाना है। इस विषय को अब यही समाप्त करते हैं और आइए आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली है, 9 दिनों के पर्व में मेरा 5वां स्थान, गोद में पुत्र, मुख पर दिव्य मुस्कान, कमल पर विराजू, ममता मेरी पहचान। बताइए आशियाना सुनने वाले मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, क्या है मेरी पहचान? ये आज की पहेली है। चलिए श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो,
5: हाँ बुराराम बोल रहा दीजिए।
2: हाँ जी बुराराम जी, राम राम।
5: हाँ वो जो पहेली का जो उत्तर नहीं दिया था ना आपको।
2: हाँ जी।
5: हाँ तो वो स्कंद माता का स्वरूप है।
2: ठीक है, देखते हैं सही जवाब। कार्यक्रम सुनिए, हम अंत में जवाब देंगे। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। तो ये थे बुराराम जी ओर से, और अब यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में सेविया की खीर। ठीक है, सेविया की खीर, सेविया का हलवा, ये हम बना सकते हैं। तो दोनों ही आपको सिखा दूंगी, प्रोसेस सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सामग्री आप ले लीजिए, सेविया लेनी है। अगर आटे वाली मिल जाए, आटे और सूजी वाली, तो बहुत अच्छी बात है। मैदे वाली तो ठीक है, फिर कभी कभार तो अब नहीं मिल रही है तो ले सकते हैं, बाकी मैदा नुकसान करता है। तो आप सेविया ले लीजिए बारीक वाली, और फिर आप लीजिए ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, शक्कर, थोड़ा सा घी और दूध। ठीक है, तो सेविया, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, दूध और घी। बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, जो सेविया ली है ना, उसका आप थोड़ा सा तोड़ लीजिए, लंबी लंबी काफ़ी होती है, तो उनका छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। फिर आप कढ़ाई रखिए गैस पर, और उसमें घी डालिए। घी जब गर्म हो जाए तो ये जो भी आप देखिए घर के सदस्यों के अनुसार आप मात्रा लीजिएगा, ठीक है, और विशेष तो माता रानी के भोग के लिए। तो सेविया डालिए घी में, और आप धीमी आंच पर इसको सेकिएगा। जब ये सेविया आप सेकेंगे तो इसकी एकदम सोनी सोनी खुशबू आएगी, जिससे पता चल जाएगा कि ये सेविया

0: इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर किया होगा आपने, नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, तो आजमा सकते हैं आप। प्रैक्टिकल विषय भी बहुत ही सुंदर था, तो रेसिपी में आपको जो सेविया की खीर हलवा बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज की पहली बहुत ही सुंदर थी, 9 दिनों के पर्व में मेरा 5वां स्थान, गोद में पुत्र, मुख पर दिव्य मुस्कान, कमल पर विराजू, ममता मेरी पहचान, बताइए आशियाना सुनने वालों क्या है मेरी पहचान। तो आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है। दीपा सोमानी कपासन से, सुरेश भाई झोटाना से, भूराराम जी ओर से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, निर्मला बहन अहमदाबाद से, आप सभी का सही जवाब है स्कंद माता। स्कंद माता रानी का आज दिन है और इनके ऊपर ही आज की पहेली थी। और आप सभी विषय में जुड़े इसके लिए भी ढेर सारे। आज का मीठा मोती सुनाना चाहूंगी। नैनों में है माँ की ममता, हाथ जिनके वरदानी है, विजय रही कहती माँ दुर्गा, भक्तों की रानी है। अब मैं आपको माता रानी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक सुंदर से टंग ट्विस्टर के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, जय माता दी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरवा लिए। मैं आई

0: वंदे मातरम भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्य नारा और प्रेरणा स्रोत था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे क्रांतिकारियों के लिए ये नारा मातृभूमि के प्रति समर्पण और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक था। जब उन्होंने 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान यानी काबुल में भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई थी, तब वंदे मातरम गीत बरकतुल्ला खान, ओबेदुल्ला सिंधी जैसे उनके साथियों के लिए भी राष्ट्रवाद की भावना का मूल मंत्र था। उन्होंने इस गीत की क्रांतिकारी भावना को न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि इसे अपने सशस्त्र और कूटनीतिक संघर्षों में एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उपयोग भी किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली अस्थाई सरकार के राष्ट्रपति भी रहे। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के आज के एपिसोड में सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की कहानी, जो काफी आध्यात्मिक भी थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक साहसिक स्वतंत्रता सेनानी और वैश्विक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिनकी सामाजिक और धार्मिक विचारधारा आज भी बहुत प्रासंगिक है। उनके विचारों में प्रगतिशील सोच झलकती थी। उसमें भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का लोकतंत्र, शिक्षा, समानता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे आधुनिक आदर्शों का मेल था। उनके दुनिया को देखने का नजरिया आध्यात्मिक होने के बावजूद किसी भी तरह के कट्टर या रूढ़िवादी विचारों से मुक्त था।
1: बन्नो, क्या तुम भारत के उस आर्यन पेशवा की कहानी सुनना चाहोगी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना घर, राजपाट, धन दौलत सब त्याग दिया?
2: हाँ दीदी, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। वे आर्यन पेशवा कौन थे?
1: उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने देश से हजारों मील दूर अफगानिस्तान की सरजमी पर भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। आओ चलते हैं साल 1915 के काबुल में।

0: राजा महेंद्र प्रताप जी, आप जर्मनी के कैसर विलियम से मिलकर यहां आए हैं। आपके इरादे बुलंद हैं, लेकिन आप ब्रिटिश हुकूमत से सीधे टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। क्या आपको खौफ नहीं लगता?
1: अमीर साहब, खौफ तो उन्हें होना चाहिए जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। मैं तो अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। गुलाम होने से अच्छा है कि मैं देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दूं।
2: मैं राजा साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। हिंदुस्तान के कोने कोने में आजादी की तड़प दिलों में सुलग रही है। अमीर साहब, हमें बस इस चिंगारी को शोला बनने में मदद करना है।
0: आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप अपने अगले कदम के बारे में बता सकते हैं? क्या सोचा है आगे का आपने?
1: हम आज ही यानी 1 दिसंबर 1915 को काबुल की सरजमीन से भारत की अंतरिम सरकार का ऐलान करते हैं। मैं इसका राष्ट्रपति हूं और मौलवी बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री।
3: एक ओर काबुल में राजा महेंद्र भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने की रणनीति बनाने में जुटे थे, दूसरी ओर दिल्ली स्थित ब्रिटिश मुख्यालय में एक अलग ही गहमा गहमी चल रही थी।
4: जनाब, राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। वे अब रूस और जर्मन से मदद मांग रहे हैं।
5: What rubbish! This is treason! राजद्रोह है ये।
4: जी जनाब, राजा साहब ने तुर्की के सुल्तान और रूस के जार को भी चिट्ठियां भेजी हैं। वे सिल्क के कपड़ों पर गुप्त संदेश भेज रहे हैं।
5: मुझे वो बागी जिंदा या मुर्दा चाहिए। चाहो उसको पकड़ो। हाथरस और वृंदावन में उसकी जितनी संपत्ति है उसे जब्त कर लो। उसके सिर पर इनाम रख दो। हमारी सरकार के लिए वो अब एक बड़ा खतरा बन गया है। उसे छोड़ना नहीं है।
3: राजा महेंद्र को एहसास था कि अंग्रेजों से लड़ाई आसान नहीं होगी, इसलिए वो जर्मनी और रूस से समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। मौलवी बरकतुल्ला के साथ राजा महेंद्र रूस लेनिन से मिलने भी गए। रूस की सीमा के पास एक कैंप में मौलवी बरकतुल्ला ने एक बार फिर से महेंद्र प्रताप से पूछा कि क्या वो सचमुच ब्रिटिश हुकूमत के साथ संघर्ष के लिए तैयार हैं, जबकि उनके परिवार वालों का जीवन खतरे में पड़ सकता है।
2: राजा साहब, अंग्रेजों ने आपकी तमाम जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया है। आपके खानदान पर सितम ढाए जा रहे हैं। क्या आप खामोश बैठे रहेंगे?
1: बरकतुल्ला साहब, देश गुलाम है। मैं अपने निजी जायदाद या अपने परिवार के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। अगर भारत को आजाद करने के लिए मुझे पूरी जिंदगी यूं ही खाना बदोश बनकर रहना होगा तो मैं रहूंगा।
2: मुझे आप पर फक्र है, इसीलिए तो आप राजा हैं। आपको इत्तला देनी थी कि लेनिन से हमारी मुलाकात का वक्त तय हो चुका है। रूस से भी पूरी तवक्को है, वो हमारी मदद जरूर करेगा।
1: मौलवी साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्रांति की मशाल किसी भी तरह बुझनी नहीं चाहिए। दुनिया के हर कोने में भारत की आजादी की गूंज पहुंचनी चाहिए।
3: लोकमान्य तिलक और राजा महेंद्र प्रताप को लेनिन का समर्थन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में उनका स्पष्ट रुख हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक दिलचस्प पहलू है। बोल्शेविक क्रांति के बाद जब वहां कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ तो महेंद्र प्रताप व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत शासन के मेहमान के तौर पर उस समय के सोवियत संघ गए। उन्होंने उनसे और लियोन ट्रॉटस्की जैसे दूसरे नेताओं से बातचीत की। यह साल 1918 की घटना होगी। तब लेनिन ने लोकमान्य तिलक को क्रांतिकारी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनक बताया था। जब तिलक

0: को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की न सिर्फ निंदा की बल्कि उनकी रिहाई की मांग भी की।
1: बन्नो, अब तक तो तुम समझ ही गई होगी कि राजा महेंद्र प्रताप क्या थे, उनका उद्देश्य कितना स्पष्ट था। लेकिन गांधी जी को उनके तरीके पसंद नहीं थे।
2: ऐसा क्यों दीदी?
1: बन्नो, दोनों का लक्ष्य एक था लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका अलग अलग। भारत की आजादी की लड़ाई के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से महेंद्र प्रताप ने कई देशों की यात्रा की और महात्मा गांधी के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। लेकिन गांधी जी उनके तरीकों से सहमत नहीं थे। हाँ, वे देश के प्रति उनके प्रेम और उसे आजाद कराने की समर्पित कोशिशों की तारीफ करते थे। गांधी जी ने 4 जुलाई 1929 को यंग इंडिया में लिखा भी था,
3: राजा महेंद्र प्रताप एक महान देशभक्त है। देश के लिए इस नेक इंसान ने स्वेच्छा से निर्वासन का जीवन चुना है, लेकिन विजय अहिंसा से ही प्राप्त हो सकती है।
0: इस पत्र के जवाब में राजा महेंद्र प्रताप ने भी उन्हें चिट्ठी लिखी।
4: मेरी समझ से अहिंसा का मतलब है अपने विचारों, बातों या कामों से किसी को भी मन या शरीर से दुख न पहुंचाना। हालांकि इस सिद्धांत का पालन यहीं तक सीमित नहीं है, अहिंसा का पालन करने वालों को उन सभी हालात को बदलना होगा जिनमें हिंसा होती है या हिंसा की संभावना बनती है। मैं इसे सबसे बुरी तरह की हिंसा अहिंसा के ठीक उलट मानता हूं, जब कोई व्यक्ति दूसरों की हिंसा को सहन करता है या उसमें मदद करता है। आज भारत में बहुत से लोग अहिंसा की खूबियों पर बड़े अच्छे उपदेश देते हैं, लेकिन वो अंग्रेजों की हिंसा को खत्म करने के लिए बहुत कम काम करते हैं। अहिंसा की सच्ची भावना के तहत मैं अपनी इच्छा दूसरों पर थोप नहीं सकता। हर किसी को खुद तय करना चाहिए कि उसे क्या करना है। मैं बस उस शाश्वत सत्य की ओर इशारा कर सकता हूं कि सृष्टिकर्ता निश्चित रूप से अपनी सभी रचनाओं स्त्री पुरुष का भला चाहता है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि हर कोई हर तरह की हिंसा को खत्म करने की पूरी कोशिश करे, यही अहिंसा है।
0: विदेश की धरती से अपने वतन को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए राजा महेंद्र प्रताप जो कर सकते थे वो कर रहे थे, लेकिन रह रह कर उन्हें अपने देश की याद भी सताती थी। आखिरकार वो समय भी आया, साल था 1946, जब राजा महेंद्र प्रताप वर्षों के निर्वासन के बाद भारत लौटे। जर्मनी, जापान और अमेरिका की खाक छानने और करीब 32 साल के लंबे निर्वासन के बाद वर्ष 1946 में जब राजा महेंद्र प्रताप भारत लौटे तो पूरा देश उनके स्वागत के लिए मानो उमड़ पड़ा। रेलवे स्टेशन पर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। सब लोग राजा जी को सुनना चाहते थे और उन्होंने उन्हें संबोधित भी किया।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, 32 साल तक अपनी मिट्टी से दूर रहा, आज धन्य महसूस कर रहा हूं। मैंने अपना सब कुछ खोया, महल, संपत्ति और भी बहुत कुछ, लेकिन नहीं खोई तो उम्मीद कि एक दिन देश जरूर आजाद होगा, गुलामी की जंजीरों से मुक्त होगा। इतना ही नहीं, असल आजादी तब कही जाएगी जब देश अशिक्षा एवं नफरत से भी मुक्त होगा।
0: राजा महेंद्र प्रताप एक सच्चे समाज सुधारक, क्रांतिकारी और लेखक थे। उनकी सोच प्रगतिशील एवं दूरदर्शी थी। आजादी के बाद उन्होंने 1957 में मथुरा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और लोकसभा में पहुंचे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को परास्त किया था। पश्चिमी यूपी की लोक कथाओं में इनके किस्से आज भी सुने जाते हैं। उन्होंने विश्व शांति के लिए एक विश्व संघ की बात की थी। इसी संदर्भ में 14 मई 1957 को उन्होंने लोकसभा में कहा था,
4: विश्व संघ की स्थापना के लिए सभी धर्मों का सहअस्तित्व और उनके बीच आपसी सद्भाव बहुत जरूरी होगा। ओम, देव, अल्लाह, यहोवा, आप चाहे जिसे भी मानते हो, सब एक ही ईश्वर का शरीर और आत्मा है जो एकमात्र और अद्वितीय है। अलग अलग धर्म एक ही ईश्वर को अलग अलग नाम देते हैं। मेरे लिए सभी धर्म एक ही परम सत्य तक ले जाने वाले सही रास्ते हैं।
0: राजा महेंद्र की धार्मिक सोच के केंद्र में एक ऐसे ईश्वर का विचार था जो सर्वव्यापी और निराकार है। उन्होंने कर्म कांड और संप्रदायवाद को नकारा और प्रेम के धर्म की वकालत की। एक समय था जब राजा महेंद्र ने अपना नाम पीटर पीर प्रताप रख लिया था, क्योंकि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाइयों के भाईचारे के पक्षधर थे। उन्होंने 1916 में काबुल के बागे बाबर में रिलीजन ऑफ लव नाम की किताब भी लिखी। नवंबर 1929 में अपने सर्कुलर वर्ल्ड फेडरेशन में अपनी धार्मिक मान्यताओं के बारे में वो लिखते हैं,
4: एक रचनात्मक शक्ति, प्रकृति या ईश्वर ने हमारे ब्रह्मांड, ग्रह और मानवता की रचना या विकास की शुरुआत की। प्रकृति के नियम रचना की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी का घूमना और विकास की प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। विचार लोगों को अपनी तत्कालिक इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी धर्म उन विचारों का संग्रह है जो मानव जाति को मानवीय कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए हैं। मेरा सुझाव है कि धर्म का उद्देश्य हमारे आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखना है। जो लोग धार्मिक मामलों पर विवाद करते हैं, वे शायद ही कभी सच्चे धार्मिक होते हैं। मेरा विश्वास सभी धर्मों की एकता को दर्शाता है। मेरा विश्वास प्रेम का धर्म है।
0: राजा महेंद्र प्रताप के पड़पोते चरत प्रताप सिंह कहते हैं,
5: वे राजनेता से ज्यादा एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। देश का पहला टेक्निकल स्कूल खोलने के लिए उन्होंने अपना घर दे दिया था। इससे वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना हो सकी। तब उनकी उम्र महज 23 साल की थी। महात्मा गांधी ने भी उनके बारे में 28 मार्च 1928 के यंग इंडिया के अंक में लिखा था।
1: जानती हो बन्नो, राजा महेंद्र को 8 भाषाओं का ज्ञान था। भले ही वे एक छोटे राजघराने से थे, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था।
2: सच कहूं दीदी, इनकी कहानी सुनकर अंदर से बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा देश यूं ही महान नहीं कहलाता।
0: राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को अलीगढ़ के मुरसान राजघराने में हुआ था। बाद में उत्तर प्रदेश के हाथरस के राजा हर नारायण सिंह ने उन्हें गोद ले लिया और अपना वारिस घोषित कर दिया। राजा महेंद्र को कम उम्र से ही राजनीति में दिलचस्पी थी। उन्होंने 1911 के एंग्लो बाल्कन युद्ध में भी हिस्सा लिया था। महेंद्र प्रताप के पिता और दादा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो उस समय मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जानी जाती थी, के संस्थापक और महान शिक्षाविद सर सैयद अहमद खान के बेहद करीबी माने जाते थे। कहा जाता है कि उनके परिवार ने इस यूनिवर्सिटी को कुछ जमीन दान में दी थी, जबकि कुछ जमीन लीज पर दी थी। राजा महेंद्र प्रताप खुद भी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के छात्र रहे थे। उनकी इसी विरासत को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने 1979 में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद रखते हुए साल 2021 में उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राजा महेंद्र प्रताप का मानना था कि परंपराओं का आंख बंद करके पालन करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हृदय का शुद्ध होना है। उन्होंने जो सिखाया उसे खुद अपने जीवन में करके भी दिखाया। वो कहते थे कि आध्यात्मिक प्रेम एक बड़ी जोड़ने वाली शक्ति बन सकता है। हमारा राष्ट्रगीत हमारा की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और महान क्रांतिकारी की कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मन की आंखों से प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूं। आमतौर पर मुझे आप हमराही में सुनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे खास लोग मिल जाते हैं जो वाकई में जिनके लिए हम कह सकते हैं कि मन की आंखों से उन्होंने कुछ किया है। आज ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी कहानी अपने आप में बहुत अलग है। और आप सब जानते ही हैं, हम इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए समाज में एक अलग अपना एक मुकाम हासिल किया है और अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। न सिर्फ मेहनत के बल पर ये सब किया है, बल्कि उनका जीवन कई लोगों को प्रेरित भी कर सकता है, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए मन की आंखों से के इस विशेष कार्यक्रम में हम ऐसे ही लोगों को लेकर के आते हैं। आज मेरे साथ रीना भाटिया जी जुड़ी हैं। रीना भाटिया जी ब्लाइंड हैं और बहुत देर बाद इनकी आंखों की रोशनी गई। कई सारे हादसे हुए इनके साथ, बावजूद इसके इन्होंने दोबारा से खड़े होने का, उठने का, अपना एक अलग स्थान बनाने का निर्णय लिया और आज ये सफलतापूर्वक वो सब कर रही हैं जो ये करना चाहती थी। ये सीए हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। चलिए अब रीना जी से ही समझेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा। रीना भाटिया जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: तो संदीप जी
0: जी, श्रोताओं, आपने रीना जी की आवाज सुनी। आप रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जी रीना जी, तो हमारे सुनने वालों को बताइए जरा आपके बारे में कि आपको आंखों की तकलीफ कैसे हुई और जब इतने दिनों बाद, यानी इतनी लगभग 15-16 साल की एज के बाद ब्लाइंड हो, तो फिर कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं? आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया जरा बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जैसे संदीप जी, मैं सेकेंड ईयर बीकॉम ऑनर्स हिंदू कॉलेज से कर रही थी जब ऑयल मिक्सिंग ऑयल ड्रॉप्सी का एपिडेमिक चला था, जिसमें ऑयल में कुछ लेड कंटेंट्स मिक्सिंग थी। मैं उसका विक्टिम थी, जिसकी वजह से मेरी सिर्फ विजन के अलावा पूरा बॉडी मूवमेंट पैम्पर हुआ था, आवाज चलना सॉर्ट ऑफ।
0: रीना जी जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए, शायद बहुत लोगों को समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि अचानक से सेकेंड ईयर बीकॉम में जब आप थे हिंदू कॉलेज में, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया?
1: बेसिकली 1999 में कुछ ऑयल में मिक्सिंग चली थी, धारा और मस्टर्ड ऑयल में, जिसका अच्छा, पूरे इंडिया में इफेक्ट हुआ था। मैं उसमें से एक विक्टिम थी, जिसकी वजह से
0: मिलावटी ऑयल, मतलब बहुत ज्यादा लोग खाने लग गए थे ऐसा?
1: हाँ जी, कुछ धारा ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में कुछ लेड कंटेंट्स की मिक्सिंग हुई थी। लेड कंटेंट्स बेसिकली पेस्टिसाइड्स में पाए जाते हैं, वो मिक्स हुआ था, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोगों को सफर हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान तक गई थी। और उसी का एक विक्टिम मैं थी, जिसकी वजह से जो जब हॉस्पिटल पहुंचाया

0: यार डॉक्टर को पता नहीं था कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, और जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया वो पूरा रिएक्ट कर गया बॉडी में, जिसकी वजह से मैं कोमा में कोमा में चली गई थी। 2.5 महीने तक कोमा में रहने के बाद जब मेरे को वापस होश आया, तब तक सिर्फ ना मेरी विजन, उसके अलावा मेरी आवाज, बॉडी मूवमेंट पूरा इम्पैक्ट हो चुका था। बेसिकली ब्रेन का एक हिस्सा डेड हो चुका था, जो बॉडी कोऑर्डिनेशन को इम्पैक्ट कर, कोमा के बाद 1.5 साल टोटल सब सीखा, बोलना चलना जैसे बच्चा सीखता है, घुटनों के बल चल के, फिर आगे उंगली पकड़ के चलना, मैं अपने सहारे से बैठ नहीं पाती थी। खाना खाना या सब कुछ पूरा डिपेंडेंट था, खुद से कुछ भी नहीं कर पाना। विजन एक पार्ट था उसका। उसके ये मैं 6 साल घर में रही, फैमिली का बहुत सपोर्ट था, उन्होंने बहुत इनकरेज किया, मेडिकेशन होता रहा, पर डॉक्टर्स ने कहा ज्यादा सिर्फ इसका प्रॉपर कोई मेडिकेशन नहीं है, न्यूरो सिस्टम में सिर्फ इसका एक्सरसाइज फिजियो वगैरह से इम्पैक्ट होगा। उस ट्रीटमेंट से 6 साल घर में रहने के बाद जब मैंने थोड़ा सा रिज्यूमिनेट किया, तो उसके बाद सोचना स्टार्ट किया कि आगे क्या, क्योंकि एकदम से फ्रॉम कॉलेज लाइफ से जहाँ पढ़ रही हूँ, चल रही हूँ अच्छे से, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो उससे बिल्कुल टोटल डिफरेंट लाइफ, जहाँ पे आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हो, टोटल घर पे हो, तो वो समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिससे बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी आ रहा था। पर फैमिली का बहुत सपोर्ट था, तो उन लोगों ने सोचना शुरू किया साथ में क्या हो सकता है। उसी दौरान मुझे दूरदर्शन पे एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ब्लाइंड लड़की अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी, अपनी ट्रेनिंग्स की, ब्लाइंड लोगों के लिए भी ट्रेनिंग्स और एजुकेशन फैसिलिटीज होती है, जिससे वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। वो पता चला कि 2006 में मुझे हौस का नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड स्टडीज एंड डिसेबिलिटी स्टडीज का पता चला, और मैं वहाँ पे आई जहाँ पे मेरे को बेसिक ट्रेनिंग्स, करियर काउंसलिंग्स और हायर एजुकेशन की गाइडेंस दी गई कि आगे क्या कर सकते हैं, और मेरे को वापस से कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्रेल मोबिलिटी, कुकिंग, ये सब ट्रेनिंग्स में डाला गया। इसके साथ में क्योंकि मेरे को पढ़ाई का शौक था, वापस मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की ओपन लर्निंग से, जिसके साथ में मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे भी कॉमर्स करना था, कार की कॉलेज में सिटिंग क्लासेस लेने स्टार्ट की, वहाँ पे मैं जाती थी, क्लास लेती थी, एंड उसके बाद वापस अपने सेंटर आके अपनी रूटीन ट्रेनिंग्स को पूरा करती थी, जिससे मोबिलिटी में भी हेल्प हो। ग्रेजुअली सेकेंड ईयर में जब मैं कॉलेज में आई, तो मुझे लगा कि ये एनफ नहीं है, मुझे सीए करना है वापस से, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम हुआ था ड्यूरिंग माई इंडो कॉलेज, मैं अपने सीए का एंट्रेंस क्लियर किया था, तो मुझे इच्छा थी कि मैं वापस सीए परस्यू करूं, तो मैंने अपनी सीए की स्टडी साथ में शुरू की। एनजीओ की वजह से वॉलेंटियर सपोर्ट सिस्टम अच्छा था, कॉलेज के बच्चे आके पढ़ाते थे, और मैं रिकॉर्डिंग सुन के अपने वॉलेंटियर्स के सपोर्ट से और अपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग की हेल्प से मैं अपना बीकॉम और सीए इंटर पास कर पाई। तो कॉलेज के टाइम में प्रॉब्लम्स आई, जैसे मैं सिटिंग क्लासेस लेती थी, हमारी एक टीचर उतनी सेंसिटाइज नहीं थी, उन्होंने कहा क्या ही फर्क पड़ता है, ब्लाइंड हो, रिकॉर्डिंग हम अलाउ नहीं करते, क्लास में लेक्चर्स रिकॉर्ड करना हम अलाउ नहीं कर सकते। दो काफ़ी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, पर ये एक टीचर थी, उन्होंने कहा नहीं आप एग्ज़ाम भी हम ऐसे नहीं राइटर नहीं दे पाएंगे, और वैसे आपका मेन ओपन से तो आपको कॉलेज के एग्जाम इंटरनल एग्जाम मैटर नहीं करते। थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगता था। सबसे ज्यादा इशू आता था क्योंकि मेरे को थोड़ी सी मोबिलिटी का इशू भी था, बिकॉज ऑफ वो जो मेरी मोबिलाइजेशन चली गई थी, पैरालिटिक सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो जब मैं रोड पे चलती थी तो काफी लोगों को लगता था कुछ ड्रग्स ले रखे हैं, तो काम पूछते हैं कि आपने कुछ नशा वशा कर रखा है क्या। तो वो थोड़ा सा
1: कहाँ की बात
0: डिप्रेसिंग
1: बता रहे हैं, कहाँ पे ऐसा लगता था?
0: था। जैसे मैं सड़क पे चलती थी क्योंकि वॉक
1: अच्छा
0: नॉर्मल नहीं थी, तो कई लोग आके
1: अच्छा
0: रोक के पूछते थे, मैडम आपने ड्रग्स ले रखे हैं। और इसी चक्कर में कई लोग को लगता था हाँ यंग लड़की है नशे में है, तो सॉर्ट ऑफ इट इशू को नेगेटिव। पर कभी कभी तो लगता था कुछ नहीं करना, पर मेरे पेरेंट्स और शालिनी का नाम मैम जो डायरेक्टर थी वो हमेशा कहती थी लोगों से कब तक डरोगे, बाहर तो निकलना है, जिंदगी तो जीनी है। उसके बाद उन्होंने मेरा पहला प्लेसमेंट नैप सेंटर के थ्रू हुआ, एक लॉ फर्म में रियल जॉब, कि कब तक सेंटर में रहोगे, बाहर निकलो, लोगों के बीच निकलोगे तो समझ आएगा जिंदगी कैसी जीनी है, आगे सेल्फ भी तो एम्प्लॉयमेंट होना है। तो वहां पे मैंने लॉ फर्म में एज ए लीगल रिसर्चर की जॉब पार्ट टाइम ज्वाइन की। अब पहले अपनी सीए की पढ़ाई करती रही। सीए एंट्रेंस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें सीए के साथ ट्रेनिंग करनी होती है, फिजिकल ट्रेनिंग, किसी सीए के अंदर आर्टिकल शेप। मोस्ट ऑफ दी सीएस ने मना कर दिया कि एक ब्लाइंड पर्सन आर्टिकल शेप कैसे करेगा, हम नहीं दे सकते। समझा के बहुत चैलेंजेस आए इसमें, बट फाइनली एक सीए फॉर्म में मैंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन की, आर्टिकल शेप। बाकी सारे आर्टिकल्स की तरह ट्रेवल करती थी और कोशिश करती थी, क्योंकि काफी चीजें हमें नंबर्स हार्ड कॉपी में होते हैं, फिगर्स को वैलिडेट करना होता है। तो मैं किसी वॉलेंटियर के सपोर्ट से या अपने कुलीग के सपोर्ट से उसको करती थी वो काम। पर एक दिन एक पार्टनर को पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो उन्होंने कहा आर्टिकल शिफ्ट नहीं कर सकते आप, ऐसे हम क्लाइंट पे तो नहीं भेजेंगे आपको। तो ये चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं, पर ठीक है। इसी तरह जैसे कुछ लोग मिलते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, वैसे मल्टीपल लोग मिलते हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं। तो इसी तरह मुझे बहुत सारे लोग मिले जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, इनकरेज किया कि नहीं आपको करना है आगे, तो खुद ही बढ़ना है। मेरी सीए इंटर्नशिप में हमारे एक सर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, रीना आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है, लोगों को मेंटल डिसेबिलिटी होती है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि किसी में कोई कमी हो के भी कोई कुछ कर पा रहा है, आपकी जगह खुद ही बनानी है। तो बस वो चीज पकड़ के आगे बढ़ना शुरू किया। फिर ग्रेजुअली सीए के फॉर्म्स में इंटर्नशिप के बाद मेरे को जॉब का सोचना स्टार्ट किया। इन बिटवीन बहुत सारे मैथ के प्रोजेक्ट्स में मैं जुड़ी रही, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैम के साथ हमारे एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जिसमें ऑल ओवर इंडिया में 100 आईटी लैब सेट करनी थी। उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ट्रेवल किया बहुत सारे स्कूलों में अक्रॉस इंडिया, सब में ट्रेनर्स जो लोग ट्रेनिंग देनी थी बच्चों को उनको ट्रेन किया हमने, उनको अवेयरनेस सेशन लिया। इस तरह की एक्टिविटीज में मैं जुड़ी रही और ग्रेजुअली मैंने अप्लाई किया अर्नस्ट एंड यंग, एक सीए फर्म है, मल्टीनेशनल कंपनी, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में मानी जाती कंसल्टेंसी के लिए, टास्क के लिए। वहां पे मैंने ज्वाइन किया 2012 में, टैक्स की सबसे बड़ी कंपनी है एमएनसी, जहाँ पे मैं आज भी जॉब करती हूँ। मैंने को अपॉर्चुनिटी मिली टू ज्वाइन एज अ ट्रेनी 2012 दिसंबर में। क्योंकि वो भी श्योर नहीं थे कि मैं

0: रियली अंडरस्टैंड कि मेरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरी कुलीग्स ने, सीनियर्स ने। उस सपोर्ट से उन्होंने एक जॉब्स का लाइसेंस लिया और आज की डेट में हमारी इंडिया कंपनी में, ईवा इंडिया में, ऑलमोस्ट 5 to 6 प्लांट पीपल काम कर रहे हैं एंड हायरिंग मोर।
1: अच्छा, तो कुछ चीजें हैं रीना जी जो छूट रही हैं, जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को पता चले। एक तो मुझे बताइए कि बेसिकली आप दिल्ली में ही रहते थे शुरू से ही बाय बर्थ?
0: मैं शुरू से दिल्ली में नहीं रहती थी बाय बर्थ, मेरा होम टाउन हिमाचल है। मेरे फादर एक प्राइवेट होटल इंडस्ट्री में जॉब करते थे, उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ शिमला से, तो मैं दिल्ली आई जब मैं 10th क्लास में थी। तो पर जब मुझे प्रॉब्लम हुआ उस टाइम मैं दिल्ली में ही थी,
1: तब आप
0: क्योंकि
1: अकेले ही थे
0: 10th
1: दिल्ली में?
0: हाँ जी पापा की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। ओबराय क्लार्क करके एक होटल होता है सिविल लाइन्स के पास, उसमें वो मैनेजर प्रोफाइल पे थे, तो हम लोग भी दिल्ली रिलोकेट हो गए थे शिमला से।
1: अच्छा, तो पापा वगैरह सब दिल्ली में रहते थे। आपकी फैमिली में कौन कौन है?
0: मेरी फैमिली में मुझसे बड़ी सिस्टर है, एक ब्रदर है, मेरे पेरेंट्स हैं।
1: अच्छा, और फैमिली में किसी और को प्रॉब्लम इस तरह की रही?
0: नहीं,
1: अच्छा, नहीं है। कि जो दूरदर्शन पे जो आप वीडियो देख रहे थे वो किस लड़की का था?
0: कोई अर्चना नाम सुना था मैंने उस टाइम, दो मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता, क्योंकि वो भी शायद नए भारतीपुरम के बाय बर्थ प्लाइंट बच्चा था कोई, जिसने अपने एजुकेशन नए भारतीपुरम से की थी। तो उसने अपनी वीडियो में बताया कि किस तरह से ट्रेनिंग्स और एजुकेशन के साथ आप अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं, कैसे जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल लाइवलीहुड जी सकते हैं।
1: तो सीए का जो आपने एग्जाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था आपका?
0: नहीं, एंट्रेंस भी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, उसके बाद सीए इंटर में दो ग्रुप्स होते हैं हमारे, तो मेरा पहला ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, सेकेंड ग्रुप इंटर का सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, फिर सीए फाइनल के दो ग्रुप्स होते हैं अगेन, जिसमें एक ग्रुप तो मेरा निकल गया था सेकेंड अटेम्प्ट में, पर उसके बाद जॉब लग गई ईवाई में, तो काफी सालों तक मैं दे नहीं पाई थी। एक दो अटेम्प्ट बीच में ट्राई किया, फिर क्योंकि जॉब के साथ वॉलंटियर सपोर्ट कम था, टाइम कम था, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगा।
1: ये सारे एग्जाम आपने सीए एंट्रेंस से लेकर के बाद में तक जितने भी थे वो सब स्क्राइब के थ्रू दिए या आपने इंडिपेंडेंटली दिए? अच्छा,
0: नहीं, स्क्राइब के थ्रू राधर सीएस एग्जाम देते हुए भी इतना इजी नहीं था। जब मैं इंटर का एग्जाम दे रही थी, बल्कि हमारे साथ मेरे नोन में एक और लड़का था मिलिंद करके, जो वो भी सीए एग्जाम दे रहा था, और उस टाइम सीए के लोग भी इतने सेंसिटाइज नहीं है मुझे लगता है, आज की डेट में मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उस लड़की को उन्होंने ये बोल दिया था, उसके स्काइप की घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो उसको स्काइप चेंज करना था, उन्होंने कहा आप स्काइप चेंज करोगे आप अलाउड नहीं एग्जाम देना, आपका स्काइप इज एज गुड कि आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप राइटर चेंज नहीं कर सकते। एंड उस पर्सन ने सीए ड्रॉप करके लॉक किया है, और सेम इशू मेरे साथ आया था कि मेरे को कैब उन्होंने चेंज करने से मना कर दिया था। रादर मैंने जब सीए अथॉरिटी से मिली कि ऐसा ऐसा स्कूल में ये इशू हुआ, उन्होंने कहा आप लोग तो राइटर के थ्रू पास होने के तरीके होते हैं, तो मेरी एक वॉलेंटियर ने केस किया था पीए इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, जिस केस को मैं जीती थी, और उसके अकॉर्डिंग रूल बने थे कि स्काइप को आप सीए इंस्टीट्यूट राइटर फंड भी देगा और एक डिपॉजिटरी बनाएगा, जिसमें जो बच्चा है स्टूडेंट है सीए का, क्लाइंट बच्चे को चॉइस मिलेगी, वो के थ्रू भी स्काइप अरेंज कर सकता है, पर्सनल कर सकता है, और स्काइप चेंज भी कर सकता है एज पर गाइडलाइंस।
1: ओके। तो रीना जी, जब आपके साथ 1999 में जो हादसा हुआ, उससे पहले भी आपने सीए बनने का ही सोचा था या

0: तब तक कुछ सोचा ही नहीं था।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तब मैंने सीए स्टार्ट करने की सोची थी, एक बार एंट्रेंस दिया था,
0: जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे तब भी आप सीए ही बनना चाहते थे।
1: हाँ जी तभी मैं सीए एस्पिरेंट कर रहे थे।
0: ओके, तो सीए की जो स्टडीज हैं उसमें मतलब आपको उनको पढ़ने में, उसकी तैयारी करने में, मतलब ब्लाइंड पर्सन होते हुए आपको क्या क्या चैलेंजेस रहे उसमें?
1: बेसिकली क्या होता है, स्टडीज में चैलेंज तो आता है बिकॉज हम नंबर्स में डील करते हैं संदीप जी। बेसिकली हम सीए में बहुत सारे सब्जेक्ट में नंबर्स हैं, अकाउंट्स ये मैथमेटिक्स रिलेटेड, तो उसको ईटेक से पढ़ना तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है अपने आप में, क्योंकि जब हम ईटेक से पढ़ते हैं उसको जॉस के साथ, तो वो पहले पूरे कॉलम को पढ़ेगा बजाय हॉरिजॉन्टल पढ़ने के रोज वाइज, और हमारी रिक्वायरमेंट होती है रोज वाइज पढ़ने की, तो ये चैलेंज आता है। और वॉलेंटियर्स के लिए भी नंबर वाइज समझाना, क्योंकि कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग है क्या कैसे जाना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, पर आपकी को ये चैलेंज से एक्सेप्ट करते हुए उसको लेके चलना होता है। कुछ वॉलेंटियर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मेरे को हाथ पे एज अ ड्राइंग बना के अपनी उंगली से किस तरह से ये चल रहा है, ऐसे प्रेजेंटेशन होनी है आपके, आपको अपने राइटर को इस तरह समझाना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में बनाएं, वो मेरे लिए थोड़ा इजी हुआ।
0: अच्छा, तो रीना जी बताइए, ये सीए में मतलब जो लोग सीए का एग्जाम देना चाहते हैं या जो सीए बनना चाहते हैं, तो कौन कौन से पेपर्स इसमें होते हैं, कौन कौन से बुक्स इसको इनमें पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए।
1: जरूर, बेसिकली सीए में आपकी अगर एंट्रेंस लेवल पे बात करते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और स्टैट्स होता है, बेसिक लॉ होता है, बेसिक बहुत बेसिक, और अब करंटली उन्होंने फिर से सिलेबस चेंज किया है, जिसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बेसिक लेवल पे क्या लिया है। जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो ये दो एग्ज़ाम मेंटेड होते, और सबसे बड़ी बात 50% स्कोर करना मस्ट होता है। वैसे उसके बाद आपको इंटर लेवल के एग्जाम होते हैं, जिसमें मेरे टाइम में 8 पेपर्स थे, जिसमें अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, बिजनेस स्टडीज ये सब एग्जाम होते थे। एंट्रेंस में एक इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम होता है इसमें एंट्रेंस लेवल पे, और ये सब एग्जाम के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट रहता है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, ये आपको एंट्रेंस लेवल पे होता है। इसमें भी आपको पर पेपर आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ता है, पर ओवरऑल आपको 50% स्कोर करना पड़ता है। अगर आपकी किसी पेपर में 40 से कम आ गए और या एग्रीगेट में 50 से कम आ गए, तो आपको पूरा ग्रुप वापस रिपीट करना पड़ता है, सारे के सारे चारों एग्जाम, एक्सेप्ट अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 60 से ऊपर आए, वो वाला एग्जाम आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ता। इसी तरह फिर इसी तरह फाइनल में फिर दो ग्रुप्स होते हैं। अब जो नए सिलेबस आए उसमें इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स कम कर दिए हैं, जैसे आप एक ओपन बुक एग्ज़ाम हो गया जिसमें एक सब्जेक्ट रादर दो सब्जेक्ट्स हटा दिए इन्होंने, और उसकी जगह एक ओपन बुक एग्ज़ाम कर दिया, और अदरवाइज उसमें भी आपका कंप्यूटर टेस्टिंग के एग्ज़ाम होता है, अकाउंट्स है, ये ऑडिट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये मस्ट एग्ज़ाम है।
0: रीना जी बताइए कि ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स आप बता रहे हैं, लगभग ऐसा लग रहा है सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, है ना? तो आपने प्रीलिम्स में कौन सा स्क्राइब लिया था?
1: हमारी कंडीशन जो प्रिस्क्राइब्ड है, आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट ले सकते हो, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो इंटर लेवल हो चाहे फाइनल लेवल हो, सी ए सी एस सीधे अपने इनमें से किसी में एनरोल नहीं होना चाहिए।
0: तो ऐसे में है ना, ऐसे में ये पेपर सॉल्व करवाते समय आपको मुश्किल नहीं आई? मतलब उसको तो कुछ भी समझ नहीं थी सीए की, या इन जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में भी जरा भी अंदाजा नहीं था, तो पूरा पेपर आप ही को, खैर वैसे भी सॉल्व करवाना होता है, ये भी आप ही को सॉल्व करवाना था। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि स्क्राइब के साथ बैलेंस बनाने में कैसे मतलब आप सफल हुए?
1: बेसिकली वही, इस चीज के लिए मैं क्रेडिट देती हूँ अपने वॉलेंटियर्स को, जिन्होंने, जैसे मैं बता रही थी कि मेरे को हाथ, मेरे हाथ पकड़ के समझाते थे कि आपको अपने रेडियो के ये बताना है कि इस फॉर्मेट में टेबल बनेगा, इतने कॉलम्स इस तरह से लिखना है उसको, कौन सी चीज कौन सी साइड में आएगी, लेफ्ट में राइट में, इस तरह से बताए। वो आपको अपने माइंड में पिक्चर इमेजेस बनानी पड़ेगी जैसे आपके वॉलेंटियर्स बताती जाएं, ताकि आप वही चीज रिट्रेट कर सको अपने स्काइप को।
0: आपको सीए बनाने में मतलब आपके वॉलेंटियर्स का भी बहुत बड़ा रोल
1: यस,
0: है।
1: उन्हीं का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने कोई टेक्निकल कोचिंग्स नहीं ली, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि सीए की कोचिंग्स दो, एक तो दूर दूर होती है, ट्रेवल करना मुश्किल होता है, और ग्रुप में, एक ग्रुप में क्लासरूम में कम से कम 80 to 100 स्टूडेंट्स होते हैं, और आपका टीचर आपको ये व्हाइट बोर्ड पे या प्रोजेक्टर पे बता रहा होता है, और एक बच्चे को बताने के लिए वो स्पेसिफिकली सब कुछ वर्बल नहीं बोलेगा, तो इसलिए मेरे को, मैंने पूरी स्टडीज अपने वॉलेंटियर्स के थ्रू ही की है।
0: आपके वॉलेंटियर्स कौन रहे हैं?
1: मेरे वॉलेंटियर्स कॉलेज स्टूडेंट्स से आईआईटी के स्टूडेंट्स भी रहे हैं, और मेरे एग्जाम इंटर लेवल पे तो सारे एग्जाम 12th के बच्चों ने दिए।
0: अच्छा, अब ये तो रही प्रीलिम्स की बात, फिर मेंस में कौन था आपका स्क्राइब या किस लेवल का
1: सेम
0: था?
1: सेम
0: सेम।
1: बीकॉम ऑनर्स अंडर ग्रेजुएट,
0: ओके
1: रिक्वायरमेंट ही है अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए।
0: ओके, ये रिक्वायरमेंट है
1: हाँ,
0: तो ये अच्छा। तब तक खैर आपने जब दिए तब तो वो तो 2013 वाली गाइडलाइंस भी नहीं आई थी।
1: नहीं, जब अभी की सीए का अपना पी, क्योंकि सीए के अपनी गाइडलाइंस पे ही चलता है, सीए के ऐसी कोई डिफरेंट गाइडलाइंस कोई और फॉलो नहीं करती, सीए के अपने नॉर्म्स से। मेरे केस के बाद सिर्फ ये चेंज हुआ था कि हाँ, राइटर को राइटर फंड मिलेगा, और राइटर आप चेंज कर सकते हो, आज अगर मैं एक राइटर ले जा रही हूँ, नेक्स्ट पेपर में मैं कोई और को ले जा सकती हूँ, पहले जब मैंने अपने इंटर लेवल के एग्जाम दिए थे तो ये अलाउड नहीं था।
0: और मेंस में सबसे ज्यादा मुश्किल कौन से सब्जेक्ट में आई आप?
1: अकाउंट्स,
0: क्यों?
1: अकाउंट्स बेसिकली, एक्चुअली एक तो पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, नंबर आपको एडिशंस बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम लगता है बहुत शॉर्ट हो गया है, दो हमें 1.5 आवर एक्स्ट्रा मिलता है, और उसके अलावा भी लगता है टाइम बहुत शॉर्ट है, और उसमें राइटर की स्पीड, राइटर की अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप बता रही हो पर राइटर क्या समझ पा रहे हैं आपको नहीं मालूम, तो थ्योरेटिकल एग्जाम में तो जो आपने बोल दिया वो उसने लिख दिया एज इट इज, पर यहाँ पे फॉर्मेट्स का है, आपकी पर्टिकुलर फॉर्मेट्स फॉलो होने चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, अगर आपने वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं दिया जो प्रिस्क्राइब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
0: अच्छा, तो अकाउंट्स के लिए स्पेशल आपने क्या किया उसकी प्रिपरेशन करने के लिए?
1: बस वही अंडरस्टैंडिंग इमेजेस का, मेंटल माइंड में इमेजेस बना बना के, ओके इस कॉन्सेप्ट का ये प्रेजेंटेशन है, इसमें इस तरह का लेआउट बनेगा, वही चीजें जो वॉलेंटियर्स से पूछती थी मैं कि इसमें कितने कॉलम्स है, क्या हेडिंग्स है, किस तरह से लिखा गया है, कौन सा आउटर कॉलम है, कौन सा इनर कॉलम है, वो वैसे ही आप जितने क्वेश्चन करोगे आपको वॉलेंटियर्स उतने एड्रेस कर पाएगा, तो उस तरह से समझ के हो गया।
0: कुल मिलाकर के बहुत मेहनत तब तो खैर करनी थी, अभी भी मेहनत कोई कम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है।
1: ये तो हर फील्ड के लिए मुझे लगता है सबके लिए जरूरी है।
0: बैकग्राउंड होना कितना जरूरी है सीए के लिए? कॉमर्स बैकग्राउंड होना कितना जरूरी
1: नहीं,
0: है?
1: ऐसा कुछ बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप अंडरस्टैंड कर पाओ तो आप कैच कर लोगे। जिसको कॉमर्स बैकग्राउंड होगा उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। जब 11th 12th में पढ़ते हैं या बीकॉम में पढ़ते हैं वो कंसेप्ट हेल्प करते हैं आपको। पर ऐसा नहीं है कि अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
0: तो भाई रीना जी सीए बन गए और सारे एग्जाम क्लियर भी हो गए और ईवाई में जॉब भी मिल गई। जॉब
1: हाँ जी,
0: मिलने के बाद क्या क्या मुश्किलें रही आपको?
1: देखो जॉब मिलने के बाद शुरू में तो ऑफिस में ये एक्सेप्टेंस कराना कि हाँ ठीक है आपको विजन प्रॉब्लम है तो आप भी और लोगों की तरह कर सकते हैं, वो एक चैलेंज रहता है। उसके बाद आज की डेट में जो चैलेंज आते हैं कि काफ़ी सारी बड़ी एमएनसी है, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको विजन प्रॉब्लम है, दो उसकी वजह से आती है चीज़ें आपको, वो उस हिसाब से नहीं आती जो एक्सेसिबल हो। चीज़ें नॉन एक्सेसिबल होती है वो आपकी टीम पे डिपेंड करता है। मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे कोलीग्स वगैरह बहुत सपोर्ट करते हैं, तो जहाँ पे उनको लगता है मेरा जॉब सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो मेरे को समझाते हैं कि ऐसा है। दो आज की डेट में 12 साल हो गए मुझे ईवाई के साथ काम करते हुए, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जॉब पे काम कर रही हूँ, तो वो फर्क पड़ता है। आपको हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है विजाविस अपने अदर कोलिग्स के कंपेरेटिवली, क्योंकि आपको मल्टीनेशनल कंपनी में ग्रो करना है, अपने को प्रूव करना है, आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा।
0: अच्छा रेना जी, अभी आपका काम क्या रहता है ईवाई में?
1: मेरा काम है बेसिकली टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स रिलेटेड कंसल्टेंसी में मैं काम करती हूँ, जिसमें हमारा है पीपल एडवाइजरी। इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज इंडिया आते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, उनकी पूरी टैक्स का कंप्लायंसेस इंडिया लॉस के अकॉर्डिंग देखना, स्टार्टिंग फ्रॉम जब वो जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं, उनको इंडिया टैक्स की ओरिएंटेशन देना कॉल होती है, इंडिया टैक्स ब्रीफिंग कॉल। उसके अलावा क्या टैक्स, कितना टैक्स डिडक्ट होना है, प्रोविडेंट फंड कंप्लायंसेस क्या है, और उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में सपोर्ट करना, ये सारा मेरे काम का पार्ट है। फिर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस इशू किया आसानी को तो उसके लिए रिस्पांस बनाना और उसको फाइल करना इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, वो पार्ट ऑफ माय वर्क।
0: ओके। तो रीना जी, चूंकि बात अब आईटी की चल रही है यानी इनकम टैक्स की चल रही है और आप सीए हैं और इतनी अच्छी जॉब पर हैं, इतनी अच्छी कंपनी में, तो मुझे लगता है थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे श्रोताओं को मिल जाए। ये न्यू टैक्स रिजीम क्या है, ये आसान भाषा में समझाइए जरा।
1: बेसिकली अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, दो पहले ओल्ड टैक्स रेजीम में जैसे हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि हम LIC में कंट्रीब्यूट कर दिया, हम प्रोविडेंट फंड में, हमारी कंपनी हमारे कंट्रीब्यूशन लेती है, उस सब का हमें बेनिफिट मिलता है टैक्स के अगेंस्ट। या आपने आज कोई घर खरीदा उस पे इंटरेस्ट पे करें, हाउसिंग लोन पे करें, तो उस सब का बेनिफिट मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सब बेनिफिट्स घटा के जो आपकी इनकम आती है उस पे आपका टैक्स लगता था, गवर्नमेंट ने कहा उसके अब उस सबको ऑथेंटिकेट करना टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल एक चैलेंज बन गया, क्योंकि कुछ लोग फेक क्लेम भी ले लेते हैं। तो टैक्स अथॉरिटीज ने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, आप पुराने रिजीम को फॉलो करो जिसमें ATU मिलता है, जैसे हमें डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है 1,25,000 या 75,000 का, हम LIC प्रोविडेंट फंड वगैरह में कंट्रीब्यूट करते हैं, म्यूचुअल फंड में 1,50,000 का कॉमन कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो हमारी टैक्सेबल इनकम से कम होता है, उसके बाद हमें टैक्स लगता है। हमें एचआरए कंपनी हमें एचआरए अलाउंस देती है, अगर हम रेंट पे करें तो हम एचआरए एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेते हैं। हाउसिंग लोन पे हमें बेनिफिट मिलता है ओल्ड रिजीम में। अब न्यू रिजीम में उन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिया कि जितने आपको इनकम मिल रही है बिना किसी बेनिफिट लिए आप पूरे का पूरे टैक्स को ऑफर कर दो, पर आपके टैक्स रेट हो जाएंगे कम। जैसे ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 लाख की इनकम तक आपका 10% है, 10 लाख 5 से 10 लाख की इनकम तक 20% है, 10 लाख के 30% का टैक्स लगता है। अब न्यू रिजीम में उन्होंने क्या किया कि अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसमें भी अगर सारी इनकम मिला के आपकी 12 लाख से कम बैठ रही है तो जो आपका टैक्स बन रहा है 12 लाख तक वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको 0 टैक्स देना है। तो ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं न्यू
0: न्यू
1: रिजीम में।
0: टैक्स रिजीम में ये तो ठीक है, लगभग सबको मालूम है 12 लाख तक है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, इस तरह के स्लैब हैं। लेकिन इसमें भी हम क्या क्या डिडक्शन करवा सकते हैं, ये बहुत से लोगों
1: इसमें
0: को नहीं समझ में आती है।
1: बेसिकली इसमें ना बहुत लिमिटेड बेनिफिट्स अवेलेबल है। अगर आपको लिव इन कैशमेंट मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रही है जो आपके बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, या आप जॉब
0: बिल्कुल,
1: छोड़ते हैं वो सिर्फ आपको
0: वन
1: डिडक्शन
0: टाइम।
1: का वन टाइम वो मिलता है, अदरवाइज आपको एचआरए का नहीं मिलेगा। अगर आप मेडिकल प्रीमियम दे रहे हैं ये सब कुछ भी आपको अलाउड नहीं है। ईटीओ का डिसेबिलिटी बेनिफिट भी नहीं अलाउड है, तो सिर्फ वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट की सैलरी में से कम होता है। और इसमें ये बेनिफिट है कि आपको एक सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो सबको मिलता है, वो न्यू रिजीम में 75,000 भाई ओल्ड रिजीम में 50,000 का है, तो 25,000 का वहां बेनिफिट आ जाता
0: और इंश्योरेंस में
1: है। इंश्योरेंस वगैरह को कोई डिडक्शन नहीं मिलता न्यू रिजीम।
0: ओके, ठीक है। तो रीना जी, कभी ईवाई को छोड़ के कहीं और स्विच करने का नहीं सोचा आपने?
1: अभी तो नहीं, क्योंकि मेरे को सोशल वर्क का बहुत शौक है। सबसे अच्छी बात कि हमारी कंपनी एक एनजीओ एक्टिविटीज रन करती है जिसमें एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी चॉइस से पार्टिसिपेट कर सके, तो मैं उसका भी पार्ट इन्वॉल्व हूँ। उसमें रिपल्स इंडिया और रिपल इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम वीकेंड्स पे अपना टाइम निकाल के स्कूल जाते हैं, बच्चों को गाइड करने, अंडर प्रिविलेज को करियर काउंसलिंग देने या प्लांटेशन ड्राइव, तो मैं इस तरह की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हूँ। प्लस मुझे लगता है एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई है और जो मेरी नीड्स है मिल कंप्लीट हो रही है, तो अभी तो नहीं सोचा। लॉन्ग रन में जरूर इच्छा है कि मैं ईवाई छोड़ के वापस ये सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ फुली, जिसमें मैं अपना पूरा कंट्रीब्यूशन सोशल वर्क की तरफ दे सकूँ।
0: ओके, तो यानी जॉब के साथ साथ सोशल वर्क भी हो रहा है ईवाई के साथ, ये एक आपको अच्छी लगती है ये बात।
1: हाँ
0: कभी
1: जी।
0: अपना खुद का फर्म खोलने का नहीं सोचा आपने?
1: नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा इश्यू रहता है जब आप एक तो नॉर्मली भी सीए फॉर्म जब आप खोलते हो लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर जीतना बहुत आसान नहीं होता। आजकल इतनी सीए फॉर्म्स के लिए कंपटीशन बहुत हाई है, खास तौर से जब आपको विजन प्रॉब्लम होता है तो लोग फाइनेंशियल नंबर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते आप पे कि आप कर पाओगे ठीक से उनका काम, तो वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना बहुत टाइम लेता है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको कंटिन्यूटी नहीं रहती कि आपके पास फाइनेंशियल फ्लो बना रहे, और मुझे लगता है फाइनेंशियल फ्लो की डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आपको थोड़ी सी लिमिटेशंस हो।
0: आज आपकी ग्रोथ को देख के फैमिली खुश है?
1: बहुत ज्यादा उन्हीं के सपोर्ट और उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। मेरे पेरेंट्स शायद मैं कभी ये करेज नहीं कर पाती घर से निकलने का, अगर मेरे पेरेंट्स मोटिवेट नहीं करते, मुझे सपोर्ट नहीं करते।
0: रिया जी, जो आपको प्रॉब्लम हुई थी उस समय डायन

0: 1999 में। अभी आईज इफेक्टेड हैं आपकी, और अभी और भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं
1: हाँ
0: आपको, या
1: जी,
0: अभी सब ठीक है?
1: देखिए मेरे स्पीच में फिर भी थोड़ा सा इशू है, नॉर्मल स्पीच से विज़विज़, और थोड़ा सा मुझे मोमेंट का इशू है, नॉर्मल थोड़ा सा मोमेंट वॉक में हिला रहे हैं, जैसे स्मूथ नॉर्मल इंसान चलता है, चाहे विजन इम्पेयरमेंट हो तभी मुझे थोड़ा सा वॉक का इशू रहता है, बैलेंस का इशू।
0: यानी कुल मिला के पूरी तरह से मतलब वो ठीक नहीं हुए आप उसमें।
1: ये कह सकते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट 80% बेटर हूँ, क्योंकि उस लेवल पे मैं जहाँ बिल्कुल खुद के सहारे से बैठ नहीं सकती थी, आज की डेट में मैं खुद के सहारे से ऑफिस आती हूँ, जाती हूँ, अपने आप अपना काम कर रही हूँ, इंडिपेंडेंटली रह रही हूँ, अपनी कुकिंग वगैरह सब खुद करती हूँ, तो उस लेवल से आई फील काफ़ी बेटर हूँ।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कुल मिला के अब आप इन फ्यूचर मतलब टोटली सोशल वर्क ही करना चाह रहे हैं?
1: ये हाँ, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ मिला है सोसाइटी से, मेरे वॉलेंटियर से, तो मेरा इंक्लिनेशन है शुरू से कि मैं वापस कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और सोसाइटी को वापस कुछ दे पाऊँ।
0: बहुत अच्छी बात। अच्छा, लोग आपसे गाइडेंस लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कैसे?
1: मेरे को वैसे भी काफ़ी लोग कॉल करते हैं, तो आप, मैं अपना नंबर बता सकती हूँ, वरना मेरी ईमेल आईडी teenabhatia2@gmail.com, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं।
0: जिसमें आप कंफर्टेबल हैं तो आपकी ईमेल आईडी हम बता देते हैं, reenabhatia28। हाँ
1: teenabhatia2@gmail.com।
0: अच्छा, reenabhatia2, ओके,
1: हाँ जी
0: REENABHATIA है ना?
1: हाँ जी
0: ओके, RENABHATIA2@gmail.com।
1: बाकी आप मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं,
0: बताइए,
1: 9971931354
0: 9971931
1: 31354।
0: 354। तो श्रोताओं, अगर आप रीना जी से CA के बारे में या इनकम टैक्स के बारे में कोई भी आप अगर गाइडेंस लेना चाहें तो कॉल करने का कोई समय?
1: ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कभी ये होता है कि मैं ऑफिस में हूँ तो मैं कॉल उठा के बोल देती हूँ कि इस समय बात नहीं हो पाएगी, अब मैं आप वापस उनको कांटेक्ट कर लेती हूँ।
0: ओके, तो श्रोताओं आप ईमेल पे भी बने जा तक तो आप ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए रीना जी को, reenabhatia2@gmail.com। और अगर आप कॉल भी करेंगे तो अगर रीना जी फ्री हुई तो आपको जवाब देंगी, अदरवाइज नहीं देंगी। नंबर एक बार रिपीट कर देते हैं रीना जी,
1: 9971931।
0: 9971931354। ओके, तो अब रीना जी जॉब के अलावा अभी इन दिनों में क्या क्या करती हैं आप, क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या क्या पसंद है आपको, कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हैं आप?
1: मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं बीच में ट्रैवल करती हूँ लोकल नियर बाय प्लेसेस में फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा मैं एक हमारे क्रिकेट फॉर ब्लाइंड वीमेन द मर्तनम ट्रस्ट के साथ मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ, ब्लाइंड गर्ल्स को क्रिकेट ऑन द ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मोटिवेशन सपोर्ट, खुद खेलती नहीं हूँ पर उनके साथ इन्वॉल्व रहती हूँ। इसके अलावा लैब की कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे अभी भुवनेश्वर में उड़ीसा में फेबररी में गवर्नमेंट का एक जॉब फेयर आया था, उसके लिए मैं डिस्कशन के लिए गई थी, तो इस तरह के कुछ कुछ सोशल वर्क में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। पर्सनल में मुझे ट्रैवल और कुकिंग का शौक है,
0: सब जगह ट्रैवलिंग अकेले करते हैं रीना जी?
1: मोस्टली बाकी कुछ जगह फ्रेंड्स के साथ, जैसे मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह का शौक है तो फ्रेंड्स के साथ जाके रिवर राफ्टिंग, उसमें दो वो लोग अलाउ नहीं करते पर ठीक है फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उनके साथ पैराग्लाइडिंग वगैरह इन सब एक्टिविटीज़ में मुझे शौक है, तो इसमें इन्वॉल्व रहती हूँ।
0: रीना जी आपकी तरह जो लोग किसी परेशानी में हैं, जिनको लगता है कि बस अब लाइफ खत्म हो गई है, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगी आप?
1: मैं कहूंगी लाइफ कभी खत्म नहीं होती, हर अंधेरी के बाद एक रोशनी चलती है, हमें सिर्फ हिम्मत हौसला देके आगे बढ़ना और अपनी हिम्मत बना के उन चुनौतियों को का सामना करने की जरूरत है। रास्ते अपने आप खुल जाएंगे और कारवां अपने आप बन जाएगा।
0: क्या बात है, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, कारवा अपने आप बन जाएगा। तो रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, और आपके लाइफ एक्सपीरियंस से इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स को बताने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, आप जो भी करना चाहती हैं वो सब कर पाएं, सक्सेस मिले और ज़्यादा आपको लाइफ में, हम यही आपके लिए विशेष देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब श्रोताओं।
0: तो श्रोताओं, ये सुना आपने प्रोग्राम मन की आंखों से रेडियो मधुबन पर। आप सब रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही हम नई नई शख्सियतों से आप सबको रूबरू करवाते रहेंगे, ताकि अगर आप कहीं हिम्मत हार रहे हैं, आप कहीं डगमगा रहे हैं, आप अगर कहीं चलना शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी रास्ता मिल जाए।
1: जी।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: मना करते हैं कार्यक्रम में, आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो अवि शर्मा जी हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं और बड़े ही क्या कहते हैं, ज्ञानी भी हैं और खास प्रायोगिक भी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं, मल्टी टैलेंट व्यक्ति हैं। निश्चित तौर पे आपने प्रधानमंत्री के साथ इनको बात करते हुए देखा होगा टीवी पर, और बहुत सारे ऐसे हमारे कलाकार हैं जिनसे आपने मुलाकात की, और सभी लोग जो हैं आपकी बातों से, आपके कार्य से बिल्कुल प्रभावित है, और जो एक बार आपसे मिलते हैं वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे इस प्रोग्राम को भी जो देखेंगे सुनेंगे आगे भी देखेंगे, तो उन सभी को आपसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और मुझे लगता है कि खास जो बच्चे देखने वाले हैं उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी वंडर बॉय अवि शर्मा जैसे बने। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुझ पर बातें मिलाकातें कार्यक्रम में। ओम शांति।
1: जी ओम शांति। नमस्कार। सर्वप्रथम तो सारे ही दर्शक जितने भी अभी हमें दर्शकगण देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, और आप सभी ने मुझे इतने प्यार से यहाँ पर इनवाइट किया। इस मधुबन बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम है, यहाँ मुझे इनवाइट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी, अवि शर्मा के स्वागत में हमारे साथ हिमाचल से संतोष जी आए हुए हैं, आर्टिस्ट। और संतोष जी, मैं चाहूंगा कि अवि शर्मा का एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ स्वागत भी आप करें।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति।

तेरी अपने भगवन को मरिया की मेरी आंखें देख कर अपने भगवन को देख कर अपने भगवन को।

0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच संतु जी, बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ आपने स्वागत किया है और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग
2: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मंच समर्पित है उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा और प्रयास आज देश के करोड़ों बच्चों के लिए उदाहरण बन रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। शैक्षिक उपलब्धि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है मास्टर अवि शर्मा, उम्र 12 वर्ष, इंदौर, मध्य प्रदेश, वंडर बॉय के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेखक, प्रेरक वक्ता, वैदिक गणित के सबसे युवा संरक्षक, सबसे कम उम्र के समाचार एंकर और अभिनेता।
1: ओम शांति। चलिए रवि शर्मा, मैं चाहूंगा कि आज वो किस तरह से आपको इतनी सारी जो है कार्य करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिला और कहाँ से ये शुरुआत हुआ, क्योंकि आप 12-13 साल के आप हैं तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में किसी ना किसी व्यक्ति का या फिर किसी ऐसे कोच या कोई ऐसे गुरु का साथ मिला होगा आपको, जो आपने इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से एक्वायर किया और लोगों के बीच में रिप्रेजेंट किया। जी
3: जी सर, प्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि संतोष सर, आपने बहुत ही सुंदर यह गीत गाया प्रभु श्री राम का और सच में बहुत ही आनंद आया और आपके कंठ में साक्षात माता सरस्वती ही विराजती है।
0: थैंक यू।
3: बात है मैं इतना सब कैसे कर पाता हूँ, तो देखिए मैं तो सब मानता हूँ भगवान का ही आशीर्वाद है कि मैं इतने मतलब समय से मैं इतनी कार्य शक्ति से यह सारी चीजें कर पाता हूँ, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में, रसो अम्पस कौंते या प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्वेदेशु शब्द खे पौरुषम ऋषु, कि वेदों में ओंकार वह है, सूर्य चंद्र का प्रकाश वह है, आकाश में ध्वनि वह है, पानी में स्वाद वह है, तथा मनुष्य में जो सामर्थ्य शक्ति है, जो कार्य शक्ति है, वह भी ईश्वर है। इसीलिए ही मैं मानता हूँ कि जितनी भी मुझ में कार्य शक्ति है ये सब भगवान की वजह से ही है और मैं इसका पूरा श्रेय भी उन्हीं को देना चाहूंगा। जहां तक बात है कि मुझे जीवन में कौन मोटिवेट करता है, तो भगवान कृष्ण मुझे जीवन में बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं, बहुत ज्यादा मुझे प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो कही गई श्रीमद् भगवद गीता है उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है और हर इंसान को अपने जीवन में भगवत गीता से प्रेरणा जरूर ही लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा कि भगवत गीता जो है एक बहुत ही अच्छा जो हम सभी के लिए क्या कहते हैं ग्रंथ है और भगवान का बताया हुआ मार्ग है जिसे हम पढ़कर अपने जीवन में मोटिवेशन ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपने उसको सुनकर पढ़कर जो है अपने जीवन में मोटिवेशन। अच्छा, जो बाल्मुखी रामायण आपने लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे आपको संकल्प आया, किस तरह से वो चीजें आपने बनाई।
3: जहाँ तक देखिए बात है वाल्मीकि रामायण की, तो हम सभी को लॉकडाउन 2020 का समय याद है जब सब कुछ बंद हो गया था, एकदम से सब कुछ लॉकडाउन हो गया था और उस समय टीवी पर रामायण प्रसारित की गई थी। तब रामायण में मैंने हालांकि रामायण पहले अपने माता पिता से सुनी थी, पढ़ी हुई थी, परंतु जब मैंने रामायण को देखा टीवी पर रामानंद सर, तब मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि कहा जाता है हम देखकर ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट। तो जब मैंने देखा उसको तब मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला और मुझे लगा कि भगवान राम जी का इतना सुंदर चरित्र है लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है। तो इसीलिए ही फिर एक दिन माँ सरस्वती ने मुझे दर्शन देकर मेरे स्वप्न में इस रामायण का मुझे पहला छंद दिया और उसी छंद को मूल बनाकर मैंने 250 छंदों में पूरी इस बाल्मीकि रामायण की रचना की।
1: क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए आपके लिए ये क्लैपिंग तो बनता है,
3: बहुत बहुत
1: माँ का जो दर्शन हुआ और आपने उन चीजों को बहुत सुंदर तरीके से 250 छंद में आपने वाल्मीकि रामायण को बनाया। तो अब इन सारी चीजों को बनाते बनाते काफी अलग अलग चीजें भी लिखी होगी, तो और कौन कौन सी चीजें आपने लिखी हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
3: जी फिलहाल तो पहले मैं अपनी भगवत गीता पर एक बुक है उस पर अभी कार्य चल रहा है, और दूसरा मुझे ऐसे लिखना तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ मैं वीडियोस भी साथ में बनाता हूँ, बट मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखता हूँ, और एक मैगजीन है उसमें इंदौर पोस्ट करके, उसमें भी मैं साथ ही साथ आर्टिकल्स लिखता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी मैं लिखूँ वह कहीं ना कहीं एक बच्चे के नजरिए से हो, क्योंकि मैं एक बालक हूं तो एक बच्चे के नजरिए से हो। हर कुछ जो भी मैं बताऊं वह अपनी समझ से बता पाऊं, क्योंकि मैं अभी खुद को उतना ज्ञानी नहीं मानता कि मैं विश्व का, मेरे पास कुछ भी मतलब बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, तो मैं उसी ज्ञान को जितनी मेरी समझ है मैं उसको एक बच्चे के नजरिए से लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, तथा उसमें हर बार मैं ये तो चीज सुनिश्चित करता ही हूं कि मेरे लेख से कहीं ना कहीं लोगों को एक कदम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ाने का मौका मिले। कोई ना कोई चीज मैं ऐसे डालता ही हूँ जिससे मुझे लगता है, और लोगों के साथ ये हुआ भी है कि जिससे लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा और अट्रैक्ट हों, ईश्वर साक्षात्कार की ओर वह आए, और यही मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं अपने लेखों में लोगों को इस बात के लिए भी मोटिवेट करूं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप जो कुछ लिखते हैं लोगों के कल्याण अर्थ लिखते हैं, और साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि बच्चों के जीवन में वो ज्यादा काम आए। बहुत ही अच्छा संकल्प है, बहुत ही अच्छा विचार है आपका। और मैं चाहूंगा कि आज के समय में जैसे कि जो बच्चे हैं जिनको आप देखते हैं, तो आपके जैसा वो लोग नहीं बन पा रहे, या आप जितना अभी तक आपने जो अचीवमेंट किया है, तो अगर दूसरे बच्चे भी आपकी तरह ये सब कुछ आपने जो कुछ अचीव किया है वैसे अचीव करना चाहें, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या बताना चाहेंगे?
3: मेरे जितना देखिए मैं ये मानता हूं कि हर इंसान, जब भगवान ने सबकी रचना की तो सभी लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज उन्होंने दी। सो हर इंसान में कोई ना कोई डिफरेंट क्वालिटी, एक ऐसा गुण तो होता ही है जिसमें वह बाकी सबसे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, म्यूजिक में भी मैं अच्छा हूँ, बट जैसे मैं स्पोर्ट्स मैं उसमें ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, हालांकि मैं टेबल टेनिस वगैरह खेल लेता हूँ, बट जो एथलेटिक स्पोर्ट्स है आई एम नॉट गुड इन दैट। सो हर इंसान के पास कोई एक ऐसी खूबी होती है जिसमें वो अच्छे होते हैं, हमें बस उसी को अपनी हॉबी जो है हमारी, जिस चीज में हम सबसे ज्यादा अच्छे हैं उसको ही, अपना पैशन जो है उसी को आगे हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए। जैसे कि अब, और यह आपके साथ साथ धीरे धीरे होता जाएगा। मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरी मदर चाहती थी मैं एक एक्टर बनूं, और मैं बचपन से कॉन्फिडेंट भी था, गुड लुकिंग था, तो आई वेंट इन द एक्टिंग फील्ड। मैंने बहुत साल बहुत अच्छे से पूरे मन लगा के काम भी किया, परंतु कहते हैं अब जब तक ईश्वर की कुछ इच्छा नहीं होती वो उनकी इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है। उस फील्ड में सक्सेस मिला, बट मुझे रियलाइज हो गया कि ये मेरा पैशन नहीं है। उसके बाद मैंने ओरेटरशिप ट्राई की, मैंने देखा हाँ मैं अच्छा बोल लेता हूँ, तो फिर मैंने देश का सबसे नन्हा मैं न्यूज एंकर बना, सबसे यंगेस्ट न्यूज एंकर। बट फिर उसके बाद जब लॉकडाउन आया तब मैंने अपने आप अपनी खूबियां पहचानने की कोशिश की, और वह खाली आत्म मंथन से हो पाएगा। तो मुझ में एक जो लेखक की खूबी है वह मेरे सामने आई, और उसी के साथ साथ फिर मैंने मोटिवेशनल सेमिनार्स डिलीवर करना शुरू किया, मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाए, और साथ ही साथ मैंने बच्चों को पढ़ाया वैदिक
1: अरे
3: गणित खुद सीखा था, और अभी भी मैं मतलब मैं हर छुट्टियों में बच्चों को मुफ्त में ऑनलाइन वैदिक गणित पढ़ाता हूँ। अभी भी जब बच्चों की छुट्टियां होने वाली है तो अभी भी मैं पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ मेरे अंदर जो कुछ क्वालिटीज थी मैंने प्रोग्रामिंग सीखी, उसमें भी मैंने अपनी स्किल्स बढ़ाई। तो दो चीजें हो सकती हैं, अभी शर्मा जैसा तो नहीं, परंतु हाँ एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, जैसे कि एक तो है टैलेंट, आपका जो भी टैलेंट है आप जिसमें, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है जिसमें वो बचपन से बहुत अच्छे होते हैं, ईश्वर का उपहार होता है, उसे एक तो हम
1: जी
3: निखार
1: जी
3: सकते हैं। दूसरी चीज है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती। आपको अगर किसी विषय में, पर्टिकुलर विषय में रुचि है, आप उसे सीखिए और फिर उसी को इतना मास्टर कर लीजिए कि आप उस फील्ड में सक्सेस पा सके। और अगर दोनों चीजों का आप कंबाइन कर दे, स्किल और टैलेंट को, और उसमें नॉलेज मिला दें, तभी आप अपनी सक्सेस की ओर जा पाएंगे। तो जैसे कि अब मुझ में एक बोलने की स्किल थी, मतलब बोलने का कह सकते हैं टैलेंट था, तो मैंने इसको स्किल के रूप में मैंने बढ़ाया भी। मैं निरंतर मैंने बुक्स पढ़ी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की और

0: बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। निश्चित तौर पे आपने जिस तरह से बातें की और जिस तरह से आप खुद काम करते हैं, वो सभी के लिए प्रेरणादायी है। और आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि आपको अगर अपने गुणों को, अपने जो अंदर कलाएं हैं उसको डेवलप करना हो, तो आत्ममंथन की बात आपने कही। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि इतने छोटे उम्र में भी आप आत्ममंथन की और बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक ऐसा अंतर्दृष्टि का ज्ञान है जो आपको प्राप्त है, और वही चीज जो है सभी के जीवन में अगर आ जाता है तो निश्चित तौर पे वो अपने आप को बहुत ही सुचारू रूप से स्टेबल बना के अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, और लोगों के कल्याण अर्थ, लोगों की कुछ भलाई के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और छोटा सा वीडियो हमारे सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। आपकी मुलाकात जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके साथ वाली बातचीत।
1: मैंने एक चीज अपने माता पिता से सीखी है कि नमंती फलिनो वृक्षः नमंती गुणिनो जनः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमंती कदाचन। यानी कि जो फल वाले पेड़ होते हैं और जो गुणीजन होते हैं हमेशा झुक के रहते हैं। सो मैं भी उनसे एक ही चीज बोलता हूँ, मैं भी आपकी जैसा हूँ। सो आप लोग भी मुझे वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप दूसरे लोगों को करते हैं। कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग में कभी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते, कुछ तो डर के बात ही नहीं करते। तो सबको यही चीज बोलता हूँ एंड बाद में सभी मेरे दोस्त बन जाते हैं।
2: अब वो इतने मीठे, इतने प्यारे, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, ये गले में क्या पहना हुआ है आपने?
1: गले में यह मेरे पास कंठी माला है
2: जी। क्यों क्यों पहना आपने कंठी माला?
1: कंठी माला देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जैसे कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। सो जब भी हम तिलक लगाते हैं, हम ऐसे कंठी माला पहनते हैं, ये दर्शाता है कि वी रेस्पेक्ट आर कल्चर। क्योंकि सारे लोग जब अपने कल्चर को रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि भारत की आयरनी है, जब जापानीज लोग किमोनो पहनते हैं उनको उस पर प्राउड होता है। जब लोग अपने धर्म को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, उनको गर्व होता है। सो व्हाई नॉट वी इंडियंस।
2: चलती जाए ये तो वीडियो, चलती जाए तो अभी से बात करते जाए। अभी से बात करने में मेरे को एडिक्शन हो गया है, मेरे को प्यार हो गया। ऐसा बच्चा कहाँ से मिलेगा? इनको कैसे मैं इसकी फोटोकॉपी कर दूं पूरी दुनिया में? इतने सारे अभी कहाँ से लेकर क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे। अभी इतने फोकस कैसे बने आप? मतलब बिल्कुल आपके लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्या चक्कर है?
1: ये कहीं ना कहीं मैं इसका श्रेय आपको और भगवान श्री कृष्ण दोनों को देना चाहूंगा, क्योंकि गीता में भगवान अर्जुन की भी कहीं ना कहीं यही सिचुएशन थी। 6.34 में कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलवद्रडम तस्य हम निग्रहम मन्ये वायो रीवा सुदुष्करम, कि मन इतना चंचल मेरा, इतना उत्पाती है, मैं एक बार को तीरों से वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। फिर उसके बाद कृष्णा जी कहते हैं असंशयम महाबाहु मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय
2: वैराग्येन च गृह्यते।
1: वो है कि अभ्यास, पहले तो हमें जो भी चीज से फोकस रहना उसका बार बार अभ्यास करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और दूसरा वैराग्य।
2: कैसे ये सब कैसे किया इतनी छोटी सी उम्र में? आई एम एक्साइटेड। आपका मेमोरी बहुत जबरदस्त, आप वैदिक मैथ्स भी पढ़ा लेते हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हो, कहाँ से आ गया अभी ये? कैसे अवतार हुआ, चतुर्भुज में अवतार हुआ है आपका? हा?
1: मैं तो यही कहूंगा जो भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं रसो हम सुकौन्ते या प्रभास्मी शशि सूर्यो प्रणवा सर्व वेदेशु शब्द खे पौरुषम रसु, पानी का स्वाद मैं हूँ भगवान कहते हैं, आकाश में जो ध्वनि है वह मैं हूँ, वेदों में ओंकार मैं हूँ, सूर्य और चंद्र में प्रकाश मैं हूँ, और मनुष्य में जो सामर्थ्य है, जो कार्य शक्ति है, वह भी मैं हूँ। तो मैं यही मानता हूँ कि ये प्रभु ही है जो मुझ में कार्य शक्ति के रूप में है, और उन्हीं की आज कृपा से मैं इतने सारे कार्य निरंतर में कर पा रहा हूँ, उन्हीं के अनुकंपा से।
2: अरे वाह, देखो
0: चलिए, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि काफी आपके मन में कुछ सवाल भी आए होंगे, तो आप कमेंट सेशन में जरूर जो है सवाल पूछना हो अभी से, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो जरूर पूछिएगा आप। और नेता नायक ने याद भेजा है, रामलाल जी ने भी याद भेजा है, सुजाता कुंडल, सुजाता कमल जी ने भी याद भेजा है, और डॉक्टर अमित गिरधर जी ने भी याद भेजा है। थैंक यू सो मच, आप सभी अपने प्यार से मैसेज कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आप लोगों को भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी से अब मैं पूछूंगा, जैसे अभी बात हो रही थी रामायण की या महाभारत की, महाभारत का एक और प्रसंग बताइए जो आपको बहुत प्रेरणा देता हो, जिसको आपको लगता है कि जब भी थोड़ा सा ऐसा स्लो हो रहा है आपकी एनर्जी तो तुरंत आप उसको याद करते ही आप फिर से वापस फुल एनर्जी से भरपूर
1: जी। महाभारत में देखिए

0: बहुत सारे प्रसंग हैं। अब आप सोचिए,
1: जी
0: महाभारत में आप कह सकते हैं कि इतने सारे पर्व हैं, इतने सारे महाभारत में खंड हैं, तो उसमें मुझे बहुत सारे जो चीजें हैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। परंतु जो सबसे अच्छी मुझे चीज लगती है वह है जो उसमें आप कह सकते हैं भीष्म पर्व में जो सबसे अच्छा चीज मुझे लगता है जो है, जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही थी वह मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और उसी समय में जितनी भी चीजें हुई थी, चाहे वो फिर आप कह सकते हैं आगे के प्रसंगों में अभिमन्यु का वध हो, या फिर वह उसमें कोई भी कैसा प्रसंग हो, महाभारत का हर ही प्रसंग अपने आप में मुझे एक जीवन का नया साक्षात्कार करने का अवसर देता है। परंतु जो सबसे मेरा पसंदीदा प्रसंग है वह है जब भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, और आप सोचिए जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों पक्षों की सेनाएं आपस में खड़ी हुई हैं, और उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि के मध्य में भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ खड़ा कर रखा है, और तब वहां पे इस विश्व का सर्वोच्च ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, तो वह उसके बारे में सोचकर ही, उस महाभारत में उस काल के बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब भी मैं गीता को पढ़ता हूँ मुझे उससे एक नया अर्थ, एक नई जीवन की सीख हमेशा ही लेने को मिलती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि रामायण महाभारत में इतने प्रसंग और उत्सव हैं कि हमें जब भी आप अच्छी तरह से उसे ध्यानमग्न होकर सुनते हैं और उससे आपको मोटिवेशन जरूर मिलता है। सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर अपने से जो बड़े हैं, गुरु हैं, उनका बहुत ज़्यादा जो सत्कार सम्मान देने का, जो आदर सत्कार करने का, वो उसमें ज़्यादा दिखता है हमें, और उससे आशीष मिल जाता है बच्चों को या छोटों को। तो ये हमेशा हमें सीखना चाहिए वहाँ पर। आज थोड़ा सा ट्रेंड मुझे लगता है कि बदल गया कंप्यूटर युग में, टेक्नोलॉजी के युग में। तो मैं चाहूँगा कि इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अभी आप तो अच्छे समझदार हैं, तो आज के समय में कहीं ना कहीं देखते हैं कि हम लोग, जब तक हम दायरे में रहते हैं तब तक हम लोग एक कंडीशन के वजह से हम लोग सम्मान देते हैं। जैसे हम उस दायरे से निकल जाते हैं, हमारे स्कूलिंग पूरा हो जाता है, फिर हम उस टीचर को कभी याद ही नहीं करते और कभी फोन करके उनको थैंक यू भी नहीं कहते हैं। तो ऐसा चीज है, घर में भी हम लोग देखते हैं कि माता पिता को भी हम लोग, जब हमारी जरूरत होगा तब हम लोग उनको प्लीज करते हैं, अदरवाइज तो उनको कभी उतना ही आदर सत्कार से उनकी तरफ नजर भी नहीं उठा के देखते। तो ऐसा क्यों है, क्या हो सकता है इसमें? हाँ, एक मिनट, आपका माइक बंद है। हाँ जी,
0: जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल हम कह सकते हैं यह जो पीढ़ी है वह काफी ज्यादा, हम एक तरह से कह सकते हैं, डिस्ट्रैक्टेड है। और जो सबसे बड़ी बात, देखिए, मैं मानता हूं कि अपने रूट से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि जब तक यह जो पीढ़ी है यह भारतीय संस्कृति से नहीं जुड़ेगी, जब तक हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति पर वापस नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक हमें वो जो संस्कार थे, वो जो मॉरल वैल्यूज थी, वह वापस नहीं आ पाएंगे। और इसीलिए ही मैं अपने मिशन शिक्षा एवं संस्कार के थ्रू यह प्रयास करता हूँ कि उसमें मैं बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ता हूँ, क्योंकि जैसा आपने बताया कंप्यूटर युग के आजकल के बच्चे हैं, और एक बार स्कूलिंग खत्म हो गई तो टीचर को फोन करके थैंक यू भी नहीं बोलते। आपने ये एग्जाम्पल दिया, अगर हम लोग अपने गुरुकुलों का एग्जाम्पल देखें
1: जी
0: तो पहले जमाने में भी अपने महाभारत काल की बात की थी, तो अभिमन्यु ने अपने गुरुओं को, उन्होंने कितना रेस्पेक्ट दिया, अर्जुन ने कितना रेस्पेक्ट दिया, और गुरुदेव के चरणों में रख दिया। तो गुरु के प्रति जो सम्मान की बात आपने की वह हमें भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है, साथ ही साथ बड़ों का सम्मान और जितनी भी नैतिक शिक्षाएं हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, वह सब हमें भारतीय संस्कृति में देखने को मिलेंगी। इसीलिए ही मैं प्रयास करता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जो आगे जाके इस देश का भविष्य बनेंगी, अगर हम उनमें यह संस्कार अभी से बो देंगे, तब आगे जाकर वह एक आदर्श जीवन, एक आदर्श मनुष्य जैसे जी पाएंगे, और वह तभी संभव है जब हम उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़े। तो मेरा हमेशा अपने मिशन शिक्षा एवं संस्कार के अंदर यही प्रयास रहता है कि मैं यह कार्य निरंतर करता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत ही अच्छा आपने कन्वर्सेशन बताया और मुझे लगा कि आप इन चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी बातें और आप शिक्षा और संस्कार के माध्यम से ये बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, सिखाना भी चाहते हैं, भारतीय संस्कृति से जोड़ना भी चाहते हैं। ब्रजभूषण शर्मा जी ने आपके लिए लिखा है, एक्सलेंट, वी आर प्राउड ऑफ अवी एज अ संस्कार बालक ऑफ इंडिया, संस्कृत बालक ऑफ इंडिया। तो ब्रजभूषण जी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नीता नायक जी लिखते हैं कि क्या आप चिन्मय आनंद से जुड़े हुए हो या रिलेटेड हैं, ऐसा कुछ पूछा उन्होंने। और अमोल जी ने भी याद भेजा है, थैंक यू सो मच, आप याद भेज रहे हैं तो अच्छा लगता है हमें भी। अच्छा, एक और बात, मैं आज सवेरे जो है एक गाँव में गया था और वहाँ मुझे इसलिए बुलाया था कि एज ए रेडियो मुझे कवरेज करना था। तो वो गांव में जो लोग हैं, पिछली बार कुछ संगठन है और प्रशासन दोनों भी जागरूक होके वंस इन अ वीक वहां पर सफाई का काम शुरू किया है, और कुछ एक ग्रुप आए हैं दूसरी जगह से, वो भी उनको हेल्प कर रही है कि कैसे आप सफाई रख सकते हैं गाँव में। तो काफी, एक बहुत ज्यादा जहाँ पर कचरा था उस चीज को उन लोगों ने वहां का सफाई करके उसको कलरिंग करके अब सेल्फी पॉइंट बना दिया है। तो वो चीज देखने को बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर। और फिर मैं जब वो जो लोग काम कर रहे थे उसमें जो मेन व्यक्ति थे उनसे मैंने पूछा कि कितने समय से कर रहे हैं, बोला अभी 1 महीने से, लेकिन यहाँ गांव वालों का काफी सपोर्ट मिल रहा है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा इसमें सफलता पा रहे हैं। आगे हम लोग पानी के तालाब वगैरह, ये पेड़ पौधे वगैरह लगाने का भी हमारा मुहिम है, आगे चल के करेंगे इसको। और फिर उन्होंने बताया कि एक और जगह पे हम गए थे गांव में, लेकिन वहां लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो हमको वो काम बीच में ही बंद करना पड़ा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जहाँ अच्छे काम के लिए लोग आपके गांव में आ रहे हैं, एक आदर्श गांव आपके गांव को बनाने के लिए आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो फिर उसमें लोग जुड़ते क्यों नहीं?
0: बिल्कुल, देखिए ये हम कह सकते हैं कि समाज की, यह हम कह सकते हैं कि अभी की यह विडंबना है कि अच्छे कार्यों को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, आपने जैसा कि बताया, आप दो ग्राम आप गए थे, एक एक में तो लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो मैं ये मानता हूँ, देखिए पहली चीज होती है कर्म, लोगों के अपने खुद के कर्म भी होते हैं, जिनके कर्मों में यह लिखा है कि उन्हें आप कह सकते हैं एक खराब गांव में ही रहना है, तो वह उनके कर्म है, नंबर वन थिंग। और नंबर टू थिंग कि यह लोगों की नियत में भी होता है कि आजकल लोग हर चीज में अपना स्वार्थ देखते हैं, और जिस चीज में उन्हें अपना स्वार्थ नहीं दिखता है उसे वह बिल्कुल भी, आप कह सकते हैं, अगर वह अच्छा काम भी हुआ उसका वह सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप यह कह सकते हैं कि जो हम कह लें दूसरे गांव के लोग थे, मे भी ऐसा हो सकता कि उनको सपोर्ट के लिए मे भी थोड़े देर के लिए अपना घर खाली उन्हें करना पड़ता, या कुछ भी उनको मेहनत करनी पड़ती, तो उससे शायद वह बच रहे थे। तो इसीलिए ही यही मैं बता रहा हूं कि जिस चीज में उनका खुद का स्वार्थ नहीं होता है, जिस चीज में उनका खुद का, आप बोल सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो लोग सोचते हैं अरे ठीक है ना, हमारा गांव साफ हो रहा है तो क्या इसमें मेरा क्या फायदा। यह जो मैं और मेरा का भावना यह जो लोगों में आ चुकी है, यह सबसे बुरा है। क्योंकि एक जो हमारा ईगो, जैसा हम अहंकार बोलते हैं, जब वह हमारा हावी हो जाता है कि मैं इससे मेरा क्या फायदा होगा, तो जब यह भावना हम में आ जाती है तब यह एक हीन भावना होती है, और कहीं ना कहीं यह हमारे, आप कह सकते हैं कि आत्मा को, औरा को हम दूषित भी करती है। तो मैं यही मानता हूं कि एक चीज तो कर्म है, परंतु हमें यह मानना चाहिए कि जो भी अच्छे कार्य हो रहे हैं हमें सबका निरंतर साथ देना चाहिए। क्योंकि एट द एंड यह पूरे, एक तरह से पूरे ग्लोबल के लिए, कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल लेवल पर किसी अच्छी चीज में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर वह एक गांव साफ हुआ है तो आप ये मत समझिए कि कोई छोटा अचीवमेंट है, इससे वहां के लोगों का एक लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा है, साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पे भी यह एक कंट्रीब्यूशन जरूर है। तो हमें खुद से हटकर विश्व के कल्याण के लिए सोचना चाहिए, और सबसे बड़ी बात मानवता के कल्याण के लिए सोचना चाहिए।
1: काफी अच्छा बात आपने बताया अभी शर्मा, और आयुषी जी ने भी याद भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी जी याद करने के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और संतोष जी मैं चाहूंगा अभी शर्मा के लिए एक और छोटा सा गीत जो है आप डेडिकेट करें, और अब भी जो हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है उससे रिलेटेड कोई गीत हो तो और अच्छा है। एक मुकड़ा एक अंतरा मैं चाहूंगा कि आप अभी को डेडिकेट करें फिर से।
2: जय रघुनंदनी जय सियाराम, जय रघुनंदनी जय सियाराम,

जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे चैन तुम्हें से पाए दो पल

0: जुग बंजर तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय श्री राम, जय रघुनंदन जय श्री राम। ओम शांति।
1: बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए हमारे साथ अभिषेक सर भी जुड़ गए हैं और उन्होंने बहुत शानदार अविष्कार करके मैसेज किया है और उन्होंने मैसेज ये भी किया है कि अभिषेक आप अभी भी अपना अनुभव बताएं जब उन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला और प्रधानमंत्री जी ने उनसे बात की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने पूछा है, तो मैं चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा उस बारे में जिक्र कीजिए। मैं थोड़ा सा वीडियो भी चला देता हूँ। मित्र जो है
2: परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करें। नमस्कार।
3: अभी आप लेखक भी हैं, व्याख्यान भी देते हैं, आपने बाल्मीकि रामायण भी लिखी है जी। इतना सारा काम आप कैसे कर पाते हैं? बचपन बचा है कि वो भी चला गया है?
2: सर ये सब भगवान श्री राम का आशीर्वाद है कि मैं इतना सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर गीता में ही लिखा है 7वां अध्याय 8वां श्लोक की रसोहम पशु कौंते या प्रभास्मी शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खे पौरुषम रशु, यानी कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वह मैं हूँ। सो इसीलिए ही मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान का ही आशीर्वाद है और यह मेरे माता पिता, सारे परिजन और सारे चाहने वालों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं कर्मठता से यह सारी चीजें कर पाता हूँ।
3: अच्छा ये बताइए अभी कि रामायण में के संबंध में लिखने का ख्याल आपको सबसे पहले कब और कैसे आया?
2: सर इसकी प्रेरणा स्रोत भी कहीं ना कहीं आप ही रहे हैं। लॉकडाउन 2020 में जब हम सभी लोग, खासकर हम बच्चे, पूरी तरीके से हताश हो गए थे, तब आपने टीवी पर रामायण प्रसारित करवाई और जब मैंने रामायण देखी तो मैं रामायण से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज बेटर कॉट नॉट टॉट। मैंने पहले भी रामायण का श्रवण किया था, पठन किया था, परंतु जब मैंने रामायण को देखा तब मुझे लगा कि भगवान श्री राम का चरित्र आजकल हम बच्चे भूलते जा रहे हैं। सो इसीलिए ही मैंने यह बाल्मीकि रामायण 250 छंदों में लिखी, ताकि भगवान श्री राम ने रामायण के थ्रू जो आदर्श स्थापित किए हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट, आजकल हम लोग पेशेंस बहुत ज्यादा खो देते हैं, तो पेशेंस, ओबीडियंस, तो ऐसे सारे आदर्श हम बच्चे इस रामायण से सीख सकते हैं, अपने जीवन में उतार कर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। और मैंने इस रामायण को 10 भागों में बांटा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसके पहले भाग राम जन के कुछ छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।
3: सुनाइए।
2: बिल्कुल, वह छंद ऐसे है। देवनान किए विनती जब हरिजन में माँ धरती पर, तब दशरथ के घर उत्सव आया, अवधपुरी में उल्लास था छाया, अवध राज के चार दुलारे, राम लखन भरत शत्रुघ्न प्यारे, चारों कुमार अवध के प्राण, धीर वीर ज्ञानी बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
3: अच्छा अभी आप रामायण में डूब गए, पिछले लॉकडाउन का आपने उपयोग कर लिया, रामायण में वो कौन सा पात्र है, कौन सा चरित्र है जो आप पर बहुत ही प्रभावी है, आप पर, आपकी उसके प्रति श्रद्धा बन गई है?
2: सर ऐसे तो एक ही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, क्योंकि आजकल के जीवन में जीने के लिए हमें जो भी आदर्श की जरूरत है, एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए, भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही वह सारी चीजें दर्शा दी थी। वह कैसे सबको साथ लेकर चलते थे, कितना धैर्य वह रखते थे और सबका कितना आदर करते थे, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मुझे भगवान श्री राम से सीखने को मिलती है। सो ऐसे आदर्श तो मेरे भगवान श्री राम ही है।
3: अभी परिवार में सब तंग आ जाते होंगे, दिन भर तुम्हें रामायण रामायण करते रहते होंगे, तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे?
2: नहीं सर, सौभाग्य से मेरे माता पिता मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बचपन से ही इन्हीं से मैंने रामायण महाभारत गीता इन सब का चीज सुनी। और श्रीमद् भागवतम में सातवें अध्याय सातवें कैंटो में लिखा है कि जब हम कोई भी आदत बचपन से ही डेवलप कर लेते हैं तो वह हमारे साथ जीवन भर रहती है।
3: तो घर में भी, घर में भी जैसे कोर्ट के अंदर वकील धाराओं का उपयोग करके लड़ाई लड़ते हैं, तो तुम भी घर में शास्त्रों का उपयोग करते लड़ाई लड़ते हो क्या?
2: नहीं सर, शास्त्रों का तो मैं जरूर ही उपयोग करता हूँ, परंतु मैं बच्चों को सिखाने में इनका उपयोग करता हूँ। मेरे मिशन संस्कार और शिक्षा के अंतर्गत मैं बच्चों को भारतीय शास्त्रों, भारतीय कल्चर के बारे में बताता हूँ और यह बताता हूँ कि कैसे हमारा जो भारतीय कल्चर है कितना ग्लोरियस है, कितना रिच है वह, और हम कितने आगे हैं।
3: क्या अभी ये मध्य प्रदेश के पानी में ही कोई विशेषता है क्या, इस प्रकार के बच्चे तैयार होते हैं?
2: जी हाँ सर, यह मालवा भूमि तो इतनी सुंदर रही है, इसने लता मंगेशकर मैम इतने बड़े बड़े इन्होंने वीर दिए हैं, देवी
3: अहिल्या बाई। मैं आपको आपको एक घटना सुनाता हूँ
2: जी।
3: आपके मुख्यमंत्री उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है
2: जी,
3: वो बहुत छोटी थी तब वो व्याख्यान करती थी
2: जी।
3: तो गुजरात में अहमदाबाद में उनका मणिनगर इलाके में व्याख्यान था, आज से करीब 45-50 साल पुरानी बात है। अच्छा। अखबारों में बहुत चर्चा होती थी तो हम भी सुनने के लिए चले गए।
2: अच्छा।
3: और मैं हैरान था उतनी छोटी उम्र में जिस प्रकार से वो धारा प्रवाह वक्तव्य देती थी, जिस प्रकार से शास्त्रों का बहुत ही सटीक रूप में उल्लेख करती थी, संस्कृत बोल लेती थी, चौपाइयां गा लेती थी और अपनी बचपना की हरकतें भी करती थी मंच पर बैठे बैठे, मैं बहुत प्रभावित हुआ था। बहुत बहुत बहुत साल पहले की बात है, तब उनकी आयु बहुत छोटी थी, तो मुझे लगा कि शायद मध्य प्रदेश में ये कुछ ताकत ऐसी है कि सब इसी प्रकार के विद्वान लोग बचपन में ही तैयार हो जाते हैं।
1: क्या बात है अभी, चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपका कन्वर्सेशन प्रधानमंत्री जी के साथ में। और मैं चाहूंगा कि आपको ये सारा कन्वर्सेशन फिर से देखकर आपको फिर से कुछ यादें आ गई, कुछ ताजे हो गई आपकी?
4: बिल्कुल बिल्कुल जी।
1: तो उस समय का जो वो जो फीलिंग है, सवाल जवाब नहीं चाहूंगा मैं चाहूंगा कि उस समय आप जब आपको पता चला कि आपको ये कन्वर्सेशन होगा आपका, तो आप

0: किस तरह से फील कर रहे थे आप?
1: जी सर्वप्रथम तो अभिषेक खरे सर को मेरा चरण स्पर्श नमस्कार। जहां तक बात है मुझे कैसा लग रहा था, हम 29 अवॉर्डीज थे जो ऑनलाइन थे उस समय, और स्मृति ईरानी मैम जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कैबिनेट मिनिस्टर है, 2 मिनट पहले प्रोग्राम शुरू होने से वह स्क्रीन पर आई और मुझसे पूछा अभी आप कैसे हैं और इंदौर से मेरे लिए आप जब दिल्ली आएंगे तब क्या लाएंगे। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय सबसे पहले वह आपसे बात करेंगे। अब यहाँ पे हालांकि मैं एकदम से जब पता चला कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन जो व्यक्ति हैं वह मुझसे साक्षात्कार करेंगे तब हाँ मुझे एक बार को तो मैं नर्वस फील हुआ, परंतु मेरी मम्मी ने कहा जैसे तुम मुझसे बात करते हो वैसे उनसे भी बात कर लेना, तो उससे कॉन्फिडेंस आया। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ऑरा है उनकी आप कह सकते हैं जो पूरा एक ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा डिवाइन है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमेशा ही उनका फेस तो बहुत ज्यादा चमकता रहता है। उनसे इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा मिली मुझे और साथ ही साथ मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव था कि जब देश के सर्वोच्च आप कह सकते हैं पद पर आसीन जो व्यक्ति है वह मुझसे साक्षात्कार कर रहे हैं और इतने मतलब आप कह सकते हैं डिवाइन पर्सन है वो, क्योंकि वह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कार्य किया है, बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं, तो मुझसे भी आपने जैसे देखा बहुत प्यार से उन्होंने बात की। और साथ ही साथ मुझे उनकी जो सबसे अच्छी बात लगी कि तुम देश के लिए प्रेरणा हो, तो जब भी पद प्रतिष्ठा ये सब जब दबाव बनाए तुम पर, इस दबाव को लेना नहीं है बल्कि इसे प्रेरणा बनाकर आगे और कार्य करते जाना है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनसे बात करके और इट वॉज अ डिवाइन एक्सपीरियंस।
0: जी, चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और निश्चित तौर पे जब आप किसी अच्छे ओरा के साथ जुड़ जाते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के साथ जुड़ते हैं, तो नेचुरली आपको आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो जाता है। लेकिन वहां पर जो कन्वर्सेशन होता है वो सटीक कन्वर्सेशन, जैसे कि उन्होंने जो सवाल पूछा आपने भी अच्छी तरह से उसको जवाब दिया, तो निश्चित तौर पर एक राइट वे में जो चीजें हैं प्रासंगिक, लोगों को भी अच्छा लगता है और जो बातें कल्याण अर्थ है वो चीजें सामने आ जाती। निश्चित तौर पर ये कन्वर्सेशन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जब हम लोग अच्छे लोगों से मिलते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि आने वाले फ्यूचर में टेक्नोलॉजी को देखकर, जैसे कि आज का समय टेक्नोलॉजी का युग है, तो दो चीजें हो रहा है। मैं कई बार शिक्षकों से मेरी बातचीत होती है, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट मेरे से बात करते हैं, जैसे अभी अभी कल ही हमने अभिषेक सर का भी हमने इंटरव्यू किया, और बहुत सारे ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे बातें करते रहता हूँ। तो क्या होता है कि वो लोग बता रहे हैं कि पहले लॉकडाउन के पहले वाला और अभी वाला स्टडी में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आया है, तो वो डिफरेंस क्या है आप बताएंगे कुछ?
1: बिल्कुल, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद मैं मानता हूँ अंतर तो आया है, क्योंकि पहले पढ़ाई ऑफलाइन होती थी अब ऑनलाइन हो गई है, परंतु जहां तक देखिए लोगों ने यह बना रखा है कि अब पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है, अब जो नॉर्मल स्कूल्स थे वो बंद हो गए। हाँ मतलब मुझे भी दुख तो हुआ था कि मेरे स्कूल्स बंद हो गए थे और अभी मैं ऑफलाइन स्कूल जब नॉर्मल जा रहा हूँ तब एंजॉय भी कर रहा हूँ, परंतु तो मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है यह हमारे लिए वरदान के जैसी है, क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास देखिए सारे वीडियोस जिस भी टॉपिक पर आप चाहें उस टॉपिक पर अवेलेबल होते हैं, हर भाषा में अवेलेबल होते हैं, और उसमें आपको जो चीज है वह किसी वीडियो के थ्रू किसी एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाकर समझाई जाती है, जिससे कि आपका दिमाग उसको ज्यादा जल्दी ग्रास कर पाता है। क्योंकि कहावत है अ पिक्चर सेज अ बिलियन वर्ड्स, मतलब एक जो तस्वीर है वह बिलियंस मतलब हजारों शब्दों के बराबर एक तस्वीर होती है, तो आप इतना अच्छे से ऑनलाइन में कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उससे आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन के आंसर, सभी नोट्स और सारे रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन ने पढ़ाई को कहीं ना कहीं और आसान बना दिया है बच्चों के लिए। हाँ परंतु ये बात है कि कुछ बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो उसके द्वारा उन्होंने कुछ उसका गलत फायदा भी उठाया है, परंतु मैं
0: जी
1: मानता हूँ कि ये प्योरली उस इंसान के ऊपर होता है कि देखिए, अब ऑनलाइन एक वरदान है, अब आपके पास है, आप उसको कैसे यूज करें। अब जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, अभी ChatGPT ये लॉन्च हुआ है, हर जगह अभी तो चर्चा में चल रहा है ChatGPT की
0: जी
1: आप
0: जी जी
1: कुछ भी पूछेंगे ये चैटबॉट आपको जवाब दे
0: आंसर
1: देगा,
0: देगा।
1: AI मॉडल है सिंपल सा। तो अब जहां तक मैं इस पर विचार करता हूं कि ChatGPT को या तो आप अपने क्वेश्चन आंसर्स या आपका होमवर्क असाइनमेंट्स को आप ChatGPT से कॉपी करके भी लिख सकते हैं, एक आप वहां से चीट करके भी लिख सकते हैं, या दूसरी चीज है, आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो ChatGPT से आप उसको इजीली समझाने के
0: समझ
1: लिए या 10-20 पॉइंट में आपको समझाने के लिए भी बोल सकते हैं। तो एक ही चीज के आप देखिए दो पहलू होते हैं। तो पढ़ाई के भी, जैसे आपने पूछा क्या अंतर आया है, अंतर बहुत आया है, अब सब चीज ऑनलाइन हो गई है, और इवन अब ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं उसमें भी स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट व्हाइट बोर्ड जैसे रिसोर्सेस यूज किए जाते हैं। तो हाँ, अंतर बहुत आया है, इस ऑनलाइन का फायदा भी है, परंतु अब चीज ये है कि हम इसे वरदान बनाए या श्राप।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अभि शर्मा, काफी अच्छी बात आपने बताया कि ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति को, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है तो आप किस तरह से आप अपने मूल्यों के साथ एक न्यायवर्धक चीजें आप अपने साथ कर सकते हैं, या आसान शॉर्टकट वे में आप जल्दी से निपटा सकते हैं कि भाई चलो जाने दो, आंसर देख लो, आंसर कॉपी कर दो, खत्म कहानी। तो ये है कि आप किस तरह से उन चीजों को लेना चाहते हैं और क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। निश्चित तौर पे दोनों चीजें हैं। अगर आप किसी चीज को चैट जीपीटी से आंसर्स मिल गए और आप उसे अगर वैसे के वैसे कॉपी कर लेते हैं या प्रिंट कर लेते हैं, तो वो आपका कैरेक्टर डिसाइड करता है, बताता है। अगर आप समझने के लिए उसका यूज करते हैं और फिर समझ के आप अपना लिखते हैं, तो ये भी
1: बिल्कुल
0: आपका जो है हुनर दिखाता है। तो निश्चित तौर पे ये दोनों चीजें हैं, और यहाँ पर हमें जो है खुद से खुद को आत्ममंथन करके मुझे कैसा व्यक्तित्व को नजर आना है या कैसे लोगों के बीच में मुझे अपने आप को रखना है, ये डिपेंड करता है। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। अब आखिरी सवाल पे आते हैं हम लोग कि अब इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर आप क्या करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे काम कर रहे हैं आप कंप्यूटर के साथ भी, तो मैं चाहूंगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है टेक्नोलॉजी को लेकर।
1: जी। देखिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी अब जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, हमें भी वैसे एडवांस होना पड़ेगा। और जैसा कि अभी मैंने कहा, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, देखिए जैसे कि AI टेक्नोलॉजी, जैसे ChatGPT हुआ, और मिड जर्नी AI, जैसे बहुत सारे हाई लेवल AI आ रहे हैं जो पूरी तरीके से चीजों को बदलने वाले हैं। देखिए मैं ये मानता हूँ,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: तरफ VR वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी नई नई टेक्नोलॉजीज भी जगह ले रही हैं। तो अब इसमें मैं यह काम कर रहा हूं कि नंबर वन, अब तो जो मैंने एक माधव वॉइस असिस्टेंट बनाया है, जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, जो कहीं ना कहीं एलेक्सा से बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा एलेक्सा से वह एडवांस है, वह वॉइस असिस्टेंट। तो मैंने वो वॉइस असिस्टेंट बनाया था लॉकडाउन के समय, अब मैं उसको और एडवांस कर रहा हूँ, और उसमें जो नए नए AI फीचर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं उसको
0: जी
1: माधव में भी अपडेट करता जा रहा हूँ, ताकि माधव एक ऐसा वॉइस असिस्टेंट बने। क्योंकि मैंने इसे मेनली जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, या फिर जो ओल्ड पीपल है, उनके लिए मैंने बनाया था, ताकि उनको कंप्यूटर यूज करने में आसानी हो। तो
0: जी
1: इसके लिए मेरा लक्ष्य यही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाए, मैं उनकी ये जो समस्याएं हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, या कोई उनको कंप्यूटर में काम करवाना हो, तो उससे ये ज्यादा से ज्यादा आसान हो सके। मेरा यही अभी फिलहाल तो प्रयास है, मैं नए नए इन सब चीजों पर रिसर्च कर रहा हूँ, और भगवान की कृपा रही तो आगे भी कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही नया मैं इस फील्ड में जरूर करूंगा।
0: चलिए, अभि शर्मा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नए काम करते रहें। और आप जो अभी बताया कि ओल्ड एज वालों को कंप्यूटर यूज करें या मोबाइल यूज करने के लिए आसानी हो, इसके लिए आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो हाई टेक्नोलॉजी के साथ हो, इजी टू एक्सेस हो, और लोग आपके इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से यूज करें, ऐसी शुभ आशा के साथ। और बहुत सारे नए नए जो आइडियाज आपको आ रहे हैं वो बहुत जल्दी फुलफिल हो और लोगों के कल्याणार्थ वो चीजें काम आए, ऐसी शुभ आशा के साथ। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहां पर हमने अवि शर्मा को सुना, निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर मिल रहा होगा कि इतना छोटा बच्चा हमको ये सारी चीजें कैसे उन्होंने किया होगा। और रामायण महाभारत हम लोग भी सुने पढ़े, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको लिया है अपने लाइफ में, वो चीजें हम क्यों नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर पे आपका अंतर मंथन के लिए सवाल है, फिर से एक बार झकझोर के पूछिए कि कहाँ कमी रह गई है, उस कमी को दूर करके फिर आप अपडेट कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। ब्रजभूषण जी ने फिर से यह मैसेज किया है, और हमारे दूसरे एक मित्र हैं उन्होंने भी याद भेजा है, और साथ ही साथ अभिषेक कर ने भी याद भेजा है, डॉक्टर अमित जी ने भी याद भेजा है। तो जिन लोगों ने भी प्यार भेजा है, याद भेजा है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। शिवम ने भी याद भेजा है, तो कविता जी ने भी याद भेजा है, और अभि शर्मा आपके नाम से भी कुछ मैसेजेस आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए मित्रों, आज हम लोग जिस युग में हैं टेक्नोलॉजी का, और साथ साथ में टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है, लेकिन आपको अगर आपके अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो तो हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति हमेशा आपके लिए क्या कहते हैं, आपके नेचर को, आपके एक मानवता को रिप्रेजेंट करता है। तो टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, लेकिन हम अपनी सभ्यता और कल्चर को भी ना भूले, ये भी ध्यान रखना है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। और संतोष जी, अगर आप दो लाइन कुछ सुनाना चाहें अभी जी को फिर से जाते जाते।
2: जरूर, ओम शांति।
0: और शांति।
2: वचन

0: फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे। ए वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। ओम शांति, विश यू ऑल द बेस्ट।
1: चलिए, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया,
2: धन्यवाद आप सभी का, रमेश सर, संतोष सर और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने प्यार से सुना।
1: जी चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, हमार नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: नमस्ते दोस्तों, चलो जल्दी से चलते हैं बाजार की तरफ।
1: क्या कहा,
0: क्यों? अरे भाई, अपनी मीना और मिट्ठू बाजार की तरफ जो जा रहे हैं।
2: जल्दी जल्दी चलते हैं मिट्ठू, बाजार से बहुत सारा सामान लाना है।
3: सामान लाना है, वापस घर भी जाना है।
0: अरे ये क्या, सामने से तो मीना का दोस्त बिल्लू चला आ रहा है और बिल्लू का ध्यान बस अपने पेन की तरफ है, कहीं ये मीना से टकरा ना जाए। लो, जिसका डर था वही हुआ, हो गई बिल्लू और मीना की टक्कर।
4: ओ मीना, तुम्हें लगी तो नहीं वो मेरा ध्यान इस पेन की तरफ था तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं? और
2: मैं ठीक हूँ बिल्लू। अरे ये तो बहन जी का पेन है ना?
4: हाँ मीना, मैंने बहन जी से एक दिन के लिए उनका ये पेन लिया है, बहुत अच्छी लिखाई आती है इससे।
2: लेकिन तुम इस समय आ कहाँ से रहे हो?
4: स्कूल से।
2: स्कूल से? लेकिन छुट्टी हुए तो बहुत देर हो गई।
4: मैं तो रोज स्कूल से इसी समय आता हूँ, वहाँ बैठ के कभी खेलता हूँ और कभी पढ़ता हूँ।
3: कभी पढ़ता हूँ, घर आने से डरता हूँ।
2: मिट्ठू चुप।
4: मिट्ठू ठीक कह रहा है मीना, वो घर पे मुझे।
2: क्या हुआ बिल्लू, सब ठीक तो है ना?
4: मीना, घर पे माँ और पिताजी मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर तक स्कूल में ही रहता हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो?
2: माँ ने बाजार से कुछ सामान मंगवाया है, वही लेने जा रही हूँ।
4: मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो।
0: लो भाई, बिल्लू तो चल दिया मीना और मिट्ठू के साथ। बाजार पहुँच कर मीना ने साबुन, नमक और अंडे खरीदे।
4: लाओ मीना, ये सामान मैं पकड़ लेता हूँ।
2: ठीक है बिल्लू, ये लो, लेकिन ध्यान से पकड़ना, संभाल के।
3: संभाल के, अंडे खाएंगे उबाल के।
4: मीना, मिट्ठू कितनी तेज उड़ता है ना? अगर मेरे भी मिट्ठू की तरह पंख होते तो मैं ऐसे उड़ता, ऐसे।
2: बिल्लू ध्यान से।
0: बिल्लू अपनी दोनों बाजुएं फैला के बहुत तेज भागने लगा और आगे जाके एक आदमी से टकरा गया। अंडों की थैली नीचे गिरी और सभी अंडे टूट गए।
4: देखो ना मीना, ये अंडे टूट गए।
2: कोई बात नहीं बिल्लू, मैं माँ से पैसे लेकर और अंडे ले आऊंगी, तुम उदास मत हो।
4: अंडे टूटने से मेरे कपड़े भी खराब हो गए हैं, अब माँ मुझे बहुत डांटेगी।
2: तुम चिंता मत करो, हम हैंड पंप पे चल के तुम्हारी कमीज पानी से साफ कर लेंगे। और अरे बिल्लू रुको तो, बिल्लू, बिल्लू।
0: मीना ने बिल्लू को बहुत आवाज लगाई लेकिन वो नहीं रुका। और जब मीना ने अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को अंडे टूटने की बात बताई तो उन्होंने कहा,
5: कोई बात नहीं मीना, अंडे तो और भी आ जाएंगे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बिल्लू को चोट नहीं लगी, टक्कर होने के बाद कहीं वो गिर जाता तो।
2: माँ, बिल्लू बहुत घबरा गया था क्योंकि उसे डर था कि उसकी माँ उसे डांटेंगी, उसके कपड़े जो गंदे हो गए थे। माँ, क्या चाची उसे बहुत डांटेंगी?
5: मीना, कल स्कूल जाते समय तुम बिल्लू के घर चली जाना और उसकी माँ को बता देना कि बिल्लू की कोई गलती नहीं थी। हा?
2: हाँ माँ, ये ठीक रहेगा।
0: और अगले दिन मीना बिल्लू के घर पहुँची।
2: नमस्ते चाची।
5: अरे मीना, खुश रहो बेटी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ?
2: चाची जी, मैं स्कूल जा रही थी तो मैंने सोचा कि बिल्लू को भी अपने साथ।
5: बिल्लू तो स्कूल चला भी गया।
2: इतनी जल्दी चला गया?
5: हाँ, वो तो अब स्कूल भी पहुँचने वाला होगा। अब देखो ना, जल्दी जल्दी में बिल्लू ये पेन यही भूल गया।
2: चाची जी, ये बहन जी का पेन है, बिल्लू ने बहन जी से ये पेन एक दिन के लिए मांगा था।
5: मांगा नहीं होगा, बिल्लू जरूर बहन जी से बिना पूछे उनका ये पेन उठा के ले आया होगा। हाँ, भला बहन जी बिल्लू जैसे शरारती लड़के को अपना पेन क्यों देंगी?
2: ऐसी बात नहीं चाची, बिल्लू को बहन जी बहुत पसंद करती हैं। वो पढ़ने लिखने में भी तेज है और क्लास में कभी किसी को तंग भी नहीं करता।
5: मैं नहीं मानती।
2: चाची, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए स्कूल चल के।
5: ठीक है, चलो।
0: मीना और बिल्लू की माँ स्कूल पहुँचे। बिल्लू की माँ क्लास के बाहर छुप के खड़ी हो गई।
6: बच्चों, कल जो पाठ सीखा था वो सबको याद है?
7: जी बहन जी।
6: शाबाश, तो पहले इस प्रश्न का उत्तर दो, हमारा देश भारत कब आजाद हुआ था?
4: सन 1947 में।

0: शाबाश बिल्लू। चलो बच्चों, अब बताओ स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
1: चाचा नेहरू।
0: अरे वाह बिल्लू, तुम्हें तो पूरा पाठ याद है।
1: बहन जी, मुझसे एक गलती हो गई।
0: गलती? कैसी गलती बिल्लू?
1: बहन जी, मैं आपका पेन घर पे ही भूल गया।
0: ये रहा आपका पेन बहन जी। कमला बहन, आप?
2: बिल्लू अपनी माँ को क्लास में देखकर बहुत घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसकी माँ बहन जी से उसकी शिकायत करने आई है।
0: बच्चों, तुम बाकी के उत्तर याद करो, मैं अभी आती हूँ। आओ कमला बहन, वहाँ बेंच पर बैठकर बात करते हैं। अब बताओ कमला बहन, आज सुबह सुबह आप स्कूल में?
3: मैं ये देखने आई थी बहन जी कि स्कूल में बिल्लू का व्यवहार कैसा है।
0: बिल्लू का व्यवहार?
3: हाँ बहन जी, बिल्लू क्लास में शरारत तो खूब करता होगा, है ना?
0: नहीं नहीं, बल्कि बिल्लू तो बहुत समझदार और होशियार लड़का है। लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा?
3: क्योंकि घर पे बहुत सहमा सहमा और चिड़चिड़ा सा रहता है बिल्लू। कल भी जब मैंने उसे डांटा तो वो मुँह फुला के बैठ गया और कुछ खाया पिया भी नहीं। लेकिन आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी भी हुई और हैरानी भी कि बिल्लू स्कूल में बहुत खुश रहता है।
0: कमला बहन, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनकी तरफ हमारा व्यवहार प्यार और नम्रता भरा हो, नहीं तो उनमें आत्मविश्वास कहाँ से आएगा।
3: आप ठीक कह रही हैं बहन जी, वो तो आज मुझे स्कूल में बिल्लू का व्यवहार देखकर ही पता चल गया।
0: वो इसलिए कमला बहन क्योंकि स्कूल में हम सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका देते हैं। कमला बहन, अगर बच्चे कभी शरारत करें भी तो उन्हें डांट के नहीं बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास आता है और उनका आत्मसम्मान बढ़ता है।
3: मैं समझ गई बहन जी, आज से मैं भी बिल्लू से हमेशा प्यार और नम्रता से बात करूंगी। क्या मैं उससे एक मिनट बात कर सकती हूँ?
0: हाँ हाँ, बिल्लू बिल्लू, जरा यहाँ आओ तो।
1: जी बहन जी।
0: तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं।
1: क्या हुआ माँ?
3: बिल्लू बेटा, तुम्हारे स्कूल आके आज मैंने भी एक सबक लिया है। आज के बाद मैं और तुम्हारे पिताजी तुमसे बिल्कुल तुम्हारी बहन जी की तरह बात करेंगे। प्यार और नम्रता से। और हाँ, आज जल्दी घर आना, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी।
4: खीर बनाऊंगी, खुद भी खाऊंगी।
2: देखा दोस्तों, आप भी हमेशा सभी से प्यार और नम्रता से ही बात करना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता।
5: बच्चों को कभी सजा न देना, गुस्से में मत चिल्लाना,
4: डांट मार से बात न बनती, प्यार से तुम समझाना।
2: भाई वाह, चार पंक्तियों में कितनी गहरी बात समझा गए अपने मीना और मिट्ठू। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया, अब कहाँ चले सोचो सोचो। हाँ बिल्कुल ठीक, अब चलते हैं खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज का खेल है बड़ा मजेदार, भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको चार वाहनों के नाम बताऊंगी, उन चारों में से एक वाहन किसी खास वजह से बाकी तीन से अलग है, तुम्हें मुझे उसी अलग वाहन का नाम बताना है। तो शुरू करें आज का खेल।
2: जी बहन जी।
1: तो उन चार वाहनों के नाम हैं बस, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक। फिर से बताती हूँ, बस, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक। अब सोच के बताओ इन चारों में से वो कौन सा वाहन है जो है बाकी के तीन वाहनों से अलग।
3: बस।
1: वो कैसे रोशनी?
3: क्योंकि हाँ, बस बहुत तेज चलती है।
1: रोशनी तेज तो जीप भी चलती है, इसीलिए ये सही जवाब नहीं। चलो चलो जल्दी से सोचो।
3: मैं बताऊं बहन जी?
1: हाँ हाँ मीना बताओ।
3: सही जवाब है ट्रैक्टर।
1: बिल्कुल ठीक कहा मीना, लेकिन ये तो बताओ कि ट्रैक्टर बस, जीप और ट्रक से अलग कैसे है?
3: बहन जी वो इसलिए क्योंकि बस, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक में से ट्रैक्टर ही ऐसा वाहन है जो खेती बाड़ी में काम आता है।
1: बिल्कुल सही मीना, शाबाश। बच्चों तुम में से ट्रैक्टर की सवारी किस किस ने की है?
2: मैंने।
1: अच्छा अच्छा समझ गई, ट्रैक्टर की सवारी तुम सब ने की है, तो मजा आया ना बच्चों?
2: जी बहन।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 3 ज्ञान प्राप्ति, पृष्ठ संख्या 40। ज्ञान

दर्शन परिचर्चा। शांति प्रिय अराड मणि के आश्रम में राजकुमार सिद्धार्थ ने प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे उनकी शरीर की आभा से सारा आश्रम प्रकाशित हो गया हो। मुनि अराड ने दूर से ही राजकुमार को देख लिया और उच्च स्वर में कहा, स्वागत है, आइए। राजकुमार धीरे धीरे उनके पास आए। दोनों ने विधिपूर्वक एक दूसरे का अभिवादन किया, कुशल क्षेम पूछा और फिर मृग चर्म बिछी दो चौकियों पर दोनों बैठ गए। मुनि ने राजकुमार को निहारते हुए स्नेहपूर्वक कहा, हे सौम्य, मुझे पता चला है कि आप सभी स्नेह बंधनों को तोड़कर घर से निकल आए हैं। आपका मन सब प्रकार से धैर्यवान है। आप ज्ञानी हैं, तभी तो राजलक्ष्मी को त्याग कर यहां आए हैं। वैसे राजा लोग भोगी हुई राजलक्ष्मी को अपनी संतान को सौंप कर ही वन में आते रहे हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि आप विषयों के बीच रहते हुए युवावस्था में ही लक्ष्मी को बिना भोगे ही यहां आ गए हैं। इस धर्म को जानने के लिए आप श्रेष्ठ पात्र हैं। आप ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर दुख रूपी सागर को पार कीजिए। यद्यपि शिष्य को अच्छी तरह जानकर ही उचित समय पर शास्त्र ज्ञान दिया जाता है, परंतु आपकी गंभीरता और संकल्प को देखकर मैं आपकी परीक्षा नहीं लूंगा। अराड मुनि के ये शब्द सुनकर कुमार परिव्राजक अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, आप जैसे विरक्त की यह अनुकूलता देखकर मैं कृतार्थ हो गया हूं। जैसे देखने की इच्छा वाला प्रकाश को, यात्रा की इच्छा वाला पथ प्रदर्शक को और नदी पार जाने की इच्छा वाला नौका को देखता है, वैसे ही मैं आपको देख रहा हूं। यदि आप उचित समझें तो मुझे जरा और मृत्यु के रोग से मुक्त होने का उपाय बताइए। अराड मुनि ने कुमार से कहा, हे श्रोताओं में श्रेष्ठ, पहले आप हमारा सिद्धांत सुनिए और समझिए कि यह संसार जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में चलता रहता है। पृष्ठ संख्या 41। हे मोह मुक्त, आलस्य अंधकार है, जन्म मृत्यु मोह है, काम महामोह है और क्रोध तथा विषाद भी अंधकार है। इन्हीं पांचों को अविद्या कहते हैं और इन्हीं में फंसकर व्यक्ति पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। इस प्रकार आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त कर आवागमन से मुक्त होती है और अक्षय पद अमरत्व को प्राप्त करता है। अराड मुनि से यह तत्व ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कुमार ने अक्षय पद प्राप्त करने के उपाय पूछे। तब उन्होंने अनेक उपाय बताए और अंत में कहा, यदि आप संतुष्ट हों और उचित समझें तो इनका अनुपालन कीजिए, क्योंकि इन्हीं सिद्धांत का अनुसरण करके प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। अराड मुनि के प्रवचन सुनकर कुमार ने कहा, हे मुनि, मैंने आपसे उत्तरोत्तर कल्याणकारी मार्ग सुना, किंतु मैं इसे मोक्ष नहीं मान सकता। आत्मा के अस्तित्व को मानने पर अहंकार के अस्तित्व को भी मानना पड़ता है। मुझे आपकी ये बातें स्वीकार नहीं है। अराड मुनि के सिद्धांतों को सुनने के बाद भी कुमार को संतोष नहीं हुआ, अतः यह धर्म अधूरा है ऐसा मानकर वे उस आश्रम से निकल गए और अपने लक्ष्य की खोज में आगे बढ़ गए। अराड मुनि के आश्रम से निकलकर कुमार उद्रक ऋषि के आश्रम में आए। वहां भी आत्मा की सत्ता के विचार जानकर उन्हें संतोष नहीं हुआ, अतः परम पद पाने की इच्छा से उन्होंने उद्रक ऋषि का आश्रम भी छोड़ दिया और धीरे धीरे वे
राजश्री गय के नगरी नामक आश्रम में गए। कुछ समय के बाद बोधिसत्व कुमार को एकांत विहार की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने नए रंजना नदी के तट पर निवास किया। वहां उन्होंने 5 भिक्षुओं को देखा जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था और वहीं रहकर तपस्या कर रहे थे। उन भिक्षुओं ने जब इस नवागत साधु को देखा तो वे उनके निकट आए और उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद जन्म और मृत्यु का अंत करने के उपाय के रूप में बोधिसत्व ने निराहार रहकर कठोर तप प्रारंभ किया। वहां उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तप किया और अनेक उपवास व्रत किए। कठोर तपस्या के कारण वे कृशकाय हो गए। वे भोजन के रूप में कभी एक बेर, कभी एक तिल, कभी एक तंडुल यानी चावल का सेवन करते थे। इस कठोर तपस्या के कारण जैसे जैसे उनका शरीर कृश होता जाता था, उनके मुखमंडल का तेज बढ़ता जाता था। मैदा, मांस और रक्त से रहित और मात्र त्वचा और अस्थि वाला उनका शरीर फिर भी समुद्र के समान भरा भरा सा लगता था। पृष्ठ संख्या 42। कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस प्रकार की कठोर तपस्या से व्यर्थ ही शरीर को कष्ट होता है। यह तापस धर्म ना वैराग्य दे पाता है, ना बोध, ना मुक्ति। उन्हें ऐसी अनुभूति भी हुई कि दुर्बल व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता। अतः वे शरीर बल वृद्धि के विषय में विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, भूख, प्यास और श्रम से अस्वस्थ मन के द्वारा मोक्ष भला कैसे प्राप्त हो सकता है। उन्हें लगा कि आहार तृप्ति से ही मानसिक शक्ति मिलती है। स्थिर और प्रसन्न मन ही समाधि पा सकता है तथा समाधि युक्त चित्त वाला व्यक्ति ही ध्यान योग कर सकता है। ध्यान योग के सिद्ध हो जाने के बाद साधक उस धर्म को प्राप्त करता है जिससे उसे दुर्लभ, शांत, अजर अमर पद प्राप्त होता है। उन्हें लगा कि मुक्ति का उपाय आहार पर ही आधारित है, अतः उन्होंने भोजन करने की इच्छा की। कठोर तपश्चर्या से बोधिसत्व अत्यंत कृशकाय और दुर्बल हो गए थे, फिर भी वे धीरे धीरे नए रंजना नदी की ओर गए, स्नान किया और तट के वृक्षों की शाखाओं का सहारा लेकर वे ऊपर आए। उसी समय निकट ही रहने वाले गोपराज की कन्या नंदबाला प्रसन्नता पूर्वक वहां आई। शंख जैसी गोरी बाहों वाली गोपबाला ने नीला वस्त्र धारण किया था और लग रही थी जैसे फेन मालाओं से युक्त यमुना प्रकट हो गई हो। नंदबाला ने पहले श्रद्धापूर्वक बोधिसत्व को प्रणाम किया और उन्हें पायस यानी खीर से परिपूर्ण पात्र प्रदान किया। इस प्रकार के सुभोज्य से तृप्त होकर उन्हें लगा कि वे अब बोधि प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। बोधिसत्व के साथ रह रहे 5 भिक्षुओं ने जब उनका यह आचरण देखा तो उन्हें लगा कि अब यह मुनि भी धर्मच्युत हो गया है, इसलिए वे उन्हें छोड़कर चले गए। उन सबके चले जाने के बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और वे पास ही एक अवस्थ यानी पीपल वृक्ष के नीचे भूमि पर आसन लगाकर बैठ गए। तभी काल नामक एक सर्प प्रकट हुआ, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका था कि यह मुनि अवश्य ही बोधि प्राप्त करेगा। उसने पहले उनकी स्तुति की। काल सर्प ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों से आक्रांत होकर यह पृथ्वी बार बार डोल रही है। सूर्य के समान आपकी आभा सर्वत्र प्रकाशित है। आप अवश्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हे कमल लोचन, जिस प्रकार आकाश में नीलकंठ पक्षियों के झुंड आपकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं और मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही है, उससे लगता है कि आप अवश्य ही बुद्ध बनेंगे।
पृष्ठ संख्या 43। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें नंदबाला नामक कन्या सिद्धार्थ को खीर से भरा पात्र प्रदान कर रही है। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 44। सर्प द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सिद्धार्थ ने तृण लेकर बोधि प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा की। वे महावृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मैं कृतार्थ नहीं हो जाता, इस आसन से नहीं उठूंगा। जब सिद्धार्थ ने प्रतिज्ञा पूर्वक आसन लगाया तो देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए। सर्वत्र नीरवता छा गई। उस समय न मृग बोले न पक्षी। वे धीरे धीरे नितांत एकांत शांत वातावरण में समाधिस्थ हो गए। मार की पराजय। जब महामुनि सिद्धार्थ ने मोक्ष प्राप्ति की प्रतिज्ञा कर आसन लगाया तो सारा लोक अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु सदधर्म का शत्रु मार यानी कामदेव भयभीत हो गया। उसे सामान्यतः कामदेव, चित्रायुद्ध और पुष्पशर कहा जाता है। यह काम के संचार का अधिपति है, यही मार है। उसके विभ्रम, हर्ष और दर्प नाम के तीन पुत्र हैं और अरति, प्रीति और तृष्णा नाम की तीन कन्याएं हैं। उन्होंने जब अपने पिता को भयभीत देखा तो इसका कारण जानना चाहा। मार यानी कामदेव ने अपने पुत्र और पुत्रियों को बताया, देखो इस मुनि ने प्रतिज्ञा का कवच पहनकर सत्व के धनुष पर अपनी बुद्धि के वाण चढ़ा लिए हैं। यह हमारे राज्य को जीतना चाहता है। यही मेरे दुख और भय का कारण है। यदि यह मुझे जीत लेता है और सारे संसार को मोक्ष का मार्ग बता देता है तो राज्य सूना हो जाएगा। इसलिए यह ज्ञान दृष्टि प्राप्त करे उससे पहले ही मुझे इसका व्रत भंग कर देना चाहिए। अतः मैं भी अभी अपना धनुष बाण लेकर तुम सबके साथ इस पर आक्रमण करने जा रहा हूं। इस प्रकार सारी स्थिति समझाकर मार अपने पुत्र पुत्रियों को साथ लेकर उसी अश्वत्थ वृक्ष के पास गया, जहां महामुनि समाधि लगाकर विराजमान थे। उसने पहले महामुनि को ललकारा और फिर धनुष बाण हाथ में लेकर कहा, हे मृत्यु से डरने वाले क्षत्रिय, उठो, अपने क्षत्रिय धर्म का आचरण करो, मोक्ष का संकल्प छोड़ो, शास्त्रों और यज्ञों से लोक जीतकर इंद्रपद प्राप्त करो, नहीं तो मैं अपना बाण छोड़ दूंगा। पृष्ठ संख्या 45। मार की इस चेतावनी का जब मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने अपने पुत्रों और कन्याओं को आगे भेजा और अपना बाण छोड़ दिया, परंतु इसका भी कोई प्रभाव मुनि पर नहीं हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ। वह सोचने लगा, मैंने यही बाण शिव पर छोड़ा था तो एक बार विचलित हो गए थे, परंतु आज यह निष्फल कैसे हो गया है? क्या इस मुनि के हृदय नहीं है, अथवा यह बाण वह बाण नहीं रहा जिसने शिव को पराजित किया था? इस प्रकार सोचते हुए उसने अपनी सेना को याद किया और तत्काल उसकी विकराल सेना उपस्थित हो गई। महामुनि के चारों ओर विचित्र और भयंकर आकृति वाले जीवों की भीड़ सी लग गई। वे विविध प्रकार की रूप सज्जा धारण किए हुए थे। उनमें से कुछ त्रिशूल घुमा घुमा कर नाच रहे थे, कुछ गदा हाथ में लिए इधर उधर कूद रहे थे और सांड की तरह हुंकार रहे थे। रात्रि के प्रारंभ में ही शाक्य मुनि और मार के बीच होने वाले युद्ध के कारण सारा आकाश मलिन हो गया, पृथ्वी कांपने लगी और दिशाएं जलने लगी। उस समय भयंकर झंझावात प्रवाहित होने लगा। आकाश में उस समय ना तारे थे और ना चंद्रमा था। चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया।
इन सब के बीच शाक्य मुनि उसी प्रकार स्थिर चित्त बैठे रहे, जिस प्रकार गायों के बीच में सिंह निश्चिंत भाव से बैठा रहता है। मार ने तब अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया और कहा कि महर्षि को भयभीत करो, जिससे इसका ध्यान भंग हो जाए। आज्ञानुसार सभी महामुनि को डराने लगे, किंतु जैसे खेल में उत्तेजित बालकों को न व्यथा होती है न उद्वेग, वैसे ही महर्षि इन सबके भयंकर रूपों और क्रियाकलापों से न व्यथित हुए और न ही उत्तेजित। जब मार के किसी सैनिक ने अपनी आंखें तरेर कर महामुनि पर गदा से प्रहार किया तो उसका गदा सहित हाथ ही जकड़ कर रह गया। किसी ने शिला और किसी ने वृक्ष उठाकर उन पर प्रहार करना चाहा तो स्वयं ही गिर गए। किसी ने उन पर अंगारों की वर्षा की तो मुनि के मैत्री भाव के कारण वे लाल कमलों की पंखुड़ियां बनकर बरसने लगे। शाक्य मुनि अपने आसन से जरा भी विचलित नहीं हुए। इस भयंकर वातावरण से वन के पशु पक्षी आर्त नाद करने लगे। सभी भयभीत हो गए, किंतु सिद्धार्थ मार की सेना से भयभीत नहीं हुए। इस पर मार को बहुत दुख हुआ और उसे बहुत क्रोध भी आया। तभी किसी अदृश्य जीव ने आकाश से प्रकट होकर मार से कहा, तुम व्यर्थ ही क्यों परिश्रम कर रहे हो? जैसे सुमेरु पर्वत को हवा हिला नहीं सकती, वैसे ही तुम और तुम्हारे भूतगण इस महामुनि को विचलित नहीं कर सकते। चाहे अग्नि अपनी उष्णता छोड़ दे, चाहे जल अपना द्रवत्व त्याग दे, चाहे पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़ दे, लेकिन अपने पूर्व जनों के पुण्य प्रताप से यह मुनि अपना नहीं निश्चय छोड़ेगा। यह मुनि शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित सारे जगत का महावैद्य है। तुम इसके कार्य में विघ्न ना डालो। पृष्ठ संख्या 46। उस अदृश्य जीव ने आगे कहा, देखो क्षमा रूपी जटा, धैर्य रूपी दृढ़ मूल, चरित्र रूपी पुष्प, बुद्धि रूपी शाखा और धर्म रूपी फल देने वाला यह वृक्ष उखाड़ने योग्य नहीं है। बोधि प्राप्ति के लिए जो कार्य पहले इन्होंने किए हैं, उनकी सिद्धि का समय अब आ गया है। यह स्थान भी वही है जहां प्राचीन काल में अनेक मुनियों ने साधना की है। यह स्थान भूतल की नाभि है। ऐसी श्रेष्ठ भूमि पृथ्वी पर अन्यत्र नहीं है जो इस महामुनि की समाधि के वेग को सह सके। इसीलिए हे मार, तुम व्यर्थ परिश्रम मत करो, जाओ शोक मत करो और शांति प्राप्त करो। अपने सभी प्रयत्नों को विफल होते देखकर और इस अदृश्य जीव की ये बातें सुनकर मार अत्यंत खिन्न हुआ और वहां से शीघ्र भाग गया। जैसे अपने सेनानायक के मारे जाने पर सैनिक भाग जाते हैं, वैसे ही मार के जाने के बाद उसके सारे भूतगण भाग गए और मार पर महर्षि की विजय हो गई। मार पर महर्षि की विजय होते ही सारा आकाश चंद्रमा से सुशोभित हो गया। सुगंधित जल सहित पुष्पों की वर्षा होने लगी, दिशाएं निर्मल हो गई। बुद्धत्व प्राप्ति। मार और मार की सेना को धैर्य से पराजित करके शाक्य मुनि ने परम तत्वों को जानने की इच्छा से ध्यान लगाया। ध्यान की समस्त विधियों पर पूरा अधिकार प्राप्त करने के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की परंपरा का स्मरण किया। मैं कहां कहां कब कब अवतीर्ण हुआ हूं, इस प्रकार उन्होंने सहस्त्रों जन्मों का प्रत्यक्ष स्मरण किया। अपने उन अवतारों में उन्होंने जो दया कर्म किए थे और जिस प्रकार मृत्यु प्राप्त की थी, उन सब का प्रत्यास्मरण किया। उन्हें अनुभूति हुई कि यह सारा संसार केले के गर्भ के समान नितांत निस्सार है। द्वितीय प्रहर में उस महामुनि ने दिव्य चक्षु प्राप्त किए।
उन्होंने नीच ऊंच कर्म करने वाले प्राणियों के उत्थान पतन का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिससे उनकी दयालुता और भी बढ़ गई। उन्होंने पाप कर्म करने वालों की नारकीय वेदना और पीड़ा का अनुभव कर दुख का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा कि कर्म बंधनों से बंधे हुए प्राणी किस प्रकार दुख भोगते हैं पर मर नहीं पाते, और जब मरते हैं तो कैसे ये प्राणी निम्न योनियों में पुनः जन्म ग्रहण कर दुख भोगते हैं। पृष्ठ संख्या 47। उन्होंने अनुभव किया कि संसार में छोटे बड़े सभी जीव भूख और प्यास जनित दुखों से पीड़ित हैं। कुछ जीव हैं जो नरक के समान गर्भ नामक सरोवर में गिरकर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। कुछ जीव हैं जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाते हैं और वहां काम की ज्वाला में जलते हैं और तृप्त होने से पूर्व ही स्वर्ग से गिर जाते हैं। उन्होंने जन्म जरा और मृत्यु के कारणों का साक्षात्कार किया। उन्हें लगा जैसे वायु के योग से अग्नि का एक कण भी सारे वन को जला देता है, वैसे ही तृष्णा युक्त काम कर्म रूपी जंगल को जलाता रहता है। उन्होंने ध्यान में समझा कि तृष्णा का मूल कारण वेदना या संवेदना है, जो इंद्रियों वस्तुओं और मन के संयोग से उत्पन्न होती है। उन्हें बोध हुआ कि अविद्या के नष्ट होने पर ही संस्कार क्षीण होते हैं और परम पद का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्हें प्रतीति हुई कि उन्हें अब पूर्ण मार्ग का ज्ञान हो गया है। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में जब सारा चराचर जगत शांत था, महाध्यानी मुनि ने अविनाशी पद प्राप्त किया और वे सर्वज्ञ बुद्ध हो गए। जैसे ही शाक्य मुनि बुद्ध हुए, सारी दिशाएं सिद्धों से दीप्त हो गईं और आकाश में दुंदुभी बजने लगी। बिना बादल बरसात होने लगी, मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी, वृक्षों से फल फूल बरसने लगे और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। चारों ओर धर्म छा गया। इक्ष्वाकु वंश के मुनि ने सिद्धि प्राप्त कर ली और वे बुद्ध हो गए। यह जानकर देवता और ऋषिगण उनके सम्मान के लिए विमानों पर सवार होकर उनके पास आए और अदृश्य रूप में उनकी स्तुति करने लगे। ध्यानावस्थित होकर महात्मा बुद्ध ने जीवन मरण के कार्य कारण संबंधों को भली भांति जान लिया था और मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इस मुक्तावस्था में वे 7 दिनों तक बैठे रहे। तभी उन्हें जगत को बोध प्रदान करने की अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। तभी 2 देवता आए और उन्होंने निवेदन किया, हे भवसागर को प्राप्त करने वाले मुनि, आप इस दुखी जगत का उद्धार कीजिए। जैसे धनी धन बांटता है, वैसे ही आप अपने गुण और ज्ञान को बांटिए। महात्मा बुद्ध ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। तभी अन्य दिशाओं से देवता गण आए और उन्होंने महामुनि को भिक्षा पात्र दिया। निकट से जाने वाले एक सार्थवाह के 2 श्रेष्ठियों ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। पृष्ठ संख्या 48। तब उन्होंने आराड और उद्रक का स्मरण किया, परंतु तब तक वे दिवंगत हो चुके थे। अतः उन्होंने उपदेश देने के लिए उन 5 भिक्षुओं का स्मरण किया जो उन्हें तप से भ्रष्ट मानकर छोड़कर चले गए थे। इस तरह संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए महात्मा बुद्ध ने काशी जाने की इच्छा की। वे अपने आसन से उठे, उन्होंने अपने शरीर को इधर उधर घुमाया और बोधि वृक्ष की ओर प्रेम से देखा। प्रश्न 1, अराड मुनि ने अविद्या किसे कहा है? 2, कठोर तपस्या में लगे सिद्धार्थ ने किस कारण भोजन करने का निर्णय किया? 3, मार कौन था और वह बुद्ध को क्यों डरा रहा था? 4, सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्त करने पर
प्रकृति में किस प्रकार की हलचल दिखाई पड़ी। यहां तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया। और बच्चों की दुनिया यानी कैसी होगी उनकी दुनिया, अगर कोई ऐसा चश्मा मिलता दोस्तों कि वो लगाया और सच में दुनिया अपनी नजर से नहीं बच्चों की नजर से दिखाई देने लगे तो कितना अच्छा होता, कितनी आसान हो जाती जिंदगी, कितनी सुंदर हो जाती और मतभेद भी फटाफट मिट जाते। क्योंकि बच्चे जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी ही जल्दी एक दूसरे से प्यार से बात भी करने लगते हैं, है ना बच्चों?
3: हाँ।
2: लंबी लड़ाई चलती है किसी के यहाँ पे?
3: नहीं,
2: फटाफट सॉरी बोल देते हो।
3: हाँ।
2: अरे वाह, तो यानी बच्चों की दुनिया है सबसे अच्छी दुनिया, है ना?
3: हाँ।
2: तो आज हमारे साथ कौन कौन है इस दुनिया में बातें करने के लिए, एक बार अपना नाम और अपना क्लास बता दीजिए हमारे दोस्तों को।
4: मेरा नाम है खुशी सरकार और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम है याना रावत, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम है देवेश्वरी बयानी, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मैं हूँ हसी सरकार, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ।
2: ओके, तो हमारे दोस्तों को हेलो कर दीजिए आप सभी।
3: हेलो।
2: तो ये प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे चेहरे आज हमारे साथ हैं और आज हम करने वाले हैं थोड़ी बड़ी मगर मजेदार बातें अपने इमोशंस के बारे में। आप लोगों ने शब्द सुना है इमोशंस?
3: हाँ हाँ।
2: क्या होता है इसका मतलब?
3: मींस मूड स्विंग्स।
2: मूड स्विंग्स, ओके।
3: मूड या फिर
2: मूड,
3: कभी भी सैड हो जाना, हैप्पी होना, मूड ऑफ होना।
2: मूड ऑफ होना।
3: हाँ।
2: आपको क्या लगता है क्या होता है इमोशंस का मतलब?
4: इमोशंस का मतलब मुझे लगता है सैड होना, हैप्पी होना, फिर मूड ऑफ होना।
2: मतलब हमारी जो भावनाएं होती है,
3: हाँ,
2: है ना, हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं होती है, एक इमोशन नहीं होता ना।
3: हाँ।
2: बहुत सारी भावनाएं होते हैं, हम कभी बहुत खुश होते हैं, कभी थोड़े खुश होते हैं,
3: कभी बहुत सैड भी होते
2: कभी
3: हैं,
2: कभी सैड होते हैं, कभी ओके ओके भी होते हैं, है ना?
4: मैं ज्यादातर तो खुश ही रहती हूँ।
2: ज्यादातर खुश रहते हो?
3: हाँ,
4: बस सुबह थोड़ा सा
3: हैप्पीनेस इज एवरीथिंग।
2: Okay, और आप?
4: मुझे भी हैप्पीनेस बहुत पसंद है।
2: हैप्पीनेस बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा खुश आप लोग कब होते हो?
3: जब कोई हमें गिफ्ट देता है तब।
2: हाँ, गिफ्ट मिलता है तो अच्छा लगता।
3: हाँ,
2: है।
3: और या फिर कहीं बाहर ट्रिप पे जाते हैं, घूमने चले जाते
4: हैं, कोई अगर हमारी तारीफ करता है तो बहुत,
3: तो हाँ,
2: तो भी खुशी होती है।
4: और कोई हमारी हेल्प करता है, कोई हमें, हमारा बर्थडे है और सरप्राइज करके विश करता है तो मजा
2: आता है, तो मजा आता है, खुशी होती है ना।
4: हाँ। और हमको कुछ दिलाए सरप्राइज, ऐसा कुछ भी अचानक से दे, बहुत खुशी होता है।
2: बहुत खुशी होती है, मतलब अचानक से।
4: हाँ।
2: अच्छा लगता है।
4: हाँ। अचानक वाली चीज में बहुत अच्छी,
2: बहुत अच्छी, आपको अच्छी लगती है।
4: हाँ।
2: अच्छा, और अगर पूछ के आपको गिफ्ट दिया जाए कि क्या चाहिए? वो
3: बोरिंग,
4: बोरिंग, बहुत बोरिंग,
2: बहुत ही बोरिंग,
4: मतलब जैसे हम
7: सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं रहा।
4: हमको जो चाहिए वही दिलाएगा, मतलब
2: आपसे पूछ के कि आपको क्या चाहिए फिर वही दिलाए तो
3: बोरिंग, गिफ्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा।
2: आपको क्या लगता है?
3: कोई मतलब नहीं,
2: कोई मतलब नहीं है,
3: लेकिन खुशी तो होगी
2: थोड़ी खुशी
3: की। हाँ, जो चीज चाहिए थी वो आ गई। हाँ, जो चीज चाहिए थी।
7: मम्मी पापा को तो पता रहता है पहले से कि हम हमारे बच्चे को क्या चाहिए,
2: क्या चाहिए, है ना। भैया, अच्छा सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों को क्या मिला अभी तक? कुछ मिला?
4: मुझे मिले
2: क्या?
4: मम्मी पापा।
2: हाँ।
3: मुझे बाबा।
2: ओके।
4: मुझे मम्मी पापा, बाबा और मेरा बड़ा भाई।
2: फैमिली तो सबसे अच्छा गिफ्ट है।
4: हाँ।
2: है ना, उससे अच्छा तो कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं होता। दैट्स ट्रू। और भगवान,
3: ये बाबा का ज्ञान,
2: नॉलेज, भगवान जो हमें नॉलेज देते हैं, वंडरफुल। अच्छा, आप ये बताओ गुस्सा किस किस को आता है?
4: मुझे
2: आता है।
4: हाँ।
2: आता है ना?
7: थोड़ा थोड़ा
8: आता है। मुझे भी आता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं।
4: मुझे आज सुबह ही आया था क्योंकि ले मैं जब नहा रही थी तब मम्मी मुझे रूम में से छोड़ के चले गई डाइनिंग में।
8: फिर तो मम्मी पे गुस्सा आया होगा
4: बहुत ज्यादा, लेकिन बाद में नॉर्मल हो गया।
8: फिर क्या किया, मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे गुस्सा आ रहा है?
4: नहीं
8: नहीं,
4: मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी अगली बार से मुझे छोड़ के मत जाना अकेला, मुझे डर लगता है।
8: डर लगता है ना?
4: अच्छा,
8: तो आपको पहले डर लगा, मतलब आपको गुस्सा नहीं आया?
4: पहले डर लगा,
8: डर लगा है ना, अलग अलग इमोशन।
4: पहले डर लगा फिर जाके गुस्सा,
8: मतलब हमारा जो कोर है आपने इमोशन फील किया उस वक्त।
4: और मैंने बोला भी था मत जाओ मत जाओ, तो भी कोई जाए तो बहुत गुस्सा,
8: तो फिर गुस्सा आएगा जब बोला है बताया है तो। फिर मम्मी ने बोला नहीं कि वो क्यों गई थी, ऐसा रीजन नहीं बताया?
4: तो छोड़ के चला जाता है, उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है।
8: गुस्सा आता है
4: क्योंकि लिए मुरली क्लास इम्पोर्टेंट थी तो जल्दी जाना था,
8: जल्दी जाना था, कुछ इम्पोर्टेंट था।
4: उसमें हमारी भी गलती होती है, हम जल्दी क्यों नहीं उठते
3: और सारा काम फटाफट क्यों नहीं करते?
8: लेट उठे आप, मम्मी ने पहले उठाया होगा आपको मॉर्निंग में?
4: नहीं
8: नहीं उठाया,
4: पहले मम्मी ने नहा लिया फिर बाद में उठाया।
8: तो मम्मी को बोलना अगली बार से आप मुझे जल्दी उठा दीजिएगा, तो मैं फटाफट तैयार हो जाऊंगी, है ना?
4: हाँ।
8: आप लोगों को गुस्सा कब आता है या कब आया था, कोई इंसिडेंट याद है ऐसा?
4: मुझे सुबह ही आया था।
8: क्यों?
3: मुझे भी सुबह आया था बहुत,
4: मेरे को दोपहर को आया था।
3: Okay. मुझे पता है इसको गुस्सा क्यों आया, क्योंकि ये कॉल कर रही थी और मैंने कॉल नहीं उठाया इसलिए।
4: हाँ, ये ऐसी करती है, हर बार ये ऐसी करती है।
8: क्यों कॉल नहीं उठाती? कभी नहीं उठाती,
4: कभी भी नहीं, कभी कभार। सुबह भी एक बार गुस्सा आया था, दोपहर को भी एक बार गुस्सा आया था।
8: फिर क्या किया आपने जब उसने कॉल नहीं उठाया?
4: फिर बाद में जब मिली ना, मैंने बहुत बोला इसको कि क्यों कॉल नहीं उठाई, मैं तो बोलती हूँ। फिर वो कॉल करती है ना तो मैं नहीं उठाती हूँ, फिर बाद में उठाती हूँ, फिर बोलती हूँ देखा ना मैंने भी तेरा बदला ले लिया।
8: अच्छा, ऐसा क्या?
4: मैं मेरे मतलब मैं कभी बाहर रहती हूँ और कभी मेरे फ्रेंड का फोन आता है और कोई फंक्शन चालू होता है तो मम्मी के पास फोन रहता है, मुझे नहीं पता। फिर घर पे जाके देखती हूँ चार्जिंग को लगाना होता है मोबाइल, तो देखती हूँ तो मिस कॉल आ जाता है, फिर मैं बाद में कॉल करती हूँ, और ज्यादा रात हो जाए तो सुबह कॉल करती हूँ।
8: तो आप तो को अगर इन पे गुस्सा आता है, फोन नहीं उठाया, तो क्या करते हो आप वो गुस्सा दिखाने के लिए?
4: गुस्सा दिखाने के लिए
3: फोन पे गुस्सा निकालती हूँ, तो
8: नहीं
4: जब सामने आती है तब मैं उससे 10-15 मिनट बात नहीं करती,
3: बात नहीं करती तो ये
8: 10-15 मिनट
3: इसका तो मन ही नहीं लगता, फिर
8: मन नहीं लगता
4: ये बात अकेला अकेला इरिटेट
3: लगता, बिना बिना बहनों के कुछ अच्छा है नहीं,
4: रोने टप का हो जाती है ये,
8: रोने जैसे हो जाते हो, फिर
4: बात नहीं करने से रो जाती है।
8: फिर आपको बात करनी पड़ती होगी, अब रोएंगे तो करनी होगी।
4: सुबह भी मेरे को
8: रोए भी कर लेते हो आप, तो बोल रहे हो ना बोर हो जाते हो फ्रेंड्स के बिना, बहनों के बिना।
4: सुबह भी मेरे को गुस्सा आया था।
8: हाँ, क्यों आपको क्यों आया?
4: क्योंकि मैं आज गांव से आई, बहुत थक गई थी, मैं पूरा 10-15 बार सर को, मैम को, प्रिंसिपल सर को फोन किया पर किसी ने नहीं उठाया। जब मैं शांति में नहा रही थी तब जाके, मैं जब मूल्य क्लास में थी तब जाके फोन किया,
8: तब जाके की। फिर आपने बोला उनको, सर को मैम को तो बोल सकते हैं?
4: नहीं
8: नहीं ना,
4: नहीं बोला।
3: मुझे भी गुस्सा आया था।
8: फिर गुस्सा ठीक कैसे किया?
4: बात किया, फिर
8: थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो गया कि कुछ किया उसके लिए?
4: नहीं, अपने आप ठीक हो जाता है,
8: अपने आप ठीक हो जाता है।
3: मैं भी गुस्सा
4: यूं आया और यूं गया,
8: यूं आया और
4: यूं गया। दोपहर में खेल रहे थे हम सभी तपस्या, तो मेरे को देखा नहीं तो भी मेरे ऊपर टाइम आ गया।
3: नहीं
4: तो तब मेरे को
3: बताओ इसको गुस्सा कैसे आया, ये पूछ रही थी इस घास में काटा है कि नहीं, तो इसने उसको उठा के काटे वाले घास में फेंक दिया
4: पैर में चुप थी। मुझे इसके साथ मजाक करना बहुत
8: मजाक करना
4: पर मारती जरूर है,
3: और मजाक भी ऐसे ऐसे करती है
4: किताई वाली है। फिर लास्ट में मेरे को उसको धुलाई करना पड़ता,
8: करनी पड़ती है ना,
4: गुस्सा जाता है
8: गुस्सा, मतलब आप लोग को जल्दी जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी चला भी जाता है।
4: और आज मुरली में बाबा ने बोला भी था कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, पर ये माया की दुनिया में थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता
8: है।
3: ऐसा कोई माया नहीं जिसे गुस्सा आए ना, सिवा
4: माया आक्रमण करती है।
8: बड़ों को भी आता है गुस्सा कि सिर्फ बच्चों को गुस्सा आता है?
3: बड़े को आता है,
4: बड़े बूढ़े बुजुर्ग बोले आपको भी गुस्सा आता है?
8: मुझे भी आ जाता है, ठीक करती हूँ, उस पर काम करती हूँ,
3: बाबा को याद करके मेडिटेशन करके
8: मेडिटेशन करते हैं उसके लिए,
7: छोटे बड़े बुजुर्ग सबको
8: सबको आता है ना। सबसे ज्यादा खतरनाक पुस्तक किसका होता है?
3: एनिमल्स का।
8: एनिमल्स का
3: तो फिर कुछ
7: डंडा
3: डंडा
7: मतलब जो भी हाथ की आए वो सीधा फेंक के मारेंगे या फिर आके
3: पिटाई
8: पिटाई। हाँ मेरी भी पिटाई हुई है बचपन में।
7: मजा भी आता है और रोना भी आता है।
3: हाँ। फिर बाद में मनाने भी आते हैं।
8: मम्मी आती है मनाने? हाँ। के लिए फिर क्या आप जाते हो मम्मी के बाद?
3: नहीं
7: मम्मी आती मनाने।
8: मम्मी आती है।
7: मैंने कोई शैतानी की और मम्मी ने मारा तो मैं थोड़ा देर रोती हूँ। हाँ। फिर मम्मी को जाके खुद से ही सॉरी बोल देती
3: हूँ। क्यों? क्योंकि फिर मम्मा के बिना भी नहीं
8: लगता।
7: एक दिन मम्मा से बैठने की तो ऐसा लगता है हम दूसरे अलग ही दुनिया में आ गए।
3: बोरिंग, बहुत बोरिंग।
8: मम्मी से बात करने के लिए कितना टाइम लगा? कितनी देर आप लोगों ने मम्मी से बात नहीं की है? कितना मैक्सिमम टाइम है वो?
3: मैंने तो 10 मिनट से ऊपर कभी नहीं किया।
8: 10 मिनट और आपका?
7: 5 मिनट
8: आपका?
7: 1 मिनट
8: आपका?
7: 1 सेकेंड
8: 1 सेकेंड बाप रे, मतलब मम्मी से फटाफट बात करनी होती है ना, चाहे थोड़ा बेलन भी पड़ जाए कोई
7: लगता है बात नहीं करते ना लेकिन
8: ज्यादा प्यारी मम्मी करती है।
7: मम्मी जब मारती है
9: जब मम्मी के साथ बात करने लगो ना बहुत देर मतलब रात हो जाती है बात करते मतलब बहुत देर तक बात करते
3: जिंदगी की बात एक साथ
7: लगता है कि पूरा जिंदगी की बात मम्मी को भी बोलू मम्मी के साथ ही हमेशा रहू
3: टाइम स्पेंड करें। हाँ
7: मम्मी के साथ ही जो करना है करूँ।
9: और अगर कभी मम्मी ने ज्यादा ही मार दिया तो हमको आदत बन जाती लगता नहीं फिर ज्यादा
8: कोई फर्क नहीं
7: पड़ता आदत हो गई
9: मुझे पीठ पापा किसने मारा ना अच्छा लगता है मसाज होती है उसके लिए मम्मी को बोलती हूँ। हाँ। मैं गाल पे मत मारना पीठ पे मारना,
8: पीठ पे मारना। मम्मी का भी काम हो जाएगा कुछ भी हो जाएगी
9: पापा भी बहुत दुलाते पापा मुझे नहीं मारते कभी ज्यादा शैतानी की तो कभी
7: कभी कभार थोड़ा थोड़ा मारते
9: मेरे पापा
7: मारते तो ऐसे लगता ही नहीं है कि किसने हमको मारा।
9: जब मेरे पापा मुझे
8: अच्छा पापा भाइयों की पिटाई करते हैं कि आपकी करते
7: भाइयों की मम्मी लोग हमारे करते भाई लोग
8: वो लोग ज्यादा शैतानी करते होंगे पापा लोग को फिर
7: और हम भी पापा लोग
9: को जब पापा मुझे कभी स्लैप करते हैं तो मैं हंसती हूँ रोती नहीं हूँ लेकिन जब मम्मी मारती तब मैं रोती हूँ।
8: ऐसा क्यों? पापा की स्लैप पे क्यों नहीं रोते हो मम्मी के पे क्यों रोते हो?
7: क्योंकि पापा हंस हंस की स्लैप करते हैं।
9: हाँ।
7: और ऐसे करते
9: पापा थोड़े धीर मतलब थोड़ा सॉफ्ट और मम्मी ज्यादा गुस्सा है तो थोड़ा जोर से
7: चढ़ाते
8: पापा लोग तेज नहीं मारते बहुत प्यार से ऐसे थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं।
3: हाँ, गुस्सा
9: पर गुस्सा देते नहीं और जब पापा को गुस्सा आता तो मैं हंसती हूँ।
7: हाँ
3: हंसी आती है उनके
7: पापा लोग की पापा भी अच्छे हैं पर मम्मी लोग थोड़ा ज्यादा गुस्सा करते हैं क्या ना कभी कभार ऐसे भी होता है मम्मी लोग डांटते हैं पर हम मतलब सुनते नहीं है फिर पापा आते हैं
8: गलती भी होती है ना।
7: हाँ फिर ना चॉकलेट वगैरह लेके आते हैं ना तो पापा हमको मम्मी चले जाते किचन में पापा झूठी झूठी ना मारने का एक्टिंग करते हैं।
9: डंडा ऐसे पीटते
3: नीचे चॉकलेट देते
8: मतलब मम्मी के सामने ऐसे दिखाने के लिए कहीं कहीं और
9: चिल्लाने के लिए बोलता है
8: आपको
9: कि एक्टिंग करो
8: एक्टिंग करो कि आपकी पिटाई हो रही है उसकी।
9: हाँ। मम्मी हम जब बाहर आते हैं तो बोले खा के मजा आया मैंने बोला हाँ बहुत मजा आया
8: उनको पता ही नहीं है कि डंडे की जगह चॉकलेट खाई है।
9: और कभी मम्मी मुझे मार रही हो और मेरा भैया घर पे हो या जब कॉलेज में नहीं होता तो वो घर पे होता है तो घर पे वो रहा और मम्मी मुझे मार रही है हॉल में भैया पढ़े करते करते हॉल में आया तो देखते हैं कि मम्मी देवेश्री को मार रही है और मम्मी को बोलते मम्मी और मार
8: बताओ मुझे लगा बचाता है आपका तो बड़ा भाई और पिटाई भी करवाते हैं कभी कभी ना।
9: हाँ,
8: बचाते ना भाई छेड़ने में
9: ज्यादा है
8: बचाता ज्यादा
3: और हाँ। और अगर पापा ने यदि हमें मारा भी नहीं मम्मी के सामने बच्चा छोड़ दो तो मम्मी बोलेंगे आपने बिगाड़ा है।
9: हाँ, ऐसे तो जरूर बोलते
8: सबकी मम्मी ऐसी आप भी ने बिगाड़ा है। हाँ। पापा लोगों को थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है हमारे।
10: हाँ। ऐसी बुलाई आपकी हाँ। बेटी है ना, आपकी जैसी हुई है।
11: हाँ। सिर पे चढ़ा के रखे हो।
8: हाँ। सिर पे चढ़ा के रखा है ना, आप ही ने बिगाड़ा है। आप लोग को याद हो गया ना सारे डायलॉग्स, मम्मी क्या बोलने वाली है पता चल जाता है पहले से।
9: और कभी हम फैमिली मूवी टीवी पे ही देखते रहे, द टूरिस्ट फैमिली वो एक नवी मूवी आई थी, तो हम घर पे ही देख रहे थे और मम्मी का क्या है उसको बीच में का स्टोरी देखा ना थोड़ा स्टार्टिंग का, तो आगे का पता चल जाता है।
8: अच्छा।
9: फिर मम्मी को हम, मेरा भाई और मैं बोलते
8: बताओ,
9: मम्मी बताओ मैं देखने का क्या।
11: हाँ, मम्मी लोग बता ही देते हैं।
9: हाँ, मम्मी को आगे की पता रहता है। कैसे? हाँ। पता नहीं
8: कैसे, पता नहीं ना,
9: नहीं।
8: तो बता देते हैं। ओहो, सस्पेंस खराब हो जाता है।
11: मजा नहीं आता, पता चल जाता है। तो
9: फिर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, जो मम्मी ने नई मूवी देखा है उसको हम लगाते हैं।
8: हाँ, ताकि कोई सस्पेंस नहीं खराब
9: रहता
8: है ना,
9: तो भी मम्मी को पता चल जाता है।
3: हाँ, क्योंकि कुछ वैसा रहता है ना जो हमारे घर के अंदर भी होता है,
9: मतलब उनको। और कुछ ऐसी मूवीज होती है जो दूसरी कोई मूवी में वैसा हुआ होता है वही मूवी में थोड़ा डाला।
3: हाँ, और हर मूवी में यही है कि एंड में जाके अच्छाई जीतती है।
9: ऐसे भी होता है, हमें नहीं पता चलता कि मम्मी ने ये मूवी देखा है, मम्मी बोलते हैं ये नहीं देखा मैंने, फिर बाद में वही बोल देते कि मैंने देखा है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है।
8: अच्छा, आप हम इमोशंस के बारे में बातें कर रहे हैं ना, आप लोग को रोना किस बात पे आता है, अपसेट या सैड कब लगा था, कुछ याद है?
11: मैं कल सुबह हुई थी,
8: आज सुबह बहुत सैड लगा हो, रोना आया हो बहुत,
11: कल भी रात को।
9: मैं तो आज सुबह ही हुई थी, मम्मी चले गई थी उसके लिए।
8: तो मम्मी चले गई तो उसमें सारे इमोशंस आ गए, डर भी लगा,
9: रोना भी आया,
8: गुस्सा भी आया, रोना भी आया। और आप लोग को कुछ इंसिडेंट ऐसा याद है क्यों रोना आया था, क्या हुआ था?
11: सुबह थोड़ा पापा बहुत डांट रहे थे
8: तो रोना आया।
9: हाँ, और मम्मी ना मतलब सुबह ना मतलब थके आ रहे हम आए थे गाँव से, तो मम्मी ना जो जबरदस्ती स्कूल भेज रहे थे उस टाइम मुझे रोना आया।
8: हाँ, थक गए थे ना। हाँ, मन नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन मम्मी को लगा होगा ना पढ़ाई नहीं छूटे बहुत समय हो गया। हाँ,
11: कल ट्रेन में मुझे मेरे भाई डांट रही थी, मार रही थी
8: इसलिए रोना आया ना।
9: मुझे मेरे भाई की वजह से छक्का लगा।
8: क्यों?
9: क्योंकि जब मेरा भाई मतलब मैं बहुत छोटी थी उससे, जब वो ना मेरी इच्छा था फोर्थ में, तब वो ज्यादा मोबाइल देख रहा था, कुछ तो खेल रहे थे पता नहीं अभी वो तो। और मम्मी नहा के आई, फिर मम्मी आई, मम्मी ने देखा ये कब से मोबाइल चला रहा है, जब से मम्मी नहाने को गई तब से, उसके पहले से मतलब। तो मम्मी आई, उसको सांची गर्म करी और भैया के पास ले, मैं गई बीच में हाथ डाली।
8: आप ही को लग गया? मतलब भाई को बचाने गए थे आप।
9: हाँ।
8: भाई से कितना प्यार है ना आप लोग को, सबको एक दूसरे से बहुत प्यार है। अच्छा, बिना मम्मी की डांट के या मार के या घर वालों के बिना और किसी बात पे कभी रोना आया आप लोगों को, अपसेट हुए हो बहुत?
9: हाँ।
8: कोई स्कूल में भी डांट या मार की बात नहीं कर रही मैं, डांट या मार नहीं पड़ी हो, उसके अलावा कभी कोई चीज बुरी लगी हो, हर्ट हुए हो आप?
9: हाँ, जब हम सोसाइटी में खेलते तो एक साथ मिलके खेलते, और कभी मेरे फ्रेंड ने मुझे देख के इग्नोर किया तो बहुत गुस्सा आता है। और स्कूल में भी अगर मेरे फ्रेंड ने मुझसे बात नहीं की तो आता ही है।
8: और आप लोगों को?
3: मुझे तब गुस्सा आता है जब छोटी छोटी बातों पे ये गुस्सा हो जाती है ना, तब तो मुझे गुस्सा।
8: रोना कब आया आप लोगों को? बहुत अपसेट का फील।
9: मुझे ना मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे मतलब उन लोग अपना टीम बना लेते हैं और मुझे अकेला छोड़ देते हैं।
8: हाँ।
9: और मेरी चीज को ही लेके फिर खाते हैं, मेरी चीज से ही कुछ करता है, इसलिए मुझे बहुत अपसेट,
8: बहुत बुरा लगता है ना। हाँ, हर्ट होता है।
9: हाँ, और पहले मेरे सारे चीजों को इस्तेमाल करते हैं फिर मुझे ही छोड़ देते हैं।
3: हाँ, मतलब के लिए,
8: मतलब के लिए।
3: हाँ,
11: जैसे कि स्कूल गए और बेस्ट फ्रेंड की तबीयत खराब है तब थोड़ा रोना आता है। हाँ। ये पूरा दिन उसके साथ ही रहते हैं।
3: हाँ, और अगर कोई बहस
11: करते हैं
3: जी तो तब
11: लोग स्कूल भी नहीं आए, फिर साथ बात भी नहीं करे तब थोड़ा बुरा लगता है।
9: और कभी हमारी जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्कूल में नहीं आई तो
3: गुस्सा आता
10: है, लगती है
3: मुझे तो गुस्सा आता है बहुत,
8: गुस्सा आता है
3: क्यों
8: नहीं आई, मैं अकेले क्या करूंगी,
10: इसको क्या हुआ था,
4: मुझे नाराज
10: क्या लगा होगा,
4: गुस्सा भी आता है
3: रोना भी आता है,
8: साथ में होता है सब कुछ,
4: ज्यादातर रोना आता है।
8: लेकिन फिर आप लोग उसको कैसे ठीक करते हो, क्या करते हो?
10: वो जब आती है तो बहुत खुश आता है।
3: नहीं मैं तो मेडिटेशन करके।
8: अच्छा कितनी देर लगती है, मान लो आपको रोना आ रहा है गुस्सा आ रहा है, कितनी देर लगी उसको ओके ओके होने में?
10: जब तक सर नहीं आए तब तक मैं तो पूरी साइड ऑफ हूँ, जब सर आते हैं तब
8: आंसू पोंछ क्योंकि पढ़ाई करनी है।
3: जब तक मैं मेडिटेशन ना करूँ तब तक
8: ओके। और आप?
4: वन मिनट
8: अपने आप ही या कुछ करते हो उसके लिए?
4: अपने
8: आप रो रहे हो फिर एक मिनट में एकदम ठीक हो जाते हो फटाफट?
4: नहीं तो मेरी कोई फ्रेंड होती है और मैं रो रही हूँ कुछ फनी एक्टिंग करके हंसा देती है
8: तो ठीक हो जाता है सब कुछ।
4: मेरे को तो मेरी दोस्त ही बनाते हैं
10: और मुझे 2 मिनट में हंसना आता है।
8: कैसे आप कैसे ठीक होते हो?
4: मतलब मैं किसी बात में सर ने मारा है कुछ भी हुआ तो मैं रोती हूँ ना, तो मेरे दोस्त दूसरे सीट पे बैठते हैं, मैं दूसरे सीट पे बैठती हूँ, वो सर पढ़ा रहे वो आके तो भी मैं कुछ मतलब कुछ भी करके हंसाती है,
8: हंसा देता
4: है सर से, वो डांट खाती है तो इसका कुछ नहीं होता।
8: और आपके फ्रेंड्स जैसे मान लो आपको शामिल नहीं कर रहे किसी चीज में, आपको बुरा लग रहा है तो फिर क्या करते हो आप?
4: मैं कुछ नहीं करती फिर मैं मतलब मेरे भाई लोग भी है स्कूल में, मैं उनके साथ खेलती हूँ, फिर उन लोग जब मेरे से मिलने की कोशिश करते हैं फिर मैं उनको अनदेखा कर देती हूँ क्योंकि बाद में वो फिर से धोखा देने वाले। वैसे ही मैं खेलती रहती हूँ, मतलब ऐसी बाबा से बात करती हूँ, ऐसे ही मैं अकेला मतलब बाबा और मैं, मतलब हमारी एक दीदी है वो इसके क्लास भी पढ़ते, उसका नाम है पलक, तो उसने क्या बोला कि तुमको कोई भी सताए या कुछ भी करे मेरे को बोलना, मैं उसको समझाती हूँ, तो वो दीदी का थोड़ा चाहता है स्कूल हम उसको ही बोलते तो वो ना प्रिंसिपल सर को डायरेक्ट जाके बता देती है, प्रिंसिपल सर उनको डांटते हैं।
3: और अगर मैं कभी रोती हूँ क्लास के अंदर तो फिर वो लोग भी शांति से रोने का नाटक करते हैं
8: ये देख के,
3: और स्कूल मनाने के लिए।
8: अच्छा आपको मनाने के लिए कि हम भी अपसेट हैं, तुम अपसेट हो तो।
10: और स्कूल में और हमारे सोसाइटी में कोई कोई बच्चे अच्छे भी होते हैं कि हम उनको हमारी जो प्रॉब्लम है हम क्यों अपसेट हैं वो बता सकते हैं। हमारे सोसाइटी में ऐसी एक लड़की है जिसको मतलब एक बार मैंने पूछा था, हम एक बच्चे के घर पे थे छोटे, वो हमारा भाई लगता है हम उसको भाई मानते हैं, तो वो एक लड़की थी उसका नाम मृदुला है, तो वो आ रही थी और मैंने पूछा कहाँ मतलब सॉरी जा रही थी, मैंने पूछा कहाँ जा रही है और मैंने ऐसा किया था गलती से मेरा हाथ ऐसा चला गया था, वो ऐसी गिरी बस घुटने को लगा भी नहीं उसके, तभी
8: रोने लगी
10: उसकी मम्मी मेरे को चिल्ला रही है मेरी कोई गलती नहीं है तो भी, और मैट डाली थी अभी तो कुछ नहीं लगेगा ना।
8: फिर क्या किया आपने?
10: कुछ नहीं
8: सुना, जब उन्होंने डांटा तो फिर बुरा लगा होगा आपको कि क्यों डांटा मेरे को,
10: बहुत
8: है ना,
10: और मेरी
4: बिना मतलब के डांटा,
8: बिना मतलब की डांटनी अच्छी
10: और ऐसी फ्रेंड है कि मैंने मेरी एक दूसरी फ्रेंड थी तो उसको उसने वो भी मेरे साथ थी और एक दूसरी फ्रेंड थी जो मेरे साथ नहीं थी, फिर हम उसको बुलाने गए थे फिर मैंने ऐसा ऐसा बोला ऐसा ऐसा हुआ था तो वो हंसने लग रही है
8: उसको ये सुन के हंसी आ गई ना। आप सुना रहे हो कि आपको गुस्सा आया और वो सुन के हंस रही है
10: फिर
8: ये तो गलत बात है ना, सुनना चाहिए ना ध्यान से अपने फ्रेंड को ही कुछ बोले तो है ना कि भाई उसको बुरा लगा, कोई बात नहीं आपको नहीं बुरा लगा बट उसको बुरा लगा ये बात सुन के, है ना,
10: ये सुनती भी है और हंसती भी है और रोती भी है और गुस्सा
8: फ्रेंड्स चिढ़ाते भी है ना,
10: ये बहुत चिढ़ाती है,
8: मस्ती भी करते हैं फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ ना, एक दूसरे को चिढ़ाते
10: ज्यादातर फ्रेंड्स,
8: लेकिन शेयर करना जब कोई शेयर करता है हमसे और उसको बहुत बुरा लगा है तो उसको फिर ध्यान से सुनना चाहिए, है ना, प्यार से सुनना

0: किसको बताते हैं?
1: मैं, मम्मी, पापा, सिस्टर्स.
0: जो सबसे पहले मिला, जो सबसे पहले मिला इनमें से, या ढूंढते हो किसी को कि उसी को बताना है?
1: नहीं, सबसे पहले मम्मी को बताती हूँ.
0: सबसे पहले मम्मी को
2: बताती हूँ. मैं सबसे पहले मम्मी को बताती हूँ, फिर पापा को बताती हूँ. नहीं, सबसे पहले बाबा को बताती हूँ, फिर मम्मा को बताती हूँ, फिर पापा को बताती हूँ, फिर इसे बताती हूँ.
0: सबको बताती?
2: नहीं, इस तक ही.
0: इस तक ही चार लोग है ना?
2: इसको बताती
0: हूँ. मतलब हमारे इमोशंस जो होते हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, है ना? और हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारे हाथों में है.
1: और कभी मैं, मतलब मैं नीचे गिर जाऊँ, पत्थर पे गिरी हूँ और खून निकले, तो भी मैं हंसने लगती हूँ. मेरे दोस्त बोलते, अरे भाई तेको लगा है,
0: तो भी हंसी आती है आपको? दर्द नहीं होता?
1: नहीं
0: होता आपको? नहीं होता?
2: मैं तो खेलने लगती
1: हूँ. मैं सीधे बाबा को बुलाती हूँ. मेरी दीदी जब रोती है ना, तो मेरे को रोना चाहता
0: जब...
1: एक बार मैं साइकिल से गिरी थी, जोर से चला रही थी, ब्रेक भी नहीं था मेरे साइकिल को. डायरेक्ट ऐसे गिरी थी और
0: चोट लगी होगी,
1: इधर लगा था. मैं बोली, मैं भी साइकिल से लगा है, कुछ नहीं लगा है.
0: साइकिल से लगी? हाँ,
1: तो भी मैं हंस रही थी.
2: अरे मैं तो साइकिल चला रही थी और पीछे देख रही थी, एकदम से जाके मेरी साइकिल पत्थरे से टकरा गई. तो फिर जैसे ही मैं गिरी ना, घुटना फूट गया, लेकिन फिर भी मैं खेल रही थी.
0: तो आप लोग को चोटने में दर्द नहीं होता?
2: नहीं, बाबा को बुला लेते.
1: क्या हुआ, हमारे, मैं पहले जहाँ पर रहती थी वहाँ पर ऐसा थोड़ा सा ढलान है पूरा, फिर वहां से साइकिल चलाई, नीचे आई, मतलब थोड़ा सा बचा था नीचे आने में, धपास, फिर चोट लगी थी तब. और एक बार ना,
0: चोट लगती है तो दर्द हो सकता है.
1: हाँ, पर मैं एक दिन क्या हुआ, स्कूल जा रही थी ना, तो अपना 6 बार गिरी थी. गिरी उठी, फिर गिरी उठी, फिर ऐसे ऐसे करते करते फिर यहाँ पर पूरा घाव बन गया था.
0: लेकिन ध्यान रखना चाहिए, साइकिल जब चलाएं
2: तो भी बाबा को बुला लो.
1: तो भी मैंने रोया नहीं, तो
0: और स्पीड में बहुत फास्ट फास्ट नहीं चलानी चाहिए. अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले अपना ध्यान तो मैं ही रखूंगी ना, है ना? अब भगवान भी हमारा ध्यान कैसे रखेगा जब हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो, है ना? आप लोगों ने सुना है एक वो कहावत है, क्या मैं खुद ही भूल गई? जब हम खुद अपनी मदद करते हैं तब भगवान हमारी मदद करता है. सुना?
1: जब मेरे को चोट लगी थी ना, तब मम्मी जब प्यार कर रही थी ना, तभी मेरे को थोड़ा देख के रोना है. नहीं, जब मैं गिरी थी ना, मेरे को दौड़ी थी, नहीं फील हो रही थी.
0: होता है, चोट लगती है तो रोना आता है. लेकिन कहते हैं, मुझे कहावत याद आ गई, हिम्मत मर्दा मदद खुदा. तो इसलिए हिम्मत रखनी है, खुद की मदद करनी है, और फिर भगवान भी हमारी मदद करेंगे, है ना? तो बहुत मजा आया आप लोगों से ढेर सारी बातें करके. फिर आप लोगों ने इतनी सारी बातें शेयर की तो और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं हम सभी, है ना, शेयर करके. तो चलो, फिलहाल अपने जो दोस्त हमें जो रेडियो पे सुन रहे हैं वो भी हमारे फ्रेंड्स बन गए हैं, उन्होंने हमसे इतनी सारी बातें करी हैं, उनको भी हम कहते हैं बाय बाय दोस्तों.
3: बाय बाय दोस्तों.
0: रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए,
3: मुस्कुराते रहिए.

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 16वां पाठ, कौन करेगा यह काम, पृष्ठ 146। क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं जैसे बहुत बड़े कूड़े के टीले में घुसकर उसकी सफाई करना, या जैसे सड़क पर बने पुल की सफाई करना, जैसे सड़क पर बने सीवर में घुसकर वहां की सफाई करना, स्लम की पतली गलियों में घुसकर वहां की सफाई करना? लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? पृष्ठ 148। हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की, ये हैं उस बातचीत के कुछ हिस्से। प्रश्न, आप कब से यह काम कर रही हैं? करीबन 20 साल से, जब से पढ़ाई खत्म हुई है। आप आगे क्यों नहीं पढ़ी, कुछ और काम मिल जाता? पढ़ने के लिए पैसे चाहिए? वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं।
6: मतलब? उत्तर था, बाप दादाओं से, उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज्यादातर लोग यह काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम कर रहे हैं। प्रश्न, ऐसा क्यों? उत्तर मिला, ऐसा ही है, हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। यह अंश स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से लिया गया है। लिखो, जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं उनसे बातचीत करो और लिखो, वे कब से यह काम कर रहे हैं, वे कहां तक पढ़े हैं, क्या उन्होंने और कोई काम ढूंढने की कोशिश की, क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे, उनको इस काम में क्या परेशानियां आती हैं। पृष्ठ 149। यहां एक चित्र दिया गया है, चित्र में काम करते हुए लोग दिखाए गए हैं, जैसे गाय का दूध दुहना, एक दुकान पर सब्जी बेचना, ट्रैफिक पुलिसमैन, बाहर सब्जी बेचना, बच्चे की देखभाल करना, बाग के माली का काम, स्कूल में पढ़ना, स्कूल में पढ़ाना, स्कूल का चौकीदार, कूड़ा उठाने वाले ट्रक में बैठकर सड़क का कूड़ा उठाने का काम, बस में स्कूल जाना, बस ड्राइवर का काम, सड़क की सफाई, ठेले पर सब्जी बेचना, बर्तन धोना, घर का काम करना, दफ्तर में बैठकर कंप्यूटर पर काम करना, पेंटिंग करना, ठेले पर सामान ढोना, कूड़े में से सामान बीनना, दुकान पर काम करना, घर का खाना पकाना, मकान बनाने के लिए मजदूरी करना, सब्जी बेचना। अब आपके लिए काम। इस चित्र में जिन कामों को दिखाया गया है उनमें से कोई 5 काम तुम्हें करने हों तो तुम कौन कौन से काम चुनोगे और क्यों? इनमें से कौन से काम तुम नहीं चुनोगे और क्यों? पृष्ठ 150। चर्चा करो, तुम्हारी समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते और क्यों? फिर इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें करना कोई भी पसंद नहीं करता? कल्पना करो, अगर कोई भी यह काम ना करे तो क्या होगा? यदि एक हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा? कचरा साफ करने के कुछ अलग तरीके, जैसे मशीन या और कोई तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। अपने सोचे गए तरीके के चित्र बनाकर दिखाओ। यहाँ बच्चों के बनाए कुछ चित्र दिए गए हैं, जिनमें बच्चों ने दिखाया है कि मशीनें अपने आप कूड़ा साफ कर रही हैं। क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की है? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। यह किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है। पृष्ठ 151। पुरानी यादें। नारायण, यानी जिसे प्यार से बावला कहते थे, जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं, जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी। फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथ से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव देसाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है, यह बात तो ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों, इससे सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती? कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा ही है, सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। यह अंश नारायण भाई देसाई ने लिखा था। इस अंश को संत चरण रज सेविता सहज नामक किताब से लिया गया है। बताओ, गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं? पता करो। गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों में से होते तो तुम क्या करते? पृष्ठ 152। तुम्हारे घर में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर? टॉयलेट कौन साफ करता है? गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया और क्यों? जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है, लिखकर समझाओ। नारायण और बाबा साहब के बचपन की बात तो अब कई साल पुरानी है, क्या आज हालात बदल गए हैं? ऐसा भी एक बचपन, यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है, नन्हे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। स्कूल में एक बातचीत, आज का सच। हेतल बोला, मैं हेतल हूँ, यह मीना है, हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। प्रश्न, स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? मीना बोली, हम ग्राउंड साफ करते हैं। प्रश्न था, सब बच्चे? हेतल बोला, नहीं, सब बच्चे नहीं करते। मीना बोली, हमें संडास भी साफ करने पड़ते हैं, सबको दिन बांट दिए गए हैं। मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगल, यह बुध को, ऐसे हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं। हेतल बोला, 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। प्रश्न था, तुम ही क्यों करते हो, सब बच्चे क्यों नहीं करते? हेतल बोला, हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया तो मार पड़ती है। यह अंश स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से लिया गया है। पृष्ठ 153। बताओ, तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है? क्या क्या साफ करना पड़ता है? क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं? अगर हाँ तो किस तरह की? अगर मदद नहीं करते तो क्यों नहीं करते? क्या सभी बच्चे सभी तरह के काम करते हैं? काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छूट जाती है?

लड़के और लड़कियां एक ही तरह के काम करते हैं। घर में तुम किस तरह के काम करते हो? क्या लड़के लड़कियों और मर्द औरतों के किए जाने वाले कामों में समानता है? क्या तुम इसमें कुछ बदलाव लाना चाहोगे? चर्चा करो। क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं, तो क्यों? क्या बदलाव होना जरूरी है? गांधी जी के पसंदीदा भजनों में से एक भजन का छोटा सा हिस्सा हम दे रहे हैं। यह भजन गुजराती भाषा में है। अपने आसपास के लोगों की मदद लेकर इस भजन का मतलब पता करो और इसके बारे में सोचो। भजन है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे अपमान सहे जे मन अभिमान ना आने रे। हम क्या समझे? गांधी जी समझते थे कि हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? अगर ऐसा हो तो क्या-क्या बदल सकता है? तुम्हारे घर में कुछ बदलाव आ सकते हैं? कौन करेगा?

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.
1: हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. आप सुन रहे हैं दिल है छोटा सा, भावना बड़ी सी.
2: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात.

0: जी हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी बड़ी बड़ी भावनाएं महसूस होती हैं, डर, खुशी, ईर्ष्या, गुस्सा, मगर उनके पास इनके लिए ना तो नाम है ना समझने का तजुर्बा। तो ऐसे में माता पिता या देखभाल करता होने के नाते हमें उनकी भावना को नकारना या अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे मान्यता देनी चाहिए, बच्चों को उसे समझने में मदद करनी चाहिए। मैं जब भी अपनी बेटी के साथ होता हूँ तो उसकी भावनाओं की पुष्टि करता हूँ, क्योंकि आज हम उन्हें खुद की भावनाएं समझने में मदद करेंगे, तो आगे चलकर उन्हें अपने आप को समझने में मदद मिलेगी। लगता है एल्मो को भी कोई बड़ी भावना महसूस हो रही है। चलिए सुनते हैं एल्मो के मम्मी पापा कैसे उसे समझते और समझाते हैं।
1: एल्मो अपना नया बाजा बजाएगा, पी पी पी, जैसे पीकू बजाती है। ओहो, ऐसे नहीं, एल्मो को ठीक से बजाना है, पीकू जैसे। बजना भी नहीं आता, एल्मो को नहीं बजाना।
2: एल्मो, एल्मो, तुम तैयार हो? तुम्हारा पीकू के साथ खेलने का टाइम है, चलो मैं तुम्हें पीकू के घर छोड़ाऊं।
1: एल्मो को अभी पीकू के घर नहीं जाना।
2: अभी नहीं जाना? थोड़ी देर बाद जाना है एल्मो।
1: अभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना।
2: क्या हुआ एल्मो, तुम्हारा खेलने का मन नहीं है? तुमने तो कहा था अब तुम पीकू को बाजा बजा कर सुनाओगे।
1: एल्मो को बाजा नहीं बजाना, कभी भी नहीं।
2: बाजा नहीं बजाना तो कुछ और खेल लेना।
1: एल्मो को पीकू के साथ कुछ नहीं खेलना।
2: पीकू के साथ नहीं खेलना? क्या हुआ एल्मो, पीकू से कोई लड़ाई हुई है क्या?
1: एल्मो पीकू की तरह बाजा नहीं बजा सकता, इसीलिए एल्मो पीकू के साथ नहीं खेलेगा।
3: ओ ओ ओ, लगता है एल्मो को पीकू के सुर में बाजा बजाने से जलन हो रही है, इसलिए वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता।
2: अच्छा एल्मो, यहाँ आओ मेरे पास। क्या तुम्हें लगता है कि पीकू तुमसे अच्छा बाजा बजाती है?
1: हाँ मम्मी, एल्मो जब बाजा बजाता है तो उसमें से ऐसी आवाज आती है, पर जब पीकू बाजा बजाती है तो पी पी पी पी पी ऐसी आवाज आती है।
2: और एल्मो को ये सोचकर अच्छा नहीं लग रहा।
1: एल्मो को एकदम चू चू चिड़चिड़ लग रहा है ऐसे।
2: ओ एल्मो, लगता है कि तुम्हें एक बड़ी भावना का एहसास हो रहा है।
1: बड़ी भावना?
2: हाँ एल्मो, तुम्हें पीकू के बाजा बजाने के गुण से जलन हो रही है।
1: जलन?
2: हाँ एल्मो, कभी कभी जब कोई वो काम कर सकता है जो हम नहीं कर सकते, या उनके पास कुछ ऐसा होता है जो हमें पसंद है मगर हमारे पास नहीं है, तो हमें जलन होती है।
1: मम्मी को भी जलन होती है?
2: हाँ बिल्कुल, कभी कभी मम्मी को भी जलन होती है।
1: एल्मो को ये जलन वाली भावना एकदम अच्छी नहीं लग रही।
2: ठीक है एल्मो, ये भावना हमेशा नहीं रहने वाली। चलो हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें फिर से अच्छा लगने लगे। तो हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे। रेडी?
1: एल्मो रेडी है।
2: अब कैसा लग रहा है एल्मो?
1: एल्मो की थोड़ी चूचू चिड़चिड़ कम हो गई।
2: बहुत बढ़िया, तो अब ये सोचो कि वो क्या है जो तुम अच्छे से करते हो, जो तुम्हें खास है।
1: एल्मो गाना गा सकता है ऐसे। ला ला ला ला ला ला, अरे तत्त अरे तत्त, ला ला ला ला ला ला ला, अरे तत्त।
2: अरे वाह एल्मो, तुम तो बहुत सुंदर गाते हो।
1: थैंक यू मम्मी। मम्मी, एल्मो को आइडिया आया है, एल्मो पीकू के साथ मिलकर एक बैंड बनाएगा।
2: बढ़िया आइडिया है।
1: हाँ, पीकू बाजा बजाएगी और एल्मो गाना गाएगा। चलो चलो मम्मी, जल्दी चलो, एल्मो को पीकू के साथ खेलना है।
2: ओहो एल्मो, हाँ हाँ चलो मैं चप्पल तो पहन लूं।
0: अरे वाह मैं, आपने तो बहुत अच्छे ढंग से एल्मो की भावना की पुष्टि की, उसको समझा। आपकी मदद से एल्मो ने अपनी उलझन का कितना सुंदर हल ढूंढ निकाला।
2: हाँ, एल्मो को जब कोई बड़ी भावना महसूस होती है तो वो उलझ जाता है। उसे खुद समझने में मुश्किल होती है, उसे जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है। इसलिए मैं उसे अपनी भावना समझने में मदद करती हूँ, ये बताकर कि कोई भी भावना गलत नहीं है।
0: हाँ, और आपने उसकी जलन की भावना को नकारा नहीं, बल्कि उसे अपनी भावना समझने में, स्वीकारने में मदद की। उससे ये नहीं कहा कि ऐसा मत सोचो या ये भावना अच्छी नहीं है।
2: हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ी भावनाएं होना ठीक है, हम सभी को ये भावनाएं होती है। हम बड़ों को भी तो सभी भावनाएं महसूस होती हैं। जब हम उन्हें समझाते हैं कि कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, तभी तो उन पर काबू पाते हैं।
0: बिल्कुल सही, बच्चों को भी वही भावनाएं होती हैं जो हमको, और आज हम उन्हें अपनी भावना की पुष्टि करने में, उसको मान्यता देने में, स्वीकारने में, समझने में मदद करेंगे, तो आगे भी उनको फायदा होगा। तो अपने बच्चों को देखें, समझें और भावनाएं समझने में मदद करें। तो चलो खेलें सब संग।
4: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, यूबीएस ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
1: ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। आज पांचवा दिन माँ स्कंद माता का दिन है और माँ स्कंद विशेष योद्धा के रूप में दिखाई गई है, जो कहा जाता है कि देवों के सेना की मुख्य योद्धा के रूप में उसको दिखाया गया है। माँ स्कंद, माँ स्कंद भी माँ दुर्गा का ही दूसरा स्वरूप है। माँ स्कंद कहा जाता है कि वो कार्तिकेय की माता थी, जिसको देवों ने चुना था असुरों के सामने विशेष युद्ध करने के लिए मुख्य योद्धा के रूप में। कहा जाता है कि माँ स्कंद ने अपने बेटे को एक हाथ में उठाया है, इसीलिए उसके हाथ में छोटा बच्चा भी दिखाया है और साथ में उसको चार भुजाधारी और तीन नेत्रधारी दिखाया गया है। उसके हाथ में अपने बेटे और दूसरा हाथ जो आशीर्वाद की मुद्रा में है और साथ ही साथ तीसरे हाथ में कमल जो पवित्रता का प्रतीक है। कहने का भावार्थ कि वो सभी भक्तों की रक्षा करने वाली, विशेष अपने भक्तों कहो या बच्चे के समान सभी बच्चों की रक्षा करने वाली और पवित्रता से उनके जीवन को भर देने वाली, उनके जीवन के अंदर अनेक आशीर्वादों से उसका जीवन संपन्न करने वाली माँ स्कंद की पूजा होती है। कहा जाता है कि जिसके ऊपर माँ स्कंद की मेहर हो जाए तो एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। ऐसी विशेष विशेषता माँ स्कंद की दिखाई गई है। कहने का भावार्थ कि आज पांचवें दिन पर माँ स्कंद की पूजा, अर्थात कि जो हर एक भक्तों की, हर एक बच्चों की रक्षा करने वाली और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी बना देने की क्षमता रखने वाली माँ स्कंद।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर की बातें आपसे शेयर करूंगा और आज विशेष नवरात्रि का आरंभ हो गया है, अग्रसेन जयंती भी आज है, तो आइए आज के दिन को बड़े यादगार से आप सभी के साथ मिल के मनाते हैं। और इसके साथ में आज अब्दुल कलाम, संगीतकार शंकर, रमन सिंह, अकबर, महेंद्रनाथ पांडे, मुख्तर अब्बास नकवी, हीरा लाल देवपुरा, मनुभाई पांचोली, मदन सिंह चौहान, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ में मदन लाल खुराना, मदन सिंह चौहान, विक्टर बैनर्जी, केश शरण नारायण, इन सभी का भी जन्मदिन है। इसके साथ ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिरडी साई बाबा, दुर्गा भाभी, देवी प्रसाद राय चौधरी, फौजी बानू अथैया, अखितम अच्युतन नंदपुरी, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में विशेष कुछ लोगों की जीवन कहानी से आपको रूबरू कराना चाहूँगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। यार जो तू ना आया होता जिंदगी में मेरी, तो कौन मुझे यूं आंसुओं में चलना सिखाता। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गाँव रेवन वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनता रहा और मुस्कुराता।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए बात करते हैं महाराजा अग्रसेन के बारे में। जी हाँ, भारत में विशेष ऐसी मान्यता है कि महाराजा अग्रसेन अग्रवाल जाति के पितामह थे और धार्मिक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 34वीं पीढ़ी में सूर्य वंशी क्षत्रिय कुल में महाराजा वल्लभ सेन के घर में द्वापर के अंतिम और कलयुग के आरंभ में जब 5000 वर्ष पूरा हुआ था। महाराजा अग्रसेन समाजवाद के परिवर्तक, युग पुरुष और राजा राम राज्य के समर्थक और महादानी थे। महाराजा अग्रसेन उन महान विभूतियों में थे जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय द्वारा युगो युगों तक अमर होंगे। तो उनकी ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मंत्र को लेकर वो चलते थे। और अग्रसेन जी का जन्म अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को बताया जाता है और इनकी जयंती के रूप में ये दिन मनाया जाता है। महाराजा अग्रसेन का जन्म लगभग 5000 वर्ष पूर्व प्रताप नगर के राजा वल्लभ के यहाँ सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल में हुआ था, ये भी मान्यता है। और राजस्थान व हरियाणा राज्य के बीच सरस्वती नदी के किनारे प्रताप नगर स्थित था। राजा वल्लभ के अग्रसेन और सूरसेन नामक दो पुत्र हुए। अग्रसेन महाराजा वल्लभ के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराजा अग्रसेन के जन्म के समय गर्ग ऋषि ने महाराज वल्लभ से कहा था कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, इसके राज्य में एक नई शासन व्यवस्था उदय होगी और हजार वर्ष बाद में इनका नाम अमर होगा। तो इस तरह से उनके जन्म के साथ साथ ये ऋषि ने बताया था उन्हें। महाराजा अग्रसेन ने नागलोक के राजा कुमुद के यहाँ आयोजित स्वयंवर में राजकुमारी माधवी का वर्ण किया। इस स्वयंवर में देवलोक से राजा इंद्र भी राजकुमारी माधवी से विवाह की इच्छा से उपस्थित थे, परंतु माधवी द्वारा श्री अग्रसेन का वर्ण करने से इंद्र परेशान होकर स्वयंवर स्थल से चले गए। इस विवाह से जो है नाग एवं आर्य कुल का नया गठबंधन भी हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि इंद्र जो है अपने अनुचरों से प्रताप नगर में वर्षा नहीं करने का आदेश दिया, जिससे भयंकर अकाल पड़ा, चारों तरफ त्राई त्राई मच गई। तब अग्रसेन और सूरसेन ने अपने दिव्य शस्त्रों का संदन कर इंद्र से युद्ध कर प्रताप नगर को विपत्ति से बचाया, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं था। तब अग्रसेन ने भगवान शंकर और महालक्ष्मी माता की आराधना की और इंद्र ने अग्रसेन की तपस्या में उनके बाधाएं उत्पन्न की, परंतु श्री अग्रसेन की अविचल तपस्या से महालक्ष्मी प्रकट हुई और वरदान दिया कि तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, तुम्हारे द्वारा सबका मंगल होगा। माता को अग्रसेन ने इंद्र की समस्या से अवगत कराया तो महालक्ष्मी ने कहा, इंद्र को अनुभव प्राप्त है आर्य और नागवंशी की संधि और राजकुमारी माधवी के सौंदर्य ने उसे दुखी कर दिया है, तुम्हें कूटनीति अपनानी होगी। कोल्हापुर के राजा भी नागवंशी हैं, यदि तुम उनकी पुत्री ना वरण कर लेते हो तो कोल्हापुर नरेश महिरथ की शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तब इंद्र को तुम्हारे सामने आने के लिए अनेक बार सोचना पड़ेगा, तुम नीडर होकर अपने नए राज्य की स्थापना करो। तो इस तरह से फिर सुंदरवती का वर्णन, कोल्हापुर में नागराज महारथी का शासन था। राजकुमारी सुंदरवती के स्वयंवर में अनेक देशों के राजकुमार वेश बदलकर अनेक गंधर्व देवता उपस्थित थे। तब भगवान शंकर और माता लक्ष्मी की प्रेरणा से राजकुमारी ने श्री अग्रसेन को वरण किया। दो दो नाग वंशों से संबंध स्थापित करने के बाद महाराजा वल्लभ के राज्य में अपार सुख समृद्धि व्याप्त हुई। इंद्र भी श्री अग्रसेन से मैत्री के लिए बद्ध हुए। तो ये है कहानी अग्रसेन जी की। महाराजा वल्लभ ने वल्लभ के निधन के बाद श्री अग्रसेन राजा हुए और राजा वल्लभ के आशीर्वाद से लोहगढ़ सीमा से निकलकर अग्रसेन ने सरस्वती और यमुना नदी के बीच एक वीर भूमि खोज कर वहाँ अपने नए राज्य आगरों का निर्माण किया और अपने छोटे भाई सूरसेन को प्रताप नगर का राजा राजपाट सौंप दिया। ऋषि मुनियों और ज्योतिषों की सलाह से नए राज्य का नाम अग्रयेन रखा गया, जिसे अग्रो नाम से जाना जाता है। तो ये थी कहानी अग्रसेन जी की। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आखिर रूबरू हो चुकी है, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। मिसाइल मैन वैज्ञानिक अभियंता के रूप में विख्यात भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रसिद्ध वैज्ञानिक अब्दुल कलाम का नाम ही काफी है, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। दूसरा, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही राष्ट्रपति भवन के द्वार उनके लिए स्वतः ही खुल गए। जो व्यक्ति किसी श्रेष्ठ क्षेत्र विशेष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसके लिए सब सहज हो जाता है और कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अब्दुल कलाम इस उदाहरण का प्रतिनिधित्व करते नजर आते थे और उन्होंने विवाह नहीं किया था। उनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व तो इतना उन्नत था कि वह सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के व्यक्ति नजर आते थे। वह एक ऐसे स्वीकार्य भारतीय थे जो सभी के लिए एक महान आदर्श बन चुके हैं। विज्ञान की दुनिया से देश का प्रथम नागरिक बनना कापोल कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि ये एक जीवित प्रणोता की सत्य गाथा है। आइए आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अवुल फकीर जैन अब्दुल्ला दिन अब्दुल कलाम था। ये थोड़ा सा बड़ा नाम है। इनका जन्म आज के दिन 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ। दीप जैसा छोटा सा शहर प्राकृतिक चटा से भरपूर था, शायद इसलिए अब्दुल कलाम जी की प्रकृति से बड़ा जुड़ाव रहा था। रामेश्वरम का प्राकृतिक सौंदर्य समुद्र के निकट के कारण सदैव बहुत दर्शनीय रहा। उनके पिता जैनुद्दीन ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही पैसे वाले थे। वे नाविक थे और नियमित रूप से बहुत पक्के थे। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। उनके संबंध रामेश्वरम के हिंदू नेताओं तथा अध्यापकों के साथ काफ़ी स्नेहपूर्ण थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरण करने का कार्य भी किया था। तो आप समझ सकते हैं, पढ़ने के लिए उन्हें अखबार बेचना पड़ता था, तो कितने गरीब थे और कैसे उन्होंने अपने जीवन को उभारा, ये आप समझ सकते हैं। जब 8-9 साल के थे अब्दुल कलाम, तो सुबह 4 बजे उठते थे और स्नान करने के बाद गणित के अध्यापक समियर के पास गणित पढ़ने चले जाते थे। समियर की यह विशेषता थी कि जो विद्यार्थी स्नान करके नहीं आता, वो उसे नहीं पढ़ाते थे। समियर एक अनोखे अध्यापक थे और 5 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते थे। इनकी माता उन्हें उठाकर स्नान कराती थी और नाश्ता करवा कर ट्यूशन पढ़ने भेज देती थी। अब्दुल कलाम ट्यूशन पढ़कर 5:30 बजे वापस आते थे। उसके बाद अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते थे, फिर कुरान शरीफ का अध्ययन करने के लिए वह आरक्षिक स्कूल मदरसा चले जाते थे। इसके पश्चात अब्दुल कलाम रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एक साथ करते थे। और इस तरह से 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV बनाने का श्रेय हासिल है। जुलाई 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्यभेदी को डिज़ाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। डॉक्टर कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम का उपयोग अग्निश्रोत्र के रूप में किया था। और व्यावसायिक परिचय की बात करें तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जब HAL से एक वैमानिक इंजीनियर बनकर निकले, तो उनके पास नौकरी के 2 बड़े अवसर थे। ये दोनों ही उनके बरसों पुराने उड़ान के सपने को पूरा करने वाले थे। एक अवसर भारतीय वायु सेना का था और दूसरा रक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय का था। उन्होंने दोनों जगहों पर साक्षात्कार दिया। वे रक्षा मंत्रालय के तकनीक विकास और उत्पादन निदेशालय में चुन लिए गए।

1998 में उन्होंने 250 रुपये के मूल वेतन पर निदेशालय के तकनीकी केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभालना शुरू कर दिया। अब्दुल कलाम को DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया और उसी समय अन्ना विश्वविद्यालय मद्रास ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानक उपाधि से सम्मानित भी किया। तो आइए उनके बारे में और बातें जानते हैं। आप नए हैं रेडियो मधुबन पर, जिया सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आप सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करते करते अचानक उनका फेर राजनीति के क्षेत्र में रुख हुआ और डॉक्टर अब्दुल कलाम राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधित नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया। ये भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते हैं और इसके लिए उनके पास एक कार्य योजना भी है। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में ये भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते रहे हैं। वो विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकल्प चाहते हैं, विकास चाहते हैं। डॉक्टर कलाम एक बहुआयामी व्यक्ति के धनी रहे और वेशभूषा, बोलचाल के लहजे, अच्छे खासे सरकारी आवास को छोड़कर हॉस्टल का सादगीपूर्ण जीवन, ये बातें उनके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक सम्मोहक प्रभाव छोड़ती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी देश के विकास और युवा मस्तिष्कों को प्रज्वलित करने में अपनी तल्लीनता के साथ साथ वे पर्यावरण की चिंता भी खूब करते हैं। साहित्य में रुचि रखते हैं, कविता लिखते हैं, वीणा बजाते हैं तथा अध्यात्म से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कलाम में अपने काम के प्रति जबरदस्त दीवानगी है। उनके लिए कोई भी समय काम का समय होता है। वो अपना अधिकांश समय कार्यालय में बिताते हैं। देर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों में डॉक्टर कलाम की सक्रियता तथा स्फूर्ति काबिले तारीफ है। ऊर्जा का ऐसा पावर प्रवाह ले केवल गहरी प्रतिद्वंद तथा समर्पण से ही आ सकता है। डॉक्टर कलाम खानपान में पूर्णतः शाकाहारी व्यक्ति है। वे मद्यपान से बिल्कुल परहेज करते हैं और उनका निजी जीवन अनुकरणीय है। डॉक्टर कलाम की याददाश्त बहुत तेज है। वे घटनाओं तथा बातों को याद रखते हैं। डॉक्टर कलाम को अनेक सम्मान पुरस्कार मिले हैं, जिनमें इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का नेशनल अवार्ड, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का डॉक्टर बीरेन रॉय स्पेस अवार्ड, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार, विज्ञान के लिए जीएम मोदी पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। डॉक्टर कलाम भारत के विशेष वैज्ञानिक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालय और संस्थानों से डॉक्टरेट की महानद उपाधि प्राप्त है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ऐसे तीसरे राष्ट्रपति है जिन्हें भारत रत्न का सम्मान प्राप्त राष्ट्रपति बनने से पूर्व प्राप्त हुआ। अन्य दो राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। ये प्रथम वैज्ञानिक है जो राष्ट्रपति बने हैं और प्रथम राष्ट्रपति भी है जो अविवाहित है। तो आइए इनकी अंतिम समय की बात करें तो 27 जुलाई वो दिन था जो 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। तब उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में उन्हें बेतनी हॉस्पिटल में आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। हॉस्पिटल के सीईओ जॉन साइलोन के अनुसार जब कलाम को हॉस्पिटल लाया गया तब उनकी नब्ज और रक्तचाप साथ छोड़ चुके थे। अपने निधन के लगभग 9 घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलोंग IIM में लेक्चर के लिए जा रहे हैं। कलाम अक्टूबर 2015 में 84 साल के होने वाले थे और मेघालय के राज्यपाल बीवी षणमुखानंद अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल में प्रवेश की खबर सुनते ही सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए थे। और बाद में षणमुखानंद ने बताया कि कलाम को बचाने की चिकित्सा दल की कोशिश के बाद भी शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया। कलाम के निधन पर समाचार पाकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। तो ये थी कुछ खास बातें मिसाइल मैन की कहानी आपके लिए। आप सुना है रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आप सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की कहानी सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। कई बार कुछ ऐसे शख्सियत जन्म लेते हैं जिनको हमेशा के लिए याद किया जाता है। तो आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं, अब शंकर सिंह रघुवंशी के बारे में। जी हाँ, भारतीय सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर संगीतकार में से एक। इन किनों ने अपनी जोड़ी संगीतकार जयकिशन के साथ मिलकर बनाई और शंकर जयकिशन नाम से पॉपुलर हुए। 15 अक्टूबर 1922 को जन्मे शंकर के पिता राम सिंह रघुवंशी मूलतः मध्य प्रदेश के थे और काम के सिलसिले में हैदराबाद में आ बस गए थे। शंकर को शुरू से ही कुश्ती का शौक था और उनका कसरती बचपन जो है इसी शौक में परिणाम था। घर के पास के एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान तबला वादक का वादन भी बचपन में बहुत आकर्षित करता था। तबला बजाने की लगन दिनों दिन बढ़ती गई। महफिलों में तबला बजाते हुए उस्ताद नासिर खान की निगाहों पर एक बार ये आ गए और शंकर अकेले चले गए। माली हालत ऐसी थी कि ट्यूशन भी करनी पड़ी। कहते हैं कि हैदराबाद में ही एक बार किसी गली से गुजरते हुए तबला सुनकर शंकर एक तवायफ के कोठे पर पहुंच गए और तबला वादक को गलत बजाने पर टोका और बात बड़ी तो शंकर ने इस सफाई से बजाकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया था कि वाहवाही हो गई। शंकर अपनी कला को और निखारने के लिए एक नाटक मंडली में शामिल हो गए जिसके संचालक मास्टर सत्यनारायण थे और हेमवती ने मुंबई जाकर पृथ्वी थिएटर्स में नौकरी कर ली। तो शंकर भी 75 रुपये प्रति महीने पर पृथ्वी थिएटर में तबला वादक बन गए। पृथ्वी थिएटर्स के नाटकों में कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं मिलने लगी और वहीं शंकर ने सितार बजाना भी सीख लिया। तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ी संगीत की। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को। तो आइए आगे क्या हुआ शंकर जी का, संगीतकार का, कैसे वो तबला के साथ साथ सितार वादन सीखने लगे और उसके बाद फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन सफर कार्यक्रम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: મારો નામ લોકેશ ચોપરા હે, હું ઉદયપુર બોલ્યો હું. આશા ભુંડિયા ઓર રેડિયો મધુબન 107.8 FM સુનતારો હસ્તા.
1: નમસ્કાર, આપ સુન રહે હો મધુબન 107.8 FM પર. આપ સભી કા બહોત બહોત સ્વાગત હે. ઢેર સારી શુભકામનાઓ કે સાથ શંકર જયકિશન કી મુલાકાત ભી અજીબ ઢંગ સે હુઈ. ओपेरा हाउस थिएटर के पास की व्यायामशाला में कसरत के लिए शंकर जाया करते थे और वहीं दत्ताराम से उनकी मुलाकात हुई. दत्ताराम शंकर से तबले और ढोलक की बारीकियां सीखने लगे और एक दिन उन्हें फिल्मों में संगीत का काम दिलाने के लिए दादर में गुजराती फिल्मकार चंद्रावधन भट्ट के पास ले गए. वहीं जयकिशन भी फिल्मों में काम की तलाश में आए हुए थे. इंतजार के क्षणों में ही बातों बातों में शंकर को पता चला कि जयकिशन हारमोनियम बजाते थे. उस समय सौभाग्य से पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम मास्टर की जगह भी खाली थी.

यहाँ से कहानी आरंभ हुआ शंकर जयकिशन की। शंकर ने प्रस्ताव रखा तो जयकिशन जी जट से मान गए और उसे भी तलाशी थी नौकरी की। इस तरह पृथ्वी थिएटर के परचम तले शंकर और जयकिशन साथ साथ काम करने लगे और फिर यहाँ से ये जोड़ी कमाल दिखाने लगी। पाटन में दोनों ने एक साथ साथ अभिनय भी किया और काम के साथ साथ दोस्ती और बढ़ी। शंकर साथ साथ हुस्नलाल भगतराम के लिए भी तबला बजाने का काम करते थे और दोनों भाइयों से भी संगीत की कई बारीकियां उन्होंने सीखी। अब यहाँ से कहानी जो है आगे बढ़ी और पृथ्वी थिएटर्स में ही काम करते करते शंकर और जयकिशन राजकुमार के भी करीबी हो गए। हालांकि राज कपूर की पहली फिल्म शंकर संगीतकार पहली फिल्म के संगीतकार थे पृथ्वी थिएटर्स के वरिष्ठ संगीतकार राम गांगुली और शंकर जयकिशन उनके साथ सहायक बने। लेकिन बरसात के लिए संगीत की रिकॉर्डिंग के शुरुआती दौर में जब राज कपूर को पता चला कि बरसात के लिए बनाई एक धुन राम गांगुली उसी समय बन रही एक दूसरी फिल्म के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं तो वे आपा खो बैठे और शंकर जयकिशन की प्रतिभा के तो वो कायल थे ही। और जब उन्होंने शंकर के द्वारा उनकी लिखी कंपोजिशन अम्बुआ का पेड़ है वही मुड़ेर है मेरे बलमा अब काहे की देर है कि बनाई धुन सुनी दोनों ने राम गांगुली की जगह शंकर जयकिशन को ही बरसात का संगीत सौंप दिया। बस यही धुन बाद में जिया बेकरार है चाई बहार है के रूप में बरसात में आई और फिल्म बरसात में उनकी जोड़ी ने जिया बेकरार है और बरसात में हमेशा मिल बरसात की एक और गीत है हमसे मिले तुम साजन जैसे सुपर हिट संगीत बन गई उसकी। और फिल्म की कामयाबी के बाद तो फिर शंकर जयकिशन बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाने में सफल हो गया और उसके बाद दोनों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब एक संयोग कह सकते हैं इस फिल्म इन दोनों की और इस फिल्म बरसात में से ही गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने भी अपना सिने करियर की शुरुआत की थी। और फिल्म बरसात की सफलता के बाद शंकर जयकिशन राज कपूर के चहेते संगीतकार बन गए और इसके बाद राज कपूर की फिल्मों के लिए शंकर जयकिशन ने बेमिसाल संगीत देकर उनकी फिल्मों को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कैसी लगी आपको कहानी शंकर संगीतकार की? आप सुना है रिमोट वन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: Namaskar, aap sun rahe hain Radio Madhuban 107.8 FM par. Aap sabhi ka bahut swagat hai. Chaliye Shankar ji ka sangeetkar ki kahani sunkar aapko Shankar Jaikishan ki jeevan kahani kaise aapko lage zarur message karke batayega. Aaiye Akbar ke bare mein baat karte hain. Chhoti si baatein aapko share karunga. Raja Akbar ki baatein. Ji haan, भारत का महानतम मुगल शहंशाह जिन्हें मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया अपने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए अकबर द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई गई जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति भी जीती जा सके। भारत के इतिहास में आज अकबर का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया था, सभी जाति वर्ग के लोगों को एक समान माना और उनसे अपने मित्रता के संबंध स्थापित किए। अकबर ने अपने शासनकाल में सारे भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जिसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी हुए। आइए इनके बारे में और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो के गर्भ में। ज़्यादातर लोग जो है आजकल अमरकोट को उमरकोट समझने की गलती करते हैं। वस्तुतः ये इलाका राजस्थान का अभिन्न अंग था। आज वही हिंदू राजपूत बसते हैं। रेगिस्तान और सिंध की सीमा पर होने के कारण अंग्रेजों ने इसे सिंध के साथ जोड़ दिया और विभाजन के बाद वो पाकिस्तान का अंग बन गया। हुमायूं अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्षरत था और तभी वो ईरान के तपस्मय की सहायता प्राप्त करने के ख्याल से कंदार की ओर चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से सेवान पर अपने सिंध पार किया और फिर बलोचिस्तान के रास्ते केटा के दक्षिण मत्संग स्थान पर पहुंचा, जो कि कंदार की सीमा पर था। इस समय यहाँ पर उसका छोटा भाई अस्करी अपने भाई काबुल के शासक कमरा की ओर से हुकूमत कर रहा था। हुमायूं को खबर मिली कि अस्करी हमला करके उसको पकड़ना चाहते हैं। मुकाबला करने के लिए आदमी नहीं थे, जरा सी भी देर करने से काम बिगड़ने वाला था। उसके पास में घोड़ों की भी कमी थी। उसने तरगी बेग से मांगा तो उसने देने से इनकार कर दिया। हुमायूं हमीदा बानो को अपने पीछे घोड़े पर बिठाकर पहाड़ों की ओर भागा। उसके जाते देर नहीं लगी कि अस्करी 2000 सवारों के साथ पहुंच गया और हुमायूं साल भर के शिशु अकबर को ले जाने में असमर्थ हुआ। वो वही डेरे में छूट गया। अस्करी ने भतीजे के ऊपर गुस्सा नहीं उतार और उसे जौहर आदि के हाथ अच्छी तरह से कंधार ले गया। कंदार में अस्करी की पत्नी सुल्तान बेगम वात्सल्य दिखाने के लिए तैयार थी। अब इस तरह से कहानी आगे बढ़ी। अकबर आजीवन निरक्षर रहा और उनके अनुसार 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन पर अकबर का अक्षर आरंभ हुआ और मुल्ला आसमुद्दीन इब्राहिम को शिक्षक बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद जब पाठ सुनने की बारी आई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हुमायूं ने सोचा मुल्ला की बेपरवाही से लड़का पढ़ नहीं रहा है। लोगों ने भी झाड़ दिया। मुल्ला को कबूतरबाजी का शौक था, उसने शागिर्द को भी कबूतरों के मेले में लगा दिया। फिर मुल्ला बजाय शिक्षक हुए लेकिन कोई भी फल नहीं निकला और दोनों पुराने मोहल्ले के साथ मौलाना अब्दुल कादिर के नाम को भी शामिल करके चिट्ठी डाली गई। संयोग से मौलाना का नाम निकल आया और कुछ दिनों तक वह भी पढ़ते रहे। काबुल में रहते अकबर को कबूतरबाजी और कुत्तों के साथ खेलने से फुर्सत नहीं थी। हिंदुस्तान में आया तब भी वह रफ्तार बेढंगी रही और मुल्ला पीर मोहम्मद बेगम खां के वकील को ये काम सौंपा, लेकिन अकबर ने तो कसम खा ली थी कि वो बाप पढ़े ना हम। और इस तरह से 1551 में मात्र 9 वर्ष की अवस्था में पहली बार अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई और हुमायूं ने हिंदुस्तान की पुनर्विजय के समय मुनीम खां को अकबर का संरक्षण नियुक्त किया। सिकंदर सुर से अकबर द्वारा सर हिंद को छीन लेने के बाद हुमायूं ने 1555 ईसा में उसे अपना युवराज घोषित किया और दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। साथ ही अकबर के संरक्षक मुनीन का को अपने दूसरे लड़के मिर्जा हकीम का अंगरक्षक नियुक्त कर तुर्की सेनापति बैरम खां को अकबर का संरक्षण नियुक्त किया। तो ये थी कुछ कहानी अकबर बादशाह की। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए मित्रों, आज अग्रसेन जयंती के बारे में, अग्रसेन जी की कहानी को हमने सुना, अब्दुल कलाम, संगीतकार शंकर और अकबर, इन सभी की कहानी आपको हमने सुनाई। और इसी के साथ आई आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ आज के इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे। और आज भी मेरी पीड़ा पर पहला मरहम तू ही लगाता है, मुझ में लाख कमियां होने के बाद भी तू मुझे अपनाता है। तो ये सुंदर कहानी है एक दोस्त की आपके लिए। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर नवरात्रि के पांचवे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी।
0: आज के दिन उपांग ललिता व्रत किया जाएगा। रेडियो मधुबन के संग नवरात्रि के रंग
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। दोस्तों, युवाओं का मंच है तो फिर कुछ करियर्स के बारे में भी बीच बीच में बात होती है, जो कि युवाओं को आकर्षित करते हैं, या कई चीजें जो जानकारियां हमारे लिए उपस्थित नहीं होती। हालांकि दोस्तों, इंटरनेट का जमाना है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है जो भी आप करियर अपनाना चाहें। लेकिन वो करियर है कैसा, उसको जाने किसी ऐसे व्यक्ति की नजर से जो ऑलरेडी उस करियर में हो, तो फिर कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ साथ सही जानकारी भी मिल जाती है। दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे इसी श्रृंखला में। आज हमारे साथ हैं श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी। एक्चुअली मैं उनका नाम पूरा जरूर लिया, लेकिन उनकी पोस्ट तो भूली गई। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं CA श्री कृष्ण प्रकाश तौले जी। जी हाँ, वो एक युवा साथी हैं और CA हैं, तो आज इसी फील्ड के बारे में, इसी करियर के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में भी कुछ जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: अच्छा, सबसे पहले तो बहुत अच्छा करियर है, एंड आई नो बहुत कॉम्पिटिशन होता है, तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप इतना अच्छे करियर में आगे बढ़ रहे हैं, एंड हम आपसे आज बहुत कुछ जानेंगे। आप अपने बारे में कुछ अपने शब्दों में बताइए।
3: थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आप CA के बारे में करेंगे तो CA एक बहुत अच्छा, मतलब इंडिया में रिप्यूटेड कोर्स है, जिसकी शुरुआत इसका, मतलब मैंने एक्चुअली इन द 9th स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे CA परस्यू करना है।
2: अच्छा।
3: मुझे एक्चुअली एक स्कूल टीचर से पता चला था, बिकॉज तब इतना अवेयरनेस नहीं होता है CA कोर्स के बारे में लोगों को, इसलिए वो इशू जाता है। तो मुझे एक स्कूल टीचर से पता चला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है और इसमें ऐसा ऐसा कुछ फ्यूचर वगैरह होता है, तो फिर मैंने वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट
2: किया। तो आपको इंटरेस्टिंग कैसे लगा, मतलब आप 9वीं कक्षा में थे, 9th क्लास में थे, तो उस टाइम आपको कैसे लगा कि नहीं CA अच्छा है, मतलब क्या बताया सर टीचर ने जो आपको बहुत अच्छा लगा?
3: एक्चुअली वो नई चीज सुनी थी, क्योंकि पहले तो डॉक्टर, इंजीनियर और अदर फील्ड जो ऑप्शंस जो यूजुअली अपने को पता होते हैं, वही चीजें पता थी, बट ये नई चीज सुनी थी। और ये सुना था कि रेपुटेशन अच्छा होता है, इसका जॉब पैकेज अच्छा होता है, ये सब चीजें सुन के मैंने और इंटरेस्ट लिया। और एक पावर होता है CA के सिग्नेचर में, तो वो चीज सुन के फिर मैंने उसको आगे सोचना स्टार्ट किया।
2: आपको लगा ये अच्छा है? ओके। तो आपके टीचर्स ने आपको ये बातें बताई?
3: टीचर को इतना नहीं पता था एक्चुअली, उन्होंने ब्रीफ में बताया था। एक्चुअली वो टाइम पे एक मुंबई की एक बहन थी, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने टॉप किया था क्लास में, लेकिन वो उनके पापा रिक्शा चलाते थे, तो उन्होंने टॉप किया था, तो उनका एक मोटिवेशन एग्जांपल देने के लिए उन्होंने हमको बताया था, तो उससे फिर उन्होंने CA के बारे में बता दिया, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट वो फील्ड, मतलब उसके बारे में बढ़ गया
2: और बढ़ गया।
3: राइट।
2: ओके। तो उसके बाद आपने क्या किया, मतलब आपको पता चला था सबकी CA बनने के लिए क्या करना होता है
3: या? कुछ भी पता नहीं था, बस ब्लाइंडली लोगों से पूछता था, लोग कुछ अपने हिसाब से जवाब देते रहते थे, उतना कुछ आइडिया नहीं था। आफ्टर 11th मुझे वो सब चीजें फिर क्लियरली, बट सोचा था मैंने कि करना है, बट जो प्रैक्टिकल चीजें है, जो एक्चुअल क्या है, जैसे सुनते तो अपन काफी चीजें, टफ होता है, टफेस्ट इन द, मतलब इंडिया में टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, नहीं कर पाते आप, क्लियर नहीं हो पाओगे, अगर आप बीच में रुक गए तो आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो लोग से सुनते थे, बट फिर बाद में जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया तो फिर चीजें थोड़ी अलग थी।
2: ओके। तो जो 9th में आपको जानकारी मिली थी वो बहुत थोड़ी थी, 11वीं में जब आप थे तो ऐसी क्या जानकारी मिली जो आपको क्लैरिटी आई?
3: ओके। फिर उस हिसाब से मैंने कॉमर्स चूज किया 11th 12th, कॉमर्स से मतलब रिलेटेड ही होता है, तो मैंने 11th 12th कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया, जिसमें फिर मेरे जो कल मतलब जो फ्रेंड्स थे स्कूल वाले, सब मैक्सिमम दोस्त भी CA ही कर रहे थे, तो उनसे मुझे पता चला। और फिर प्रैक्टिकली मुझे जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनसे डायरेक्ट मिलने का मौका।
2: अच्छा।
3: हाँ, जो टीचर हमारे थे, मतलब एग्जाम जो प्रिपरेशन कराते, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो उनसे मुझे अच्छा गाइडेंस मिला, तब मुझे पता चला कि हाँ, मतलब यहाँ कर सकते हैं या फिर.
2: अच्छा, तो क्योंकि आपने जैसा बताया ग्यारहवीं में पता चला, तो ग्यारहवीं के बच्चे को आप क्या बताएंगे, बहुत डिटेल में आप बताएंगे या उसके अनुसार बताएंगे? तो अगर एक ग्यारहवीं का बच्चा आपको सुन रहा है आज और जो आपने सुना था उस वक्त, तो आप उसे क्या बताएंगे सीए क्या होता है?
3: ओके, अगर सीए के बारे में बात करेंगे तो एक इंडिया में बहुत अच्छा रिप्यूटेड कोर्स है. इसका एक्चुअली इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉरेन में भी अच्छी डिमांड है. फॉरेन कंपनीज में भी इंडियन सीए रिक्रूट होते हैं. आज कनाडा में देखिए, दुबई में देखिए, दुबई में बहुत अच्छा मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम चलता है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का. तो अगर सीए के बारे में बात करें तो एक 4.5 साल का ब्रीफली कोर्स होता है, मतलब 4.5-5 साल अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हैं आप. 12 आप 10वीं के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है और फिर 12वीं से आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. मतलब आप 12th अपीयर चाहिए, आप 12th अपीयर होते हुए भी आप एग्जाम दे सकते हैं. आप 12th अपीयर होके एग्जाम दीजिए, सबसे पहले एग्जाम होते हैं सीए फाउंडेशन. मतलब इसमें 3 एग्जाम आपको क्लियर करना है और 3 साल की सीए के अंडर आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है. मतलब इट्स लाइक प्रैक्टिस, आपको सीए के अंडर ट्रेनिंग करना है, उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं. तो आपको पहली एग्जाम 12th अपीयर होते हुए, जैसे आपकी 12th की एग्जाम हो जाती है, वो 12th के आई कार्ड के बेसिस पे आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं. फिर वो एग्जाम का फॉर्म दे के आप एग्जाम दो.
2: कहाँ भर सकते हैं ये फॉर्म?
3: ये ऑनलाइन ही भरना है. मतलब पहले तो आपको 10वीं के बाद रजिस्ट्रेशन लेना है. 11वीं में 12वीं में कभी भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. पहले एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करना होता है सब. एक ICAI.org वेबसाइट होती है इंस्टीट्यूट की, जिसमें आप वो रजिस्ट्रेशन करा लो.
2: कौन सी वेबसाइट बताएं?
3: ICAI.org. www.icai.org ये साइट पे चाहिए तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. तो आप वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए. फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप 12th के बाद एग्जाम दिए सीए फाउंडेशन. वो 4 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, 4 सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता होनी चाहिए, पासिंग क्राइटेरिया. एक्चुअली यहाँ पे 2-वे पासिंग क्राइटेरिया होता है. आपको 50% टोटल एग्रीगेट में लाना है और 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट. लाइक अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. और अगर टोटल ओवरऑल जो स्कोर है आपका, जैसे आपको 4 पेपर है 400 मार्क्स के, तो आपको 200 मिनिमम लाना है, दैट्स 50%. तो एग्रीगेट आपको 50% लाना है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होना चाहिए. अगर आप एक सब्जेक्ट फेल हो जाते तो फिर आप दूसरा, मतलब आप पूरे सब्जेक्ट को वापस से आपको देना,
2: मतलब आपको 4 सब्जेक्ट का दोबारा देना पड़ेगा,
3: पूरा देना पड़ेगा.
2: ओके, और ये कौन कर सकता है? मतलब कोई भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं या कोई सब्जेक्ट जरूरी है इसमें अपीयर करने के लिए?
3: कोई भी स्ट्रीम के

0: सकते हैं इलेवेंथ में, अगर वो कॉमर्स है, आर्ट है, या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से, कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे.
1: तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स होना जरूरी है?
0: ऐसा कुछ नहीं, बस ये होता है कि आपको थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए, बट ऐसे जरूरी नहीं कि हमको एडवांस लेवल का मैथ चाहिए, बट आप नॉर्मल मैथ से भी चला सकते हैं. और चीज़ें तो सीखने के लिए होते हैं, अपन तो कुछ भी सीख सकते हैं.
1: सीख सकते हैं,
0: सीख
1: हाँ ये
0: सकते हैं.
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। ओके, तो मतलब हमने अभी तक ये समझा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए की हम बात कर रहे हैं, तो 11वीं या 12वीं के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो वेबसाइट पे।
0: यस.
1: और एक सीए का पहला जो पेपर होता है फाउंडेशन, उसमें चार सब्जेक्ट आपको पास होने जरूरी हैं,
0: राइट.
1: मिनिमम 40% और टोटल 50%।
0: हाँ, टोटल 50%.
1: अच्छा, तो अगर नहीं पास हो पाए तो दोबारा कर सकते हैं, तो 12वीं के बाद, मतलब जब आप आगे की पढ़ाई कर रहे हो तब भी आप कर
0: कभी
1: सकते
0: भी
1: हो।
0: विद इन 6 months एग्जाम होती रहती है, मतलब
1: अच्छा, हर छह
0: साल में
1: महीने
0: दो
1: में।
0: बार, मई और नवंबर.
1: ओके, तो कब आता है इसका फॉर्म, कौन से समय आता है ऑलमोस्ट?
0: ये आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब अभी चाहो तो अभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इसका
1: अच्छा,
0: कोई ये नहीं. बस ये क्राइटेरिया होता है कि आपको अगर एग्जाम देना है तो 6 months बिफोर आप रजिस्टर्ड होना चाहिए. दैट इज अ बेसिक क्राइटेरिया. कि अगर सपोज आपको 12th के बाद, जैसे आपके 12th में मार्च में एग्जाम कंप्लीट हो रही है और आपको मई में एग्जाम देना है, तो आप मई के एग्जाम के 6 months बिफोर आप रजिस्टर होना चाहिए.
1: 6 महीने पहले
0: छः महीने
1: रजिस्ट्रेशन
0: पहले
1: जरूरी है।
0: रजिस्ट्रेशन तो भी एटलीस्ट होना चाहिए.
1: ओके, ठीक है।
0: और फिर उसका एग्जाम फॉर्म आएगा आपका, एग्जाम वो इंस्टीट्यूट के साइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे. एग्जाम फॉर्म जनरली एग्जाम के 2 महीने पहले आ जाता है, तो वो आपको फिल करना है. उसका 10-15 दिन का टाइम होता है, तो फिर आप ये कर सकते हो फिर.
1: तो जो सेम वेबसाइट आपने बताई, वहीं पे आता है एग्जाम फॉर्म?
0: हाँ, वहाँ पे फिर नोटिफिकेशन आते रहता है. वहाँ पे फिर सब वेबसाइट्स वगैरह है उसमें, जो अलग अलग चीज़ें, जैसे ICAI.exam एक अलग वेबसाइट होती है जिसमें एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना है, बट ये कोर वेबसाइट जो मैंने बोला है, मेन वेबसाइट जो www.ICA.org,
1: मतलब उसके थ्रू आपको सारी जानकारी
0: सारी
1: मिलेगी।
0: जानकारी मिल जाएंगी मोस्टली.
1: ठीक है, तो अगर पहला जो क्राइटेरिया है, यानी पहला जो एग्जाम है फाउंडेशन का, वो क्लियर किया, तो उसके बाद क्या?
0: हाँ, अगर आप सपोज मई में एग्जाम क्लियर कर ले तो कोई भी साल में, तो उसके बाद फिर आपको 9 months स्टडी पीरियड होता है सेकेंड एग्जाम का.
1: अच्छा,
0: सेकेंड एग्जाम का नाम होता है सीए इंटरमीडिएट, जो आपको जैसे आप एग्जाम क्लियर होते हो उसके 9 months आपको पढ़ाई करनी है उसकी. आपको बुक्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा.
1: ओके,
0: हाँ, पूरी आपको कुरियर के द्वारा अपने घर आ जाएंगे पूरी बुक्स, पूरा मटेरियल. साथ में आईसीए की चैनल्स भी चलते हैं जिसमें वो लेक्चर्स वगैरह रहता, शॉर्ट मतलब स्टडी मटेरियल रिलेटेड ऑल चीज़ें आप इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, और आप कोचिंग भी ले सकते हो. हाँ, तो वो 9 months में जब आप क्लियर हो जाते हो, तो वो 9 months के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी पूरी इंटरमीडिएट के लिए, फिर आप इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते हो.
1: अच्छा, तो मतलब आपने 9 महीने तैयारी किया, उसके बाद फिर से वो एग्जाम फॉर्म भरना है
0: हाँ,
1: जो अपने
0: सेकेंड एग्जाम
1: सेकेंड एग्जाम है,
0: राइट.
1: उसमें क्या होता है?
0: हाँ, उसमें एक्चुअली 8 subjects होते हैं.
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: 8 होते हैं।
0: 8 subject होते हैं, लेकिन उसमें एक है कि जैसे पहले अपन ने सुना है कि 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तो उसमें कभी ऐसा हो जाता है कि आपको 40-40 तो आ जाता है. एक्चुअली एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसलिए 40 लाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. काफ़ी बच्चे नहीं ला पाते हैं, मतलब
1: जी
0: रिजल्ट आपको पता होगा, तो रिजल्ट काफ़ी टफ आता है इंस्टीट्यूट का. तो वो 40 लाना अगर आपको ये हो जाता है, तो इसलिए वो फिर इंटरमीडिएट पे 2 ग्रुप बनाया आईसीए ने
1: ओके।
0: एग्रीगेशन पर्पस के लिए, मतलब 4 subject का एक ग्रुप, 4 subject का दूसरा ग्रुप, ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2, ऐसे 2 ग्रुप होंगे 8 subject के. लेकिन आपको इंटरमीडिएट पूरे एग्जाम क्लियर करना है, तो दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं, चार चार
1: ओके,
0: सब्जेक्ट के, 8 subject के.
1: वो क्या सब्जेक्ट होते हैं उसमें, कुछ
0: अगर
1: आप बता सकते हैं आइडिया?
0: हाँ, ग्रुप 1 में अगर मैं बताऊँ तो फर्स्ट पेपर होता है अकाउंट्स का, होता है अकाउंट्स, होता है कॉस्टिंग, होता है ऑडिट, होता है इसमें इंटरमीडिएट का 3 साल होता है ना फिर
1: हाँ,
0: इंटरमीडिएट के लिए
1: टाइम हो जाता है, सही
0: तीन
1: बात
0: साल
1: है।
0: ये फाउंडेशन की भी एग्जाम. ये इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट्स है, पहला पेपर होता है अकाउंटिंग का, सेकेंड पेपर होता है कॉरपोरेट एंड अदर लॉस, जिसमें आपको लॉस को पढ़ना है, बिजनेस लॉज रिलेटेड. थर्ड पेपर होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जिसमें कॉस्टिंग्स के बारे में बात होंगी. फोर्थ पेपर होता है टैक्सेशन, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना. डायरेक्ट टैक्स इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स इज GST मोस्टली, और उसमें कस्टम्स और बाकी अदर इनडायरेक्ट टैक्स भी आते हैं. फिफ्थ पेपर होता, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, 4 पेपर का टैक्सेशन तक. फिर सेकेंड ग्रुप में होते हैं एडवांस अकाउंटिंग, लेकिन थोड़ा उसका स्कोप ये हो जाता है, बड़ा हो जाता है. और सिक्स पेपर होता है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, जिसमें ऑडिटिंग रिलेटेड आपको लॉज पढ़ने हैं. सेवेंथ पेपर होता है इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इट्स लाइक ये होता है मैनेजमेंट रिलेटेड, ये होता है और आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट होता है. एट पेपर होता है जो लास्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. इसमें आपको फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज मिलेगा और इकोनॉमिक्स जो जिसके बेसिस पे वर्ल्ड में वर्ल्ड इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स उसके बारे में आपको सब्जेक्ट रहेगा.
1: ओके, तो 8 सब्जेक्ट 9 महीने हमारे पास है. तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शेड्यूल क्या होता था आपका एक दिन का जब आप इसकी तैयारी कर रहे थे?
0: ओके, उसमें तो एक्चुअली ऑप्शन होता है कि आप एक ग्रुप का भी प्रिपरेशन कर सकते, मतलब 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो फिर बाद में आप 4 सब्जेक्ट देना, एक ग्रुप पहले दे दो एक ग्रुप. लेकिन मैंने जब सोचा था कि मुझे बोथ ग्रुप एट अ टाइम कंप्लीट करना है, ऐसा मैंने टारगेट रखा था. तो मेरी वैसे क्लासेस भी मैंने पूरी फिर कंप्लीट की. क्लासेस में एक्चुअली शेड्यूल हमारा काफी फिक्स होता था, मतलब सुबह 7 बजे से क्लास स्टार्ट होती थी, रात के 9 बजे तक तो मिनिमम क्लास चलती थी बोथ ग्रुप जब 8 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो.
1: सुबह 7 से रात 9 बजे
0: तक, दोपहर में 1-2 घंटे का ब्रेक लेके, तो ऐसा पूरा दिन भर क्लासेस चलती थी तो पूरा एग्जॉस्ट तो हो ही जाता था, उतनी पढ़ाई नहीं होती पाती थी क्लासेस के ड्यूरिंग. लेकिन थोड़ा रिवाइज करना होता था कि आप जो क्लास में पढ़े उसको थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लो और नेक्स्ट डे आप क्लास में चले जाओ, ताकि वो होता रहे, नहीं तो आप भूल जाओगे पूरी चीज़ें. तो वो तो क्लासेस के ड्यूरिंग तो ऐसे टाइट शेड्यूल था, सुबह आप 6 बजे उठ के ये करके 7 बजे से जाओ, फिर रात को 9 बजे तक आओ. फिर उसके बाद जब क्लासेस हो गए, आई थिंक क्लासेस का ड्यूरेशन मोस्टली 5 to 6 months था. फिर लास्ट के 3 months हमारे सेल्फ स्टडी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि क्लासेस में आप चीज़ें भूल जाते हो लेकिन आपको लास्ट एग्जाम के पहले जो पढ़ना होता है 3 महीने मिलते, तो उसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है. तो वो टाइम मिनिमम मैं 10 घंटे तो पढ़ता ही था, कभी कभी 12-13 घंटे हो जाते थे, कभी थोड़े कम भी होते थे क्योंकि वो थोड़ा अप एंड डाउन चलते रहता स्टडी में.
1: लेकिन ज्यादातर आपने इतनी पढ़ाई की?
0: यस, मिनिमम 10 आवर्स तो वी हैव टू स्टडी, वो तो जरूरी हो ही
1: दिन भर में मिनिमम 10 घंटे
0: पढ़ने. और आपको बस वो एग्जाम के पहले 3 जो मैंने है 2-3 महीने वो पढ़ लो, आप क्लियर हो जाओगे.
1: ओके, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने जैसे बताया कि पढ़ाई इतनी जरूरी है और उसी पढ़ाई से जो हम आगे, मतलब आपने जैसे शुरू में बताया था कि सीए करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, तो जो मेहनत का नतीजा है वो आगे मिलता है, लेकिन मेहनत जरूरी है उसके लिए,
0: बहुत ज्यादा
1: जरूरी है. तो कैसा लगता था उस समय आपको, मतलब क्या डर लगता था या बस पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता था दिमाग में, या कभी क्या लगता था?
0: कभी कभी तो ऐसे लगते थे कि गलत फील्ड में आ गए, नहीं आना था.
1: अच्छा, ओके.
0: कि गलती हो गई, हमारे दोस्त जो इंजीनियरिंग जो अदर फील्ड में गए वो एंजॉय करते थे, वो अपनी स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे और हम क्लासेस कर रहे, दिन भर समय ही कहाँ है, अदर एक्टिविटीज के लिए समय नहीं है, ना तुम स्कूल जा रहे हो ना कॉलेज जा नहीं जा रहे हो कॉलेज, और दिन भर क्लासेस और पढ़ाई. तो वो थोड़ा लगता था कि थोड़ा ये हो गया, बट हाँ फिर सोचना पड़ता था कि हाँ फ्यूचर में जब बन जाएंगे तो अलग ही ये रहेगा. और टीचर्स को देखते थे, उनकी लाइफ को देखते थे, तो थोड़ा मोटिवेशन आ जाता था.
1: ओके,
0: हाँ, और मैं मेडिटेशन वगैरह करता था तो थोड़ा माइंड काम रहता था, तो वो हो जाता था.
1: बिल्कुल, मतलब इतना ज्यादा अगर पढ़ाई करनी हो तो मेडिटेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट
0: जरूरी है.
1: आप मेडिटेशन करते थे, क्या करते थे पर्टिकुलरली, क्या कैसे करते थे, अगर आप थोड़ा सा बताएं हमें क्या करते थे, किस समय करते थे, समय तो आपको मिलता नहीं था.
0: देखता ही रहना आप आगे,
1: एक बार आप समय भी बता दो ताकि पता चले कितने बिजी शेड्यूल में से करते
0: कैसे. 5-10 मिनट करना है स्टार्ट करने के पहले.
1: हाँ, ये भी अच्छी बात है क्योंकि आप 5 मिनट भी खुद के लिए दे रहे हैं, खुद के माइंड के लिए दे रहे हैं, तो उसको तैयार करें एक तरीके से, तो अच्छी बात है. क्योंकि कई बार हमें मेडिटेशन को सोच के लगता है कि इतना समय देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेकिन आप करते करते बीच में कर सकते हैं, ये सुन के अच्छा लगा. मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा
0: कर सकते हैं. बीच में आप मतलब न्यू सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो तो बीच में ब्रेक लेके 10-15 मिनट का पे कर लो, म्यूजिक सुन लो, थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है क्योंकि आप कंटिन्यूस नहीं पढ़ सकते ना.
1: बहुत जरूरी है एक्चुअली. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं. तो आपका जब आपने आठों सब्जेक्ट ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों दिए तो क्या हुआ फिर?
0: शॉकिंगली मैं फेल हो गया था.
1: ओके.
0: मैं फेल हो गया था शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने क्लासेस की थी शेड्यूल बिजी होता था इसलिए मैं उतना पढ़ नहीं पाता था. तो जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा तो काफी चीजें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूल गया. क्योंकि वो ब्रेन अपना एट द एंड आप ह्यूमन माइंड है तो उसका प्रॉपर ये रहता है प्रोसीजर. आपको माइंड के अंदर कुछ चीजों को अगर इनपुट डालना है और उसको स्टोर रखना है तो उसका प्रोसीजर, उसको आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा और उसको आपको प्रैक्टिकली मतलब सोच के उसको ये करना.

0: तो मेरा वैसे ही ये हो गया। फिर मैंने टीचर्स से वगैरह कंसल्ट किया जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, जो प्रोफेसर्स ने, तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं। इट्स, और ऐसा भी बोला जाता है कभी, अगर सीए कर रहे हो और अगर आप फेल नहीं हो रहे तो सीए क्या बने, तो वो थोड़ा एक मोटिवेट करता है। और अभी तो वो सीए का लॉन्ग फॉर्म लोग कम अगेन बोल, सीए का लॉन्ग फॉर्म होता है कम अगेन, आप और
1: फिर
0: वापिस
1: से
0: आओ
1: आओ।
0: एग्जाम देने के लिए आओ। तो वो थोड़ा था कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है, होता है,
1: होता है
0: होता।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर मैंने फिर 2-3 दिन ब्रेक लेके फिर माइंड को उसका कमांड दे दे कि इस बार कुछ भी हो जाए अच्छे से पढ़ना है। वो कैसा होता है ना कि जब आपके एग्जाम देते हो तो आपको 2.5 महीना तो भी रिजल्ट आने को लगता है। सपोज अगर मैं मई में एग्जाम दे रहा हूँ तो मेरा अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा इंटरमीडिएट का। तो फिर जैसे आप अगस्त का रिजल्ट आ रहा है तो आप अगस्त से फिर आपको नवंबर में नेक्स्ट एग्जाम है। हाँ, तो फिर अगस्त से आपको नवंबर तक का टाइम मिल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, और 3 महीने का, बस 3 महीने
1: तो आपको
0: का।
1: फिर से रजिस्टर करना
0: नहीं
1: पड़ता
0: नहीं
1: है।
0: नहीं आप रजिस्ट्रेशन हमारा मोस्टली 3 साल तक वैलिड रहता है। अगर 3 साल तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करते तो फिर वापस से आपको रिन्यू करना पड़ेगा, बट वो चलते रहता है। एग्जाम आप कितने भी बार दे सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, आप अनलिमिटेड एग्जाम दो। तो जो नेक्स्ट एग्जाम देने उसमें 3 महीने का टाइम है, वो वापस से आपको 3 महीने प्रिपेयर करना है और एग्जाम फॉर्म भरना है और आपको एग्जाम देना है। ऐसे ये साइकिल चलता रहता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं जाता है ये कर इसमें कि आपको एक एक साल रुकना है या फिर काफी टाइम रुकना है, तो वो प्रॉब्लम नहीं जाता। आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप एग्जाम दे के ये कर लो।
1: ठीक है।
0: तो वापस से फिर मैंने 3 महीने पढ़ाई की, फिर नेक्स्ट टाइम मेरा हो गया क्लियर,
1: ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों,
0: ग्रुप 1 क्लियर हो गया।
1: ग्रुप 1 क्लियर हो गया, क्या बात है। ठीक है, ये तो बड़ी, मतलब आपको बहुत खुशी हुई होगी डेफिनेटली। कितना रिलीफ भी मिला होगा।
0: एग्जैक्टली कि वापस से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना
1: हाँ सही
0: अभी।
1: बात है। और उसके बाद फिर आपने ग्रुप 2 की तैयारी की।
0: हाँ, तो उसमें ऐसा होता है कि ग्रुप 1 क्लियर होने के बाद या फिर कोई भी एक वन ऑफ द ग्रुप क्लियर होने के बाद आप आर्टिकलशिप जो 3 साल मैंने बोला था जो सीए के अंडर अपने को करना है वो कर सकते स्टार्ट। लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने सीनियर्स से वगैरह सुना था कि सेकेंड ग्रुप को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसको क्लियर कर लो तो फिर आर्टिकलशिप अच्छे से कर सकते। और आर्टिकलशिप में आपको प्रॉपर ऑफिस जाना होता है, मतलब 10 बजे जाओ, फिर आपको आने का टाइम डिसाइडेड नहीं है क्योंकि आपको काम है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सीखना है ऑफिस में जाके प्रैक्टिकली पूरी चीज़ें जो तुमने पढ़ा था वो सब अप्लाई करना है। तो ऑफिस में टाइम जाता है तो फिर आप पढ़ाई पर इतना फोकस नहीं कर पाते, तो इसलिए आप पहले एक ग्रुप, सेकेंड ग्रुप बचा है वो क्लियर कर लो। तो मैंने वो सोचा था, बट शॉकिंगली वो नहीं ये हुआ, मैं वापस से फेल हो गया
1: ओहो ओके।
0: था। हाँ, तो फिर मैंने एट द एंड सोचा कि नहीं इसको, क्योंकि मेरा टाइम डिले हो जाता है, क्योंकि अगर आपका वो समय चले जाता तो फिर आपका जो कंप्लीशन होता है एक कोर्स का वो लेट हो जाता है। तो फिर मैंने फिर बाद में रजिस्टर कर लिया आर्टिकलशिप के लिए।
1: अच्छा ठीक है, तो
0: हाँ, तो फिर मैंने
1: आपने
0: आर्टिकलशिप
1: अपने ऑप्शंस खुले रखे, सोचा कि अब ये कर सकता हूं तो आप आगे बढ़े।
0: हाँ, फिर मैंने सोचा कि हाँ अभी फाइनली आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें अगर वापस से फेल हो गए तो वापस समय चले जाएगा, 6 महीने का समय आपका जा रहा है तो उधर आगे एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि आपका सीए फाइनल भी जो लास्ट एग्जाम वो क्लियर करना है तभी आप डिग्री ले सकते हो, तो उसको डिले हो जाएगा आपको, वो जो फाइनल कट है वो डिले हो जाएगा। तो इसलिए अभी से रजिस्ट्रेशन करा लो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे
1: तो आपने आर्टिकलशिप फिर शुरू कर
0: शुरू
1: दी।
0: कर दी।
1: वो एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है और ज्यादा, को जैसा आपने बताया अभी कि जॉब भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है, तो कैसा था वो अनुभव शुरुआत में कैसा था?
0: शुरुआत में तो अब आदत पड़ गई थी कि आपको पढ़ना ही है, और ऐसी जिंदगी की आदत पड़ गई थी कि आपको जहाँ इतनी मौज वाली जिंदगी नहीं, आपको पढ़ना है और ये करना है, तो ऐसे एटीट्यूड ही बन गया था कि आपको बस यही आपकी जिंदगी, यही लिमिट है, क्योंकि आप फंस गए हो ना वहाँ पे। क्योंकि अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे तो फैमिलीज के ताने या फिर अपने को खुद को लगता है कि हम कुछ आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, तो इसलिए थोड़ा वो पढ़ना ही तो ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम क्लियर करने हैं और साथ में ऑफिस तो बहुत ज़रूरी। तो वो बहुत हेक्टिक होता था एक्चुअली, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब आपको ऑफिस में जाना है 10 बजे, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ऑफिस में अपने हाथ से गलती हो रही तो फिर सीनियर्स की डांट खा लो, बॉसेस की डांट खा लो, क्योंकि वो बिजी रहते थे सर, मतलब जो हमारे चार्टर्ड चार्टर्ड अकाउंट जो इनकी प्रैक्टिस है, तो उनके काफी जो काम से रहते थे क्लाइंट से मिलना वो सब चीजें, तो वो उसकी वजह से हाँ, तो हम और हम नए थे छोटे,
1: उम्र भी उतनी नहीं थी.
0: हाँ उम्र भी उतनी नहीं थी. आई गेस मुझे याद है कि मैं 1920 का होऊंगा जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया. वो टाइम में तो बच्चे मजे कर रहे होते.

0: मतलब कॉलेज लाइफ में, और आप प्रॉपर ऑफिस में जा रहे हो फॉर्मल्स पहन के,
1: उन्नीस
0: तो
1: साल की उम्र में ही.
0: 19-20 साल की उम्र में, तो वो अलग ये रहता है, आपका अलग फील रहता है कि आप वो कर रहे हो.
1: जी.
0: तो फिर मैंने मैनेज कर लिया, फिर मेरा सक्सेसफुली उसके बाद हो गया क्लियर एग्जाम,
1: ओके.
0: सेकेंड ग्रुप मेरा कंप्लीट हो गया. फिर
1: तो आपने ऑफिस को और पढ़ाई को दोनों को मैनेज
0: दोनों को
1: किया.
0: मैनेज किया.
1: क्या बात, बाप रे. तो लेकिन एक बात मुझे और यहाँ पे आपको पूछनी है कि जैसे आपको कभी कभी लगता था कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं या बहुत हेक्टिक है, तो कोई कोई चीज थी जो आपको उसमें मदद करती थी? क्या मदद करता था?
0: जैसे मैंने पहले बोला कि मैं एग्जाम मतलब पढ़ाई के टाइम में मेडिटेशन करता था, तो वो एक चीज मुझे हेल्प करती है, क्योंकि आपको तो चीजें पूरे माइंड से करने, बॉडी एग्जर्शन तो नहीं हो रहा है आपका, बस माइंड ब्रेन प्रॉपर होना चाहिए, वही से चीजें विचार आपके बनने चाहिए, एटीट्यूड बनना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन काफी हेल्प करेगा. आप सुबह उठते ही सबसे पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लो, या फिर बीच बीच में भी आप थोड़ा एक जगह बैठ के रिलैक्स होके आंखें बंद कर लो, आप एक कुछ म्यूजिक सुन सकते हो, मोस्टली आप वो मेडिटेशन वाला म्यूजिक सुनो जिसमें लिरिक्स ना हो, क्योंकि वो आपको याद रहेगी, लिरिक्स वाले अगर आप सुनोगे तो
1: तो लिरिक्स ही याद आएंगे.
0: लिरिक्स याद आएंगे. तो वो विदाउट लिरिक्स वाला जो मेडिटेशन सॉन्ग्स है वो सुनो, तो थोड़ा काम रहेगा,
1: जी.
0: स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज करने के लिए हेल्प होगा. और कभी कभी तो आपका स्ट्रेस बहुत ओवर हो जाता है, बट ठीक है, वो चीज़ें भी निकल जाती है, बिकॉज वो सस्टेन नहीं होता है. हम वो स्ट्रेस आपका थोड़ा रहता है थोड़ा, क्योंकि आपको कलीग्स वगैरह होते हैं उनके साथ थोड़ा बाहर चले जाओ, घूम लो थोड़ा, कहीं और चले जाओ, फ्रेंड्स के
1: रिलैक्स
0: साथ
1: करना
0: पार्टी कर
1: जरूरी
0: लो,
1: है.
0: यस थोड़ा, तो वो फिर ये हो जाता है, रूटीन में आ जाता है.
1: ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्रेस है, प्रेशर है, तो वो अपने तक रखे,
0: नहीं,
1: लेकिन उसको कैसे हमको डील करना है वो भी समझना जरूरी है.
0: एग्जैक्टली
1: क्योंकि नहीं तो जैसा आप बता रहे हैं, सीए का एग्जाम इतना टफ है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, फिर आप एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए तो आपको पूरा रीअपेयर करना पड़ता है.
0: राइट
1: तो बहुत ऐसे सर्कमस्टेंस में खुद पे डाउट होने लगे, इससे ज्यादा इससे जरूरी है कि हम खुद को मोटिवेटेड रखें. बहुत जरूरी है.
0: एग्जैक्टली क्योंकि एट द एंड आपको ही करना है, कोई कुछ भी बोले या फिर कोई कुछ भी करे, आपको खुद को ही मैनेज करना है सब चीज़ें,
1: बिल्कुल.
0: तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खाली बैठ के मतलब आप स्ट्रेस लेके क्या आउटपुट क्या निकल रहा है आपका, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आप खुद को तकलीफ दे रहे हो,
1: राइट.
0: है ना. तो आपको एट द एंड वो स्ट्रेस से मूव ऑन होके आपको को खुश रखने के बहाने ढूंढ के आपको ये करना ही
1: आगे
0: पड़ेगा,
1: बढ़ना है.
0: आगे बढ़ना पड़ेगा.
1: तो जब आपने आपका जॉब भी किया, साथ में आपने ग्रुप 2 भी क्लियर किया, तो उसके बाद क्या?
0: हाँ ओके. फिर आर्टिकलशिप जब आपकी स्टार्ट होती है उसके 2.5 साल के बाद आपको आप फाइनल का एग्जाम,
1: अच्छा.
0: हाँ पहले तो आपको 2.5 साल में आर्टिकलशिप करना है, ऑफिस में रोज जाना है, ये कर ऑफिस के पूरे काम करने, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू डेट्स होते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स का अगर पता करो तो इनकम टैक्स एक ड्यू डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न्स की, फॉर्म्स की, तो वो आपको अगर ड्यू डेट पे पूरा काम होना चाहिए, तो फिर पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह क्लाइंट को लगता है, अगर आपको क्लाइंट को प्रॉपर सर्विस देने तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो फिर आप आर्टिकलशिप में तो आपको तो करना ही पड़ता है, तो कभी कभी काफ़ी लेट तक आपको ऑफिस रह के काम करने हैं, तो वो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आपको ऑफिस प्रॉपरली करना है, साथ में आपको सीए फाइनल की पढ़ाई भी करनी है.
1: बिल्कुल.
0: वो ग्रुप 2 तो अलग ये था,
1: हाँ.
0: उसको आपको क्लियर करने के बाद फिर आप फाइनल में फोकस करना
1: और
0: है,
1: इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं?
0: इसमें भी 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट उनका लेवल जो होता है वो थोड़ा एडवांस होता है, इट्स लाइक हाई लेवल नॉलेज होता है वो, तो वो आपको ये करना होता है, उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, जैसे इंटरमीडिएट में भी वास्ट होता है, वो एज के हिसाब से लगता है, क्योंकि आप फाइनल में गए हो तो आर्टिकलशिप के, तो आपको नॉलेज भी आ गया, तो उस हिसाब से वो ठीक है, बट सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है.
1: तो वो 8 सब्जेक्ट के पेपर एक समय देने होते हैं या यहाँ भी?
0: उसमें भी 2 ग्रुप का ऑप्शन है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, आप दोनों भी दे सकते हो, कभी मतलब एक दे दो पहले फिर बाद में दो, तो मोस्टली मैंने सुन मैंने मतलब जो दोस्त है एक ग्रुप देते हैं, क्योंकि आप आर्टिकलशिप कर रहे हो उसमें टाइम जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिर लास्ट में 2.5 साल के बाद मतलब आपको 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली लीव्स का ऐसे समझ लो, कि आपको 6 महीने कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो बॉसेस आपको 6 महीने की छुट्टी दे देंगे पढ़ाई के लिए,
1: अच्छा.
0: मतलब डिपेंड ऑन फॉर्म्स 4 to 6 मंथ्स की वो लीव होती है जिसमें आपको फाइनल की पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो सफिशिएंट टाइम नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, ड्यूरिंग आर्टिकलशिप भी आपको पढ़ना है.
1: ओके. ठीक है, तो आपने फिर 2.5 साल मतलब मेहनत किया, और क्या सीखने को मिला है, प्रैक्टिकल आपको क्या सीखने को मिला जब आप आर्टिकलशिप कर रहे थे?
0: एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही होती है, क्योंकि आप उसमें देखोगे एग्जाम अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूँ तो ये 2 साल में कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन आर्टिकलशिप आपको 3 साल करना है. तो ये अच्छी ब्यूटी इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिकल चीजें पता चल रही है. आप बुक में पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा हर चीजें एज इट इज अप्लीकेबल हो जाएंगे. वैसे नॉलेज प्रैक्टिकल है, बट जब आप प्रैक्टिकली ऑफिस में जाते हो, क्लाइंट से बात करते हो और प्रैक्टिकली काम करते हो जो तुम्हें सीए बनने के बाद करना है, तो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप गलती कर सकते हो. मेन चीज है कि आप ड्यूरिंग आर्टिकलशिप गलती करते, लेकिन एक बार आप प्रोफेशनल बन जाते हो आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप गलती करने का जो स्कोप है आपका कम हो जाता है, बिकॉज आपको क्लाइंट को सर्विस देना है.
1: right.
0: या फिर आप जॉब में हो तो वहां पे भी आप गलती नहीं कर सकते हो, या प्रैक्टिस में वहां गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ऐसा हो सकता है कि आप क्लाइंट को पेनल्टी बैठ सकती है, क्लाइंट ना खुश हो जाए और आपका बिजनेस चले जाए. तो वो जो गलती करने का जो समय होता है ये 2.5 साल होता है.
1: okay.
0: जो आप ऑफिस
1: हो,
0: हाँ सीखते हो, करके सीखते हो,
1: करके सीखते हो.
0: एग्जैक्टली.
1: तो यहाँ मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि अगर कोई 19 या 20 साल का बच्चा, कोई भी यूथ अगर जा रहे हैं जॉब के लिए, मान लीजिए आर्टिकलशिप है या कोई और जॉब है, अगर वो जा रहे हैं 19-20 साल की उम्र है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया है, तो क्या उनको बोलेंगे जो उनका अनुभव बेहतर हो?
0: पहली बात तो आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, एटीट्यूड बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर, कि आपको मतलब ऐसा, ये पहले ही वैसे आपका ये बन गया होगा एटीट्यूड, क्योंकि पढ़ाई, क्योंकि आपको थोड़ा मौज वाली दुनिया से थोड़ा दूर रह के आपको ये करना है, क्योंकि काफी वर्क प्रेशर होता है ऑफिसेस में.
1: right.
0: आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग काफी वर्क प्रेशर होता है और आपको करना ही पड़ता है. लाइक समवेयर बॉसेस को ऐसा रहता है कि आप ते को इतना काम दिया तो ते को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऐसा ये रहता है. थोड़ा कभी कभी बॉसेस स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी रूड हो जाते हैं, फिर अपने को सुनना, बिकॉज अपन जूनियर है, अपन सीख रहे, तो थोड़ा वो करना भी पड़ता है. हाँ, वो टाइम पे थोड़ा बुरा लगता है, क्या सुनना पड़ रहा है वो सब चीजें.
1: बिल्कुल.
0: बट वो अच्छे प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप टाट खा खा के ही और गलती करके ही इंसान आगे बढ़ता है. वो तो आप भरपूर गलती करो, मतलब ऐसे नहीं जानबूझ के गलती नहीं करो, बट नई नई चीजें करो, तो उससे फिर आपका उतना एक्सपीरियंस भी उसमें पड़ेगा.
1: ओके. एंड अगर डांट सुनते भी हैं, तो जैसा आपने कहा कि शुरुआत में होता है और उससे थोड़ा और स्ट्रांग होते हैं.
0: एग्जैक्टली. जितना ऐसे बोलते ना, जितना हीरे को आप तराशोगे उतना वो चमकता है. इट्स लाइक अपन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हीरा बनने वाला है, जो अभी कोयले के खदान में है, जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसको वो तरस रहा है और उसको फाइनल मतलब क्लियर करके बाहर निकलना है, तो आपको जितना मतलब आप पीसोगे, जितना ज्यादा आप रगड़े जाओगे उतना ज्यादा आप चमकोगे बाहर आके. तो वो चमकने के लिए आपको जितना ज्यादा हो सके मतलब आप प्रेशर को हैंडल करो. हाँ, थोड़ा वो होता है, बट आप दोस्तों के साथ रहते हो, कलीग्स रहते हो ऑफिस में, तो थोड़ा मैनेज हो जाता है. ठीक है, कभी डांट सुन लो फिर भूल जाओ, बट अपना काम कंटिन्यू करो, आप नई नई चीजें सीखते जाओ, वो जरूरी. और थोड़ा
1: मतलब दिल से नहीं लगाए डांट को.
0: एग्जैक्टली.
1: और वो ये ध्यान रखे कि हमें ये बेहतर बनाएगा,
0: बेहतर बनाएगा. कभी मतलब बॉसेस को खुद से वो नहीं करते, वो तो उनको मतलब और ज्यादा ये बढ़ाने के लिए, वो
1: हमें आगे बढ़ाने के लिए.
0: हाँ, आगे बढ़ाने के लिए.
1: ओके. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, जैसा कि कम्युनिकेशन आजकल कहते हैं बहुत जरूरी है, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं जब हम जाते हैं जॉब्स के लिए.
0: राइट.
1: तो क्या आपको लगता है कि कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, या कम्युनिकेशन क्या मदद करता है हमें?
0: ओके. कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप प्रैक्टिस में जाओ या फिर जॉब में जाओ, तो आपको वहाँ पे, जैसे अगर प्रैक्टिस में जा रहे हो तो आपको क्लाइंट को एक्वायर करना है, नए क्लाइंट्स को की सर्विस देना है, तो उनको आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना जरूरी है. तभी जाके आप वो न्यू क्लाइंट को एक्वायर कर सकते हो और उनको कंटिन्यू रख सकते हो. प्रॉपर कम्युनिकेशन जरूरी है.
1: okay.
0: आप ऑफिस में जा रहे हो और आजकल आप देखोगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर हायरिंग फॉर द गुड पोजिशन इन द फॉर्म. कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप कोई कोई तो सीईओ सीएफओ लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आज पोजीशन में है, तो वो पोजीशन में आप बैठे हो तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल तो बेसिक चीज है, वो होना ही चाहिए.
1: तो ये धीरे धीरे डेवलप होता है जब आप फील्ड में उतरते हो.
0: यस यस. हाँ, जब आप फील्ड में उतर रहे हो, मतलब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, बॉसेस से कम्युनिकेट करना है, कलीग से कम्युनिकेट करना है, कभी कभी इंटर ऑफिस होते हैं उससे कलीग कनेक्ट करना है, तो वहां पे आप वो चीजें सीख जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स,
1: आपको भाषा कॉन्फिडेंस होना, आपकी भाषा अच्छी होना और सम्मान देना
0: रिस्पेक्ट देना,
1: ये बहुत ज्यादा जरूरी है,
0: बहुत ज्यादा जरूरी होता है
1: जी। तो दोस्तों बिल्कुल आप इस मामले में अगर आप जानकारी रखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें हमारे व्यवहार में सम्मान सभी के प्रति जरूर हो, भाषा हम जितना हो सके पढ़ें सुने, और साथ साथ आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आप कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है अपने yes. जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो, और धीरे धीरे होता है, ये ना सोचे अभी नहीं है तो अरे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने बताया कि आर्टिकलशिप हुई आपकी, अब फाइनल फिर कैसे?
0: हाँ, मैंने तो शुरुआत में फिर आर्टिकलशिप के एक साल तो मजे में ही चले गए, मतलब ऑफिस में जा रहे, बस ऑफिस में जा रहे और ये कर रहे, मतलब मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था फाइनल का। बट फिर बाद में मैंने क्लासेस वगैरह लेना स्टार्ट कर दी और ऑनलाइन क्लासेस करता था मैं, पेन ड्राइव लेक्चर्स आते हैं अच्छे अच्छे बेस्ट फैकल्टीज के, आप गूगल करके आपको अच्छे अच्छे फैकल्टीज के हर सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे,
1: ठीक है,
0: वो मैंने ऑर्डर करके फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया आफ्टर वन ईयर। वैसे आप भी वैसे कर सकते हो, मतलब
1: कहाँ से ऑर्डर करते हैं
0: हमने तो गूगल उनके वेबसाइट्स पे जाके, क्योंकि अभी काफी सीएज है जो पढ़ाते हैं,
1: अच्छा,
0: तो उनसे आप लेक्चर्स ले सकते हो,
1: ठीक है,
0: मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट के 8 लेक्चर्स लेके आप वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लैपटॉप में आप वो पेन ड्राइव क्लासेस आते हैं, आपको मटेरियल भी प्रोवाइड हो जाता है क्लासेस से और आप फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो।
1: ओके,
0: प्रत्येक हर सब्जेक्ट को 8 सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट कर लो। तो मैंने फिर वो क्लासेस करना स्टार्ट कर दिया, फिर आर्टिकलशिप, मतलब सुबह मैं एक क्लास कर लेता था, शाम को एक क्लास कर लेता था, ऐसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे का, ऐसे 3-4 घंटे अप्रोक्सीमेटली क्लास कर लो, फिर दिन भर ऑफिस कर लो, तो वैसे मैनेज करना पड़ेगा आपको,
1: ठीक है,
0: फिर क्योंकि आपको फिर लास्ट में जब आपके एग्जाम है उसके 4-6 महीने का मोस्टली ऑफिस में लीव मिलते, बस वही समय मिलेगा जिसमें आपको बस सेल्फ स्टडी करने,
1: जिसमें आपको पूरा समय सिर्फ पढ़ाई के लिए
0: करने, मतलब लेक्चर नहीं कर सकते, आपको लेक्चर ऑफिस मतलब कर रहे हो तो उसी ट्यूरिंग आप लेक्चर कर लो, फिर बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो।
1: ओके, तो जैसा क्योंकि आपने बताया ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 का जब आपने क्लियर किया तो कैसा था, मतलब क्या लगा था आपको, क्या था आपके मन में उस वक्त? ग्रुप 2 जब आपका क्लियर हुआ, मतलब एकदम फाइनल एग्जाम जब क्लियर हुआ आपका,
0: ओके,
1: तो कैसा लगा जब रिजल्ट आने वाला था, या जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा?
0: वो तो शब्दों में तो नहीं बोल सकते क्योंकि बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, बिकॉज द थिंग्स फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लास्ट 4-6 ईयर वी फाइनली अचीव इट।
1: 6 साल से आप एक ही चीज के लिए लगे मेहनत कर
0: जो संकल्प मैंने 9th-10th standard में लिया था कि आई हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशन में आना है, तो इतनी मेहनत की है, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, फंक्शन सैक्रिफाइस, इवन आई विल से कि फाइनल का जब मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था तो मैंने तो मेरा फोन तो मेरा फॉर 5 months आया फोन स्विच ऑफ था मेरा, नो कनेक्शन विद नो फेसबुक नो सोशल मीडिया नथिंग, जस्ट ओनली पढ़ाई, बस बस पढ़ाई चल रही, सुबह उठ के बस वो जो सब्जेक्ट से वो पढ़ो, शाम को सोते वक्त भी वही पढ़ो,
1: बस वही,
0: कोई शेड्यूल नहीं, बिकॉज आपको फोकस रहना होता है, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया, फिर कैसे हुआ था शुरुआत में भी मैं थोड़ा इसमें मिस गाइड हो गया था कि मैं मोबाइल पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ या फिर फंक्शंस अटेंड कर रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि आपको फुल फोकस माइंड होना चाहिए, मतलब आपके माइंड को कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए सोचने के लिए देखने के लिए, तो आप देखो ही मत सोचो ही, तो आप के पास कोई बुद्धि को सोचने के लिए मन को सोचने के लिए कुछ होगा ही नहीं पढ़ाई के अलावा,
1: पढ़ाई बस। ओके,
0: तो वो आपको 45 मिनट्स मैंने पढ़ाई की थी, तो वो मुझे कभी कभी रोना भी आता था कि यार इतने दिन हो गए और कितना पढ़ना है, रिजल्ट पास आएगा फेल आएगा कैसा होगा क्या होगा, एग्जाम देने के बाद तो लग रहा था कि हाँ इस बार हो जाना चाहिए, बट शुरुआत में तो मेरा ये हो गया था, बट वही कि आपको की मेहनत का रंग आ गया वापस, मतलब आप
1: बिल्कुल ऐसे मोमेंट को शब्दों में नहीं कह सकते। आपके माता पिता और घर में भी सब लोग बहुत खुश हुए होंगे।
0: फर्स्ट टाइम मैंने पापा को रोते हुए देखा था, नहीं तो उनका कभी मैंने रोना नहीं सुना था, बट वो रो रहे थे, सभी लोग रो रहे थे, तो वो खुशी के आंसू थे,
1: बहुत प्राउड महसूस कर रहे
0: हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा।
1: तो ये आपने कब क्लियर किया फाइनल एग्जाम सीए का, कौन से वर्ष में?
0: ये December 21 में मेरी एग्जाम हुई थी, अभी ये कोविड के ड्यूरिंग. फिर मेरा रिजल्ट 10th February आया था, वो डेट को तो मैं कभी नहीं भूल सकता लाइफ में, ड्यूरिंग माई होल लाइफ. 10th February 2022
1: क्या बात,
0: तो रिजल्ट आया था. और 1 बजे का समय था जब डिक्लेयर हुआ रिजल्ट, और मैंने लैपटॉप पे ओपन किया तो पास था. तो मेरे को तो आधे घंटे तक कुछ सोची, आई वॉज टोटल ब्लैंक, क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो ऐसे शांत पड़ा था.
1: बिलीव नहीं हो रहा,
0: बिलीव नहीं हो रहा था. एग्जैक्टली
1: बिल्कुल, आपने कड़ी मेहनत की है और आप डिजर्व करते थे, तभी आपको ये मिला है. और जैसा आपने बताया, कई बार हमें लग सकता है कि दूसरे लोग कुछ तो आराम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फल भी आपको मिलेगा.
0: Exactly.
1: और दूसरे हो सकते हैं आज मस्ती कर रहे हैं तो उनको कल उनका कुछ और उन्हें करना हो. सबका जर्नी अलग अलग है, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको ही मिलता है. और डेफिनेटली बहुत कुछ आपने सैक्रिफाइस किया, डेडिकेशन से आपने एफर्ट किए, तब जाके आपने आप सीए बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने.
0: एग्जैक्टली. और उस दिन मुझे याद है कि उस दिन मैंने 400 से ज्यादा लोगों को रिप्लाईज किए कॉन्ग्रेचुलेशन का, जो लोग मुझे जानते नहीं थे, जो बस मतलब ठीक है कोई नहीं, ऐसे ही नॉर्मल है, मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, उन सब लोगों का मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन. तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन होता कि सब लोग याद कर रहे खुशी में.
1: राइट.
0: जब आप फेल होते तो कोई आपके साथ नहीं होता, 2-4 लोग होते बस, 2-4 फ्रेंड और फैमिली होती, बट आप पास हो जाते हो तो लोग, क्राउड होता है आपके पास.
1: राइट. और यही ध्यान रखना होता है कि वो जो लोग साथ रहे हैं जब हमने नहीं कुछ अचीव किया था, वो उनका ध्यान जरूर रखना होता है.
0: Exactly.
1: हमेशा
0: हमेशा.
1: बहुत अच्छी बात है आपने कही. एंड मुझे लगता है हम अपने शो के अंतिम मोड़ पे भी आ गए. मैं आपको पूछना चाहूंगी कि इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, और अगर आप सीए बन जाते हैं तो क्या होता है आगे?
0: ओके, सीए बनने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. तो मैं अगर आपको बताऊं तो हम फाइनल में जो 8 सब्जेक्ट पढ़ते, तो हर एक सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन को ये करके आप उसमें और आगे पढ़ सकते हो, या फिर और आगे आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो. वो एक ऑप्शन होता है कि आप कोई और डिग्री ले लो, जैसे MBA वगैरह कर सकते हो, या फिर अदर फॉरेन कोर्सेज भी, वो भी कर सकते हो. मतलब आपको और कई और ऊंचे लेवल पे जाना है उसके. लेकिन आपको करियर ऑप्शन बहुत अच्छे है, आप प्रैक्टिस में जा सकते हो. मतलब खुद का ऑफिस सेटअप कर दीजिए और आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, वो एक अच्छा ऑप्शन होता है. सेकंड ऑप्शन है जॉब कर सकते हो. जॉब की वैकेंसी काफी है इंडिया में, या फॉरेन में भी आज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया जाता, तो ऑल ओवर इंडिया काफी वैकेंसीज है कंपनीज के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, तो वहां आप जॉब कर सकते हो. मेरे केस में मैंने जॉब का ऑप्शन लिया कि शुरुआत में मैं जॉब कर दो, फिर बाद में और समय है सोचने के लिए. जॉब्स काफी है, जॉब कर सकते, प्रैक्टिस कर सकते, या फिर आप अदर फील्ड भी ये कर सकते हो,
1: चूज कर सकते. मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज
0: हैं,
1: लेकिन हाँ बस यही है कि आपको मेहनत करनी है, एग्जाम देने हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शन.
0: यस, मतलब आपको पढ़ते रहना है. एक्चुअली कोई भी प्रोफेशन में चले जाओ, जहाँ पे आप पढ़ना बंद करते हो तो आप नहीं बढ़ सकते हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा.
1: सीखना जरूरी है.
0: सीखेगा तो ही बढ़ेगे.
1: बिल्कुल. और यहाँ दोस्तों मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इससे ज्यादा जो आपको नहीं मिल पा रही है ऑनलाइन, तो आप रेडियो मधुबन पर हमें मैसेज कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो जानकारी उपलब्ध कराने की. रेडियो मधुबन का नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415. इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं. अच्छा, जाते जाते मैं ये आपसे बोलना चाहूंगी, जो भी युवा साथी आपको सुन रहे हैं, वो स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, ये जो अपना यूथ पीरियड होता है, जो आई थिंक मुझे बोलना चाहिए 18 से स्टार्ट हो सकता, 16-18 से 10वीं 12वीं 11वीं के बाद अपना स्टार्ट होता है, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है ऐसा मुझे लगता है. और आप 25 तक जो आपका पीरियड है, ये बहुत ही क्रूशियल है. मतलब आपके लाइफ का, आपको अगर बेहतरीन जिंदगी जीना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है नेशन को, या फिर खुद के फैमिली को कंट्रीब्यूट करना है, खुद के लिए कंट्रीब्यूट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है जिसमें आपको जो आपका हर एक कदम इंपॉर्टेंट है. आपको एक प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए। आपका एक गलत कदम आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर उसको एक, क्योंकि आफ्टर 25-30 आप नहीं कर सकते चीजों को जो चीजें आप तब कर सकते थे जो 18-25-24 वाले पीरियड में। इसलिए ये समय में जो आप चीजें कर रहे हो तो आप एक बस खुद को पूछियो कि इज इट मेकिंग एनी वैल्यू एडिशन टू अस, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है क्या
1: या हमारे जीवन में
0: वैल्यू एडिशन, या मतलब अपन कौन से रास्ते की तरफ जा रहे हैं। एक अच्छाई वाला रास्ता जहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है, अच्छा फ्यूचर है, वहां जा रहे, या फिर अपन खुद को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे कि फ्यूचर में अपनी लाइफ कैसे। आप वो सोचिए कि आप 30-40 के बाद कैसे होंगे, आप सपने देखिए कि आपको 30-40 के बाद क्या होना चाहिए, आपको कुछ दिनों के बाद कैसे होना चाहिए। तो वो चीजों विजन रख के आप काम कीजिए, क्योंकि आपको फिर

0: जिंदगी बहुत बड़ी है अगर अच्छे से जीना, और एक हर एक को एक वैल्यूएबल लाइफ मिली है, तो इसलिए वो पूरे जिंदगी को पूरा जीना ही सबसे बेस्ट होता है। आप कोई कुछ भी करो, जरूरी नहीं कि आप सीए ही करो या फिर डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, आप कुछ भी करो, जो भी प्रोफेशन में आप हो, आप उसको फुल फ्लेज और प्रॉपर स्टेप लो, वो इम्पोर्टेंट है कि
1: मतलब
0: आप।
1: कल को ये ना लगे कि अरे ये कर
0: हाँ
1: लेते, अरे
0: एग्जैक्टली
1: थोड़ी और मेहनत कर लेते।
0: एग्जैक्टली वो हमें भी कभी कभी लगता है कि कोई चीज हमने नई चीजें या मिस आउट हो गई, तो अभी लगता है कि वो चीज कर लेना था, वो समय तो चलेगा, अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब फिर वो मेहनत करने के बाद जो हासिल करते हो उसका जो फ्रूट होता है, वो उसका एक्सपीरियंस जो होता है, मतलब आप मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने का तो अलग ही महत्व होता है, वो चीजों को ध्यान रख के आप बस लाइफ को जो बाकी करना ही के।
1: नहीं, बहुत आपने बहुत सरल तरीके से अपनी ये सभी बातें कही, और आपने साथ साथ मोटिवेट भी किया और प्रैक्टिकल बातें भी बताई कि हाँ ऐसा नहीं है कि आराम से हो रहा है, लेकिन हाँ आप मोटिवेटेड हो तो आप कर सकते हो। बिल्कुल,
0: लाइफ को जियो भी, मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, वो भी जरूरी है, क्योंकि वो उम्र तो वापस नहीं आने वाली, क्योंकि 25-30 के बाद आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाओगे, लेकिन उतना आपकी हेल्थ साथ नहीं देंगी। वो सब करते हुए आप करियर को भी एक फोकस रख के आगे बढ़ो, तो वो बहुत जरूरी होगा,
1: बहुत जरूरी
0: बहुत
1: है, युवा
0: जरूरी,
1: काल में बहुत जरूरी
0: बहुत
1: है।
0: जरूरी है।
1: दोस्तों अपना रास्ता खुद चुने, और कई तरीके के रास्ते आपके सामने आएंगे, हो सकता है आपके दोस्त भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको चुनना है आपका भविष्य, और इसीलिए जरूरी है, क्योंकि कई युवा साथी हैं दोस्तों बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत उनके पास हुनर है, लेकिन कई बार नशे की आदत, कई बार इस तरह की आदतें पड़ जाती हैं युवा काल में, जो जीवन के ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पल हैं वो ऐसे ही गुजर जाते हैं। और दोस्तों वैसे तो कहते हैं कभी भी देर नहीं होती बदलाव के लिए, तो इसीलिए अगर आपको आज भी ये महसूस हुआ है तो आज ही ये बदलाव लेकर आइए अपने जीवन में, एक करियर, एक विजन, खुद से प्रश्न कीजिए, जैसा आपने कहा कृष्णा हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा खुद से प्रश्न कीजिए कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं, तो जवाब मिल जाएगा कि क्या जॉब किस तरह का आप करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड यूथ को गाइड करने के लिए, बहुत सरल तरीके से हमसे आपकी जानकारी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू रेडियो मधुबन, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यूथ से कनेक्ट होने के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच।
1: एंड थैंक यू आप सभी को भी दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
1: ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। आज पांचवा दिन माँ स्कंद माता का दिन है और माँ स्कंद विशेष योद्धा के रूप में दिखाई गई है, जो कहा जाता है कि देवों के सेना की मुख्य योद्धा के रूप में उसको दिखाया गया है। माँ स्कंद, माँ स्कंद भी माँ दुर्गा का ही दूसरा स्वरूप है। माँ स्कंद कहा जाता है कि वो कार्तिकेय की माता थी, जिसको देवों ने चुना था असुरों के सामने विशेष युद्ध करने के लिए मुख्य योद्धा के रूप में। कहा जाता है कि माँ स्कंद ने अपने बेटे को एक हाथ में उठाया है, इसीलिए उसके हाथ में छोटा बच्चा भी दिखाया है और साथ में उसको चार भुजाधारी और तीन नेत्रधारी दिखाया गया है। उसके हाथ में अपने बेटे और दूसरा हाथ जो आशीर्वाद की मुद्रा में है और साथ ही साथ तीसरे हाथ में कमल जो पवित्रता का प्रतीक है। कहने का भावार्थ कि वो सभी भक्तों की रक्षा करने वाली, विशेष अपने भक्तों कहो या बच्चे के समान सभी बच्चों की रक्षा करने वाली और पवित्रता से उनके जीवन को भर देने वाली, उनके जीवन के अंदर अनेक आशीर्वादों से उसका जीवन संपन्न करने वाली माँ स्कंद की पूजा होती है। कहा जाता है कि जिसके ऊपर माँ स्कंद की मेहर हो जाए तो एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। ऐसी विशेष विशेषता माँ स्कंद की दिखाई गई है। कहने का भावार्थ कि आज पांचवें दिन पर माँ स्कंद की पूजा, अर्थात कि जो हर एक भक्तों की, हर एक बच्चों की रक्षा करने वाली और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी बना देने की क्षमता रखने वाली माँ स्कंद।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर नवरात्रि के पांचवे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी।
0: आज के दिन उपांग ललिता व्रत किया जाएगा। रेडियो मधुबन के संग नवरात्रि के रंग
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नवरात्र साल के अंदर दो बार आती है, दोनों बार बहुत अच्छे से धूमधाम से भारतवासी मनाते हैं और नवरात्रि का सीधा कनेक्शन शिवरात्रि के साथ होता है, क्योंकि शिव बाबा ही आकर के इस अज्ञानता के अंधकार रात में आत्मशक्ति को जागृत करते हैं और अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए उन्हें साक्षात शिव शक्ति बनाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो नवरात्रि हमें बहुत सुंदर एक संदेश देता है कि नारी का हर स्वरूप पूजनीय है। जहां आरंभ होता है प्रथम नवरात्रि शैलपुत्री से, कि घर में जब एक पुत्री का जन्म होता है तो कई लोग उसको या तो गर्भ में ही समाप्त करते हैं या सोचते हैं कि फिर से एक पुत्री आ गई, तो उसके प्रति जैसे मन के अंदर एक नेगेटिव भाव उत्पन्न हो जाता है। कई लोग उसको छोड़ भी देते हैं कि नहीं चाहिए पुत्री, समाप्त कर देते, खत्म कर देते हैं जन्मते ही। भावार्थ ये कि एक पुत्री का जन्म जब हुआ तो ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है। नवरात्रि का प्रथम दिन एक पुत्री का है और इसीलिए पुत्री एक जगत जननी का स्वरूप है। ये कोई नफरत का पात्र नहीं है जिसको समाप्त किया जाए। पुत्री का जन्म तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है, इसीलिए उसको पूजनीय ही माना गया है। उसको हमेशा आदर पूर्वक सम्मान के साथ भाग्यशाली समझते हुए उसको बड़ा करना चाहिए। उसके बाद जैसे दूसरा दिन आता है तो ब्रह्मचारिणी, कि जैसे ही वो पुत्री बड़ी होती है, अपने टीन एज में आती है तो ब्रह्मचारिणी कहलाती है। और ब्रह्मचारिणी यानी जिस कन्या का पूजन भारतवासी करते हैं, कोई भी शुभ दिन आता है, शुभ कार्य करना होता है तो कन्या पूजन से उसका आरंभ होता है। लेकिन भारत के अंदर एक प्रथा थी बाल विवाह की, तो ये बाल विवाह के लिए नहीं है, ये पूजन योग्य है। उसकी पूजा करके हर कार्य शुभ माना जाता है। तो ब्रह्मचारिणी अर्थात के बहुत जल्दी उसको पराए घर की है सोच करके विदा करने की आवश्यकता नहीं है, या उसके प्रति ये भाव रखना कि अब उसको पढ़ा लिखा के क्या करना है, उसको तो चूल्हा चौका ही करना है, ये भी एक प्रकार का डिसरिस्पेक्ट है। तो ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप भी उसका बहुत रिस्पेक्टेबल स्वरूप है। तो उसके प्रति कभी भी ये भाव नहीं लाना है कि भाई उसको पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे, ये भाव नहीं लाना है। ये भी एक प्रकार से उस ब्रह्मचारिणी का इंसल्ट है, अपमान है, यानी परमात्मा का अपमान है। तीसरा स्वरूप फिर वो चंद्र घंटा बनती है, अर्थात संपूर्ण खिल जाती है, और जब संपूर्ण रीति से खिल जाती है चंद्रमा के समान सोले कलह धारण किए हुए, जब योग्य हो जाती है विवाह के, तो ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है। लेकिन वहां भी एक कुरीति जोड़ देते हैं, दहेज प्रथा। हर स्वरूप उसका पूजनीय है, लेकिन समाज के अंदर हर स्वरूप के साथ कुछ न कुछ दुर्व्यवहार किया गया है, यानी उसका अपमान किया गया है। भगवान का अपमान करने बराबर है। तो विवाह योग्य हो गई है, ये भी उसका सम्मान्य स्वरूप है, जहां उसको पढ़ा लिखा करके योग्य बनाते हैं और संपूर्ण खिली हुई होती है, और उसके बाद उसको विदा करो, तो ये उसका सम्मान है। उसके बाद चौथा स्वरूप आता है कुष्मंडा, कि जब वो गर्भ धारण करती है, जब उसके पेट में किसी का अंश है, तो कुष्मंडा स्वरूप, जहां वो एक परिवार के अंदर वृद्धि करने के लिए कदम आगे बढ़ाती है, तो ऐसे समय पर उसको आराम की जरूरत होती है। लेकिन वहां पर भी उसके साथ दुर्व्यवहार कभी कभी किया जाता है। आराम तो दूर, सारे घर का और ही बोझ उसके ऊपर डाला जाता है, ये भी उस स्वरूप का अपमान है। तो जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, ये पूजा माना उसका सम्मान करना, क्या हमारे जीवन में ये नारी के हर स्वरूप का सम्मान हम कर रहे हैं? जब वो एक मां बन करके उस परिवार को वृद्धि करने की तैयारी में होती है, तभी भी कई बार उसको कितना दुर्व्यवहार करके उसके साथ अनैतिकता बरसी जाती है, तो ये भी उसका अपमान है। फिर पांचवा स्वरूप उसका है स्कंद माता का, जब पुत्र को जन्म दे देती है और उस परिवार की वृद्धि करती है। कहा जाता है एक बच्चे का जन्म होता है तो एक मां का भी नया जन्म होता है, तो उस नए जन्म में भी उसका सपोर्ट करने के बजाय जब कभी उसको अपने बच्चे से दूर कर दिया जाता है, काम का बोझ इतना उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि नहीं ये करना है ये करना है अभी छोड़ो उसको, तो जिस समय उस बच्चे को पालना देने की आवश्यकता होती है, तो उस समय भी उसके सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए, ये उसका सम्मान है। यानी घर की स्कंद माता को हम तकलीफ दे और नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा करें, ये कितना उचित होगा? तो जिस समय बच्चे के जन्म के साथ साथ उसका जन्म होता है, उस वक्त उसकी भावनाओं को समझने का समय होता है, उसकी भावनाओं को, क्योंकि उस समय एक बहुत द्वंद से वो गुजरती है और बहुत अलग अलग फीलिंग्स उसके अंदर आती है।

परिवार का संरक्षण करती है। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो वो अपना गहना तक बेचने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पास जो कुछ भी होता है उसको बेच करके भी परिवार को कोई आंच नहीं आए, ये बात सोचती है। लेकिन ऐसे समय पर भी कभी कभी उसको यथार्थ रीति नहीं समझते हैं तो उसके ऊपर जुल्म ढाया जाता है, और उस जुल्म के कारण कभी कभी वो टूटने लगती है अंदर से कि क्या मेरा जीवन है। तो कात्यायनी जो है उसका भी सम्मान करना है, वो हर रीति से परिवार की सुरक्षा के लिए आगे आ जाती है। सब कुछ त्याग करके भी वो आगे अपना हाथ बढ़ाती है, नहीं तो उसको क्या पड़ी होती है। उसके बाद का स्वरूप है काल रात्रि का स्वरूप, कि अगर परिवार पर कोई बुरी बला का साया भी पड़ जाए तो वहां पर भी वो खड़ी हो जाती है शक्ति स्वरूप बन करके, हर परिस्थिति के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन परिवार पर आंच नहीं आना चाहिए, ऐसी शक्ति स्वरूपा हो जाती है कि जहां न उसके बच्चों के ऊपर कोई आंच आने देती है, न परिवार के ऊपर आंच आने देती है। उसके लिए चाहे व्रत रखती है, नियम रखती है, उपवास करती है, कहां कहां नंगे पैर चली जाती है, कितना कुछ कर लेती है, तो ये स्वरूप भी उसका पूजनीय है, सम्मान योग्य है। उसके बाद का स्वरूप है महागौरी, जहां परिवार पूर्ण रीति से वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, बच्चों के बच्चों को भी संभालने के लिए वो तैयार हो जाती है, अपना सब कुछ त्याग करके बच्चों को कहेंगे भले आपको कहीं घूमने जाना है करना है, तो खुद त्याग करके बच्चों के बच्चों को संभालती है, उसका ध्यान रखती है, हर रीति से उनकी पालना करने के लिए भी तैयार होती है। महागौरी का स्वरूप पुत्र पौत्र नाती आदि सब का ध्यान रखने के लिए, जैसे हर एक को क्या चाहिए अपने अनुभव के आधार से, लेकिन कभी कभी उसको भी समझा नहीं जाता है तो क्या कहते हैं, आप चुप बैठो, आपको कुछ बोलने के अधिकार नहीं है, आप कुछ समझते नहीं हो, ये सम्मान नहीं है। नारी का हर स्वरूप सम्माननीय है, पूजनीय है। और उसके बाद आता है अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री का, कि जब सिद्ध हो जाती है और उसके आशीर्वाद से परिवार को जैसे संपूर्ण करने के लिए हर बार वरदान देती है, आशीर्वाद देती है, लेकिन ऐसे समय पर भी उसको वृद्धाश्रम में भेजा जाता है और कहते हैं आप अभी यहां हमारे पास जगह नहीं है, वृद्ध आश्रम में जाकर के रहो। जिस समय उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने से सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे समय पर उसको वृद्धाश्रम में भेजा जाता है। उनकी आंखों के आंसू का हिसाब क्या होगा ये समझ नहीं पाते हैं। ऐसे जब दुर्व्यवहार किया जाता है तब भी वो अपने बच्चों को आशीर्वाद ही देती है। भावार्थ ये कि हर स्वरूप के साथ कहीं ना कहीं समाज ने अन्याय किया है, तो ये त्योहार के माध्यम से भगवान ने यह सिद्ध किया है कि यह अन्याय करना कितना महापाप है, और ऐसा महापाप करने का कोई कदम न बढ़ाए या आगे न ऐसा करे। इतनी पूजा जब हम करते हैं नवरात्रि में, उनके 9 दिन तक लोग उपवास करते हैं,
नारी के हर स्वरूप का हम

सम्मान कर रहे हैं नवरात्रि में, और घर में वही नारी का क्या करते हैं, अपमान करते जाते, कदम कदम पर उसका अपमान करते हैं। और जहां बड़े अपमान करेंगे तो बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे भी अपमान करने लगते हैं, बच्चे के बच्चे भी कभी कभी अपमान कर देते हैं, और वहां देवी की पूजा करने जाते हैं। क्या वो देवी से आशीर्वाद मिलेगा और ये देवी से? उसके खून के एक एक आंसू का कितना पाप चढ़ता है, कितनी भोगनी पड़ती है। तो शिव परमात्मा हम सभी को इस अज्ञानता की रात्रि के अंदर, हमारे ये अज्ञानता को भी दूर करने के लिए हमें यही कहते हैं कि बच्चे, नारी का किसी रूप में अपमान नहीं करना। पुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक का हर स्वरूप, उसका हर मोड़ पर उसका आशीर्वाद हर कार्य में सफलता दिलाता है। इतना ही नहीं, लेकिन हर एक कदम में सफलता दिलाता है। जहां पुरुषार्थ कम करना पड़ता है, लेकिन आशीर्वादों से ये स्वरूप कितना ऊंचा उठा सकता है इंसान को। ये प्रैक्टिकल नवरात्रि का ये त्योहार हमें सिखाता है, समझाता है। और इसीलिए कहा कि शिवरात्रि, शिव बाबा जब आते हैं तो मनुष्य के मन के अंदर जो नारी के प्रति अज्ञानता है, उस अज्ञानता को भी दूर करके यही समझाते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन के अंदर हर क्षण नारी का सम्मान करना चाहिए। कभी उसको तकलीफ दिया माना शिव परमात्मा को तकलीफ देने जैसा हो जाता है। वो माँ तो फिर भी बख्श देंगी, दुआएं ही देंगी, आशीर्वाद देंगी, बद्दुआएं नहीं देंगी, लेकिन परमात्मा शिव धर्मराज बनकर के उन आत्माओं को क्या करेंगे, उसके कर्मों का हिसाब जब चेक करेंगे तो वो कर्मों के हिसाब में जो उसके कार्मिक अकाउंट बने हैं, वो अकाउंट को चुकतु करने के लिए परमात्मा किसी को सजा नहीं देता है, लेकिन कर्म न्याय करता है। और कर्म जब न्याय करने लगता है तब शायद बहुत कठिन होगा उसको झेलना। इसीलिए कर्म न्याय न करे, हमारे कर्म हमेशा हमारा साथ दे, हर कदम में हमारे लिए वो दुआएं बन करके हमारी राह में बिछ जाए, ताकि सफलता के हर कदम पर आप आगे से आगे बढ़ते जाओ। तो यही नवरात्रि का ये पावन त्योहार हमें सिखाता है, समझाता है। और उपवास करो तो किसका करो? स्थूल उपवास करने की बात नहीं है, लेकिन जो नारियों के साथ जहां कहीं दुर्व्यवहार होता है, उस दुर्व्यवहार का उपवास करो, उससे अपने आप को दूर करो, और उसका सम्मान करते हुए आगे जागृति लेकर के आत्मज्योति जगाए। और ये ज्योति जब जगाते हैं तो सही अर्थ में वो देवी को अर्पित होती है। और वो जागरण, ये जागृति ही जागरण है कि जिसके आधार से हर नारी भी प्रसन्न होकर के अपने परिवार वालों को आशीर्वादों से भर देती है। कभी उसको दुख दर्द ना दो, ये नवरात्रि का त्योहार सिखाता है, समझाता है। ऐसी नवरात्र आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैं समझती हूं कि एक नए
परिपेक्ष से आज अपने नवरात्रि का भाव समझा होगा और हमेशा उसको लेकर के आप चलो, ऐसी हमारी दिल की शुभ भावना है। भगवान ने जब आकर के नारियों को इतना सम्मान दिया, बहनों को इतना आगे किया, तो आपको क्या करना चाहिए? परमात्मा को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? परमात्मा को जरूर फॉलो करें। कभी कभी ये भी देखा गया है कि एक नारी दूसरी नारी को कष्ट दे रही है, ये भी अयोग्य है। एक नारी जब दूसरी नारी की भावनाओं को नहीं समझ पाती है, ये भी महापाप है। ऐसे महापाप से जरूर बचे। तो खाली भाइयों के लिए नहीं है, लेकिन कई ऐसी माताओं के लिए भी एक सीख है, एक समझ है, जो हमें जीवन के अंदर उतारना है, धारण करना है। और हमेशा हर नारी का, चाहे बच्ची हो, पुत्री हो, या यौवन स्वरूप हो, उसका कोई भी स्वरूप हो, हर स्वरूप में वो पूजन योग्य है, उसका सम्मान करे, उसको अच्छा संस्कार दे, और अच्छा संस्कार देते हुए उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके अनुभव से उसको सिखाते जाएं। खाली बेटियों के लिए नहीं, लेकिन बहुओं के लिए भी, वो भी एक नारी है, उसको, उसकी भावनाओं को समझना भी हमारा कर्तव्य है। तो हम अपने अनुभव से उसको, अगर कोई गलती हो भी जाती है, तो उसको सिखाएं जरूर, और उसका सम्मान करें उसकी भावनाओं का, तो वो आपका भी उतना ही सम्मान करेगी, वो आपको भी इतना ही मान देंगी, सम्मान देंगी। तो इसीलिए जीवन के अंदर हर स्वरूप को हम क्या करें, सर माथे उसको सम्मान इतना दे, ये परमात्मा शिव हमें सिखाते हैं इस नवरात्रि के पावन त्योहार पर। तो ऐसी प्रतिबद्धता हम लाएंगे या नहीं लाएंगे? लाएंगे। अपने घर के अंदर कोई भी नारी हो, उसका भी हमें सम्मान करना है, कभी अपमान नहीं करना है, नहीं तो शिव बाबा खुश नहीं होंगे, शिव बाबा प्रसन्न नहीं होंगे। शिव बाबा जिस पर प्रसन्न होता है तो क्या करता है, छप्पड़ फाड़ के देना चालू करता है। तो शिव बाबा का छप्पड़ फाड़ के आशीर्वाद चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो समझो शिव बाबा क्या चाहता है। शिव बाबा ने बहनों को कितना सम्मान दिया है, देखो जिन बहनों को पर्दा के अंदर रखा जाता है, आज शिव बाबा ने उन बहनों को कितना ऊंचा उठाया, और कितना ऊंचा उठा करके कितना विश्व परिवर्तन की बड़े से बड़ी जिम्मेवारी भी उसको दे दी, जिसको वो निभा रही है, कर रही है। तो इसीलिए आप सब

0: ये तंबाकू क्या होता है?
1: अरे टिकू नहीं पता क्या? इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर नवरात्रि के पांचवें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी।
0: आज के दिन उपांग ललिता व्रत किया जाएगा। रेडियो मधुबन के संग नवरात्रि के रंग
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी म्हारो गांव म्हारो अंचल। सही में अपना गांव और अपना अंचल में जब इस तरह त्यौहार मनाते हैं तो हमें बहुत खुशी और नाज है। तो आज शारदीय नवरात्रि के पाँचवा दिन में हम आपका पास लेकर आए हैं माँ स्कंद माता की बारे में जानकारियाँ देने के लिए। तो आप सबको विदित है, हमारा भारत त्यौहार का देश है। किसी न किसी दिन हम किसी न किसी देवी देवताओं को पूजा अर्चना और आस्था विश्वास रखकर आराधना करते हैं, आरती करते हैं, आस्था और विश्वास रखते हैं। खासकर उनसे हम अपना जीवन में आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। तो नवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम में आज स्कंद माता का बारे में जानकारियां प्राप्त होगी। तो हमारा साथ इस कार्यक्रम में सभी श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वास में रुचि रखने वाले को भी स्वागत करते हैं। माँ स्कंद माता दुर्गा की पांचवी अवतार है, स्वरूप है। तो जानकारियां प्राप्त जरूर करेंगे। तो सुनते हैं माँ स्कंद माता का बारे में, क्या कथा है, क्या उनका आभूषण है, क्या वाहन है, कौन सी वाहन है। तो लीजिए।
3: जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का पांचवा अवतार है। स्कंद माता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद तथा माता। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, जो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ, और इस प्रकार स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। स्कंद माता रूप में देवी दुर्गा की चार भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में उन्होंने कमल पकड़ा हुआ है, और चौथे हाथ से वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की सवारी शेर है और वह कमल पर विराजमान है, जिस कारण उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय भगवान देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति हैं। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसकी आयु में वृद्धि होती है। स्कंद माता की आराधना करने से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है।
2: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्कंद माता की पूजा अर्चना का साथ साथ इसका क्या रोचक कथा है, क्या कहानी है, उसका ऊपर में थोड़ा सुनते हैं।
3: स्कंद माता की एक बड़ी ही रोचक कथा है, आइए शुरू करते हैं। ओम देवी स्कंद माताये नमः। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद शिव शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है, बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें कहा कि इस स्थिति के लिए आप सब स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद विष्णु जी उन्हें पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति माता सती की अवतार हैं। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती जी से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज गंगा माँ को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित रूप से सरवाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार छह माताओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण छह मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से वही प्रश्न पूछा। फिर शिव भगवान ने उन्हें 12,00,000 श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12,00,000,000 श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर को एक भयंकर युद्ध में मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित रूप से हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है।
2: सही में तो सुनते हैं माँ स्कंद माता की प्रार्थना। जय जय गान का साथ जब इस तरह त्योहार का यथार्थ कथा, प्रार्थना, स्तुति, ध्यान सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी लगता है। तो सुनते हैं प्रार्थना का बारे में।
3: सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी।
2: जय स्कंद माता की जय। अभी सुनते हैं स्कंद माता की स्तुति।

0: नमो नमः।
1: स्कंद माता की कथा प्रार्थना और स्तुति का साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सुनते हैं स्कंद माता को हम कैसे ध्यान करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सुनते हैं ध्यान।

0: इनितम बनीम।
1: अभी हम सुनेंगे माँ स्कंद माता की स्तोत्र।
0: नमामि स्कंद माता स्कंद धारिणीम समग्र तत्व सागरम पार पार घराम

0: पार्वतीम अनंत शक्ति कांतिदा यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदाम पुनः पुनर्जगदीताम नमाम्यहम सुरार्चिताम जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहि माम।
1: कवच का भी महत्व हम जानते हैं, लेकिन कवच के बारे में क्या श्लोक है सुनते हैं।
0: स्कंद माता का कवच। एम बिजालिंका देवी पदयुग्म धरा परा।

0: ही दिक्षुवे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पूजा अर्चना। श्लोक स्तुति का साथ आरती न हो ये हो ही नहीं सकता, तो माता रानी का आरती किस तरह करते हैं, खासकर स्कंद माता जी का जब आज का दिन है तो आरती से ही हम ओतप्रोत होंगे, तल्लीन होंगे, भावार्थ लेकर भक्ति भावना में जुड़े रहेंगे। तो सुनते हैं आरती।
0: जय हो तेरी स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता।

0: वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तू ही खंड हाथ उठाए। भक्तों को तू बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। जय मां स्कंद माता, जय मां स्कंद माता,
1: जय मां स्कंद माता, जय मां स्कंद माता जी की जय हो। सही में भक्ति भावना, और इस तरह त्योहार में जब हम सब मिलकर मनाते हैं, उजागर रहते हैं और अपना मनस्कामना पूर्ण करते हैं, तो हमें बहुत खुशी आनंद प्राप्त होती है। जिस तरह आज नवरात्रि की पांचवा दिन में माँ स्कंद माता जी का कथा, प्रार्थना, स्तुति एवं कवच आरती पूजा अर्चना का साथ आज आपका पास हम रखें, जरूर हमारे श्रोतागण, भक्तजन, साधकगण, आस्था विश्वास में रुचि रखने वालों को जरूर फायदा होगा। इन शुभ भावना का साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद माता रानी स्कंद माता की ऊपर में यथार्थ आध्यात्मिकता का साथ, अर्थ का साथ सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद त्रिवेणी दीदी से।

नवरात्र में शक्ति के नौ रूपों का आवाहन करते हैं। माँ स्कंद माता का रूप सुखदाई और ममता मई है। हम भी सभी अपना आचार व्यवहार मीठा रखें और सुख दें, तभी देवी माँ के सच्चे भक्त कहलाएंगे। नवरात्र के पांचवें दिन की आप सभी सुनने वालों को

0: नमस्ते। ब्रेक का पहले हम स्कंद माता के बारे में भक्ति भावना आस्था आरती कथा श्लोक का साथ उपस्थित रहें तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं खासकर स्कंद माता के बारे में और कुछ रोचक बातें कथाएं और किसी से, क्योंकि हमेशा की तरफ आज हमारा साथ जुड़े हुए हैं त्रिवेणी दीदी, तो उनको भी स्वागत करते हैं। स्कंद माता जी का पूजा अर्चना का साथ साथ इस आराधना से हमें क्या सीख मिलना चाहिए, क्या सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए और इस त्यौहार का रहस्य भावार्थ आध्यात्मिकता हमारा जीवन में कितना कारगर साबित होगा, त्यौहार हम क्यों मनाते हैं और त्यौहार मनाने का विधि क्या है, इससे क्या सिद्धि प्राप्त होती है। खासकर जब नवरात्रि होता है तो हमें शक्तियों का याद आती है, तो सुनते हैं स्कंद माता की बारे में और कुछ रोचक यथार्थ ज्ञान संबंधित बातें त्रिवेणी दीदी से। तो दीदी जी आपको स्वागत है इस कार्यक्रम में, तो आपको भी नवरात्रि स्पेशल में हैप्पी नवरात्रि। तो आज हमारा श्रोता मित्र को क्या प्रकाश डालेंगे, थोड़ा प्रकाश डालिए।
1: आज विशेष तौर पे हम सभी पांचवा दिन अर्थात स्कंद माता के नाम से नवरात्रि का ये आज का दिन हम मना रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का ये त्योहार पूरे भारत देश में नहीं, लेकिन मैं कहूंगी कि पूरे देश में ही, देश विदेश बड़े श्रद्धा भावना से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नव दुर्गा के नौ दिन में विशेष नौ शक्तियां छिपी हुई है, जिसे हम हर दिन हर रोज नवीनता के साथ सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। आज के दिन में आज हम स्कंद माता को पूजन या उसकी आराधना की जाती है, तो पंचमी की तिथि को विशेष रूप से जो आराधना की जाती है तो वह एक माँ का स्वरूप है। माँ स्कंद माता के नाम से दुर्गा का ये पांचवा स्वरूप माँ को प्रख्यात

0: करता है। माँ की पालना, माँ का गुरु रूप इससे सिद्ध होता है। कहा भी जाता है कि इंसान के, हर मनुष्यों के जीवन में विशेष रूप से तीन गुरु होते हैं। इसमें सबसे पहला प्रथम गुरु माना जाता है जन्म देने वाली माँ को। इसका सत्य स्वरूप स्कंद माता का दिखाया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं, तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसका अंत केवल शुपुत्र ही कर सकता था। इसलिए पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को, जिसे स्कंद के नाम से जाना जाता है, उसे युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। जब स्कंद माता अपने बच्चे को असुर से, अर्थात तारकासुर से युद्ध करने की प्रेरणाएं और शिक्षाएं दे रही थी, तो इन शिक्षाओं के साथ साथ एक अलौकिक शक्तियां भी प्रदान कर रही थी। जो शक्तियां प्रदान की, वे शक्तियां एक माँ के अलावा कोई प्रदान नहीं कर सकता है। और माँ के द्वारा प्राप्त हुई कार्तिकेय को एक शक्ति और शस्त्र की शिक्षा एक विशाल और भव्य थी। स्कंद माता से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया, तो स्कंद माता को अपने पुत्र से अति प्रेम और गर्व महसूस हुआ। इसीलिए माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारना उत्तम लगता था। और इसी अर्थ भावना और इस प्रेम स्वरूप से माँ स्कंद माता के नाम से जाने लगी। स्कंद ये शब्द, इसका अर्थ ही निकलता है कार्तिकेय स्वामी की माँ। और दूसरा उसका कर्तव्य स्पष्ट होता है, ज्ञान देने वाली माता। इसलिए स्कंद माता का, दुर्गा का ये पांचवा स्वरूप माँ के रूप में सभी विश्व में प्रख्यात हुआ। स्कंद माता को अगर हम उनकी रूप को, उनकी वेशभूषा को अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो सभी देवताओं में भिन्न स्वरूप एक मातृत्वता का दिखाई देगा। तो स्कंद माता के चार भुजा का यादगार भी इसी स्वरूप को प्रत्यक्ष करता है। स्कंद माता को चार भुजा वाली कहते हैं। और इस चार भुजा में सर्वप्रथम हस्त में कार्तिकेय को दिखाया है। तो ये स्नेही का स्वरूप है जो अपने बच्चे को अपने हाथ में एक विश्व की सेवार्थ उन्होंने लिया है। एक विश्व को उदाहरण स्वरूप दिखाया है कार्तिकेय को प्रथम हस्त में। दूसरा हस्त दिखाते हैं वरदान हस्त। तीसरे हाथ में कमल तथा चौथे हाथ में भी कमल पुष्प से सुशोभित दिखाई देते हैं। वह इस बात का प्रतीक है, पवित्रता और योग बल इन दोनों के आधार पर स्कंद की माँ बनी। तो वरदान हस्त समस्त मानव जाति को वरदान देने वाली माँ, इस रूप में ये चार पूजाएं प्रख्यात होती हैं। और इस प्रेरणा से, या कहो इस मूर्ति की प्रेरणा से, हम यही आज उद्देश्य ले सकते हैं कि हम सभी नारी जाति का सम्मान करेंगे, उनके प्रति अपना कल्याण की दृष्टि को बनाए रखेंगे, सबके प्रति हमारा जो दृष्टि भाव हो वे कल्याण का हो, मनुष्य आत्मा के प्रति, जो संसार की हर मनुष्य आत्मा है, वो छोटी हो बड़ी हो, इसमें किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव, उच्चता नीचता का भेदभाव न रखते हुए सबके प्रति श्रेष्ठ भाव रखना है, श्रेष्ठ कामनाएं रखनी है और कल्याण की भावना ये हमारा मूल एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। साथ ही साथ हम कमल पुष्प समान जीवन जीने का एक संकल्प ले। जिस प्रकार से माँ के हाथ में कमल का पुष्प दिखाया है, कमल का पुष्प कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से अलिप्त होता है, कीचड़ उसे टच नहीं करता है। इस प्रकार से एक सांसारिक जीवन जीते हुए भी हम अपने संस्कार को इस प्रकार से बनाएं कि इस संसार में कलयुगी प्रवृत्ति में रहते हुए भी इस कलयुगी अवगुणों का या असुरी प्रवृत्ति का इफेक्ट हमारे संस्कारों में न हो, इस बात का विशेष हम ध्यान देंगे। और इस प्रकार से ऐसे करने से माँ स्कंद माता हमारे ऊपर प्रसन्न होंगी और सभी दुखों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में एक खुशहाली का या शुभकामना का हम आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को शुभकामना देते हैं, शुभ भाव प्रदान करते हैं, किसी के प्रति अगर कल्याण की भावना रखते हैं, तो रिटर्न हमें वही प्राप्त होता है। इसलिए स्कंद माता के साथ साथ हम ये प्रेरणाएं लें और हम अपने जीवन को इसी प्रकार से एक सेवा भावार्थ या अपने जीवन में खुद के प्रति भी एक कल्याण की भावना को बनाए रखते हुए हम स्कंद माता को नमन करते हैं।
1: क्या बात, बहुत सुंदर प्रस्तुति और यथार्थ जानकारियाँ जब आप देते हैं हमारे श्रोता मित्र ग्रामवासियों को, तो हमारा ग्रामवासी भी कुछ सीख लेकर अपना जीवन में आत्मसात करते हैं, धारण करते हैं और जीवन में उतारते हैं, जिसका चलते हमारा कार्य व्यवहार में कहीं ना कहीं काम में आता है और हमें खुशी, आनंद, सुख, उमंग, उत्साह और संगठन का जो बल मिलता है इस तरह त्यौहार से। क्योंकि त्यौहार मनाने के साथ साथ जब हम सामूहिक रूप में एक दूसरे को सहयोग देते हुए मिलजुल कर काम करते हैं, तो वो काम बहुत अच्छा बन जाता है और एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है जो न्यू पीढ़ी के लिए, जो युवा वर्ग के लिए एक सीख छोड़कर जाता है। जिस तरह आज हमारा सभी श्रोता मित्र ग्रामवासियों को और खासकर भक्ति भावना उपासना में जो रुचि रखते हैं उनके लिए इतना ज्ञानवर्धक बातें सुनाएं कथा का साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्कंद माता के बारे में और यथार्थ संपूर्ण आध्यात्मिकता को लेकर पहुंचेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल पर नवरात्रि स्पेशल।

नवरात्र में शक्ति के नौ रूपों का आह्वान करते हैं। माँ स्कंद माता का रूप सुखदायी है, हम भी सभी से अपना आचार व्यवहार मीठा रखें और सुख दें, तो माँ के सच्चे भक्त कहला सकेंगे। रेडियो मधुबन की ओर से नवरात्र के पांचवें दिन की आप सभी श्रोताओं को

0: स्कंद माता की जय जय गान का साथ ब्रेक का पहले हम माता रानी का ऊपर में बहुत कुछ सुना, और कुछ सुनने के लिए हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी और साधकगण आतुर है। तो इस स्कंद माता के पूजा अर्चना से हमारा भक्तजन साधकगण और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वालों को कुछ प्रेरणा देने के लिए पुनः उपस्थित है त्रिवेणी दीदी, तो उनको स्वागत करते। तो दीदी जी, इस त्यौहार से हमारा साधकगण, हमारा श्रोता मित्र और ग्रामवासियों को क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या प्राप्ति होगा, और किस रूप से हम इसको मनाएंगे, वो चीज आप रखिए।
1: स्कंद माता के स्मरण से ही मूढ़ बुद्धि भी ज्ञानी हो जाती है। पहाड़ों पर रह करके संसारिक जीवन में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता को विशेष रूप से विद्या की देवी के रूप में मानते हैं। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेधादूत की जो रचना की, उस रचना के पीछे भी स्कंद माता देवी का कृपा थी या आशीर्वाद थी। कालिदास चरण ने स्कंद माता की आराधना से ही और उनकी तपस्या से ही इस विद्या को प्राप्त किया है, इसलिए भी कालिदास ने स्कंद माता की कई ऐसी विशेषताएं या उनकी चेतना का वर्णन अपनी कविताओं में लिखा हुआ है। विशेष तौर पे आज स्कंद माता सफेद कलर के साथ इस एनर्जी से जुड़ी हुई है
0: जी।
1: सफेद कमल पुष्प पर आसन प्राप्त करती हुई, सफेद कलर एक ऐसा कलर है जिसकी विशेषता कही जाती है कि उसमें न दिखने वाले अनगिनत कलर मिक्स है। सफेद होने के बावजूद भी सभी कलर का समावेश उसमें होता है। दूसरी विशेषता सफेद कलर की यह भी कही जाती है कि सफेद कलर हर चीज में मिक्स हो सकता है।
0: ओके।
1: तो हर चीज में इन्वॉल्व या हर विशेषताओं से परिपूर्णता की निशानी सफेद कलर माना जाता है। इसी प्रकार से सफेद कलर एक पवित्रता की शक्ति का प्रतीक भी है। साफ सुथरा पवित्र मन उस देवी के चरण में जब हम अर्पित करते हैं तो भक्तगण भी जब शुद्ध मन से देवी की आराधना करते हैं तो माता बहुत जल्दी उन पर प्रसन्न हो जाती है
0: जी।
1: ये सफेद कलर पवित्रता के साथ साथ सुख शांति के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस दिन जब भी साधक साधना करते हैं तो मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित हो जाता है। विशुद्ध चक्र ये हमारा जो थ्रोट चक्र है, ये एक ऐसा फिल्टर है जिसमें फिल्टर होकर के एनर्जी अपने पूरे बॉडी को प्राप्त होती है, और इसमें स्कंद माता की एनर्जी का जब समावेश होता है तो कंठ चेतना प्राप्त होती है। इस प्रकार से पौराणिक शास्त्र में इस चक्र की एनर्जी के महत्व के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। इसी प्रकार से स्कंद माता की विशेषता भी कही जाती है कि सूर्य मंडल की वे अधिष्ठात्री है।
0: ओके।
1: अधिष्ठात्री होने के कारण उसका उपासक या साधक जब साधना करता है तो अलौकिक तेज को प्राप्त करता है, कांतिमय हो जाता है, और साधक का मन एकाग्र हो करके पवित्र रह करके जब देवी की साधना में जुट जाता है तो उसका कहा जाता है कि वो भव सागर अर्थात ये कलियुग की विष को वो पार कर लेता है, हर कठिनाइयों से वो पार हो जाता है। इसका कारण है कि स्कंद माता चेतना का निर्माण करने वाली देवी है। जब भक्त की चेतना जागृत हो जाती है तो उसे सही और गलत का यथार्थ समझ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इस यथार्थ समझ से वे हर आने वाली परिस्थिति को या विष के भवसागर को पार करने की क्षमता रखता है। ऐसे स्कंद माता को हर भक्त आज के दिन उसकी विशेषता के अनुसार केले का भोग लगाते हैं, खीर का प्रसाद उन्हें विशेष तौर पे चढ़ाया जाता है।
0: जी जी,
1: तो ये रही विशेषताओं और शक्तियों की प्रेरणा। साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्कंद माता को उनकी शक्ति और कर्तव्य के आधार पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है।
0: क्या बात।
1: स्कंद माता को विशेष रूप से हिमालय की पुत्री पार्वती के नाम से जाना जाता है। महेश्वरी, गौरी, पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उसे पार्वती कहा। महादेव की पत्नी होने के कारण उसे गौरी कहा। इसी प्रकार से कमल पुष्प पर आसन लगाते हुए पद्मासन देवी भी कहा जाता है। विद्या की वाहिनी के रूप में सारे संसार को ज्ञान प्रवाह करने वाली विद्या वाहिनी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे स्कंद माता ममता की मूर्ति, शक्ति की प्रतिमा स्वरूप चैतन्य देवी को शत शत प्रणाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी दीदी, आपने आज हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासियों और खासकर जो साधक जो भक्ति भावना में ओतप्रेत रहते हैं, तालीन रहते हैं और अपना गांव और अंचल को संगठित रूप में मजबूत करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, उन सभीों के लिए आज आप संजीवनी बूटी जैसे प्रभावार्थ उसका यथार्थ अर्थ का साथ और इस त्यौहार समय क्या सीख लेना चाहिए, स्कंद माता के जो विशेषताएं, जो स्वरूप हैं, जो अलंकार हैं, जो बैठक, जो उनका रूप है, उससे हमारा साधक और हमारा जो भक्तजन क्या फायदा लेंगे, ये चीज़ आज आपने विस्तार रूप में जानकारियाँ दी। और त्यौहार तो हम मनाते हैं, त्यौहार का साथ साथ जब हम समझ का साथ, आध्यात्मिकता का साथ इस पूजा से या इस आराधना से हमें कुछ सीख लेना चाहिए, जिस तरह आज हम आपने विस्तार रूप में सभी का दिल को छूने वाला चीज बताए, तो आपको हमारा इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह आप हमेशा जोड़ते रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर। जब आज त्यौहार का श्रृंखला चल रहा है तो आप अपना कीमती समय देकर हमारा सभी श्रोता मित्र ग्रामवासियों को उत्साहित उमंग भरा कथा का साथ साथ आध्यात्मिक रहस्य को समझाए, ये हमारे लिए, हमारा गांव के लिए, अंचल के लिए, हमारा सभी श्रोता मित्र के लिए एक अच्छा मैंने पुनीत काम कह सकते हैं। तो आज के लिए हमें और त्रिवेणी दीदी को दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे और कोई दुर्गा माँ की अवतार को लेकर पहुँचेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अच्छा, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, धन्यवाद। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन नवरात्रि स्पेशल।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

नवरात्र में शक्ति के नौ रूपों का आह्वान करते हैं। माँ स्कंद माता का रूप सुखदाई है, हम भी सभी से अपना आचार व्यवहार मीठा रखें और सुख दें, तो माँ के सच्चे भक्त कहला सकेंगे। रेडियो मधुबन की ओर से नवरात्र के पांचवें दिन की आप सभी श्रोताओं को

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।

नवरात्र में शक्ति के नौ रूपों का आवाहन करते हैं। माँ स्कंद माता का रूप सुखदाई और ममता मई है। हम भी सभी अपना आचार व्यवहार मीठा रखें और सुख दें, तभी देवी माँ के सच्चे भक्त कहलाएंगे। नवरात्र के पांचवें दिन की आप सभी सुनने वालों को बहुत

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर नवरात्रि के पांचवे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी।
0: आज के दिन उपांग ललिता व्रत किया जाएगा। रेडियो मधुबन के संग नवरात्रि के रंग
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और हर बार हम एक नए योगी से या एक नए व्यक्तित्व से उनकी एक अनोखी जीवन कहानी को सुनते और समझते हैं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सीधा मणिपुर, वहां के एक योगी से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है शरद भाई जी, आप मणिपुर से हैं। 1997 में आपको इस ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, जीवन में एक समर्पण बहुत ही अनमोल होती है। हर कोई अपनी जो पसंद की चीजें होते हैं उसके लिए समर्पित होते हैं। कोई अपनी जीवन को अपने रिश्तों के लिए समर्पित करते हैं, तो कोई अपनी जीवन को कुछ रिसर्च के लिए समर्पित करते हैं, तो कोई देश के लिए समर्पित करते हैं, कोई अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए समर्पित करते हैं। लेकिन एक योगी, वो अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है? वो अपने जीवन में कौन सी ऊंचाइयों को छूते हैं और उनसे देश के लिए क्या फायदा होता है? आइए जानते हैं आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए एक और योगी से उनकी जीवन की कहानी, आध्यात्मिकता को लेकर के उन्होंने अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े हैं। हमारे साथ है शरद भाई जी। जैसे हमने कहा है, आप 2004 से ब्रह्म कुमारी इस मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनकी आगे की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे और उसके लिए हम स्वागत करते हैं शरद भाई आपको आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और रेडियो मधुबन पर। नमस्ते
3: जी।
2: ओम शांति।
3: ओम शांति।
2: तो भाई जी, हम सबसे पहले आपकी जीवन की वो पल को जानना चाहेंगे जहां आपकी जीवन की शुरुआत हुई, कहां पे आपने जन्म लिया और आपकी माता पिता क्या करते थे, आपकी लौकिक परिवार के बारे में थोड़ा सा हमें परिचय दें।
3: देखिए, हमारा जो लौकिक परिवार है वो धार्मिक है। माता पिता बहुत भक्ति करते हैं और हमारा जो छोटा भाई है वो भी बहुत भक्ति करते हैं, और हमारा हमसे दो बड़ा भाई है वो इतना नहीं करते हैं। हमें भी भक्ति करते थे, लेकिन हमारा जो भक्ति है वो नवधा भक्ति है, आजा पूजा वाला भक्ति नहीं है। हम ऐसे भक्ति करते थे, बहुत नवधा भक्ति, निर्जल व्रत आदि बहुत हमने किया है, परंतु ऐसे साक्षात्कार के लिए ही किया है। हमने जो निर्जल जो व्रत लिया था तो उसमें हम सपना में महादेव आदि देखते थे, तो उसके बाद हमने उसको वरदान देने के लिए हम वरदान मांगा था, तो लेकिन उसने वरदान नहीं दिया, उसने एक चेन दिया मेरे को जो गले में पहनते हैं, वो चेन दिया। ये सपना की बात है। तो उसके बाद दूसरा दिन हम क्या किया, हम दोस्त के घर में जा रहे थे, जो उसने जो चेन दिया था वो तो बहुत मोटा था, उसी के सेम डिजाइन में एक चांदी का चेन मिला मेरे को। तो वो कुछ दिन हमने घर में ऐसे ऐसे रखा था, हमने किसी को बताया नहीं, ये बताने से ऐसा होता है ऐसा होता, तो हमने बताया नहीं, ऐसे रखा था। उसके बाद आगे चली, फिर हमने निर्जल जो व्रत लिया था तो उसी समय एक सपना में सांप देखा, तो सांप के पीछे हमने पड़ा, ये तो सांप भारत में भगवान मानते हैं, शंकर की गले में सांप होते, तो हमने उसके पीछे पड़ा, वरदान दे के जाना। तो उसने भील में जब घुसने का समय आया, मेरे पीछे नहीं पड़ना, ऐसे बोल के ऐसे किया, उसके बाद हमने ये छोड़ दिया। तो उसके बाद ये सब ऐसे, और भक्ति, हमने कृष्ण तो हम नहीं मानते थे, कृष्ण क्यों नहीं मानते इसकी एक कहानी है, क्योंकि हमारे घर में भक्ति का सारा जो गीता शास्त्र जो अध्ययन जो करता है वो हमारे घर में ही होते हैं सब, हम क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है तो इसलिए सब गैदरिंग हमारे घर में ही होते हैं। तो ऐसे कृष्ण को किसी ने तीर मार करके मार दिया, ऐसे सुना तो जो बताते उसमें, तो हमने सोचा ये तो भगवान को कोई मारा तो उसको भगवान थोड़ी हो सकता है, तो इसलिए हमने कृष्ण को तो हम भगवान का भी नहीं मानते। और ऐसे करके फिर हमारा जो बड़ा भाई है वो आ करके मेरे कान में बोला, देखो हम भक्ति करना हो तो काली की भक्ति करो, काली बहुत शक्तिशाली है। तो काली की भक्ति हमने शुरू किया, काली के मंदिर में भी एक दो बार गया, तो ऐसे करके हम किया। बचपना था और माना 16-17 साल होंगे, तो ऐसे ऐसे हुए। तो उसके बाद क्या हुआ,
2: आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे ये सब करने में?
3: नहीं, पेरेंट्स को कुछ मालूम नहीं होता।
2: अच्छा, फिर हाँ। घर पे जब भोजन की बात आती है
3: हाँ।
2: तो फिर साथ में तो भोजन करते तो बुलाएंगे हाँ। ना आपको भोजन?
3: नहीं नहीं, भोजन की तो ये ज्ञान की तो बाद में है।
2: नहीं, जब निर्जला व्रत करते थे
3: हाँ, वो हम बिस्तर में हम मसर डानी लगा के हम सो जाते हैं, तो माता पिता को कुछ पता नहीं चलता। तो उसके बाद हम लोग मणिपुरी लोग का एक भगवान होता है अलग घर में, उसका एक स्थान, हर एक मणिपुरी के घर में एक स्थान होता है भगवान का। तो स्थान में हम गया, तो आज मेरे को मार दो, मैं ऐसे से ये जो साक्षात्कार नहीं होंगे तो हमको मार दो, ऐसे करके रात के समय ठंडी के समय ऐसे हमारा वो जगह
2: तो
3: में।
2: किसको पूजा करते हैं मणिपुर में आप लोग?
3: ऐसे मूर्ति नहीं होता है।
2: अच्छा।
3: आपने भी ऐसे एक जगह है सनामही करके एक जगह है, सिदबम्मापू करके एक,
2: मतलब सिर्फ एक मंदिर के हिसाब से एक जगह बनाते हैं, लेकिन हाँ, उसमें कोई मूर्ति नहीं
3: होती। मूर्ति नहीं है अपना घर। तो ऐसे जगह में
2: आप भगवान को निराकार मानते, इसलिए
3: ये सब हम लोग को जानकारी नहीं होता। बचपन है ना, बचपना था तो कोई जानकारी नहीं होता इसका। लोग ऐसे बोलते हैं ये सनामही है, ये सिदबम्मापू है, ऐसे नाम से पुकारते हैं, तो हम लोग उसी से मान करके चले आते। तो बात ऐसी थी, हम ऐसे मर जाएंगे ऐसे करके हमने क्या किया, उसके सामने हमने ऐसे कर दिया, माना सो गया, माना ठंडी के समय थे, तो हम एक ये जो गमछा पहना और एक ऐसे भगवान के सामने जाने का ऐसा नियम है, तो हम वही ठंडी में, तो ये सब माता देख रहे थे, ऐसे हम दंडवत करके सामने मारो मेरे को ऐसे करके हमने किया। तो बाद में माता जी आ गया, 10-15 मिनट हो गया, बच्चा मर जाएगा, ठंडी के समय है, जमीन ठंडी है हाँ, कपड़ा पहना हुआ नहीं है, तो ऐसे उठा करके उसने ये बिस्तर में रख दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग भक्ति करते थे।
2: अच्छा।
3: हाँ, परंतु हम सत्यवादी थे, हमारे सामने कोई गलत काम नहीं करना, ना मैं करूंगा, ऐसे सत्यवादी थे। तो हम और कोई अन्याय करते हैं हम थोड़ा सहन नहीं होता, ऐसे मेरे सामने कोई भी ऐसे होते तो हम सहन नहीं होते, उसके किसी के लिए भी हम झगड़ा भी कर लेते। तो अभी और गुस्सा करना ये करना, हम लोग बहुत कम गुस्सा करते हैं। एक बार हमने ऐसे गुस्सा किया मतलब हम ऐसे भक्ति करना, हमारा दोस्त लोग भक्ति करने वाला, दो तीन नाम पे डिवाइन लाइफ सोसाइटी सुना होगा, डिवाइन लाइफ सोसाइटी करके एक संस्था है, तो वो भी इंटरनेशनल है, तो वहाँ से हम जोड़ा, तो उस वहाँ की दो तीन दोस्त मिल गया, तो ऐसे करके हम लोग ऐसे करते थे। तो इसमें खान पान का भी, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये बात आई, तो उसी समय हमने माता जी को बोला, हमारा घर में माता पिता भक्ति तो करते हैं लेकिन मांस तो नहीं खाते, मछली खाते हैं हमारे घर में, माना आप साल भर मछली खाते हैं हम लोग के घर में, दो टाइम तीन टाइम जो भी खाना खाते हैं तो हम लोग को मछली खाते हैं। हमारे खेतों में जो मछली होती है साल भर का एक दो बार पकड़ लेते हैं, कुछ मटका में पाल के रखते हैं, कुछ सेक के माना सूखा ऐसे करके रखते हैं, साल भर का हम लोग का मछली ऐसे खाते। तो ये बात आया, तो अभी मछली नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना बात आई, तो उसी समय हमने माता जी को बोला, माता जी हम ऐसे ऐसे है, ये खाना मना कर रहे हमारा गुरु जी, तो अभी ये हम नहीं खाना है। तो माता जी ने कुछ बोला नहीं, तो उसी समय सब्जी में वो डाल दिया, तो हमने बोला हम सब्जी नहीं खाती और ऐसे करके चावल में ऐसे पानी डाल करके हम खाए। तो ऐसे करके करते करते क्या हुआ, फिर ऐसे एक दो बार हमने वास्तव में हमने भगवान को भी बोला था, हम माता जी को धमकी दे रहा हूँ, हम आपका अन्ना की जो निरादर करते ना, तो हमने ऐसे थाली फेंक दिया, सब माना चावल वगैरह जो था ना हमने जमीन में ऐसे डाल दिया, सब फैल गया। तो उसी समय मेरे को मन में ऐसे मैंने बोला, मैं माता जी को धमकी करने के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए ऐसे ऐसे सब्जी आदि ना बनाना जो मांस मछली आदि नहीं डाले, प्याज लहसुन नहीं डाले, ऐसे सब्जी बनाए। तो इस हिसाब से हमने ऐसा किया। तो बाद में ऐसे ऐसे करते करते हमारा मैट्रिक एग्जाम हो गया, मैट्रिक पास हो गया तो 92 में। और उसके बाद क्या हुआ, हम मैट्रिक भी पास हुआ, उसके बाद हमने बोला माता जी हम इम्फाल में पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे दोस्त लोग सब चले गए, हम अकेला इधर रह गया। तो उसी वक्त एक घटना मेरे घर में ऐसा हुआ, हमारा पड़ोसी का एक हमारा भैया है, वो डॉक्टर पर के आया, और पर के आया घर आने के बाद वो डॉक्टर ख़त्म होते ही वो कोई भाभी उसको लेके चला गया। तो घर में माता पिता को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो बोले आप बाहर में जाके पढ़ाई नहीं करना है, ये पढ़ा के लिखा के लाखों रुपया खर्च किया है, चला गया भाभी लेके गया। तो इस हिसाब से वो लोग ने हमको उधर जाने नहीं दिया, और हमारा गांव के ही कॉलेज में हमने एडमिशन लिया। उधर से हमने 12th क्लास किया, और उसके बाद हम थोड़ा नाराज हुआ घर से, हमको क्यों नहीं भेज रहे। इसलिए हमने एक हमारा जो लौकिक पढ़ाई जो पढ़ाते थे वो टीचर इम्फाल में चले गए सिटी में, तो हम उनके पास गया, मैंने सारा घटना बता दिया। तो बोले आप मेरे पास आ जाना, मैं स्टूडेंट दे दूंगा, आप वो पढ़ा करके आप आराम से यहाँ पढ़ाई कर सकते। तो इस हिसाब से हम उनके भरोसा में चले गए, और फिर वहाँ उसने 5-6 स्टूडेंट दिया, तो वो पढ़ा करके हमने उधर पढ़ाई किया। ऐसे घर से जब निकल रहे थे तो हमारा माता पिता ने बोला घर से कुछ नहीं मिलने वाला, तो हमने बोला हमको चाहिए भी नहीं है। तो ऐसे करके हम आए
2: जी।
3: तो बात ऐसे करके हम वो बच्चों को पढ़ा करके हमने ग्रेजुएशन किया। तो उसी वक्त माना 96-97 जो है ना, तो उसी वक्त हमारा जो माता जी है उसका पथरी हो गया किडनी में, उसका 8 mm में बहुत मोटा हो गया। तो इसको डॉक्टर ने बोला कोई दवाई से काम नहीं होगा, इसका ऑपरेशन है। तो माता जी को बहुत दर्द सहन करना पड़ा था। तो घर में हमारा दो भाभी है, दो भैया है, वो लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तो वो मेरे पास आया, मैं तो इम्फाल में आ गया था, मेरे पास आया, ऐसे ऐसे घटना सब सुनाया। तो हमने बोला ऑपरेशन करा लेते, तो सबसे मणिपुर का सबसे अच्छा वो डॉक्टर में हम कराएंगे। तो गोल्ड मेडलिस्ट से हमने जो कराया था डॉक्टर शेखर जीत करके, वो उसको कराया हमने। तो कराया उसकी बात 5 दिन की बात माताजी के शरीर छोड़ दिया। तो उसमें क्या हुआ, माताजी ने शरीर छोड़ दिया, उसकी श्राद्ध करके हम जो रेंट में रहते थे ना, तो वहाँ आए थे। तो उसकी मालिक ने बोला आपके घर में दासा आ गया है, तो इसलिए आप रूम छोड़ देना, दूसरा जगह में चले जाना। तो ऐसे करके वहाँ से हम रूम ढूंढने के लिए दूसरा जगह में गए। तो वहाँ उसी समय माना 94-95 जो है ना, उसी समय की बात है। तो बात उसी समय एक्सट्रीमिस्ट की बहुत प्रॉब्लम है मणिपुर में, तो कोई भी घर भाड़ा में देने का तैयार नहीं होता है। तो आप भाड़ा में रहना है तो माता पिता को लेके आने का, तो माता पिता तो आएगा नहीं। तो हमने कोई पहचान वाला भाई हमारा वहाँ का, उसको ले करके गया। तो वहाँ एक कमरा मिला, ये इम्फाल से 3-4 किलोमीटर दूर हो गया, माना पीछे चला गया, हम कॉलेज से थोड़ा दूर हो गया, फिर भी कमरा तो मिल गया। तो ऐसे करके हम उधर रहा। तो हमारा क्या है, जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी में जो योगा सीखा, तो योगासन भी होता है उसमें, योगासन करने से तो सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट बाद में काम में आ सकते हैं। तो ऐसे करके हमने रोज जो गांधीयन प्रिंसिपल होता है, गांधी भी सत्याग्रह होता है, लोग सत्य बोलते हैं, कोई हिंसा नहीं करते, कोई मारते तो भी ऐसे रिएक्ट नहीं करते, हम भी ऐसे करना। तो वो कैसे करते हैं, मेडिटेशन की शक्ति से वो ऐसे सहन करते हैं, वो हमने सुना। तो हम रोज़ वो भी इवनिंग वॉकिंग चलते हैं बोले, तो हम भी वो इवनिंग वॉकिंग चलते 2-3 किलोमीटर। तो ऐसे करके चलते चलते रास्ता में ये राजयोग एजुकेशन सेंटर जो लिखा है, हमने रास्ता में ही सेंटर था हमारा, तो वो मिला। तो हम तो राजयोग तो देखा ही नहीं दिया, योगा देखा हमने, अरे योगा है तो हम इधर योगा सीखेंगे। तो ऐसे हिसाब से हमने योग सीखने के लिए ऐसे ब्रह्मा कुमारी में गए।
2: तो क्या उम्र रही जब आप पहली बार?
3: तो उसी समय 17-18 साल होगा, हम बीए पर रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ, हम गया अभी ये योगा के कितना दिन का है, कितना साल का कोर्स है, हमने ये सब पूछा कितना रुपया लेता है, इसका फीस कितना लेता है। वो बहन ने बोला यहाँ फीस नहीं लेता है, आप ये कोर्स भी नहीं होता है, यहाँ तो एक 7 दिन का कोर्स होता है और वो फिजिकल योग नहीं है, या तो आपको मेडिटेशन करना होगा। तो मेडिटेशन के नाम सुनते ही मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए, हमारा जो चरित्र को सुधारने के लिए हमारा मन की मनोबल शक्ति बहुत जरूरी थी। तो इसी हिसाब से हमने वहाँ तुरंत उसका ये ज्वाइन किया। तो ऐसे करके हम ज्ञान में चलने शुरू किया। तो उसी समय वो लोग ने ये जो ब्रह्मा बाबा का फोटो दिखाया, ये जो दिखाया, तो हमने सोचा ये बाहर की ऐसे ये हम लोग इसको मानने वाला नहीं है, हम लोग को तो क्या है मेडिटेशन करना है, इधर ये सब नहीं सुनना है। तो इसी हिसाब से हम ना मुरली सुनता हूँ, ये कुछ नहीं करता, सिर्फ हम वहाँ 7 दिन का कोर्स है, 7 दिन का कोर्स में भी ऐसे आर्गुमेंट होते है ना हम लोग का, जैसे अभी मानोगे नहीं, अभी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ये जो बिलियंस ऑफ ईयर फॉसिल फ्यूल मिलता है इधर, ये जो हिमालय पर्वत का जो है उसमें ये क्या तो फॉसिल फ्यूल मिलता है, जानवरों का हड्डी, मांस मछलियों का हड्डी, ये सब फॉरेंसिक साइंस में ऐसा भेजा गया, उसमें ये बिलियंस ऑफ ईयर की जब बात बताई और इधर आते हैं 5000 बरस, तो व्हाट इज दिस, है ना, ये कंट्रास्ट आया, ये कैसे हो सकता है, ऐसे ये सब बातें। तो ऐसे ऐसे कंट्रास्ट हुआ, बहुत आर्गुमेंट हुआ हमारे साथ, लेकिन बहुत लंबा होगा, तो 3 महीना तो हो गया। तो उसके बाद बात करते करते तो मेडिटेशन के, जब तक ये कोर्स ख़त्म नहीं होगा मेडिटेशन करने नहीं दे रहा था, तो मैंने ये सब सोच कर दिया, भाई भाई जो बताना ही बता दो, ऐसे करके हमने सुन लिया और उसके बाद मेडिटेशन करना शुरू किया। तो उसमें एक बात आई, तो बोले मेडिटेशन करने से बहुत शांति मिलता है। हमने बोला मेडिटेशन करने से शांति मिलता है ये आप बोल रहे, हम तो मानते नहीं ना, हम पहले करके देखूं उसके बाद मेरे को मिला तो हम बताऊंगा, अगर नहीं है तो हम नहीं बता सके। ऐसे हुआ, फिर बहन बोले आपको हम जैसे बोलेंगे वैसे करना होगा, तो वैसे कैसे करना है वो बताओ। ऐसे बोले आपको 3:30 बजे उठना होगा। तो 3:30 बजे उठना, तो हम लोग तो 3 बजे उठते, स्टूडेंट लाइफ है, हम लोग तो रोज पढ़ते, ऐसे हम बड़ी बात नहीं होता। और दूसरा अभी ये जो खान पान ऐसे शुद्ध होना पड़ेगा, ऐसे होना पड़ेगा, ऐसे बताए। खान पान शुद्ध तो अभी हम लोग घर में तो है नहीं, उधर रोज कौन मछली ला के ऐसे करके खिलाएगा मेरे को, है ना। तो ये सब हम लोग, ये सब ठीक है, सब हो जाएगा। तो ऐसे है, तो बोले कल अमित बिला उठना। तो हमने क्या किया, जैसे उसने जैसे बोला वैसे हमने किया, माना आत्मा समझ के ये शरीर से आत्मा निकल के परमात्मा को याद करना है, परम धाम है, उससे ऐसा शक्ति खींचना है, ऐसा शक्ति खींचना है और उसको फील करना है, मेरे को बहुत शांति मिल, सुख मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे अनुभव करो। तो हमने ऐसे ऐसे अनुभव किया, सचमुच मेरे को बहुत माना ऐसी फीलिंग आया मेरे को योग खत्म होने के बाद, ये चीज काम की है, हम समझ गया। तो उसके बाद ऐसे रोज हम मेडिटेशन 2-2 घंटा, उसके बाद सवेरे हम कोचिंग भी जाना है हमको, और दूसरा कॉलेज भी जाना है और खाना भी बनाना है, तो इसलिए सुबह हम जा नहीं पाते। कॉलेज से आने के बाद जब सेंटर पहुंचते ना 5:30 बजे फिक्स पहुंच जाता है, तो और उसके बाद खाना भी सवेरे एक बार बनाते हैं, वो 3 टाइम खाते हैं, हमारा जो अलसी है हम लोग का खाना ये बनाने का, ऐसे 5 लीटर का एक कुकर है, उसमें ऐसे एक बार बनाते हैं और उसके बाद 3 टाइम खाते। तो ऐसे करके हम 2-2 घंटा याद करते हैं, बहुत अच्छा लगता था मेडिटेशन, बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे करके बाद में 6 महीना के करीब हो गया, तो बहन तो ऐसे देखते है ना, और सेंटरों में ऐसे जाते हैं तो बहन को आर्गुमेंट होते हैं तो आत्मा आप आत्मा ऐसे उसी समय चलता था 550 करोड़ 550 करोड़ किस हिसाब से किसने गिनती करके बताया। हाँ आप ऐसे कैसे बता रहे ऐसे है ना।

0: में क्या हुआ, एक माता आए मेरे पास, आके कान में मेरे को बोला, सिर्फ योग करने से आपको उन्नति नहीं होगा, तो आपको मुरली सुनना पड़ेगा। तो उसी समय हमने बोला मुरली सुनने का समय तो हमारा ऐसे नहीं होगा, तो फिर भी टाइम निकाल के ऐसे करो। तो उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के शाम की टाइम मुरली सुनना शुरू किया। लेकिन ये मुरली हिंदी में है, वो बहन मुरली सुनाने वाला बहन है वो भी मणिपुरी नहीं जानते, तो इसी हिसाब से थोड़ा कंट्रास्ट होता है, समझ में नहीं आते। तो इंग्लिश में हो तो थोड़ा बहुत समझ में आता। तो ऐसे करके अभी मुरली समझने के लिए एक डायरी हमने लिया, मुरली की जितना भी वर्ड मीनिंग है हमने पूरा लिखा। उसमें दो तीन सीनियर थे, एक माता विशेष करके दो तीन भाई, ऐसे हम लिखते गया वो अर्थ बताते जाते हैं। तो ऐसे करके हम मुरली थोड़ा थोड़ा समझ में आए। ऐसे आ रहे थे तो फिर बहन जी, शिला बहन जी आई मणिपुर में, मणिपुर में आया तो बोले आपको अभी हम सेंटर में दो भाई थे, तो ऐसा नियम था तो सेंटर में दो भाई नहीं रह सकते, भाई एक ही रहना होगा। तो एक ही भाई रहना है तो हमको फिर उधर कलकत्ता में भेज दिया दादी के पास। तो दादी के पास 3 साल उधर रहा कलकत्ता में, वहाँ ही हमने आज थोड़ा बहुत हिंदी बोल सक रहे तो वहाँ ही सीखा। हम मणिपुर में तो हिंदी किसी से बोलते नहीं थे ना, तो इसलिए वहाँ ऐसे।
1: आप मणिपुर में कौन सी भाषा बोलते हैं?
0: मणिपुरी, मैथिलोन।
1: मैथिलोन,
0: मैथिलोन, हाँ मैथिलोन बोलते थे। तो ऐसे करके, और हम लोग का जो मणिपुर वालों का जीभ जो है ना थोड़ा मोटा है, माना थोड़ा उच्चारण थोड़ा अप डाउन होगा हम लोग का सोचे। तो ऐसे करके हम उधर ही 3 साल था, 3 साल के बाद हमारा जो शरीर है पूरा सूख गया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आज की आपने अपनी इस अलौकिक जीवन यात्रा का परिचय कराया, लेकिन इस समर्पित जीवन की वो जो यात्रा है, आपकी जो शुरुआत हुई है, उसकी आगे की कहानी को हम अगली कड़ी में आपसे सुनना चाहेंगे। दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है हम आज के इस कार्यक्रम से विदाई ले, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। कार्यक्रम जीना इसे का नाम है।

नवरात्र में शक्ति के नौ रूपों का आवाहन करते हैं। माँ स्कंद माता का रूप सुखदाई और ममता मई है। हम भी सभी अपना आचार व्यवहार मीठा रखें और सुख दें, तभी देवी माँ के सच्चे भक्त कहलाएंगे। नवरात्र के पांचवें दिन की आप सभी सुनने वालों को

0: का अब ये बात तो कोई घर वालों से पूछे क्योंकि ये एक दूसरे का हाल बेहाल करते ही रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं राठौड़ परिवार की आम सुबह में। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर।
1: अरे इस घर में कोई चाय पिलाएगा या नहीं?
2: आई मासा।
1: अरे चाय मुझे पिलानी है, मेरी साड़ी को नहीं राजकुमारी।
2: हाँ ये लीजिए, एकदम दमदार चाय है।
3: अरे बेटा ऐसा क्या डाल दिया है चाय में?
4: दादी मुझे लगता है कल दमदार डिटर्जेंट पाउडर का एड आ रहा था, कहीं वही तो नहीं डाल दिया मम्मी ने।
5: ए राम।
2: चल शैतान स्कूल के लिए तैयार हो जाके।
4: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखरी हो।
1: शांति, ओ शांति, अरे कोई इसके म्यूजिक को शांत कराओ।
6: शांति शांति।
7: अरे शांति क्यों नाम रखा आपने इसका? मैं तो जा रही हूँ बच्चों का टिफिन बनाने, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
2: अरे राजकुमारी। अरे चलो उठो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया।
4: नहीं मम्मी थोड़ा और सोना है।
8: 10 मिनट और बस।
2: अरे चलो 8 बज गए, स्कूल बस आने वाली है।
4: अरे 8 बज गए? क्या मम्मी 6 ही तो बजे है।
2: नहा लेना दोनों, सिर्फ बाल्टी और मग हिलाकर बाहर मत आ जाना।
4: ये मम्मी की पुरानी ट्रिक है उठाने की, और हम फिर से बन गए इसके शिकार।
9: हे भगवान ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? देखो अपने घर से चोरी करके भाग गया बेटा।
7: अरे हमें तो पता ही है, ये लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ये सब आजकल के चोचले हैं। पढ़ लिख कर दिमाग खराब होता जाता है, फिर ये सब काम करती हैं।
10: कोई भाभी को बताओ कि बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
11: इनको मैं बताती हूँ।
10: अरे दीदी आप रहने दो, आप फेमिनिज्म का झंडा सुबह सुबह बुलंद मत करो।
11: ऐसे कैसे? रुक जरा भाभी जी, खबर ध्यान से तो सुन लीजिए। बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
7: हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब तो किसी लड़की ने ही करवाया होगा। है छोड़ो, हमारे लाडले को स्कूल बस लेने आती होगी, हमको जाना है।
12: अरे भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं? कौन भागा सोसाइटी में जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
13: लो जी खबर पूरी पड़ी भी नहीं और आ गए हमारी पड़ोसी माधुरी जी। इनके कानों में कोई एंटीना लगा है क्या जो खबर को सीधा कैच करता है?
0: आप दिन को रात कह देंगे तो चलेगा, आप प्लेन को रेलवे स्टेशन पर उड़ने को कहेंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने राठौड़ परिवार की सुबह को शांत कह दिया। सुनिए सुनिए सुनिए अब माधुरी माहेश्वरी जी आगे कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं?
12: भाभी जी आपको तो पता ही है, माधुरी मुंह खोले तो हमेशा मीठा ही बोले, लेकिन ये किसके भागने की बातें हो रही है? पड़ोस वाले शशि की क्या? मुझे तो न उस पर पहले से ही शक था, देखा न कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है।
7: अरे नहीं नहीं नहीं माधुरी जी, वो बस खबर छपी है।
14: आपको खबर की क्या जरूरत माधुरी जी, आप तो खुद चलता फिरता न्यूज़पेपर हैं।
12: हैं? क्या जी?
14: नहीं नहीं मतलब आपसे क्या छिप सकता है, आपको तो सब पता रहता है ना।
11: हाँ कभी कभी तो जो नहीं हुआ वो भी।
15: फ्यूचर प्रेडिक्शन, वाह वाह माधुरी जी आप तो टैलेंटेड हो।
0: अब इस फैमिली में किसके कौन से टैलेंट हैं ये तो आपको जल्दी पता चल जाएंगे, क्योंकि कुछ टैलेंट सामने नजर आते हैं तो कुछ छिपे हुए होते हैं। वैसे छिपे हुए से याद आया, कोई है घर में जो आज बुरी तरह से फंसने वाला है। आइए आपको लिए चलते हैं वहां, जहां कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट।
15: ये वाला ऑर्डर कर लेती हूँ। वाओ ये तो कितना अमेजिंग है, मेरी सिल्वर ड्रेस पर कितना अच्छा लगेगा। ये भी अभी ऑर्डर कर लेती हूँ।
1: ये देखो इस लड़की को, इधर फोन में लगी हुई है। बेटा शांति, तू अब बच्ची नहीं है कि मैं बार बार तुझे समझाती रहूं।
14: अरे छोड़ो ना माँ, क्यों बेचारी को सुबह सुबह डांट रही हो?
1: अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को, खांस रहा है, देखो कोई पानी लाओ।
13: ला रही हूँ मासा।
14: अरे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे।
11: वैसे तो औरतों की आवाज को हमेशा दबाया जाता है, आज भैया की आवाज चली गई।
7: अरे मैंने तो सुबह ही कहा था सीधे हाथ से पानी लेना, हो गया ना सब उल्टा काम।
9: तुम भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। क्या हुआ वीरेंद्र को, डॉक्टर को दिखाते हैं चलो।
0: सुना आपने, यहाँ बात बात पर बात बढ़ तो जाती है, लेकिन चुप्पी पर कैसे बातें बनती हैं, ये देखना होगा। डॉक्टर तो गले का इलाज करेगा, लेकिन अब वीरेंद्र सिंह राठौड़ की आवाज गई तो घर में क्या क्या होगा, आइए सुनते हैं।
9: देखो डॉक्टर ने कहा है वीरेंद्र की आवाज को 2-3 दिन लगेंगे ठीक से वापस आने पे, उसको बस दवाई टाइम से देते रहना है, ठीक है ना?
13: जी मैं समय पे खिला दूंगी। ये सुबह की, ये शाम की, इतनी बापरे सारी गोल गोल गोलियां हैं, इसमें तो मैं ही गोल गोल घूम जाऊंगी।
7: कुछ कहा राजकुमारी?
13: नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी।
14: ओ ओ ओ ओ ओ
7: अरे ये कह रहा है ऊपर।
12: अरे नहीं नहीं नहीं ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ ऊपर होगा वही ढूंढ रहा होगा।
3: अरे उसको बैठना है।
14: ओ
13: हा? लेकिन उसे पपीता कहाँ से होता है? अरे कोई और फल चाहिए क्या?
12: पैर में दर्द है क्या?
13: अरे पानी मांग रहे हो, पानी लेकर आओ।
16: अरे पापा से कुछ कहना होगा।
13: अरे पिताजी कहाँ गए?
3: अरे वो मुझे बुला रहा है, क्या बात कर रहे हो? पापा पापा बोल रहा है।
13: पापा गाने को लेटेस्ट गाना तो नहीं गा रहे? पापा पापा पापा वाला।
3: पापा कहते हैं।
13: हाँ आवाज चली गई और गाने का मन कर रहा है, बताओ।
11: अरे भैया के पैर के ऊपर आपने अपना पैर रख दिया है माधुरी जी।
12: अरे रे माफ करना भाई साहब, माफ करना मुझे, मैं है ना अब चलती हूँ अपने घर। चल माधुरी, नहीं तो तेरी ही न्यूज बन जाएगी।
0: बेचारे वीरेंद्र जी अपने पांव का पा ही बोल पाए। क्या लगता है आपको, इनकी पत्नी मतलब राजकुमारी जी क्या सही दवा देंगी? इनकी आवाज जाने पर और कितने कारनामे होंगे, ये तो अब भगवान ही जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपके लिए होंगे ठहाके ही ठहाके। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
17: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी, अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौर परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
1: ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। आज पांचवा दिन माँ स्कंद माता का दिन है और माँ स्कंद विशेष योद्धा के रूप में दिखाई गई है, जो कहा जाता है कि देवों की सेना की मुख्य योद्धा के रूप में उसको दिखाया गया है माँ स्कंद। माँ स्कंद भी माँ दुर्गा का ही दूसरा स्वरूप है। माँ स्कंद कहा जाता है कि वो कार्तिकेय की माता थी, जिसको देवों ने चुना था असुरों के सामने विशेष युद्ध करने के लिए मुख्य योद्धा के रूप में। कहा जाता है कि माँ स्कंद ने अपने बेटे को एक हाथ में उठाया है, इसीलिए उसके हाथ में छोटा बच्चा भी दिखाया है और साथ में उसको चार भुजाधारी और तीन नेत्रधारी दिखाया गया है। उसके हाथ में अपने बेटे और दूसरा हाथ जो आशीर्वाद की मुद्रा में है और साथ ही साथ तीसरे हाथ में कमल जो पवित्रता का प्रतीक है। कहने का भावार्थ कि वो सभी भक्तों की रक्षा करने वाली, विशेष अपने भक्तों कहो या बच्चे के समान सभी बच्चों की रक्षा करने वाली और पवित्रता से उनके जीवन को भर देने वाली, उनके जीवन के अंदर अनेक आशीर्वादों से उसका जीवन संपन्न करने वाली माँ स्कंद की पूजा होती है। कहा जाता है कि जिसके ऊपर माँ स्कंद की मेहर हो जाए तो एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। ऐसी विशेष विशेषता माँ स्कंद की दिखाई गई है। कहने का भावार्थ कि आज पांचवें दिन पर माँ स्कंद की पूजा, अर्थात कि जो हर एक भक्तों की, हर एक बच्चों की रक्षा करने वाली और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी ज्ञानी बना देने की क्षमता रखने वाली माँ स्कंद है।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर नवरात्रि के पांचवे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी।
0: आज के दिन उपांग ललिता व्रत किया जाएगा। रेडियो मधुबन के संग नवरात्रि के रंग
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।
2: माँ की ममता का रूप निराला, माँ की ममता का रूप निराला, भक्तों को लगता है माँ का सहारा प्यारा। गोद में स्कंद, मुख पर तेज अपार, गोद में स्कंद, मुख पर तेज अपार, माँ स्कंद माता करती है सबका उद्धार। प्रेम और करुणा की बहती रहे धारा, प्रेम और करुणा की बहती रहे धारा, माँ के आशीर्वाद से जीवन में हो उजियारा, माँ के आशीर्वाद से जीवन में हो उजियारा। तो आप सभी को नवरात्रि के पांचवा दिन स्कंद माता दिन के, आज है स्कंद माता का दिन, तो इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। राक्षस दुर्गमा सुर का वध करने से माता रानी का एक नाम दुर्गा भी पड़ा, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग घरेलू उपाय आज आपको देने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खास नुस्खे रहेंगे आज के। फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे, लेकिन कौन सा वो आप आशियाना सुनिए, जान जाएंगे। और आज की पहेली भी बहुत सुंदर रहेगी, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान ना करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार बहुत ही अच्छा है। राक्षस दुर्गमासुर का वध करने से माता रानी का एक नाम दुर्गा भी पड़ा, कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक बहुत ही सुंदर कहानी के साथ करना चाहूंगी। नवरात्र चल रहा है, जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा, है ना। दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है नवरात्र के त्योहार को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ भगवती को माँ दुर्गा क्यों कहा जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री हरि ने वरा अवतार लेकर के राक्षस हिरणाक्ष का वध किया था और पृथ्वी को अपनी जगह पुनर्स्थापित किया था, जिससे सृष्टि में आया व्यवधान दूर हुआ था। कालांतर में इसी हिरणाक्ष के वंश में एक दैत्यराज रुरु हुआ था और दैत्यराज रुरु का पुत्र हुआ दुर्गम। ये दुर्गम ब्रह्मांड के तीनों लोकों पर शासन करना चाहता था, लेकिन तीनों लोकों पर शासन हेतु देवताओं को हराना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। इसलिए दुर्गमासुर ने विचार किया कि देवताओं की शक्ति वेद में निहित है, उस समय एक ही वेद थे, तो अगर किसी तरह वेद नष्ट हो जाए या विलुप्त हो जाए तो देवतागण खुद ही नष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त वेद के विलुप्त हो जाने से यज्ञ आदि भी नहीं हो पाएंगे, जिससे देवताओं को भोग नहीं मिल पाएगा और वे शक्तिहीन हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें जीतना आसान हो जाएगा। इसलिए राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने उसे सलाह दी कि देवताओं को हराने के लिए वेद का लुप्त होना आवश्यक है। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य के निर्देशों पर दुर्गमासुर हिमालय में जाकर के कठोर तपस्या करने लगा। दुर्गमासुर के इस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देते हुए वर मांगने को कहा। मौके का फायदा उठाते दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी से वेद मांग लिया और साथ ही साथ मांग लिया कि वेदों के समस्त ज्ञान मुझ तक ही सीमित रहे। वेद के अतिरिक्त दुर्गमासुर ने सर्वशक्तिशाली होने तथा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश से अवध माने नहीं मरने का वरदान भी

हासिल कर लिया। ब्रह्मा जी द्वारा तथास्तु कहते ही सारे देव और मनुष्य वेद को भूल गए। वेद का स्मरण भूलते ही ब्रह्मांड में जप, तप, स्नान, ध्यान, यज्ञ, पूजा, सदाचार आदि धार्मिक क्रियाएं थम गई, जिससे हर जगह धर्म की जगह अनाचार और पाप का बोलबाला होने लगा। ब्रह्मा जी के ऐसे वरदान से बेहद ही अजीब स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि यज्ञ आदि में भाग मिलने से देवता पुष्ट होते थे, लेकिन वेद के लुप्त हो जाने के कारण यज्ञ आदि बंद हो गए, जिससे देवता निर्बल होने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान से ताकतवर हुआ दुर्गमासुर, दैत्य और राक्षसों की भारी सेना लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। लेकिन यज्ञ आदि के नहीं होने के कारण देवतागण दुर्बल हो चुके थे और इस राक्षसी सेना का मुकाबला करने में असमर्थ हो चुके थे, इसलिए वे स्वर्ग से दूसरी जगह पलायन कर गए और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इधर धार्मिक कार्य न होने के कारण पृथ्वी पर मनुष्य भी धर्मविहीन हो गए और राक्षसों की देखा देखी वे भी मदिरा सेवन, लूटपाट, चोरी, व्याभिचार इन सभी में लिप्त हो गए। अन्याय, अनीति और दुराचार बढ़ने के कारण ब्रह्मांड का प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ा गया। जल, भोजन आदि के लोग तरसने लगे इन सभी चीजों के लिए। ऐसी विकट स्थिति में पृथ्वी पर जो थोड़े बहुत सज्जन लोग बचे थे, वे हिमालय की कंदराओं में जाकर के बहुत ही कारुणिक रूप से माँ भगवती को पुकारना शुरू कर दिया। उनकी कारुणिक पुकार सुनकर के माँ भगवती प्रकट हुई। उस समय उन्होंने भूख, प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक मूल को धारण किया हुआ था। माता भगवती के प्रकट होते ही देवतागण भी बाहर आ गए, जो दुर्बल हो जाने के कारण दुर्गमासुर के भय से इधर उधर छुपे हुए थे। सबने मिलकर माता भगवती को सारा वृतांत बताया। माता भगवती ने सारा वृतांत सुनकर उन्हें भरोसा दिलाया और तत्काल में उन्हें खाने के लिए शाक और फल दिए। इसी घटना के कारण मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, माँ भगवती का एक नाम शाकंभरी भी पड़ा। उधर जब दुर्गमासुर ने अपने दूत से यह सारा वृतांत सुना तो वो क्रोधित होकर के एक बहुत बड़ी सेना लेकर मनुष्य और देवताओं को दंड देने के लिए निकल पड़ा। दुर्गमासुर को सेना सहित आता देखकर मानव और देवताओं में भय व्याप्त हो गया और वे माँ भगवती से रक्षा हेतु निवेदन करने लगे, जिसके बाद देवी भगवती ने चक्र को सारे मानव और देवताओं की रक्षा का आदेश दिया, जिससे चक्र देवता और मनुष्यों की रक्षा करते हुए उनके चारों ओर घूमने लगा। देवी भगवती और राक्षसी सेना के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया और देवी भगवती के श्री विग्रह से कालिका, तारा, भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, बगला वगैरह वगैरह 32 शक्तियां प्रकट हुई तथा 10 दिन के घनघोर युद्ध के बाद सारी राक्षसी सेना विनाश को प्राप्त हुई। अपनी सेना के विनाश की खबर सुनकर के 11वें दिन दुर्गमासुर खुद युद्ध भूमि में आया, लेकिन माँ भगवती के हाथों मारा गया। इस तरह माँ भगवती ने दुर्गमासुर का अंत कर वेद को पुनर्स्थापित किया और इसी दुर्दांत दुर्गमासुर के वध के कारण ही माँ भगवती को माँ दुर्गा भी कहा जाता है। तो आप समझ गए ना कि क्यों माता रानी का एक नाम दुर्गा पड़ा, वो आपने जाना है। आइए अब फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नवरात्र में शक्ति के नौ रूपों का आवाहन करते हैं। माँ स्कंद माता का रूप सुखदाई और ममता मई है। हम भी सभी अपना आचार व्यवहार मीठा रखें और सुख दें, तभी देवी

इस समय थोड़ा पानी मुंह में लीजिएगा, मुंह फूले नहीं इतना ध्यान देना है, ठीक है? फिर सांस नाक से लेना है। स्नान करने के बाद आप कपड़े पहन लेते हैं, उसके बाद इस पानी को फेंकेगा, अंदर जितना भी कफ है ना सब निकल जाएगा। परिणाम ये होगा कि इससे सर्दी जुकाम का प्रभाव कम से कम होगा, अगर होगा तो भी थोड़े समय में प्रभाव समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो अगर सर्दी जुकाम से बचना चाहते हैं तो मुंह में पानी भर करके स्नान करिएगा। स्नान करते समय थोड़ा पानी मुंह में रखिएगा, मुंह फुलाइए नहीं, खाली मुंह में रखना है। स्नान करने के बाद कपड़े पहन लो, उसके बाद पानी फेंकिए, अंदर जितना भी कफ है ना सब बाहर निकल जाएगा, सर्दी जुकाम का प्रभाव कम से कम हो जाएगा और थोड़े समय में ये प्रभाव सारा समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम सर्दी जुकाम से बच सकते हैं। देखिए, दूसरा उपाय भी बहुत ही सुंदर है। सर्दी में होंठ नहीं फटे, शरीर में खुश्की नहीं आवे, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप ये करेंगे कि रोज स्नान करने से पहले अंगुली, मतलब एक अंगुली तेल नाभि में लगाइएगा, सरसों का तेल, ठीक है? इससे सारे शरीर में ताजगी आ जाएगी, सारा शरीर स्नेहल हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि शरीर में खुश्की नहीं आएगी, होंठ नहीं फटेंगे। यह आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं। एक दो बूंद आप सरसों का तेल नाभि में डाल सकते हैं, इससे भी होंठ नहीं फटेंगे और शरीर की खुश्की नहीं रहेगी, ठीक है? तो सर्दी में अगर आप चाहते हैं कि हमारे होंठ नहीं फटे, शरीर में खुश्की नहीं रहे, ड्राइनेस आती है तो खुजली चलती है, ये समस्या हो जाती है, तो इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप? नहाते समय एक अंगुली सरसों का तेल नाभि में लगाइएगा, इससे सारे शरीर, पूरा जो शरीर है स्नेहल हो जाएगा और खुश्की नहीं रहेगी, होंठ नहीं फटेंगे। तीसरा उपाय भी बहुत सुंदर है। आंखों की ज्योति बढ़ाना चाहते तो इसके लिए क्या करेंगे? पैर के दोनों अंगूठे है ना, इसके आगे के भाग में नाखूनों पर सरसों का तेल लगाइएगा रोज, इससे आंखों की ज्योति बढ़ेगी। पैरों के दोनों अंगूठों के आगे के भाग में नाखूनों पर सरसों का तेल रोज लगाइएगा, इससे आंखों की ज्योति बढ़ेगी। अगला उपाय भी बहुत सुंदर है। आई फ्लू हो गया हो तो क्या करेंगे? आई फ्लू माने आंखों में संक्रमण हो गया हो तो क्या करेंगे? पैर के दोनों अंगूठों के नाखूनों में आंख माने अर्क, जो आंख होता है ना, आंख का दूध लगाइएगा, इससे आंखों में आई, ललाई, जलन, ये सब ठीक हो जाएगा। तो एक दिन में ही इसका फर्क आपको महसूस होगा, दूसरे में भी रोग नहीं फैलेगा। तो आंखों में संक्रमण है, आई फ्लू हो गया है, तो पैर के दोनों अंगूठों के नाखूनों में आक का दूध लगाइए। हम कहते हैं ना आकड़ा धतूरा, तो आक का दूध लगाना है, इससे आंखों में आई, ललाई, जलन एक दिन में ठीक हो जाएगी, दूसरों में भी ये रोग नहीं फैलेगा। अगर मलेरिया हो तो क्या करेंगे? नीम के 2.5 ताजा पत्ते और 2 काली मिर्च घोट करके थोड़े पानी में मिला करके पीजिएगा, 2 बार लेने पर यह रोग ठीक हो जाएगा। मलेरिया होने पर नीम के 2.5 ताजा पत्ते और 2 काली मिर्च दोनों को घोट कर थोड़ा सा पानी मिलाकर पीजिएगा, दिन में 2 बार लेने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। शरीर में हाथ व पैर दोनों के 20 नाखूनों पर आग का दूध रात को सोते समय लगाना, दोनों हाथों पर रुमाल बांध लेना ताकि दूध आंखों को न लगे, इससे भी मलेरिया ठीक हो जाएगा। शरीर में हाथ व पैर दोनों के 20 नाखूनों पर आग का दूध रात को सोते समय लगाइएगा, दोनों हाथों पर रुमाल बांध लेना है ताकि दूध आंख को नहीं लगे और इससे मलेरिया भी ठीक हो जाएगा, ठीक है? और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है। साई टीका, जिसको ग्रदसी भी कहते हैं, तो साई टीका इस रोग में पैर की नसों में ऊपर से नीचे तक भयंकर वेदना होती है, रोगी दर्द से छटपटाता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही सुंदर उपाय आपको बता रही हूँ। पारिजात, जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, तो हार श्रृंगार के पेड़ के 1 तोले ताजा पत्ते लीजिए, इसमें 250 ग्राम पानी लेना है, मतलब 250 लीटर
पानी

ना है, इसमें उबालना है इन पत्तों को, जब पानी एक कप या फिर आधा रह जाए तो उतार कर ठंडा करके छानिए, फिर इसमें मिश्री मिला करके पीजिएगा। लगातार एक महीना करेंगे तो ये साइटिका की तकलीफ ठीक हो जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखना है, गरिष्ठ भोजन से आपको बचना है। तो साइटिका की जिसको भी समस्या है, इस रोग में पैर के नसों में ऊपर से नीचे तक भयंकर दर्द रहता है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और रोगी दर्द से छटपटाता है। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर आपको उपाय बता रही हूँ, पारिजात, जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं। पारिजात के पेड़ के एक तोले ताजा पत्ते लीजिए, 250 ग्राम पानी में उबालिए, जब पानी आधा कप रह जाए तब उतार करके इसको ठंडा होने दीजिए, फिर मिश्री में लगा करके पीजिएगा। महीना भर आपको इस तरह लेना है तो इससे आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा, गरिष्ठ भोजन से आपको बचना है। तो ये सारे उपाय बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। आइए अब आपको आज की पहेली सुना देते हैं, बहुत ही सुंदर पहेली है, ध्यान से सुनिएगा। 9 दिनों के पर्व में मेरा पांचवा स्थान, 9 दिनों के पर्व में मेरा पांचवा स्थान, गोद में पुत्र, मुख पर दिव्य मुस्कान, कमल पर विराजू, ममता मेरी पहचान। बताइए आशियाना सुनने वाले मेरे प्यारे श्रोता बंधु, क्या है मेरी पहचान? ये है आज की पहेली। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। सरल रहिए ताकि सब आपसे हिलमिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सके। क्या कहेंगे आप? आज का विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, बहुत ही सुंदर विषय है। आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर है। 9 दिनों के पर्व में मेरा 5वां स्थान, गोद में पुत्र मुख पर दिव्य मुस्कान, कमल पर विराजू ममता मेरी पहचान। बताइए आशियाना सुनने वाले श्रोता बंधु, क्या है मेरी पहचान? तो जिन्होंने भी आज का विचार सुना होगा तो जरूर वो जवाब दे सकेंगे। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं प्रश्न का, आज की पहेली का जवाब भी दे सकते हैं और आज के विषय में अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। आप फिर शिकायत मत करिएगा कि फोन नहीं लगता है, बहुत सारा गैप मिलता है अभी और इस गैप में आप फोन कर ही सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर विषय है, सरल रहिए ताकि सब आपसे हिलमिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सके। क्या कहेंगे? अभी देखिए दिन भी इतने खास चल रहे हैं माता रानी के दिन कि हम वो कहते ना चारों तरफ भक्तमय माहौल है। तो भाई भक्तमय माहौल ऐसे ही तो नहीं होता है ना, आगे पीछे की बातों को भुला करके सभी अभी भक्ति में लीन है, गरबा में, भक्ति में, तपस्या में, इन सब में लीन है। कहते ना नवरात्र में तो जितनी तपस्या करो उतनी कम है, तो बहुत जने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, कोई निस्वार्थ भाव से तपस्या करते हैं, लेकिन करते जरूर है तो मन निर्मल हो जाता है ना। तो विषय भी आज का इसी प्रकार है कि सरल रहिए ताकि सब आपसे हिलमिल सके। उकड़ू स्वभाव होगा ना तो सब आपसे दूर भागेंगे, सरल स्वभाव होगा तो कोई भी बात में हिचकिचाएंगे नहीं, अरे चलिए ना उनसे पूछ लेते हैं। बहुत सरल स्वभाव के है वो अपने साथ ऐसा ऊंच नीच नहीं करते, जैसे बहुत पैसे वाले भी है ना तो भी सरल स्वभाव है तो लोग उनको पूछने के लिए जाएंगे और बड़े प्यार से उनको जवाब देंगे, बड़े प्यार से बिठाएंगे और उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये उकड़ू स्वभाव भले कुछ नहीं है पास में फिर भी उकड़ू उकड़ू रहता है, कोई कुछ पूछ ले उसके पहले ही वो इतना झल्ला करके बोलता है कि ऐसा लगता है भाई फलाने से बच के रहना ही अच्छी बात है। हेलो,
1: हाँ बुरा राम बोल रहा हूँ उषा दीदी।
0: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम, कैसे हो आप?
1: बहुत दिनों के बाद मैं फोन लगा, जब लगा तो वो क्या मेरा रेडियो खराब है क्या, आपका वो प्रोग्राम बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
0: अच्छा अब सब कुछ चालू है?
1: अभी चालू है, आज तो चालू है, मैं लगा के देखता हूँ तो चालू मिला, नहीं तो कभी शुरू करके कोई आवाज नहीं थी।
0: अच्छा चलिए अच्छा है कि चालू हो गया।
1: और बाकी मधुबन भाइयों को मैं सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम, और आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ। क्या विषय क्या है कुछ?
0: आज की पहेली है, 9 दिनों के पर्व में मेरा 5वां स्थान, गोद में पुत्र मुख पर दिव्य मुस्कान, कमल पर विराजू ममता मेरी पहचान। बताइए आप आशियाना सुन रहे हैं ना, तो क्या है मेरी पहचान? आज 5वां दिन है माता रानी का, तो बस इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकती मैं, उस हिसाब से जवाब दीजिएगा ठीक है। और आज का विषय, हाँ जी आज का विषय है सरल रहिए ताकि सब आपसे हिलमिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सके। क्या कहेंगे?
1: बरोबर, मतलब आदमी को कभी भी बोले तो ऐसा घमंड से बातें करना, किसी से टकराव से बातें करना, और ऐसा नहीं है, सरल आदमी सरल रहता है, उसका मान में नहीं बढ़ता है, इज्जत भी होती है, और कभी भी बोले तो कई दो लोगों में व्यवहार से बातें करेंगे तो अपनी कदर होती है, और फिर उनके आगे का किसी का अनुसर करेंगे तो फिर वही अपने को ये तो सबसे तो मिल मिल के रहना है तो सब है कि, तो इससे अपने संबंध भी बनते हैं, रिश्ते भी बनते हैं, और सब भाइयों के मिल जुल भी बढ़ता है, मतलब सरल आदमी का व्यवहार अच्छा है, बाकी तो क्या बोलूँ सर।
0: जी जी जी, और आज की पहेली का जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है?
1: आ करता हूँ मैं।
0: हाँ जी, और स्वास्थ्य बढ़िया आपका?
1: ठीक है सर, थोड़ा पर बैठा घर पे और क्या करें, अभी सुनता और प्रोग्राम सुनता और बात करता।
0: जी जी बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, चलिए बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे भूरा राम जी, ओर से आपने भी विषय को स्पष्ट करने की अच्छी कोशिश की है। अब देखते हैं कौन जुड़ते और अपनी बात को रखते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के पहेली का भी जवाब दे सकते हैं। आज के विषय में आप अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सको। कितनी सुंदर बात है। जैसे आप शक्कर ले लीजिए, शक्कर को आप जिसमें भी डालोगे उसमें मिक्स हो जाएगी, ठीक है? आप हलवा में डालो, चावल में डालो, आप दूध में डालो, शक्कर दिखाई नहीं देगी और सब में घुल मिल जाएगी। ऐसा स्वभाव हमें बना के रखना है कि हर परिस्थिति में हर एक के साथ हम घुल मिल करके रह सके। तो प्रैक्टिकल विषय है, देखते हैं कौन जुड़ते और अपनी बात को रखते हैं। भाई हम तो बैठे ही है लेकिन हम तो आपके द्वारा जानना चाहते हैं। फोन करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कट जा रहा है। फिर भी कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप कोशिश करते रहिए, आपका फोन जरूर लगेगा। और आज का विषय बहुत ही सुंदर है जिसमें आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। क्या बात है, हमारे इतने श्रोता बंधु है, अभी सभी तपस्या में व्यस्त है लगता है। 9 दिन उपवास भी करते हैं, कोई कोई तो बिल्कुल खाली पेट उपवास करते, कुछ भी खाते पीते नहीं, कोई लिक्विड पर रहते हैं, कोई फल पर रहते हैं, तो कोई फराल भी लेते हैं, कोई व्रत भी करते हैं और कोई तो नकोड़ा उपवास, मतलब कुछ भी खाते पीते नहीं, इस तरह भी तपस्या करते हैं। देखो भाई अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करिएगा। हेलो, हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो?
2: मैं जब से फोन कर रहा हूँ लेकिन फोन में कोई पता नहीं, जल्दी फोन लगता नहीं, और लगता है तो कट जाता है, थोड़ा सा कोई दिक्कत का प्रॉब्लम है।
0: अच्छा,
2: तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है लेकिन फिर भी चलो फर्स्ट तो मैं कर रहा था, लग गया है
0: जी।
2: तो क्या विषय है दीदी, आज मैं फोन में लगा रहा था, पता नहीं क्या बोला क्या।
0: अच्छा, आज का विषय है सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सको।
2: वो तो सही है दीदी, देखो हम इससे कई कई बार क्या हम मुस्कुराते रहते हैं, एकदम खिचकाने रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो हम दूसरे के साथ कैसे हिल पाएंगे दीदी। लेकिन हम आराम से शांति से रहेंगे, हल्के से रहेंगे, यानी कि किसी के साथ ऐसा कोई बर्ताव भी नहीं करेंगे और प्रेम से रहेंगे, तो एक दूसरे के साथ हम हिलमिल भी रहेंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे
0: जी।
2: वरना तो देखो आज कई लोगों को ऐसा होता है कि कई लोग इसको बुलाते नहीं थे, इसको जाने दो, इसका माइंड नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है
0: जी।
2: तो हम बुलाएंगे तो कुछ बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, कोई गुस्से से बोलेंगे, तो ये सही नहीं है दीदी। आज देखो किसी के साथ हम बात करते हैं, किसी को बुलाते हैं तो एकदम चिड़ के बोलते हैं, अरे भाई हम बोल रहे हैं आपको, ऐसे चिड़ के बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए हल्का रहना है, माइंड को फ्रेश से कुल रखना है
0: जी।
2: नो टेंशन दीदी, कभी कभी टेंशन आता है तो लोग एकदम चिड़पड़ाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, तो किसी के ऊपर टेंशन होता है तो हम बुलाते हैं तो एक दौर से बोलते हैं, भाई मेरे काम में तुम जाता है तो बाद में आना, तो ऐसा भी रहता है। लेकिन भी लेकिन हल्का रहना है, बस हल्के रहेंगे तो ही तो सबके साथ मिल के रहेंगे, अच्छे रहेंगे, वरना तो हमको बुलाएंगे
0: नहीं। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से। अब इस विषय को और भी कंटिन्यू करेंगे लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर नवरात्रि के पांचवे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी।
0: आज के दिन उपांग ललिता व्रत किया जाएगा। रेडियो मधुबन के संग नवरात्रि के रंग
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है, सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सको। यह आज का विषय है खुशनुमा जीवन का। आप अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा। और आज का पहली, आज की पहली भी दोहरा देती हूँ जो बहुत ही सुंदर है। 9 दिनों के पर्व में मेरा 5वां स्थान, गोद में पुत्र, मुख पर दिव्य मुस्कान, कमल पर बिराजू, ममता मेरी पहचान। बताइए आशियाना सुनने वालों, क्या है मेरी पहचान? ये आज की पहेली है। क्या बात है, कहाँ खो गए हैं आप सभी? गरबा का आनंद ले रहे हैं? चलिए अच्छी बात है, रेडियो में भी बहुत ही अच्छे अच्छे गरबा आपको सुना रहे हैं ताकि आप घर बैठे भी गरबा कर सको। हेलो,
3: चालू हो गया लाइव?
2: हाँ जी हाँ जी, नमस्कार सुभाष भाई।
3: तो आपको रेडियो मधुबन परिवार और हमारे सभी छोटे भाई बहनों को सुभाष भाई का नमस्कार, और नवरात्रि का 5वां दिन, स्कंद माता की सभी को आशीर्वाद, कृपा, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, शक्ति, लाभो, सभी का जीवन सुख शांति में जाइए, हमारी प्रार्थना भी है। तो सवाल का जवाब तो दे दिया है। तो
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: चंद माता को कमल का फूल भी बहुत ही अच्छा लगता है, कमल का फूल और लाल रंग के फूल, पीले फूल चलाए जाते हैं, दोनों हाथों में कमल भी दिखाए है।
2: आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? आज का विषय है सरल रहिए ताकि सब आपसे घुल मिल सके, मतलब सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सको। क्या कहेंगे आप?
3: जो मैं सुनाता हूँ ना दीदी, देखो अभी मेरा ही मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं 70 पार कर लिया है, पैरालिसिस का स्ट्रोक के कारण थोड़ा बोलते नहीं आता है, लेकिन मेरे सभी काम मैं स्वयं करता हूँ, किसी की भी मदद नहीं लेता हूँ, और जो भी मिला है, जो भी है, उसमें मैं निभा लेता हूँ, और सभी से छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, मैं सरल रहता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, चाहे उसको थोड़ा टाइम बुरा भी लगे, लेकिन स्पष्ट रहता हूँ, सरल रहता हूँ, बाद में उनको समझ में आता है कि ये निस्वार्थ भावना से प्रेम करता है, ये सरल आदमी। तो जो है दिखावा मत करो, शॉर्ट में जो हमारे पास है उसमें सुखी से रहो, संतुष्ट से रहो, और सभी से सरल रह के प्रेम करो। थैंक यू दीदी, ओम शांति, सभी को नमस्कार।
2: बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, और अब देखते हैं कौन जुड़ते और अपनी बात को रखते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है और आप जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिकल विषय है, सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सको। तो ये खुद का ही आप चेक करके भी कह सकते हैं। आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर है, तो दोनों में ही जुड़िएगा। अगर पहेली में जुड़ नहीं पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी जवाब भेज सकते हैं, ठीक है। हेलो
4: हेलो उषा बहन जी, कंचन भाई बोल रहा।
2: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते, कैसे हैं आप?
4: नमस्ते, सुप्रभात।
2: सुप्रभात, हाँ जी।
4: बस ये दुकान पे है, थोड़ा बुखार सा जो रहता है, थोड़ा क्या करे, दो ऋतु है न, तो अस्पताल गए थे कल, तो दिखाया तो बोले कि भाई वायरस का आपको बुखार है
2: जी,
4: और जो धूल है, कोई दुआ है, वहाँ आपको नहीं रहना है, थोड़ी दवाइयाँ दी है, तो अब थोड़ा ठीक है, आप तो जुड़ा हूँ, ठीक है
2: जी।
4: हेलो।
2: हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ मैं।
4: हाँ तो बहुत बात है
2: जी, जी।
4: सवाल का जवाब तो मैं देता हूँ, ठीक है?
2: ठीक है, ठीक है।
4: और क्या है आपका थोड़ा
2: विषय है? सरल रहिए ताकि सब आपसे हिल मिल सके, तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सको।
4: बिल्कुल बहन जी, सरल रहना है हमें, कोई घमंड नहीं रखना है, पैसों का घमंड आदि घमंड क्या है। एक मैं बात करूं तो हमारे जो नवरात्रि शुरू हुई तो हम मीटिंग हमें बुलाया था, बड़े बुजुर्गों को, युवा लोग ये करते हैं, एक ही हमारे गांव में मांडवड़ी करते हैं
2: जी,
4: तो इसका आयोजन कैसे करे, क्या करे, क्या करे, तो हमने जो 10 साल तक ये सब करते थे हम पहले, तो हमने हमारा अनुभव बताया कि ऐसा रहना है, सरल रहना है, उग्र स्वभाव नहीं रखना है, कोई भी मुसीबत आए, कोई ऐसा हो जाए तो हमें हम बताना है हमें। तो युवाओं ने बोला कि भाई आपको 11 बजे 12 बजे तक यहाँ बैठना है, कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी, तो आपको बड़े बुजुर्गों को बैठना है। हम बैठे थे कल, परसों की बात करते हैं कि तो लाने की बात निकले कि भाई यहाँ कोई ऐसा हो जाए, नाश्ता की व्यवस्था, लाने की व्यवस्था, तो एक भाई थोड़ा उग्र स्वभाव में थोड़ा बोल गए। हमने बोला कि भाई हमको क्यों बुलाया, पहले दिन जो मीटिंग की थी तो बोला था, इसलिए हम तो आए हैं भाई, ऐसा करो ऐसा करो, सदा सूचन कोई हमने किया है इतने सालों से, तो हम थोड़ा ये देते हैं शांति से। जनरेशन है ना बहन जी, आजकल की जनरेशन उग्र स्वभाव में आ जाती है
2: जी,
4: नहीं रखना है, सीखना है बड़े बुजुर्गों को पास से कैसे बोलना है, क्या बात कर रहे हैं वो हमें जवाब कैसे देना है, वो आजकल की जनरेशन को ये ध्यान में रखना, ठीक है
2: जी, तो जी,
4: उग्र स्वभाव नहीं रखना, शांति से पेश आना
2: जी,
4: आपकी बात भी ठीक है, लेकिन क्या करे इतना ये नहीं कर पाते, तो ये बात अलग है
2: जी,
4: तो इसी मैंने थोड़ी ये शांति से पेशाना है, स्वभाव नहीं, और ये मिलेगा बड़े बुजुर्गों के पास ही बातें मिलेगी, क्या कई दिन उन्होंने देखे हैं, कई को देखे हैं, ये अनुभव से बात करते हैं तो सुनना। थैंक यू बहन जी, सभी दोस्तों को आपको नमस्कार
2: जी, बहुत बहुत आभार आपका
4: जी।
2: तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, आपने भी विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है, कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, स्वभाव सरल रखिए ताकि कोई भी आपसे किसी भी समय कुछ आपसे सलाह लेने की आवश्यकता है, या कभी कहते हैं ना कि जीवन में उदासी आ जाती है तो भी सरल लोगों के पास बैठना पसंद करते कि चलो वो कुछ सॉल्यूशन भी निकालेंगे, और उनका सरल स्वभाव है, उनके साथ हम अपने पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं तो वो आपके पास आएंगे, है ना। और कैसे भी लोग हो, कैसा भी वातावरण हो आप उन हर एक में एडजस्ट हो जाइए, घुल मिल कर रहिए सभी के साथ, तभी तो कहेंगे कि अरे वाह फलाना व्यक्ति तो क्या भाई, थोड़ी देर के लिए रहा लेकिन सचमुच वो अमूट अपनी अमिट छाप छोड़ के गया, उसको हम भूल ही नहीं सकते आजीवन। कोई कोई इंसान बहुत कम समय के लिए मिलते हैं, संपर्क में आते हैं, लेकिन हम लाइफ टाइम उसको याद रखते हैं कि नहीं फलाना व्यक्ति के तो भाई बात ही अलग है, क्योंकि वो मिलनसार था, घुलनशील था, सभी के साथ घुल मिल करके अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा सबके दिलों को जीत करके गया है, तो उन्हें भूल नहीं सकते। और चाहे हमारे साथ रहते हो भाई, कोई कोई तो संपर्क में आकर चले जाते हैं, कोई कोई तो हम रोज ही साथ में रहते हैं ना, लेकिन हमारा व्यवहार हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए कि बस किसी के भी मन में संकल्प नहीं चले और खुल करके बिंदास होकर के आपके पास आ सके। बाकी कोई कोई तो ऐसे मूड से रहते हैं कि उनसे बात करते भी लोग कतराते हैं कि अरे भाई नहीं नहीं उसका मूड पता नहीं कैसा हो, एक ही दो सुनने को मिले इससे अच्छा दूर से ही नमस्कार है भमरा में। तो अब ये स्वयं पर छोड़ा है कि स्वयं का नेचर कैसा बनाना है। इस विषय को अब यही समाप्त करते हैं और आइए आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली है, 9 दिनों के पर्व में मेरा 5वां स्थान, गोद में पुत्र, मुख पर दिव्य मुस्कान, कमल पर विराजू, ममता मेरी पहचान, बताइए आशियाना सुनने वाले मेरे प्यारे श्रोता बंधु क्या है मेरी पहचान। ये आज की पहेली है, चलिए श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो,
5: बुराराम बोल रहा दीजिए।
2: हाँ जी बुराराम जी, राम राम।
5: वो जो पहेली का जो उत्तर नहीं दिया था ना आपको।
2: हाँ जी।
5: हाँ तो वो इचकन माता का स्वरूप है।
2: ठीक है, देखते हैं सही जवाब, कार्यक्रम सुनिए हम अंत में जवाब देंगे। ठीक है,
5: सुन रहा है जूम में।
2: हाँ जी, हाँ थैंक यू। तो ये थे बुराराम जी ओर से, और अब यहीं पर फिर से एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज बनाएंगे आशियाना के किचन में सेविया की खीर। ठीक है, सेविया की खीर, सेविया का हलवा, ये हम बना सकते हैं। तो दोनों ही आपको सिखा दूंगी, प्रोसेस सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो सामग्री आप ले लीजिए, सेविया लेनी है। अगर आटे वाली मिल जाए, आटे और सूजी वाली, तो बहुत अच्छी बात है। मैदे वाली तो ठीक है, फिर कभी कभार तो अब नहीं मिल रही है तो ले सकते हैं, बाकी मैदा नुकसान करता है। तो आप सेविया ले लीजिए बारीक वाली, और फिर आप लीजिए ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, शक्कर, थोड़ा सा घी और दूध। ठीक है, तो सेविया, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, दूध और घी। बनाने का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, जो सेविया ली है ना, उसका आप थोड़ा सा तोड़ लीजिए, लंबी लंबी काफ़ी होती है तो उनका छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। फिर आप कढ़ाई रखिए गैस पर, और उसमें घी डालिए। घी जब गर्म हो जाए तो ये जो भी आप देखिए घर के सदस्यों के अनुसार आप मात्रा लीजिएगा, ठीक है, और विशेष तो माता रानी के भोग के लिए। तो सेविया डालिए घी में, और आप धीमी आंच पर इसको सेकिएगा। जब ये सेविया आप सेकेंगे तो इसकी एकदम सोनी सोनी खुशबू आएगी, जिससे पता चल जाएगा कि ये सेविया हमारी भुन गई है। कलर चेंज भी हो जाएगा। फिर आप इसमें दूध डाल दीजिए। हेलो
2: हेलो, जय माता दी, जय श्री रानी दीदी सबको। मैंने कहा नवरात्रि के राम राम तो बोल दो, जय माता दी, जय श्री हरी सभी दोस्तों को नवरात्रि के पांचवें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और बस माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, ऐसी हम दिली दुआएं करते हैं। ठीक है दीदी
1: जी, चलिए आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, जय श्री हरि। तो फिर आप दूध डाल दीजिएगा, ठीक है, ये खीर बन रही है, दूध डाल दीजिएगा और फिर इसको उबलने दीजिएगा। जब दूध अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और भाई खीर तो थोड़ी सी ढीली अच्छी लगेगी, तो वैसे सेविया की खीर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ऐसे 7-8 मिनट उबाल करके फिर आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिएगा, शक्कर अच्छी तरह घुले जितने आप उबालिए, फिर गैस बंद करके इलायची पाउडर बुरका दीजिए। तो ये बन गए हमारे सेविया वाली खीर। सेविया का हलवा भी ऐसे ही बनाना है। कढ़ाई रखिए गैस पर, घी डालिएगा, घी में आप सेविया डालिएगा और इसको रोस्ट करिएगा, अच्छी तरह सेकिएगा। एक तरफ पानी गर्म कर दीजिए, फिर आपको लगे कि हाँ कलर चेंज हो गया है सेविया का, तो फिर आप पानी डाल दीजिए गरम वाला, आवश्यकता के अनुसार पानी सेविया पी जाए इतना ही। खीर तो लिक्विड होती है, लेकिन हलवा तो लिक्विड नहीं होता है, तो आवश्यकता के अनुसार पानी डालना है। हल्का सा आप दूध भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और जब ये पानी जज्ब हो जाए तो फिर आप शक्कर डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा, शक्कर एक रस हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, इसका पानी उड़ जाए, उसके बाद गैस बंद करके ऊपर से इलायची पाउडर बुरका दीजिए। तो ये बन गए सेविया के हलवा। तो सेविया की खीर भी तैयार है, सेविया का हलवा भी तैयार है। देर किस बात की, बस आप अपने माता रानी को भोग लगाइए, अपने इष्ट देव को भोग लगाइए, उसके बाद आप बच्चों सहित, बुजुर्गों सहित, परिवार सहित आप इसका आनंद ले सकते हैं, और फिर से एक गीत का भी आनंद लेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: इसे पी जा। ये क्या है माँ जी? ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद? नहीं ना।
3: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर किया होगा आपने। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, तो आजमा सकते हैं आप प्रैक्टिकल। विषय भी बहुत ही सुंदर था, तो रेसिपी में आपको जो सेविया की खीर हलवा बनाना सिखाया है, जरूर बना करके खाइएगा। और आज की पहली बहुत ही सुंदर थी, 9 दिनों के पर्व में मेरा 5वां स्थान, गोद में पुत्र, मुख पर दिव्य मुस्कान, कमल पर विराजूं, ममता मेरी पहचान। बताइए आशियाना सुनने वालों, क्या है मेरी पहचान? तो आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने सही जवाब दिया है। दीपा सोमानी कपासन से, सुरेश भाई झोटाना से, भूराराम जी ओर से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, कंचन भाई मंडाली से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, निर्मला बहन अहमदाबाद से, आप सभी का सही जवाब है स्कंद माता। स्कंद माता रानी का आज दिन है,

सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरवालिए।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: वंदे मातरम भारतीय क्रांतिकारियों का मुख्य नारा और प्रेरणा स्रोत था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे क्रांतिकारियों के लिए ये नारा मातृभूमि के प्रति समर्पण और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक था। जब उन्होंने 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान यानी काबुल में भारत की पहली अंतरिम सरकार बनाई थी, तब वंदे मातरम गीत बरकतुल्ला खान, ओबेदुल्ला सिंधी जैसे उनके साथियों के लिए भी राष्ट्रवाद की भावना का मूल मंत्र था। उन्होंने इस गीत की क्रांतिकारी भावना को न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि इसे अपने सशस्त्र और कूटनीतिक संघर्षों में एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उपयोग भी किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत की पहली अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति भी रहे। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के आज के एपिसोड में सुनेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की कहानी, जो काफी आध्यात्मिक भी थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक साहसिक स्वतंत्रता सेनानी और वैश्विक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिनकी सामाजिक और धार्मिक विचारधारा आज भी बहुत प्रासंगिक है। उनके विचारों में प्रगतिशील सोच झलकती थी। उसमें भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का लोकतंत्र, शिक्षा, समानता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे आधुनिक आदर्शों का मेल था। उनके दुनिया को देखने का नजरिया आध्यात्मिक होने के बावजूद किसी भी तरह के कट्टर या रूढ़िवादी विचारों से मुक्त था।
1: बन्नो, क्या तुम भारत के उस आर्यन पेशवा की कहानी सुनना चाहोगी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना घर, राजपाट, धन दौलत सब त्याग दिया?
2: हाँ दीदी, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। वे आर्यन पेशवा कौन थे?
1: उनका नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने देश से हजारों मील दूर अफगानिस्तान की सरजमी पर भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। आओ चलते हैं साल 1915 के काबुल में।

0: राजा महेंद्र प्रताप जी, आप जर्मनी के कैसर विलियम से मिलकर यहां आए हैं। आपके इरादे बुलंद हैं, लेकिन आप ब्रिटिश हुकूमत से सीधे टक्कर लेने की बात कर रहे हैं। क्या आपको खौफ नहीं लगता?
1: अमीर साहब, खौफ तो उन्हें होना चाहिए जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। मैं तो अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। गुलाम होने से अच्छा है कि मैं देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दूं।
2: मैं राजा साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। हिंदुस्तान के कोने कोने में आजादी की तड़प दिलों में सुलग रही है। अमीर साहब, हमें बस इस चिंगारी को शोला बनने में मदद करना है।
0: आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप अपने अगले कदम के बारे में बता सकते हैं? क्या सोचा है आगे का आपने?
1: हम आज ही यानी 1 दिसंबर 1915 को काबुल की सरजमीन से भारत की अंतरिम सरकार का ऐलान करते हैं। मैं इसका राष्ट्रपति हूं और मौलवी बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री।
3: एक ओर काबुल में राजा महेंद्र भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने की रणनीति बनाने में जुटे थे, दूसरी ओर दिल्ली स्थित ब्रिटिश मुख्यालय में एक अलग ही गहमा गहमी चल रही थी।
4: जनाब, राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अपनी सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। वे अब रूस और जर्मन से मदद मांग रहे हैं।
5: What rubbish! This is treason! राजद्रोह है ये।
4: जी जनाब, राजा साहब ने तुर्की के सुल्तान और रूस के जार को भी चिट्ठियां भेजी हैं। वे सिल्क के कपड़ों पर गुप्त संदेश भेज रहे हैं।
5: मुझे वो बागी जिंदा या मुर्दा चाहिए। चाहो उसको पकड़ो। हाथरस और वृंदावन में उसकी जितनी संपत्ति है उसे जब्त कर लो। उसके सिर पर इनाम रख दो। हमारी सरकार के लिए वो अब एक बड़ा खतरा बन गया है। उसे छोड़ना नहीं है।
3: राजा महेंद्र को एहसास था कि अंग्रेजों से लड़ाई आसान नहीं होगी, इसलिए वो जर्मनी और रूस से समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। मौलवी बरकतुल्ला के साथ राजा महेंद्र रूस लेनिन से मिलने भी गए। रूस की सीमा के पास एक कैंप में मौलवी बरकतुल्ला ने एक बार फिर से महेंद्र प्रताप से पूछा कि क्या वो सचमुच ब्रिटिश हुकूमत के साथ संघर्ष के लिए तैयार हैं, जबकि उनके परिवार वालों का जीवन खतरे में पड़ सकता है।
2: राजा साहब, अंग्रेजों ने आपकी तमाम जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया है। आपके खानदान पर सितम ढाए जा रहे हैं। क्या आप खामोश बैठे रहेंगे?
1: बरकतुल्ला साहब, देश गुलाम है। मैं अपने निजी जायदाद या अपने परिवार के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। अगर भारत को आजाद करने के लिए मुझे पूरी जिंदगी यूं ही खाना बदोश बनकर रहना होगा तो मैं रहूंगा।
2: मुझे आप पर फक्र है, इसीलिए तो आप राजा हैं। आपको इत्तला देनी थी कि लेनिन से हमारी मुलाकात का वक्त तय हो चुका है। रूस से भी पूरी तवक्को है, वह हमारी मदद जरूर करेगा।
1: मौलवी साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्रांति की मशाल किसी भी तरह बुझनी नहीं चाहिए। दुनिया के हर कोने में भारत की आजादी की गूंज पहुंचनी चाहिए।
3: लोकमान्य तिलक और राजा महेंद्र प्रताप को लेनिन का समर्थन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में उनका स्पष्ट रुख हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक दिलचस्प पहलू है। बोल्शेविक क्रांति के बाद जब वहाँ कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ तो महेंद्र प्रताप व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत शासन के मेहमान के तौर पर उस समय के सोवियत संघ गए। उन्होंने उनसे और लियोन ट्रॉटस्की जैसे दूसरे नेताओं से बातचीत की। यह साल 1918 की घटना होगी। तब लेनिन ने लोकमान्य तिलक को क्रांतिकारी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनक बताया था। जब तिलक को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की न सिर्फ निंदा की बल्कि उनकी रिहाई की मांग भी की।
6: बन्नू, अब तक तो तुम समझ ही गई होगी कि राजा महेंद्र प्रताप क्या थे, उनका उद्देश्य कितना स्पष्ट था। लेकिन गांधी जी को उनके तरीके पसंद नहीं थे।
7: ऐसा क्यों दीदी?
6: बन्नू, दोनों का लक्ष्य एक था लेकिन वहां तक पहुंचने का तरीका अलग अलग। भारत की आजादी की लड़ाई के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से महेंद्र प्रताप ने कई देशों की यात्रा की और महात्मा गांधी के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। लेकिन गांधी जी उनके तरीकों से सहमत नहीं थे। हाँ, वे देश के प्रति उनके प्रेम और उसे आजाद कराने की समर्पित कोशिशों की तारीफ करते थे। गांधी जी ने 4 जुलाई 1929 को यंग इंडिया में लिखा भी था,
8: राजा महेंद्र प्रताप एक महान देशभक्त है। देश के लिए इस नेक इंसान ने स्वेच्छा से निर्वासन का जीवन चुना है, लेकिन विजय अहिंसा से ही प्राप्त हो सकती है।
3: इस पत्र के जवाब में राजा महेंद्र प्रताप ने भी उन्हें चिट्ठी लिखी।
1: मेरी समझ से अहिंसा का मतलब है अपने विचारों, बातों या कामों से किसी को भी मन या शरीर से दुख न पहुंचाना। हालांकि इस सिद्धांत का पालन यहीं तक सीमित नहीं है। अहिंसा का पालन करने वालों को उन सभी हालात को बदलना होगा जिनमें हिंसा होती है या हिंसा की संभावना बनती है। मैं इसे सबसे बुरी तरह की हिंसा अहिंसा के ठीक उलट मानता हूं। जब कोई व्यक्ति दूसरों की हिंसा को सहन करता है या उसमें मदद करता है। आज भारत में बहुत से लोग अहिंसा की खूबियों पर बड़े अच्छे उपदेश देते हैं, लेकिन वो अंग्रेजों की हिंसा को खत्म करने के लिए बहुत कम काम करते हैं। अहिंसा की सच्ची भावना के तहत मैं अपनी इच्छा दूसरों पर थोप नहीं सकता। हर किसी को खुद तय करना चाहिए कि उसे क्या करना है। मैं बस उस शाश्वत सत्य की ओर इशारा कर सकता हूं कि सृष्टिकर्ता निश्चित रूप से अपनी सभी रचनाओं स्त्री पुरुष का भला चाहता है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि हर कोई हर तरह की हिंसा को खत्म करने की पूरी कोशिश करे, यही अहिंसा है।
3: विदेश की धरती से अपने वतन को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए राजा महेंद्र प्रताप जो कर सकते थे वो कर रहे थे, लेकिन रह रह कर उन्हें अपने देश की याद भी सताती थी। आखिरकार वो समय भी आया। साल था 1946, जब राजा महेंद्र प्रताप वर्षों के निर्वासन के बाद भारत लौटे। जर्मनी, जापान और अमेरिका की खाक छानने और करीब 32 साल के लंबे निर्वासन के बाद वर्ष 1946 में जब राजा महेंद्र प्रताप भारत लौटे तो पूरा देश उनके स्वागत के लिए मानो उमड़ पड़ा। रेलवे स्टेशन पर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। सब लोग राजा जी को सुनना चाहते थे और उन्होंने उन्हें संबोधित भी किया।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 32 साल तक अपनी मिट्टी से दूर रहा, आज धन्य महसूस कर रहा हूं। मैंने अपना सब कुछ खोया, महल, संपत्ति और भी बहुत कुछ, लेकिन नहीं खोई तो उम्मीद कि एक दिन देश जरूर आजाद होगा, गुलामी की जंजीरों से मुक्त होगा। इतना ही नहीं, असल आजादी तब कही जाएगी जब देश अशिक्षा एवं नफरत से भी मुक्त होगा।
3: राजा महेंद्र प्रताप एक सच्चे समाज सुधारक, क्रांतिकारी और लेखक थे। उनकी सोच प्रगतिशील एवं दूरदर्शी थी। आजादी के बाद उन्होंने 1957 में मथुरा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और लोकसभा में पहुंचे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को परास्त किया था। पश्चिमी यूपी की लोक कथाओं में इनके किस्से आज भी सुने जाते हैं। उन्होंने विश्व शांति के लिए एक विश्व संघ की बात की थी। इसी संदर्भ में 14 मई 1957 को उन्होंने लोकसभा में कहा था,
1: विश्व संघ की स्थापना के लिए सभी धर्मों का सहअस्तित्व और उनके बीच आपसी सद्भाव बहुत जरूरी होगा। ओम, देव, अल्लाह, यहोवा, आप चाहे जिसे भी मानते हो, सब एक ही ईश्वर का शरीर और आत्मा है, जो एकमात्र और अद्वितीय है। अलग अलग धर्म एक ही ईश्वर को अलग अलग नाम देते हैं। मेरे लिए सभी धर्म एक ही परम सत्य तक ले जाने वाले सही रास्ते हैं।
3: राजा महेंद्र की धार्मिक सोच के केंद्र में एक ऐसे ईश्वर का विचार था जो सर्वव्यापी और निराकार है। उन्होंने कर्मकांड और संप्रदायवाद को नकारा और प्रेम के धर्म की वकालत की। एक समय था जब राजा महेंद्र ने अपना नाम पीटर पीर प्रताप रख लिया था, क्योंकि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाइयों के भाईचारे के पक्षधर थे। उन्होंने 1916 में काबुल के बागे बाबर में रिलीजन ऑफ लव नाम की किताब भी लिखी। नवंबर 1929 में अपने सर्कुलर वर्ल्ड फेडरेशन में अपनी धार्मिक मान्यताओं के बारे में वो लिखते हैं,
1: एक रचनात्मक शक्ति, प्रकृति या ईश्वर ने हमारे ब्रह्मांड, ग्रह और मानवता की रचना या विकास की शुरुआत की। प्रकृति के नियम रचना की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी का घूमना और विकास की प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। विचार लोगों को अपनी तत्कालिक इच्छाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी धर्म उन विचारों का संग्रह है जो मानव जाति को मानवीय कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए हैं। मेरा सुझाव है कि धर्म का उद्देश्य हमारे आध्यात्मिक कल्याण को बनाए रखना है। जो लोग धार्मिक मामलों पर विवाद करते हैं, वे शायद ही कभी सच्चे धार्मिक होते हैं। मेरा विश्वास सभी धर्मों की एकता को दर्शाता है। मेरा विश्वास प्रेम का धर्म है।
3: राजा महेंद्र प्रताप के पड़पोते चरत प्रताप सिंह कहते हैं,
9: वे राजनेता से ज्यादा एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। देश का पहला टेक्निकल स्कूल खोलने के लिए उन्होंने अपना घर दे दिया था। इससे वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना हो सकी। तब उनकी उम्र महज 23 साल की थी। महात्मा गांधी ने भी उनके बारे में 28 मार्च 1928 के यंग इंडिया के अंक में लिखा था।
6: जानती हो बन्नो, राजा महेंद्र को 8 भाषाओं का ज्ञान था। भले ही वे एक छोटे राजघराने से थे, लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था।
7: सच कहूं दीदी, इनकी कहानी सुनकर अंदर से बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारा देश यूं ही महान नहीं कहलाता।
3: राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को अलीगढ़ के मुरसान राजघराने में हुआ था। बाद में उत्तर प्रदेश के हाथरस के राजा हर नारायण सिंह ने उन्हें गोद ले लिया और अपना वारिस घोषित कर दिया। राजा महेंद्र को कम उम्र से ही राजनीति में दिलचस्पी थी। उन्होंने 1911 के एंग्लो बाल्कन युद्ध में भी हिस्सा लिया था। महेंद्र प्रताप के पिता और दादा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो उस समय मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जानी जाती थी, के संस्थापक और महान शिक्षाविद सर सैयद अहमद खान के बेहद करीबी माने जाते थे। कहा जाता है कि उनके परिवार ने इस यूनिवर्सिटी को कुछ जमीन दान में दी थी, जबकि कुछ जमीन लीज पर दी थी। राजा महेंद्र प्रताप खुद भी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के छात्र रहे थे। उनकी इसी विरासत को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने 1979 में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद रखते हुए साल 2021 में उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राजा महेंद्र प्रताप का मानना था कि परंपराओं का आंख बंद करके पालन करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हृदय का शुद्ध होना है। उन्होंने जो सिखाया उसे खुद अपने जीवन में करके भी दिखाया। वो कहते थे कि आध्यात्मिक प्रेम एक बड़ी जोड़ने वाली शक्ति बन सकता है।

एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और महान क्रांतिकारी की कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर नवरात्रि के पांचवे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आज माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी।
0: आज के दिन उपांग ललिता व्रत किया जाएगा। रेडियो मधुबन के संग नवरात्रि के रंग
1: सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी म्हारो गांव म्हारो अंचल। सही में अपना गांव और अपना अंचल में जब इस तरह त्यौहार मनाते हैं तो हमें बहुत खुशी और नाज है। तो आज शारदीय नवरात्रि के पाँचवा दिन में हम आपका पास लेकर आए हैं माँ स्कंद माता की बारे में जानकारियाँ देने के लिए। तो आप सबको विदित है, हमारा भारत त्यौहार का देश है। किसी न किसी दिन हम किसी न किसी देवी देवताओं को पूजा अर्चना और आस्था विश्वास रखकर आराधना करते हैं, आरती करते हैं, आस्था और विश्वास रखते हैं। खासकर उनसे हम अपना जीवन में आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। तो नवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम में आज स्कंद माता के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो हमारा साथ इस कार्यक्रम में सभी श्रद्धा भक्ति आस्था विश्वास में रुचि रखने वाले को भी स्वागत करते हैं। माँ स्कंद माता दुर्गा की पांचवी अवतार है, स्वरूप है। तो जानकारियाँ प्राप्त जरूर करेंगे। तो सुनते हैं माँ स्कंद माता का बारे में क्या कथा है, क्या उनका आभूषण है, क्या वाहन है, कौन सी वाहन है। तो लीजिए।
3: जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का पांचवा अवतार है। स्कंद माता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद तथा माता। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, जो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ, और इस प्रकार स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। स्कंद माता रूप में देवी दुर्गा की चार भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में उन्होंने कमल पकड़ा हुआ है, और चौथे हाथ से वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की सवारी शेर है, और वह कमल पर विराजमान है, जिस कारण उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय भगवान देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति हैं। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसकी आयु में वृद्धि होती है। स्कंद माता की आराधना करने से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है।
2: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्कंद माता की पूजा अर्चना का साथ साथ इसका क्या रोचक कथा है, क्या कहानी है, उसका ऊपर में थोड़ा सुनते हैं।
3: स्कंद माता की एक बड़ी ही रोचक कथा है, आइए शुरू करते हैं। ओम देवी स्कंद माताये नमः। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद शिव शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है, बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए। लेकिन विष्णु जी ने उन्हें कहा कि इस स्थिति के लिए आप सब स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद विष्णु जी उन्हें पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति माता सती की अवतार हैं। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती जी से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज गंगा माँ को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित रूप से सरवाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार छह माताओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण छह मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से वही प्रश्न पूछा। फिर शिव भगवान ने उन्हें 1,200,000 श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12,00,000 श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर को एक भयंकर युद्ध में मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित रूप से हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है।
2: सही में तो सुनते हैं माँ स्कंद माता की प्रार्थना। जय जय गान का साथ जब इस तरह त्योहार का यथार्थ कथा, प्रार्थना, स्तुति, ध्यान सुनते हैं तो वो हमें बहुत खुशी लगता है। तो सुनते हैं प्रार्थना का बारे में।
3: सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी।
2: जय स्कंद माता की जय। अभी सुनते हैं स्कंद माता की स्तुति।
3: या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
2: स्कंद माता की कथा, प्रार्थना और स्तुति का साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सुनते हैं स्कंद माता को हम कैसे ध्यान करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सुनते हैं ध्यान।
3: वंदे

0: नितम बनीम।
1: अभी हम सुनेंगे माँ स्कंद माता की स्तोत्र।
0: नमामि स्कंद माता स्कंद धारिणीम समग्र तत्व सागरम पार पार घराम शिवा प्रभा समुज्वला सफुच्छ शाग शेखराम ललाट रत्न भास्कराम जगत प्रदीप्ति भास्कराम महेंद्र कश्यपार्चिताम सनत कुमार संस्तुताम।

0: चि पार्वतीम् अनंत शक्ति कांतिदा यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदाम् पुनः पुनर्जगदीताम् नमाम्यहम् सुरार्चिताम् जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहि माम।
1: कवच का भी महत्व हम जानते हैं, लेकिन कवच के बारे में क्या श्लोक है सुनते हैं।
0: स्कंद माता का कवच। एम बीजालिंका देवी पदयुग्म धरा परा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेयुता श्री ह्रीं हुए देवी पर्वस्य पातु सर्वदा सर्वांग मे सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा वाण वाणामृते हूँ फट बीज समन्विता उत्तरस्य तथाग्ने च वारुणे नेत्रिते अवतु इंद्राणी भैरवी चैवासितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मा देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा अर्चना श्लोक स्तुति का साथ आरती न हो ये हो ही नहीं सकता, तो माता रानी का आरती किस तरह करते हैं, खासकर स्कंद माता जी का जब आज का दिन है तो आरती से ही हम ओतप्रोत होंगे, तल्लीन होंगे, भावार्थ लेकर भक्ति भावना में जुड़े रहेंगे। तो सुनते हैं आरती।
0: जय हो तेरी स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता।

0: हमारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तू ही खंड हाथ उठाए। भक्तों को तू बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। जय मां स्कंद माता, जय मां स्कंद माता,
1: जय मां स्कंद माता, जय मां स्कंद माता जी की जय हो। सही में भक्ति भावना, और इस तरह त्यौहार में जब हम सब मिलकर मनाते हैं, उजागर रहते हैं और अपना मनस्कामना पूर्ण करते हैं, तो हमें बहुत खुशी आनंद प्राप्त होती है। जिस तरह आज नवरात्रि की पांचवा दिन में माँ स्कंद माता जी का कथा, प्रार्थना, स्तुति एवं कवच आरती पूजा अर्चना का साथ आज आपका पास हम रखें। जरूर हमारे श्रोतागण, भक्तजन, साधकगण, आस्था विश्वास में रुचि रखने वालों को जरूर फायदा होगा। इन शुभ भावना का साथ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद माता रानी स्कंद माता की ऊपर में यथार्थ आध्यात्मिकता का साथ, अर्थ का साथ सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद त्रिवेणी दीदी से।

नवरात्र में शक्ति के नौ रूपों का आवाहन करते हैं। माँ स्कंद माता का रूप सुखदाई और ममता मई है। हम भी सभी अपना आचार व्यवहार मीठा रखें और सुख दें, तभी देवी माँ के सच्चे भक्त कहलाएंगे। नवरात्र के पांचवें दिन की आप सभी सुनने वालों को

नमस्ते। ब्रेक का पहले हम स्कंद माता के बारे में भक्ति भावना आस्था आरती कथा श्लोक का साथ उपस्थित रहें तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं। खासकर स्कंद माता के बारे में

0: इतना कारगर साबित होगा। त्यौहार हम क्यों मनाते हैं और त्यौहार मनाने का विधि क्या है, इससे क्या सिद्धि प्राप्त होती है। खासकर जब नवरात्रि होता है तो हमें शक्तियों का याद आती है, तो सुनते हैं स्कंद माता की बारे में और कुछ रोचक यथार्थ ज्ञान संबंधित बातें त्रिवेणी दीदी से। तो दीदी जी आपको स्वागत है इस कार्यक्रम में, तो आपको भी नवरात्रि स्पेशल में हैप्पी नवरात्रि। तो आज हमारा श्रोता मित्र को क्या प्रकाश डालेंगे, थोड़ा प्रकाश डालिए।
1: आज विशेष तौर पे हम सभी पांचवा दिन अर्थात स्कंद माता के नाम से नवरात्रि का ये आज का दिन हम मना रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का ये त्योहार पूरे भारत देश में नहीं, लेकिन मैं कहूंगी कि पूरे देश में ही, देश विदेश बड़े श्रद्धा भावना से नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। नव दुर्गा के नौ दिन में विशेष नौ शक्तियां छिपी हुई है, जिसे हम हर दिन हर रोज नवीनता के साथ सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। आज के दिन में आज हम स्कंद माता को पूजन या उसकी आराधना की जाती है, तो पंचमी की तिथि को विशेष रूप से जो आराधना की जाती है तो वह एक माँ का स्वरूप है। माँ स्कंद माता के नाम से दुर्गा का ये पांचवा स्वरूप माँ को प्रख्यात करता है। माँ की पालना, माँ का गुरु रूप इससे सिद्ध होता है। कहा भी जाता है कि इंसान के, हर मनुष्यों के जीवन में विशेष रूप से तीन गुरु होते हैं। इसमें सबसे पहला प्रथम गुरु माना जाता है जन्म देने वाली माँ को। इसका सत्य स्वरूप स्कंद माता का दिखाया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसका अंत केवल सुपुत्र ही कर सकता था। इसलिए पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को, जिसे स्कंद के नाम से जाना जाता है, उसे युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। जब स्कंद माता अपने बच्चे को असुर से अर्थात तारकासुर से युद्ध करने की प्रेरणाएं और शिक्षाएं दे रही थी, तो इन शिक्षाओं के साथ साथ एक अलौकिक शक्तियां भी प्रदान कर रही थी। जो शक्तियां प्रदान की, वे शक्तियां एक माँ के अलावा कोई प्रदान नहीं कर सकता है। और माँ के द्वारा प्राप्त हुई कार्तिकेय को एक शक्ति और शस्त्र की शिक्षा एक विशाल और भव्य थी। स्कंद माता से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया, तो स्कंद माता को अपने पुत्र से अति प्रेम और गर्व महसूस हुआ। इसलिए माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारना उत्तम लगता था, और इसी अर्थ भावना और इस प्रेम स्वरूप से माँ स्कंद माता के नाम से जाने लगी। स्कंद ये शब्द, इसका अर्थ ही निकलता है कार्तिकेय स्वामी की माँ, और दूसरा उसका कर्तव्य स्पष्ट होता है ज्ञान देने वाली माता। इसलिए स्कंद माता का दुर्गा का ये पांचवा स्वरूप माँ के रूप में सभी विश्व में प्रख्यात हुआ। स्कंद माता को अगर हम उनकी रूप को, उनकी वेशभूषा को अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो सभी देवताओं में भिन्न स्वरूप एक मातृत्वता का दिखाई देगा। तो स्कंद माता के चार भुजा का यादगार भी इसी स्वरूप को प्रत्यक्ष करता है। स्कंद माता को चार भुजा वाली कहते हैं।

0: इस चार भुजा में सर्वप्रथम हस्त में कार्तिकेय को दिखाया है। तो ये स्नेह का स्वरूप है जो अपने बच्चे को अपने हाथ में एक विश्व की सेवार्थ उन्होंने लिया है, एक विश्व को उदाहरण स्वरूप दिखाया है कार्तिकेय को प्रथम हस्त में। दूसरा हस्त दिखाते हैं वरदान हस्त, तीसरे हाथ में कमल तथा चौथे हाथ में भी कमल पुष्प से सुशोभित दिखाते हैं। वह इस बात का प्रतीक है पवित्रता और योग बल इन दोनों के आधार पर स्कंद की मां बनी। तो वरदान हस्त समस्त मानव जाति को वरदान देने वाली माँ, इस रूप में ये चार भुजाएं प्रख्यात होती है। और इस प्रेरणा से या कहो इस मूर्ति की प्रेरणा से हम यही आज उद्देश्य ले सकते हैं कि हम सभी नारी जाति का सम्मान करेंगे, उनके प्रति अपने कल्याण की दृष्टि को बनाए रखेंगे, सबके प्रति हमारा जो दृष्टि भाव हो वे कल्याण का हो। मनुष्य आत्मा के प्रति, जो संसार की हर मनुष्य आत्मा है, वो छोटी हो बड़ी हो, इसमें किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव, ऊंचता नीचता का भेदभाव न रखते हुए सबके प्रति श्रेष्ठ भाव रखना है, श्रेष्ठ कामनाएं रखनी है और कल्याण की भावना, ये हमारा मूल एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। साथ ही साथ हम कमल पुष्प समान जीवन जीने का एक संकल्प ले। जिस प्रकार से माँ के हाथ में कमल का पुष्प दिखाया है, कमल का पुष्प कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से अलिप्त होता है, कीचड़ उसे टच नहीं करता है, इस प्रकार से एक सांसारिक जीवन जीते हुए भी हम अपने संस्कार को इस प्रकार से बनाएं कि इस संसार में कलयुगी प्रवृत्ति में रहते हुए भी इस कलयुगी अवगुणों का या असुरी प्रवृत्ति का इफेक्ट हमारे संस्कारों में न हो, इस बात का विशेष हम ध्यान देंगे। और इस प्रकार से ऐसे करने से माँ स्कंद माता हमारे ऊपर प्रसन्न होंगी और सभी दुखों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में एक खुशहाली का या शुभकामना का हम आनंद ले सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को शुभकामना देते हैं, शुभ भाव प्रदान करते हैं, किसी के प्रति अगर कल्याण की भावना रखते हैं तो रिटर्न हमें वही प्राप्त होता है। इसलिए स्कंद माता के साथ साथ हम ये प्रेरणाएं लें और हम अपने जीवन को इसी प्रकार से एक सेवा भावार्थ या अपने जीवन में खुद के प्रति भी एक कल्याण की भावना को बनाए रखते हुए हम स्कंद माता को नमन करते हैं।
1: क्या बात, बहुत सुंदर प्रस्तुति और यथार्थ जानकारियां जब आप देते हैं हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासियों को, तो हमारा ग्रामवासी भी कुछ सीख लेकर अपना जीवन में आत्मसात करते हैं, धारण करते हैं और जीवन में उतारते हैं, जिसका चलते हमारा कार्य व्यवहार में कहीं ना कहीं काम में आता है और हमें खुशी आनंद सुख उमंग उत्साह और संगठन का जो बल मिलता है इस तरह त्यौहार से, क्योंकि त्यौहार मनाने के साथ साथ जब हम सामूहिक रूप में एक दूसरे को सहयोग देते हुए मिलजुल कर काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा बन जाता है और एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है जो न्यू पीढ़ी के लिए, जो युवा वर्ग के लिए एक सीख छोड़कर जाता है। जिस तरह आज हमारा सभी श्रोता मित्र ग्रामवासियों को और खासकर भक्ति भावना उपासना में जो रुचि रखते हैं उनके लिए इतना ज्ञानवर्धक बातें सुनाए कथा का साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्कंद माता के बारे में और यथार्थ संपूर्ण आध्यात्मिकता को लेकर पहुंचेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल पर नवरात्रि स्पेशल।

नवरात्र में शक्ति के नौ रूपों का आह्वान करते हैं। माँ स्कंद माता का रूप सुखदायी है, हम भी सभी से अपना आचार व्यवहार मीठा रखें और सुख दें, तो माँ के सच्चे भक्त कहला सकेंगे। रेडियो मधुबन की ओर से नवरात्र के पांचवें दिन की आप सभी श्रोताओं को

0: स्कंद माता की जय जय गान का साथ ब्रेक का पहले हम माता रानी का ऊपर में बहुत कुछ सुना, और कुछ सुनने के लिए हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी और साधकगण आतुर है। तो इस स्कंद माता के पूजा अर्चना से हमारा भक्तजन साधकगण और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वालों को कुछ प्रेरणा देने के लिए पुनः उपस्थित है त्रिवेणी दीदी, तो उनको स्वागत करते। तो दीदी जी, इस त्यौहार से हमारा साधकगण, हमारा श्रोता मित्र और ग्रामवासियों को क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या प्राप्ति होगा, और किस रूप से हम इसको मनाएंगे, वो चीज आप रखिए।
1: स्कंद माता के स्मरण से ही मूढ़ बुद्धि भी ज्ञानी हो जाती है। पहाड़ों पर रह करके संसारिक जीवन में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता को विशेष रूप से विद्या की देवी के रूप में मानते हैं। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेधादूत की जो रचना की, उस रचना के पीछे भी स्कंद माता देवी का कृपा थी या आशीर्वाद थी। कालिदास चरण ने स्कंद माता की आराधना से ही और उनकी तपस्या से ही इस विद्या को प्राप्त किया है, इसलिए भी कालिदास ने स्कंद माता को की कई ऐसी विशेषताएं या उनकी चेतना का वर्णन अपनी कविताओं में लिखा हुआ है। विशेष तौर पे आज स्कंद माता सफेद कलर के साथ इस एनर्जी से जुड़ी हुई है
0: जी।
1: सफेद कमल पुष्प पर आसन प्राप्त करती हुई, सफेद कलर एक ऐसा कलर है जिसकी विशेषता कही जाती है कि उसमें न दिखने वाले अनगिनत कलर मिक्स है। सफेद होने के बावजूद भी सभी कलर का समावेश उसमें होता है। दूसरी विशेषता सफेद कलर की ये भी कही जाती है कि सफेद कलर हर चीज में मिक्स हो सकता है।
0: ओके।
1: तो हर चीज में इन्वॉल्व या हर विशेषताओं से परिपूर्णता की निशानी सफेद कलर माना जाता है। इसी प्रकार से सफेद कलर एक पवित्रता की शक्ति का प्रतीक भी है। साफ सुथरा पवित्र मन उस देवी के चरण में जब हम अर्पित करते हैं, तो भक्तगण भी जब शुद्ध मन से देवी की आराधना करते हैं, तो माता बहुत जल्दी उन पर प्रसन्न हो जाती है
0: जी।
1: यह सफेद कलर पवित्रता के साथ साथ सुख शांति के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस दिन जब भी साधक साधना करते हैं, तो मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित हो जाता है। विशुद्ध चक्र ये हमारा जो थ्रोट चक्रा है, ये एक ऐसा फिल्टर है जिसमें फिल्टर होकर के एनर्जी अपने पूरे बॉडी को प्राप्त होती है, और इसमें स्कंद माता की एनर्जी का जब समावेश होता है तो कंठ चेतना प्राप्त होती है। इस प्रकार से पौराणिक शास्त्र में इस चक्र की एनर्जी के महत्व के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। इसी प्रकार से स्कंद माता की विशेषता भी कही जाती है कि सूर्य मंडल की वे अधिष्ठात्री है।
0: ओके।
1: अधिष्ठात्री होने के कारण उसका उपासक या साधक जब साधना करता है तो अलौकिक तेज को प्राप्त करता है, कांति में हो जाता है, और साधक का मन एकाग्र हो करके पवित्र रह करके जब देवी की साधना में जुट जाता है तो उसका कहा जाता है कि वो भव सागर अर्थात ये कलियुग की विष को वो पार कर लेता है, हर कठिनाइयों से वो पार हो जाता है। इसका कारण है कि स्कंद माता चेतना का निर्माण करने वाली देवी है। जब भक्त की चेतना जागृत हो जाती है तो उसे सही और गलत का यथार्थ समझ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इस यथार्थ समझ से वे हर आने वाली परिस्थिति को या विश्व के भव सागर को पार करने की क्षमता रखता है। ऐसे स्कंद माता को हर भक्त आज के दिन उसकी विशेषता के अनुसार केले का भोग लगाते हैं, खीर का प्रसाद उन्हें विशेष तौर पे चढ़ाया जाता है।
0: जी जी,
1: तो ये रही विशेषताओं और शक्तियों की प्रेरणा। साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्कंद माता को उनकी शक्ति और कर्तव्य के आधार पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है।
0: क्या बात।
1: स्कंद माता को विशेष रूप से हिमालय की पुत्री पार्वती के नाम से जाना जाता है। महेश्वरी, गौरी, पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उसे पार्वती कहा। महादेव की पत्नी होने के कारण उसे गौरी कहा। इसी प्रकार से कमल पुष्प पर आसन लगाते हुए पद्मासन देवी भी कहा जाता है। विद्या की वाहिनी के रूप में सारे संसार को ज्ञान प्रवाह करने वाली विद्या वाहिनी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे स्कंद माता ममता की मूर्ति, शक्ति की प्रतिमा स्वरूप चैतन्य देवी को शत शत प्रणाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी दीदी, आपने आज हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासियों और खासकर जो साधक जो भक्ति भावना में ओतप्रेत रहते हैं, तलीन रहते हैं और अपना गांव और अंचल को संगठित रूप में मजबूत करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, उन सभीयों के लिए आज आप संजीवनी बूटी जैसे प्रभावार्थ उसका यथार्थ अर्थ का साथ और इस त्यौहार समय क्या सीख लेना चाहिए, स्कंद माता के जो विशेषताएं, जो स्वरूप है, जो अलंकार है, जो बैठक, जो उनका रूप है, उससे हमारा साधक और हमारा जो भक्तजन क्या फायदा लेंगे, ये चीज आज आपने विस्तार रूप में जानकारियाँ दी। और त्यौहार तो हम मनाते हैं, त्यौहार का साथ साथ जब हम समझ का साथ, आध्यात्मिकता का साथ इस पूजा से या इस आराधना से हमें कुछ सीख लेना चाहिए, जिस तरह आज हम आपने विस्तार रूप में सभी का दिल को छूने वाला चीज बताए, तो आपको हमारा इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस तरह आप हमेशा जोड़ते रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर। जब आज त्यौहार का श्रृंखला चल रहा है तो आप अपना कीमती समय देकर हमारा सभी श्रोता मित्र ग्रामवासियों को उत्साहित उमंग भरा कथा का साथ साथ आध्यात्मिक रहस्य को समझाए, ये हमारे लिए, हमारा गांव के लिए, अंचल के लिए, हमारा सभी श्रोता मित्र के लिए एक अच्छा मैंने पुनीत काम कह सकते हैं। तो आज के लिए हमें और त्रिवेणी दीदी को दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे और कोई दुर्गा माँ की अवतार को लेकर पहुँचेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अच्छा, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, धन्यवाद। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन नवरात्रि स्पेशल।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मन की आंखों से प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूं। आमतौर पर मुझे आप हमराही में सुनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे खास लोग मिल जाते हैं जो वाकई में जिनके लिए हम कह सकते हैं कि मन की आंखों से उन्होंने कुछ किया है। आज ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी कहानी अपने आप में बहुत अलग है। और आप सब जानते ही हैं, हम इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए समाज में एक अलग अपना एक मुकाम हासिल किया है और अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। न सिर्फ मेहनत के बल पर ये सब किया है, बल्कि उनका जीवन कई लोगों को प्रेरित भी कर सकता है, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए मन की आंखों से के इस विशेष कार्यक्रम में हम ऐसे ही लोगों को लेकर के आते हैं। आज मेरे साथ रीना भाटिया जी जुड़ी हैं। रीना भाटिया जी ब्लाइंड हैं और बहुत देर बाद इनकी आंखों की रोशनी गई। कई सारे हादसे हुए इनके साथ, बावजूद इसके इन्होंने दोबारा से खड़े होने का, उठने का, अपना एक अलग स्थान बनाने का निर्णय लिया और आज ये सफलतापूर्वक वो सब कर रही हैं जो ये करना चाहती थी। ये सीए हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। चलिए अब रीना जी से ही समझेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा। रीना भाटिया जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: तो संदीप जी,
0: जी चाहता हूँ आपने रीना जी की आवाज सुनी। आप रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जी रीना जी, तो हमारे सुनने वालों को बताइए जरा आपके बारे में कि आपको आंखों की तकलीफ कैसे हुई और जब इतने दिनों बाद, यानी इतनी लगभग 15-16 साल की एज के बाद ब्लाइंड हो, तो फिर कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं? आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया जरा बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जैसे संदीप जी, मैं सेकेंड ईयर बीकॉम ऑनर्स हिंदू कॉलेज से कर रही थी जब ऑयल मिक्सिंग ऑयल ड्रॉप्सी का एपिडेमिक चला था, जिसमें ऑयल में कुछ लेड कंटेंट्स मिक्सिंग थी। मैं उसका विक्टिम थी, जिसकी वजह से मेरी सिर्फ विजन के अलावा पूरा बॉडी मोमेंट पैम्पर हुआ था, आवाज चलना सॉर्ट ऑफ।
0: रीना जी जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए, शायद बहुत लोगों को समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि अचानक से सेकेंड ईयर बीकॉम में जब आप थे हिंदू कॉलेज में, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया?
1: बेसिकली 1999 में कुछ ऑयल में मिक्सिंग चली थी, धारा और मस्टर्ड ऑयल में, जिसका अच्छा, पूरे इंडिया में इफेक्ट हुआ था। मैं उसमें से एक विक्टिम थी, जिसकी वजह से
0: मिलावटी ऑयल, मतलब बहुत ज्यादा लोग खाने लग गए थे ऐसा।
1: हाँ जी, कुछ धारा ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में कुछ लेड कंटेंट्स की मिक्सिंग हुई थी। लेड कंटेंट्स बेसिकली पेस्टिसाइड्स में पाए जाते हैं, वो मिक्स हुआ था, जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोगों को सफर हुआ था, बहुत सारे लोगों की जान तक गई थी। और उसी का एक विक्टिम मैं थी, जिसकी वजह से जो जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया, डॉक्टर को पता नहीं था कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, और जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया वो पूरा रिएक्ट कर गया बॉडी में, जिसकी वजह से मैं कोमा में चली गई थी। 2.5 महीने तक कोमा में रहने के बाद जब मेरे को वापस होश आया, तब तक सिर्फ ना मेरी विजन, उसके अलावा मेरी आवाज, बॉडी मूवमेंट पूरा इम्पैक्ट हो चुका था। बेसिकली ब्रेन का एक हिस्सा डेड हो चुका था, जो बॉडी कोऑर्डिनेशन को इम्पैक्ट कर। कोमा के बाद एक डेढ़ साल टोटल सब सीखा, बोलना चलना जैसे बच्चा सीखता है, घुटनों के बल चल के, फिर आगे उंगली पकड़ के चलना। मैं अपने सहारे से बैठ नहीं पाती थी, खाना या सब कुछ पूरा डिपेंडेंट था, कुछ से कुछ भी नहीं कर पाना। विजन एक पार्ट था उसका। उसके ये मैं 6 साल घर में रही, फैमिली का बहुत सपोर्ट था, उन्होंने बहुत इनकरेज किया, मेडिकेशन होता रहा, पर डॉक्टर्स ने कहा ज़्यादा सिर्फ इसका प्रॉपर कोई मेडिकेशन नहीं है, न्यूरो सिस्टम में सिर्फ इसका एक्सरसाइज फिजियो वगैरह से इम्पैक्ट होगा। उस ट्रीटमेंट से 6 साल घर में रहने के बाद जब मैंने थोड़ा सा रिज्यूमिनेट किया तो उसके बाद सोचना स्टार्ट किया कि आगे क्या, क्योंकि एकदम से ट्रॉमा कॉलेज लाइफ से जहाँ पढ़ रही हूँ चल रही हूँ अच्छे से, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो उससे बिल्कुल टोटल डिफरेंट लाइफ, जहाँ पे आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हो, टोटल घर पे हो, तो समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी आ रहा था। पर फैमिली का बहुत सपोर्ट था, तो उन लोगों ने सोचना शुरू किया साथ में क्या हो सकता है। उसी दौरान मुझे दूरदर्शन पे एक वीडियो सामने आया जिसमें एक ब्लाइंड लड़की अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी, अपनी ट्रेनिंग्स की, ब्लाइंड लोगों के लिए भी ट्रेनिंग्स और एजुकेशन फैसिलिटीज होती है जिससे वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। वो पता चला कि 2006 में मुझे हॉस्कास नैब इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड स्टडीज एंड डिसेबिलिटी स्टडीज का पता चला और मैं वहाँ पे आई, जहाँ पे मेरे को बेसिक ट्रेनिंग्स, करियर काउंसलिंग्स और हायर एजुकेशन की गाइडेंस दी गई कि आगे क्या कर सकते हैं। और मेरे को वापस से कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्रेल मोबिलिटी, कुकिंग की सब ट्रेनिंग्स में डाला गया। इसके साथ में क्योंकि मेरे को पढ़ाई का शौक था, वापस मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की ओपन लर्निंग से, जिसके साथ में मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे बी कॉम ऑनर्स करना था। कार की कॉलेज में सिटिंग क्लासेस लेने स्टार्ट की, वहाँ पे मैं जाती थी, क्लास लेती थी एंड उसके बाद वापस अपने सेंटर आके अपनी रूटीन ट्रेनिंग्स को पूरा करती थी जिससे मोबिलिटी में भी हेल्प हो। ग्रेजुअली सेकेंड ईयर में जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे लगा कि ये एनफ नहीं है, मुझे सीए करना है वापस से, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम हुआ था ड्यूरिंग माई इंडो कॉलेज, मैं अपने सीए का एंट्रेंस क्लियर किया था, तो मुझे इच्छा थी कि मैं वापस सीए परस्यू करूं। तो मैंने अपनी सीए की स्टडी साथ में शुरू की। एनजीओ की वजह से वॉलेंटियर सपोर्ट सिस्टम अच्छा था, कॉलेज के बच्चे आके पढ़ाते थे और मैं रिकॉर्डिंग सुन के अपने वॉलेंटियर्स के सपोर्ट से और अपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग की हेल्प से मैं अपना बीकॉम और सीए इंटर पास कर पाई। तो कॉलेज के टाइम में प्रॉब्लम्स आई, जैसे मैं सिटिंग क्लासेस लेती थी, हमारी एक टीचर उतनी सेंसिटाइज नहीं थी, उन्होंने कहा क्या ही फ़र्क पड़ता है, ब्लाइंड हो रिकॉर्डिंग हम अलाउ नहीं करते, क्लास में लेक्चर्स रिकॉर्ड करना हम अलाउ नहीं कर सकते। दो काफ़ी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, पर ये एक टीचर थी, उन्होंने कहा नहीं आप एग्ज़ाम भी हम ऐसे नहीं राइटर नहीं दे पाएंगे, और वैसे आपका मेन ओपन से तो आपको कॉलेज के एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम मैटर नहीं करते। थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगता था, सबसे ज़्यादा इशू आता था क्योंकि मेरे को थोड़ी सी मोबिलिटी का इशू भी था, बिकॉज ऑफ वो जो मेरी मोबिलाइजेशन चली गई थी, पैरालिटिक सॉर्ट ऑफ अ थिंग, तो जब मैं रोड पे चलती थी तो काफी लोगों को लगता था कुछ ड्रग्स ले रखे हैं। तो दीर्घ काम पूछने कि आपने कुछ नशा वशा कर रखा है क्या? तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन
0: की बात बता रहे हैं। कहाँ पे ऐसा लगता था?
1: जैसे मैं सड़क पे चलती थी क्योंकि वो
0: अच्छा
1: नॉर्मल नहीं थी, तो कई लोग
0: अच्छा।
1: आके रोक के पूछते थे, मैडम आपने ड्रग्स ले रखे हैं? और इसी चक्कर में कई लोग को लगता था हाँ यंग लड़की है नशे में है, तो सॉर्ट ऑफ इट्स को नेगेटिव। पर कभी कभी तो लगता था कुछ नहीं करना, पर मेरी पेरेंट्स और शालिनी का नाम मैम जो डायरेक्टर थी वो हमेशा कहती थी लोगों से कब तक डरोगे, बाहर तो निकलना है, जिंदगी तो जीनी है। उसके बाद उन्होंने मेरा पहला प्लेसमेंट नैप सेंटर के थ्रू हो एक लॉ फर्म में रियल जॉब, कि कब तक सेंटर में रहोगे, बाहर निकलो, लोगों के बीच निकलोगे तो समझ आएगा जिंदगी कैसी जीनी है, आगे सेल्फ भी तो एम्प्लॉयमेंट होना है। वहाँ पे मैंने लॉ फर्म में एज ए लीगल रिसर्चर की जॉब पार्ट टाइम ज्वाइन की। अब पहले अपनी सीए की पढ़ाई करती थी। सीए एंट्रेंस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें सीए के साथ ट्रेनिंग करनी होती है, फिजिकल ट्रेनिंग, किसी सीए के अंडर आर्टिकलशिप। मोस्ट ऑफ दी सीएस ने मना कर दिया कि एक ब्लाइंड पर्सन आर्टिकलशिप कैसे करेगा, हम नहीं दे सकते। समझा के बहुत चैलेंजेस आए इसमें, बट फाइनली एक सीए फॉर्म में मैंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन की आर्टिकलशिप। बाकी सारे आर्टिकल्स की तरह ट्रेवल करती थी और कोशिश करती थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें नंबर्स हार्ड कॉपी में होते हैं, फिगर्स को वैलिडेट करना होता है। तो मैं किसी वॉलेंटियर के सपोर्ट से या अपने कुलीग के सपोर्ट से उसको करती थी वो काम। पर एक दिन एक पार्टनर को पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो उन्होंने कहा आर्टिकल शिफ्ट नहीं कर सकते आप, ऐसे हम क्लाइंट पे तो नहीं भेजेंगे आपको। तो ये चैलेंजेस तो हमेशा रहते, पर ठीक है। इसी तरह जैसे कुछ लोग मिलते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, वैसे मल्टीपल लोग मिलते हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं। तो इसी तरह मुझे बहुत सारे लोग मिले जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, इनकरेज किया कि नहीं आपको करना है आगे तो खुद ही बढ़ना है। मेरी सी इंटर्नशिप में हमारे एक सर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, रीना आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है, लोगों को मेंटल डिसेबिलिटी होती है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि किसी में कोई कमी हो के भी कोई कुछ कर पा रहा है, आपकी जगह खुद ही बनानी है। तो बस वो चीज पकड़ के आगे बढ़ना शुरू किया। फिर ग्रेजुअली सीए के फॉर्म्स में इंटर्नशिप के बाद मेरे को जॉब का सोचना स्टार्ट किया। इन बिटवीन बहुत सारे नैप के प्रोजेक्ट्स में मैं जुड़ी रही, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैम के साथ हमारे एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जिसमें ऑल ओवर इंडिया में 100 आईटी लैब सेट करनी थी। उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ट्रेवल किया बहुत सारे स्कूलों में अक्रॉस इंडिया, सब में ट्रेनर्स जो लोग ट्रेनिंग देनी थी बच्चों को उनको ट्रेन किया हमने, उनको अवेयरनेस सेशन लिया। इस तरह की एक्टिविटीज में मैं जुड़ी रही और ग्रेजुअली मैंने अप्लाई किया अर्नेस्ट यंग, एक सीए फर्म है, मल्टीनेशनल कंपनी, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में मानी जाती कंसल्टेंसी के लिए, टास्क के लिए। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया 2012 में, टैक्स की सबसे बड़ी कंपनी एमएनसी, जहाँ पे मैं आज भी जॉब करती हूँ। मैंने को अपॉर्चुनिटी मिली टू ज्वाइन एज अ ट्रेनी 2012 दिसंबर में, क्योंकि वो भी शोर नहीं थे कि मैं काम कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और स्क्रीन रीडर्स का अवेयरनेस नहीं था। मैं फर्स्ट ब्लाइंड लड़की थी ईवाई में जॉब के लिए, जिन्होंने फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन जो हायर किया गया था। तो 9 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद काम देखते हुए उन्होंने मुझे परमानेंट रोल पे ले लिया, पर इशू था क्योंकि उनको एक्सेसिबिलिटी का अवेयरनेस कम था, तो इनिशियली स्क्रीन रीडर्स को इंस्टॉल करना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर के सॉफ्टवेयर्स अलाउड नहीं होते बड़ी बड़ी कंपनीज में। ग्रेजुअली अंडरस्टैंड किया, मेरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरी कोलीग्स ने, सीनियर्स ने, उस सपोर्ट से उन्होंने एक जॉब्स का लाइसेंस लिया। और आज की डेट में हमारी इंडिया कंपनी में, ईवा इंडिया में, ऑलमोस्ट 5 to 6 प्लांट पीपल काम कर रहे हैं एंड हायरिंग मोर।
0: अच्छा, तो कुछ चीजें हैं रीना जी जो छूट रही हैं, जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को पता चले। एक तो मुझे बताइए कि बेसिकली आप दिल्ली में ही रहते थे शुरू से ही, बाय बर्थ?
1: मैं शुरू से दिल्ली में नहीं रहती थी बाय बर्थ, मेरा होम टाउन हिमाचल है। मेरे फादर एक प्राइवेट होटल इंडस्ट्री में जॉब करते थे, उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ शिमला से, तो मैं दिल्ली आई जब मैं 10th क्लास में थी। तो पर जब मुझे प्रॉब्लम हुआ उस टाइम में दिल्ली में ही थी। हाँ जी पापा की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई, ओबेरॉय क्लार्क करके एक होटल होता है सिविल लाइंस के पास, उसमें वो मैनेजर प्रोफाइल पे थे, तो हम लोग भी दिल्ली रिलोकेट हो गए थे शिमला से।
0: अच्छा, तो पापा वगैरह सब दिल्ली में रहते थे, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
1: मेरी फैमिली में मुझसे बड़ी एक सिस्टर है, एक ब्रदर है, मेरे पेरेंट्स है।
0: अच्छा, और फैमिली में किसी और को प्रॉब्लम इस तरह की रही?
1: नहीं नहीं।
0: अच्छा, नहीं। कि जो दूरदर्शन पे जो आप वीडियो देख रहे थे वो किस लड़की का था?
1: कोई अर्चना नाम सुना था मैंने उस टाइम, दो मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता, क्योंकि वो भी शायद नए भारतीपुरम के पाइबर्थ प्लान बच्चा था कोई, जिसने अपने एजुकेशन नए भारतीपुरम से की थी, तो उसने अपनी वीडियो में बताया कि किस तरह से ट्रेनिंग्स और एजुकेशन के साथ आप अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं, कैसे जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल लाइवलीहुड जी सकते हैं।
0: तो सीए का जो आपने एग्जाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था आपका?
1: नहीं, सीए एंट्रेंस भी मेरा सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, उसके बाद सीए इंटर में दो ग्रुप्स होते हैं हमारे, तो मेरा पहला ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, सेकंड ग्रुप इंटर का सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, फिर सीए फाइनल के दो ग्रुप्स होते हैं अगेन, जिसमें एक ग्रुप तो मेरा निकल गया था सेकंड अटेम्प्ट में, पर उसके बाद जॉब लग गई ईवाई में, तो काफ़ी सालों तक मैं दे नहीं पाई थी। एक दो अटेम्प्ट बीच में ट्राई किया, फिर क्योंकि जॉब के साथ वॉलंटियर सपोर्ट कम था, टाइम कम था, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगा।
0: ये सारे एग्जाम आपने सीए एंट्रेंस से लेकर के बाद में तक जितने भी थे वो सब स्क्राइब के थ्रू दिए या आपने इंडिपेंडेंटली दिए?
1: नहीं, स्क्राइब के थ्रू।

0: राधा, सीएस एग्जाम देते हुए भी इतना इजी नहीं था। जब मैं इंटर का एग्जाम दे रही थी, बल्कि हमारे साथ मेरे नोन में एक और लड़का था मिलिंद करके, जो वो भी सीए एग्जाम दे रहा था। और उस टाइम सीए के लोग भी इतने सेंसिटाइज नहीं है, मुझे लगता है आज की डेट में मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उस लड़की को उन्होंने ये बोल दिया था उसके स्काइप के घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो उसको स्काइप चेंज करना था। उन्होंने कहा आप स्काइप चेंज करोगे आप अलाउड नहीं एग्जाम देना, आपका स्काइप इज एज गुड कि आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप राइटर चेंज नहीं कर सकते। एंड उस पर्सन ने सीए ड्रॉप करके लॉक किया है। और सेम इशू मेरे साथ आया था कि मेरे को कैब उन्होंने चेंज करने से मना कर दिया था। रादर, मैंने जब सीए अथॉरिटी से मिली कि ऐसा ऐसा स्कूल में ये इशू हुआ, उन्होंने कहा आप लोग तो राइटर के थ्रू पास होने के तरीके होते हैं। तो मेरी एक वॉलेंटियर ने केस किया था ये इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, जिस केस को मैं जीती थी। और उसके अकॉर्डिंग रूल बने थे कि स्काइप को आप सीए इंस्टीट्यूट राइटर फंड भी देगा और एक डिपॉजिटरी बनाएगा, जिसमें जो बच्चा है स्टूडेंट है सीए का, ब्लाइंड बच्चे को चॉइस मिलेगी, वो के थ्रू भी स्काइप अरेंज कर सकता है, पर्सनल कर सकता है और स्काइप चेंज भी कर सकता है एज पर गाइडलाइंस।
1: ओके तो रीना जी, जब आपके साथ 1999 में जो हादसा हुआ, उससे पहले भी आपने सीए बनने का ही सोचा था या तब तक कुछ सोचा ही नहीं था?
0: नहीं, ऐसा नहीं है। तब मैंने सीए स्टार्ट करने की सोची थी, एक बार एंट्रेंस
1: मतलब
0: दिया था, क्लियर नहीं हुआ था,
1: जब आप
0: पर
1: नॉर्मल लाइफ जी रहे थे,
0: नॉर्मल लाइफ में।
1: तब भी
0: हाँ
1: आप सीए
0: जी
1: ही बनना चाहते
0: हाँ
1: थे?
0: जी हाँ जी तभी मैं सीए एस्पिरेंट कर रहे थे।
1: ओके तो सीए की जो स्टडीज हैं उसमें मतलब आपको पता है, उनको पढ़ने में, उसकी तैयारी करने में, मतलब ब्लाइंड पर्सन होते हुए आपको क्या-क्या चैलेंजेस रहे उसमें?
0: बेसिकली क्या होता है, स्टडीज में चैलेंज तो आता है बिकॉज हम नंबर्स में डील करते हैं। संदीप जी, बेसिकली हम सीए में बहुत सारे सब्जेक्ट में नंबर्स हैं, अकाउंट्स या मैथमेटिक्स रिलेटेड, तो उसको ईटेक से पढ़ना तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है अपने आप में, क्योंकि जब हम ईटेक से पढ़ते हैं उसको जॉस के साथ, तो वो पहले पूरे कॉलम को पढ़ेगा बजाय हॉरिजॉन्टल पढ़ने के रोज वाइज, और हमारी रिक्वायरमेंट होती है रोज वाइज पढ़ने की, तो ये चैलेंज आता है। और वॉलेंटियर्स के लिए भी नंबर वाइज समझाना, क्योंकि कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग है क्या कैसे जाना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, पर आपकी को ये चैलेंज से एक्सेप्ट करते हुए उसको लेके चलना होता है। कुछ वॉलेंटियर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मेरे को हाथ पे एज अ ड्राइंग बना के अपनी उंगली से कि इस तरह से यही चल रहा है, ऐसे प्रेजेंटेशन होनी है आपको अपने राइटर को इस तरह समझाना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में बनाए, वो मेरे लिए थोड़ा इजी हुआ।
1: अच्छा तो रीना जी, बताइए ये सीए में, मतलब जो लोग सीए का एग्जाम देना चाहते हैं या जो सीए बनना चाहते हैं, तो कौन कौन से पेपर्स इसमें होते हैं, कौन कौन से बुक्स इसको इनमें पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए।
0: जरूर, बेसिकली सीए में आपकी अगर एंट्रेंस लेवल पे बात करते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और स्टैट्स होता है, बेसिक लॉ होता है, बेसिक बहुत बेसिक। और अब करंटली उन्होंने फिर से सिलेबस चेंज किया है, जिसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बेसिक लेवल पे क्या लिया है। जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो ये दो एग्जाम मेंटेड होते, और सबसे बड़ी बात 50% स्कोर करना मस्ट होता है। वैसे उसके बाद आपको इंटर लेवल के एग्जाम होते हैं, जिसमें मेरे टाइम में 8 पेपर्स थे, जिसमें अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, बिजनेस स्टडीज, ये सब एग्जाम होते थे। एंट्रेंस में एक इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम होता है इसमें एंट्रेंस लेवल पे, और ये सब एग्जाम के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट रहता है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, ये आपको एंट्रेंस लेवल पे होता है। इसमें भी आपको पर पेपर आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ता है, पर ओवरऑल आपको 50% स्कोर करना पड़ता है। अगर आपकी किसी पेपर में 40 से कम आ गए और या एग्रीगेट में 50 से कम आ गए, तो आपको पूरा ग्रुप वापस रिपीट करना पड़ता है, सारे के सारे चारों एग्जाम एक्सेप्ट। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 60 से ऊपर आए, वो वाला एग्जाम आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ता। इसी तरह फिर
1: मतलब
0: फाइन हाँ जी
1: बताइए बताइए बताइए।
0: इसी तरह फाइनल में फिर दो ग्रुप्स होते हैं। अब जो नए सिलेबस आए उसमें इन्होंने काफी सब्जेक्ट्स कम कर दिए हैं। जैसे आप एक ओपन बुक एग्जाम हो गया जिसमें एक सब्जेक्ट रादर दो सब्जेक्ट्स हटा दिए इन्होंने और उसकी जगह एक ओपन बुक एग्जाम कर दिया। और अदरवाइज उसमें भी आपका कंप्यूटर टेस्टिंग के एग्जाम होता है, अकाउंट्स है, ये ऑडिट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये मस्ट एग्जाम है।
1: तो रीना जी बताइए कि ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स आप बता रहे हैं, लगभग ऐसा लग रहा है सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं ना, तो आपने प्रीलिम्स में कौन सा स्क्राइब लिया था?
0: हमारी कंडीशन जो प्रिस्क्राइब है, आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट ले सकते हो, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो इंटर लेवल हो चाहे फाइनल लेवल हो, सी ए सी एस सी डब्ल्यू इनमें से किसी में एनरोल नहीं होना चाहिए।
1: तो ऐसे में है ना, ऐसे में ये पेपर सॉल्व करवाते समय आपको मुश्किल नहीं आई? मतलब उसको तो कुछ भी समझ नहीं थी सीए की, या इन जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में भी जरा भी अंदाजा नहीं था, तो पूरा पेपर आप ही को, खैर वैसे भी सॉल्व करवाना होता है, ये भी आप ही को सॉल्व करवाना था। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि स्क्राइब के साथ बैलेंस बनाने में कैसे मतलब आप सफल हुए?
0: बेसिकली वही, इस चीज के लिए मैं क्रेडिट देती हूँ अपने वॉलेंटियर्स को, जिन्होंने जैसे मैं बता रही थी कि मेरे को हाथ मेरे हाथ पकड़ के समझाते थे कि आपको अपने राइटर को ये बताना है कि इस फॉर्मेट में टेबल बनेगा, इतने कॉलम्स इस तरह से लिखना है, उसको कौन सी चीज कौन सी साइड में आएगी, लेफ्ट में राइट में, इस तरह से बताए। वो आपको अपने माइंड में पिक्चर इमेजेस बनानी पड़ेगी जैसे आपके वॉलेंटियर्स बताती जाएं, ताकि आप वही चीज रिट्रेट कर सको अपने स्काइप को।
1: आपको सीए बनाने में मतलब आपके वॉलेंटियर्स का भी बहुत बड़ा रोल
0: यस,
1: है।
0: उन्हीं का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने कोई टेक्निकल कोचिंग नहीं ली, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि सीए की कोचिंग्स दो, एक तो दूर दूर होती है, ट्रेवल करना मुश्किल होता है, और ग्रुप में एक ग्रुप में क्लासरूम में कम से कम 80 to 100 स्टूडेंट्स होते हैं, और आपका टीचर आपको ये व्हाइट बोर्ड पे या प्रोजेक्टर पे बता रहा होता है, और एक बच्चे को बताने के लिए वो स्पेसिफिकली सब कुछ वर्बल नहीं बोलेगा, तो इसलिए मेरे को मैंने पूरी स्टडीज अपने वॉलेंटियर्स के थ्रू ही की है।
1: आपके वॉलेंटियर्स कौन रहे हैं?
0: मेरे वॉलेंटियर्स कॉलेज स्टूडेंट्स से आईआईटी के स्टूडेंट्स भी रहे हैं, और मेरे एग्जाम इंटर लेवल पे तो सारे एग्जाम 12th के बच्चों ने दिए।
1: अच्छा, अब ये तो रही प्रीलिम्स की बात, फिर मेंस में कौन था आपका स्क्राइब या किस लेवल का
0: सेम
1: था?
0: सेम
1: सेम।
0: बीकॉम ऑनर्स अंडर ग्रेजुएट
1: ओके
0: रिक्वायरमेंट ही है, अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए।
1: ओके, ये रिक्वायरमेंट है तो ये अच्छा। तब तक खैर आपने जब दिए तब तो वो तो 2013 वाली गाइडलाइंस भी नहीं आई थी।
0: नहीं, जब आप ही के सीए का अपना पे, क्योंकि सीए के अपनी गाइडलाइंस पे ही चलता है, सीए के ऐसी कोई डिफरेंट गाइडलाइंस कोई और फॉलो नहीं करती, सीए के अपने नॉर्म से। मेरे केस के बाद सिर्फ ये चेंज हुआ था कि हाँ, राइटर को राइटर फंड मिलेगा, और राइटर आप चेंज कर सकते हो। आज अगर मैं एक राइटर ले जा रही हूँ, नेक्स्ट पेपर में मैं कोई और को ले जा सकती हूँ, पहले जब मैंने अपने इंटर लेवल के एग्जाम दिए थे तो ये अलाउड नहीं था।
1: और मेंस में सबसे ज्यादा मुश्किल कौन से सब्जेक्ट में आई आपको?
0: अकाउंट्स अकाउंट्स बेसिकली एक्चुअली एक तो पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, नंबर आपको एडिशंस बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम लगता है बहुत शॉर्ट हो गया है, दो हमें 1.5 आवर एक्स्ट्रा मिलता है और उसके अलावा भी लगता है टाइम बहुत शॉर्ट है, और उसमें राइटर की स्पीड, राइटर की अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप बता रही हो पर राइटर क्या समझ पा रहे हैं आपको नहीं मालूम, तो थ्योरेटिकल एग्जाम में तो जो आपने बोल दिया वो उसने लिख दिया एज इट इज, पर यहाँ पे फॉर्मेट्स का है, आपकी पर्टिकुलर फॉर्मेट्स फॉलो होने चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, अगर आपने वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं दिया जो प्रिस्क्राइब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
1: अच्छा, तो अकाउंट्स के लिए स्पेशल आपने क्या किया उसकी प्रिपरेशन करने के लिए?
0: बस वही अंडरस्टैंडिंग इमेजेस का, मेंटल माइंड में इमेजेस बना बना के ओके इस कॉन्सेप्ट का ये प्रेजेंटेशन है, इसमें इस तरह का लेआउट बनेगा, वही चीजें जो वॉलेंटियर से पूछती थी मैं कि इसमें कितने कॉलम्स है, क्या हेडिंग्स है, किस तरह से लिखा गया है, कौन सा आउटर कॉलम है, कौन सा इनर कॉलम है, वो वैसे ही आप जितने क्वेश्चन करोगे आपको वॉलेंटियर्स उतने एड्रेस कर पाएगा, तो उस तरह से समझ के हो गया।
1: कुल मिलाकर के बहुत मेहनत तब तो खैर करनी थी, अभी भी मेहनत कोई कम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है।
0: जरूरत, ये तो हर फील्ड के लिए मुझे लगता है सबके लिए जरूरी
1: बीकॉम
0: है।
1: बैकग्राउंड होना कितना जरूरी है सीए के लिए? कॉमर्स बैकग्राउंड होना कितना जरूरी
0: नहीं,
1: है?
0: ऐसा कुछ बहुत जरूरी नहीं है, अगर आप अंडरस्टैंड कर पाओ तो आप कैच कर लोगे, जिसको कॉमर्स बैकग्राउंड होगा उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जब आप 11th 12th में पढ़ते हैं या बीकॉम में पढ़ते हैं वो कंसेप्ट हेल्प करते हैं आपको, पर ऐसा नहीं है कि अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
1: तो भाई रीना जी सीए बन गए और सारे एग्जाम क्लियर भी हो गए और ईवाई में जॉब भी मिल गई।
0: हाँ
1: जॉब
0: जी,
1: मिलने के बाद क्या-क्या मुश्किलें रही आपको?
0: देखो जॉब मिलने के बाद शुरू में तो ऑफिस में ये एक्सेप्टेंस कराना कि हाँ ठीक है आपको विजन प्रॉब्लम है तो आप भी और लोगों की तरह कर सकते हैं, वो एक चैलेंज रहता है, उसके बाद आज की डेट में जो चैलेंज आते हैं कि काफ़ी सारी बड़ी एमएनसी है, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको विजन प्रॉब्लम है, दो उसकी वजह से आती है चीज़ें आपको वो उस हिसाब से नहीं आती जो एक्सेसिबल हो, चीज़ें नॉन एक्सेसिबल होती है, वो आपकी टीम पे डिपेंड करता है, मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे कोलीग्स वगैरह बहुत सपोर्ट करते हैं, तो जहाँ पे उनको लगता है मेरा जॉब सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो मेरे को समझाते हैं कि ऐसा है, दो आज की डेट में 12 साल हो गए मुझे ईवाई के साथ काम करते हुए, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जॉब पे काम कर रही हूँ, तो वो फर्क पड़ता है आपको, हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है विजाविस अपने अदर कोलिग्स के कंपेरेटिवली, क्योंकि आपको मल्टीनेशनल कंपनी में ग्रो करना है, अपने को प्रूव करना है, आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा।
1: अच्छा रेना जी, अभी आपका काम क्या रहता है ईवाई में?
0: मेरा काम है बेसिकली टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स रिलेटेड कंसल्टेंसी में मैं काम करती हूँ, जिसमें हमारा है पीपल एडवाइजरी, इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज इंडिया आते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, उनकी पूरी टैक्स का कंप्लायंसेस इंडिया लॉस के अकॉर्डिंग देखना, स्टार्टिंग फ्रॉम जब वो जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं उनको इंडिया टैक्स की ओरिएंटेशन देना, कॉल होती है इंडिया टैक्स ब्रीफिंग कॉल, उसके अलावा क्या टैक्स, कितना टैक्स डिडक्ट होना है, प्रोविडेंट फंड कंप्लायंसेस क्या है, और उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में सपोर्ट करना, ये सारा मेरा काम का पार्ट है, फिर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस इशू किया आसानी को, तो उसके लिए उस रिस्पॉन्स बनाना और उसको फाइल करना इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, वो पार्ट ऑफ माई वर्क।
1: ओके, तो रीना जी, चूंकि बात अब आईटी की चल रही है, यानी इनकम टैक्स की चल रही है, और आप सीए हैं और इतनी अच्छी जॉब पर हैं, इतनी अच्छी कंपनी में हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे श्रोताओं को मिल जाए। ये न्यू टैक्स रिजीम क्या है, ये आसान भाषा में समझाइए जरा।
0: बेसिकली अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, दो पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसे हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि हम LIC में कंट्रीब्यूट कर दिया, हम प्रोविडेंट फंड में हमारी कंपनी हमारे कंट्रीब्यूशन लेती है, उस सबका हमें बेनिफिट मिलता है टैक्स के अगेंस्ट। या आपने आज कोई घर खरीदा उस पर इंटरेस्ट पे करें, हाउसिंग लोन पे करें, तो उस सबका बेनिफिट मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो सब बेनिफिट्स घटा के जो आपकी इनकम आती है उस पर आपका टैक्स लगता था। गवर्नमेंट ने कहा उसके अब उस सबको ऑथेंटिकेट करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल एक चैलेंज बन गया, क्योंकि कुछ लोग फेक क्लेम भी ले लेते हैं। तो टैक्स अथॉरिटीज ने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, आप पुराने रिजीम को फॉलो करो जिसमें ATU मिलता है, जैसे हमें डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है 1,25,000 या 75,000 का, हम LIC प्रोविडेंट फंड वगैरह में कंट्रीब्यूट करते हैं, म्यूचुअल फंड में 1,50,000 का कॉमन कंट्रीब्यूशन मिलता है जो हमारी टैक्सेबल इनकम से कम होता है, उसके बाद हमें टैक्स लगता है। हमें HRA कंपनी हमें HRA अलाउंस देती है, अगर हम रेंट पे करें तो हम HRA एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेते हैं, हाउसिंग लोन पे हमें बेनिफिट मिलता है ओल्ड रिजीम में। अब न्यू रिजीम में उन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिया कि जितने आपको इनकम मिल रही है बिना किसी बेनिफिट लिए आप पूरे का पूरे टैक्स को ऑफर कर दो, पर आपके टैक्स रेट हो जाएंगे कम। जैसे ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 लाख की इनकम तक आपका 10% है, 10 लाख 5 से 10 लाख की इनकम तक 20% है, 10 लाख के 30% का टैक्स लगता है। अब न्यू रिजीम में उन्होंने क्या किया कि अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, उसमें भी अगर सारी इनकम मिला के आपकी 12 लाख से कम बैठ रही है तो जो आपका टैक्स बन रहा है 12 लाख तक वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको 0 टैक्स देना है। तो ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं न्यू
1: न्यू
0: रिजीम में।
1: टैक्स रिजीम में ये तो ठीक है, लगभग सबको मालूम है 12 लाख तक है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, इस तरह के स्लैब
0: यस,
1: हैं। लेकिन इसमें भी हम क्या क्या डिडक्शन करवा सकते हैं, ये बहुत से लोगों
0: इसमें
1: को नहीं समझ में आती है।
0: बेसिकली इसमें ना बहुत लिमिटेड बेनिफिट्स अवेलेबल है। अगर आपको लिव इन कैशमेंट मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रही है जो आपके बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, या आप जॉब
1: बिल्कुल,
0: छोड़ते हैं वो सिर्फ आपको
1: वन
0: डिडक्शन
1: टाइम।
0: का वन टाइम वो मिलता है, अदरवाइज आपको HRA का नहीं मिलेगा। अगर आप मेडिकल प्रीमियम दे रहे हैं ये सब कुछ भी आपको अलाउड नहीं है, ATU का डिसेबिलिटी बेनिफिट भी नहीं अलाउड है, तो सिर्फ वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट की सैलरी में से कम होता है। और इसमें ये बेनिफिट है कि आपको एक सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो सबको मिलता है, वो न्यू रिजीम में 75,000 भाई, ओल्ड रिजीम में 50,000 का है, तो 25,000 का वहां बेनिफिट आ जाता
1: और इंश्योरेंस में
0: है। इंश्योरेंस वगैरह को कोई डिडक्शन नहीं मिलता न्यू रिजीम।
1: ओके, ठीक है। तो रीना जी, कभी EY को छोड़ के कहीं और स्विच करने का नहीं सोचा आपने?
0: अभी तो नहीं, क्योंकि मेरे को सोशल वर्क का बहुत शौक है। सबसे अच्छी बात थी हमारी कंपनी एक NGO एक्टिविटीज रन करती है जिसमें एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी चॉइस से पार्टिसिपेट कर सके, तो मैं उसका भी पार्ट इन्वॉल्व हूँ। उसमें रिपल्स इंडिया और रिपल इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम वीकेंड्स पे अपना टाइम निकाल के स्कूल जाते हैं, बच्चों को गाइड करने, अंडर प्रिविलेज को करियर काउंसलिंग देने या प्लांटेशन ड्राइव, तो मैं इस तरह की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हूँ। प्लस मुझे लगता है एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई है और जो मेरी नीड्स है मिल कंप्लीट हो रही है, तो अभी तो नहीं सोचा। लॉन्ग रन में जरूर इच्छा है कि मैं ईवाई छोड़ के वापस CSR एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ फुली, जिसमें मैं अपना पूरा कंट्रीब्यूशन सोशल वर्क की तरफ दे सकूं।
1: तो यानी जॉब के साथ साथ सोशल वर्क भी हो रहा है ईवाई के साथ, ये एक आपको अच्छी लगती है ये बात।
0: हाँ
1: कभी
0: जी,
1: अपना खुद का फर्म खोलने का नहीं सोचा आपने?
0: नहीं मुझे लगता है थोड़ा सा इशू रहता है जब आप, एक तो नॉर्मली भी CA फॉर्म जब आप खोलते हो, लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर जीतना बहुत आसान नहीं होता। आजकल इतनी CA फॉर्म्स के लिए कंपटीशन बहुत हाई है, खास तौर से जब आपको विजन प्रॉब्लम होता है तो लोग फाइनेंशियल नंबर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते आप पे कि आप कर पाओगे ठीक से उनका काम, तो वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना बहुत टाइम लेता है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको कंटिन्यूटी नहीं रहती कि आपके पास फाइनेंशियल फ्लो बना रहे, और मुझे लगता है फाइनेंशियल फ्लो की डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आपको थोड़ी सी लिमिटेशंस हो।
1: आज आपकी ग्रोथ को देख के फैमिली खुश है?
0: बहुत ज्यादा उन्हीं के सपोर्ट और उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। मेरे पेरेंट्स, शायद मैं कभी ये करेज नहीं कर पाती घर से निकलने का अगर मेरे पेरेंट्स मोटिवेट नहीं करते, मुझे सपोर्ट नहीं करते।
1: तो रिया जी, जो आपको प्रॉब्लम हुई थी उस समय 1999 में, अभी आईज इफेक्टेड हैं आपकी, और अभी और भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं
0: हाँ
1: आपको, यानी
0: जी,
1: बाकी
0: देखिए
1: सब ठीक है?
0: मेरे स्पीच में फिर भी थोड़ा सा इशू है नॉर्मल स्पीच से विज़विज़, और थोड़ा सा मुझे मोमेंट का इशू है नॉर्मल, थोड़ा सा मोमेंट वॉक में हिला रहे, जैसे स्मूथ नॉर्मल इंसान चलता है, चाहे विजन इम्पेयरमेंट हो तभी मुझे थोड़ा सा वॉक का इशू रहता है, बैलेंस का इशू।
1: यानी कुल मिला के पूरी तरह से मतलब वो ठीक नहीं हुए आप उसमें।
0: ये कह सकते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट 80% बेटर हूँ, क्योंकि उस लेवल पे मैं जहाँ बिल्कुल खुद के सहारे से बैठ नहीं सकती थी, आज की डेट में मैं खुद के सहारे से ऑफिस आती हूँ जाती हूँ, अपने आप अपना काम कर रही हूँ, इंडिपेंडेंटली रह रही हूँ, अपनी कुकिंग वगैरह सब खुद करती हूँ, तो उस लेवल से आई फील काफी बेटर हूँ।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कुल मिला के अब आप इन फ्यूचर मतलब टोटली सोशल वर्क ही करना चाह रहे हैं?
0: ये हाँ, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ मिला है सोसाइटी से, मेरे वॉलेंटियर से, तो मेरा इंक्लिनेशन है शुरू से कि मैं वापस कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और सोसाइटी को वापस कुछ दे पाऊँ।
1: बहुत अच्छी बात। अच्छा, लोग आपसे गाइडेंस लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं?
0: बिल्कुल,
1: कैसे?
0: मेरे को वैसे भी काफी लोग कॉल करते हैं, तो आप, मैं अपना नंबर बता सकती हूँ, वरना मेरी ईमेल आईडी reenabhatia2@gmail.com, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं।
1: जिसमें आप कंफर्टेबल हैं तो आपकी ईमेल आईडी हम बता देते हैं, reenabhatia28।
0: reenabhatia2@gmail.com।
1: अच्छा, रीना भाटिया 2। ओके,
0: हाँ जी
1: REENABHATIA है ना?
0: हाँ जी
1: ओके, REENABHATIA2@gmail.com।
0: बाकी आप मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं,
1: बताइए।
0: 9971931354 31354।
1: 9971931354। तो श्रोता हूँ, अगर आप रीना जी से CA के बारे में या इनकम टैक्स के बारे में कोई भी आप अगर गाइडेंस लेना चाहें तो कॉल करने का कोई समय?
0: ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कभी ये होता है कि मैं ऑफिस में हूँ तो मैं कॉल उठा के बोल देती हूँ कि इस समय बात नहीं हो पाएगी, मैं आप वापस उनको कांटेक्ट कर लेती हूँ।
1: ओके, तो श्रोताओं आप ईमेल पे भी बने जा तक तो आप ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए रीना जी को, reenabhatia2@gmail.com, और अगर आप कॉल भी करेंगे तो अगर रीना जी फ्री हुई तो आपको जवाब देंगी, अदरवाइज नहीं देंगी। नंबर एक बार

0: रिपीट कर देते हैं रीना जी।
1: 7971931354।
0: ओके, तो अब रीना जी जॉब के अलावा अभी इन दिनों में क्या क्या करती हैं आप, क्या क्या हॉबीज हैं आपकी, क्या क्या पसंद है आपको, कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हैं आप?
1: मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं बीच में ट्रैवल करती हूँ लोकल नियर बाय प्लेसेस में फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा मैं एक हमारे क्रिकेट फॉर ब्लाइंड वीमेन द मर्तनम ट्रस्ट के साथ मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। ब्लाइंड गर्ल्स को क्रिकेट ऑन द ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मोटिवेशन सपोर्ट, खुद खेलती नहीं हूँ पर उनके साथ इन्वॉल्व रहती हूँ। इसके अलावा लैब की कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे अभी भुवनेश्वर में उड़ीसा में फेबररी में गवर्नमेंट का एक जॉब फेयर आया था, उसके लिए मैं डिस्कशन के लिए गई थी। तो इस तरह के कुछ कुछ सोशल वर्क में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। पर्सनल में मुझे ट्रैवल और कुकिंग का शौक है।
0: सब जगह ट्रैवलिंग अकेले करते हैं रीना जी?
1: मोस्टली बाकी कुछ जगह फ्रेंड्स के साथ, जैसे मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह का शौक है तो फ्रेंड्स के साथ जाके रिवर राफ्टिंग, उसमें दो वो लोग अलाउ नहीं करते पर ठीक है फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उनके साथ पैराग्लाइडिंग वगैरह इन सब एक्टिविटीज में मुझे शौक है, तो इसमें इन्वॉल्व रहती हूँ।
0: रीना जी, आपकी तरह जो लोग किसी परेशानी में हैं, जिनको लगता है कि बस अब लाइफ खत्म हो गई है, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगी आप?
1: मैं कहूंगी लाइफ कभी खत्म नहीं होती, हर अंधेरी के बाद एक रोशनी चलती है, हमें सिर्फ हिम्मत हौसला रह के आगे बढ़ना और अपनी हिम्मत बना के उन चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। रास्ते अपने आप खुल जाएंगे और कारवां अपने आप बन जाएगा।
0: क्या बात है, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, कारवा अपने आप बन जाएगा। तो रीना जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, और आपके लाइफ एक्सपीरियंस से इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स को बताने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, आप जो भी करना चाहती हैं वो सब कर पाएं, सक्सेस मिले और ज़्यादा आपको लाइफ में, हम यही आपके लिए विशेष देते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब श्रोताओं।
0: तो श्रोताओं, ये सुना आपने प्रोग्राम मन की आंखों से रेडियो मधुबन पर। आप सब रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही हम नई नई शख्सियतों से आप सबको रूबरू करवाते रहेंगे, ताकि अगर आप कहीं हिम्मत हार रहे हैं, आप कहीं डगमगा रहे हैं, आप अगर कहीं चलना शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी रास्ता मिल जाए।
1: जी

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन के सभी सुनने वालों को नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: आज माँ के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है।
0: नवरात्रि के रंग
1: रेडियो मधुबन के संग
0: सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। आज है 16 अक्टूबर 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाबा कहते बच्चे, सतयुग त्रेता है, ज्ञान की प्रारब्ध का समय, फिर द्वापर से भक्ति आरंभ होती है, भगवान को पुकारना आरंभ करते हैं, कलयुग अंत तक और कलयुग अंत से सतयुग आदि के बीच का जो संगम का समय है, उस समय वैराग्य आता है। अर्थात पुराने कलयुगी तमो प्रधान दुनिया से वैराग्य, और फिर उस वैराग्य के आधार से ही पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान की धारणा करते हैं और सतयुगी नई दुनिया के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुमने इस बात का रहस्य समझा है कि जो शास्त्र में कहा गया है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, वो कब होता है और फिर कैसे नई दुनिया में हर आत्मा जिसने ज्ञान को धारण किया है वो चलते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? उत्तर है, यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश न हो, और बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया है, अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहां थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है। आत्मा कहती है ये मेरे कर्मेंद्रिय का बाजा थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूं, शरीर से अलग हो जाता हूं, परंतु कर्म तो करना ही है। बाबा के कर्म से तो छूट नहीं सकते हैं, शांति में कहां तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है मैं शांति देश की रहवासी हूं, सिर्फ यहां शरीर में आने से टॉकी बना हूं, अहम आत्मा मम शरीर है, आत्मा ही पतित और पावन बनती है, आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहां 5 तत्व तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको उस सोने को साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। अब जब आग में डालते हैं तो उसको योग अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है, नाम ही एक का है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ,
ब्रह्मा प्लान अनुसार सबको पति तमो प्रधान बनना ही है। ये कायदा है कि जैसे सृष्टि का चक्र घूमता है, कलयुग आता है तो सबको तमो अवस्था में आना ही है। ये झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है, इनका बीज ऊपर में है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज परमात्मा ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वह अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मेरा जो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वह तमो प्रधान पति जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं, फिर धीरे धीरे कलयुग आते आसुरी वृत्तियां बढ़ जाती है। तो असुर कोई दो सिंह वाले नहीं होते हैं, लेकिन आसुरी वृत्ति वालों को ही असुर कहा गया है। तो बाबा कहते कलयुग में है असुर, इसीलिए कभी दैनिक भाषा में भी कलयुग के अंदर कोई अगर बहुत क्रोधी हो जाता है और कोई ऐसा कर्म उससे हो जाता है तो यही कहते एकदम असुर जैसा हो गया था। तो असुर व्यक्ति नहीं, वो आसुरी वृत्ति को कहा गया असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी पांच विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। तुम किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा जानती है। कहते हैं कि हम पतित बन गए हैं तो जरूर कब तो पावन थे। जो कहते हैं हम पतित बने हैं, बुलाते भी है हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब कोई बुलाते नहीं है। बाबा का ये सबसे बड़ा उलाना कि सतयुग में जब पावन है तो कोई बुलाते नहीं। उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहां तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं। हे पतित पावन सीताराम, जहां भी जाओ गाते रहते हैं। बाप समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते हैं। परंतु उनका राज्य कब से हुआ किसको भी पता नहीं है। ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है। कोई क्या करते, कोई क्या करते। सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं। वास्तव में योग किसको कहा जाता है यह कोई को भी पता नहीं है। यह भी किसका दोष नहीं है। बाबा कहते हैं यह भी किसका दोष नहीं है। ये ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं ना आऊं इन्हों को अपना पाठ बजाना है। ज्ञान और भक्ति। ज्ञान के प्रारब्ध है सतयुग त्रेता। भक्ति फिर द्वापर से आरंभ होती है। कलयुग फिर है वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। देखो बेहद का बाप कैसा है। तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता है। स्वर्ग है नई दुनिया, नरक है पुरानी दुनिया। नई सो पुरानी सो फिर नई बनती है।
नई दुनिया की आयु कितनी है ये किसको भी पता नहीं है। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई बनाते हैं, पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यही दहली जमुना नदी पर होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे, ये फिर भी करना होगा। पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अव्यभिचारी यानी एक की भक्ति। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की, उस समय कोई और धर्म होते नहीं। द्वापर के आरंभ में जब शिव की भक्ति आरंभ करते हैं, उस समय कोई और धर्म होते नहीं। उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता है। जब सतयुग त्रेता युग था तभी भी कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, जो बहुत सुख देने वाला। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से तुम मत सुनो। यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो। बाप से ही वर्षा मिलेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है। मेरा यह स्थायी शरीर नहीं है, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। शिव बाबा का ये कोई स्थायी शरीर नहीं, बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। शिव जयंती से फिर जट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या सुप्रीम रूह दे रहे हैं, पानी की बात नहीं है। पानी को थोड़े ज्ञान कहेंगे, पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे। पानी से थोड़ी कोई पावन बनेंगे। नदियां तो सारी दुनिया में है ही, यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ गौ मुख पर जाते हैं, आबू में भी गौ मुख है। 700 सीढ़ी उतर करके नीचे जाना होता है, तो बाबा कहते यहाँ गौ मुख पर जाते हैं। वास्तव में गौ मुख तुम चैतन्य में हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। ये सब कुछ बाप बैठ समझाते हैं। जो सबका सदगति दाता है, अब सभी दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे तो रावण को क्यों जलाते हैं, अब तुम जानते हो। बेहद का दशहरा होने वाला है, सारी

दुनिया में बेहद का दशहरा होने वाला है। ये सारी दुनिया टापू है, बेट है। रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। जो शास्त्रों में है, बंदर सेना थी, बंदरों ने पुल बनाई। ये सब है दंत कथाएं। भक्ति आदि चलती है, पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक की भक्ति, फिर धीरे धीरे व्यभिचारी भक्ति। दशहरा, राखी बंधन सब अभी के ही त्योहार है, संगम युग के ये त्योहार है। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, आज है कंसपुरी। हम बेहद के स्तर पर बाबा बात करते हैं कि सारी दुनिया या रावण राज्य कहो या कंसपुरी कहो, पर कल होगी कृष्णपुरी। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। पांडव और कौरव की लड़ाई है नहीं, श्री कृष्ण का जन्म है सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस, स्कूल में पढ़ने जाता है। जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठता है। महिमा सारी शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाकी ये रास लीला आदि यह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी श्री कृष्ण किसको ज्ञान सुनाए, सतयुग में बाबा कहे वो किसको ज्ञान सुनाए, ये कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं किसको मना नहीं करनी है कि भक्ति नहीं करो, आप ही छूट जाती है। भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर ही हंगामा होता है। दुनिया में जितने भी हंगामे होते हैं या ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट में कोई बात होती है, उसका कारण है कि विकारों को छोड़ा, भक्ति को छोड़ा तो हंगामा करते हैं। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता। अब रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है तो ज्ञान यज्ञ में तो ज्ञान की बातें होगी, तो या तो ज्ञान या भक्ति, दोनों में से एक ही होता है। इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए शास्त्रों में भी आता है कि असुरों ने यज्ञ के अंदर विघ्न डाला। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। लोग कहते हैं, हम कहते शांति हो, ये बीके कहते विनाश हो। ज्ञान न समझने के कारण ऐसा बोलते हैं। बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है, नेचुरल कैलामिटीज आएगी, सरसों मुआफिक सब पीस कर खत्म हो जाएंगे। बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगी, थोड़ी सी आत्माएं बच जाएंगी। आत्मा तो अविनाशी है, अब बेहद की होली का होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएंगी। आग में चीज शुद्ध होती है, हवन करते हैं शुद्धता के लिए। वह सब है जिस्मानी बात। अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है, विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी चाहिए। किसको समझाओ, पहले स्थापना फिर विनाश। बाबा के किसको भी समझाओ तो समझाओ पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता मशहूर है, आदि देव आदि देवी, जगत अम्बा के लाखों मंदिर है, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीप माला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहां तुमको सब कुछ मिल जाता है। बाबा जब आते हैं तो बच्चों को सब वरदानों से भरपूर कर देते हैं, तो सब कुछ मिल जाता है।
आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, वहां 150 वर्ष आयु रहती है, इतना आयुष्यवान भव का वरदान मिला। यहां तुम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। बाप कहते हैं मैं धोबी हूं, पुराने कपड़ों को साफ करता हूं, फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूं। सिर्फ मनमना भाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। जो मंत्र हुआ ना, सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता। अब तुम्हारी 1 सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूं। तुमने बुलाया है हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो, अब मैं आया हूं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूं कि मुझे याद करो। मन मना भाव का अर्थ भी यह है। फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाबा आकर हम बच्चों को कितना सहज तरीके से समझाते हैं। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। बाबा कहते याद से ही पाप कर्म कटेंगे, तो इतनी हिम्मत स्वयं में करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सदगति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। दूसरी पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है बुद्धि रूपी पांव द्वारा। इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते। बाबा कहते लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध के भी अधीनता में नहीं आना। आज का स्लोगन है शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि अगर शरीर को ही देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है,
जिसका टाइटल है निरंतर।

एकत्र हो गई तो फिर याद किसको करें? अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का रूप भी होगा। याद का मतलब है एक याद करने वाला। दूसरा, जिसको याद करते हो तो जरूर याद करने वाला उनसे भी भिन्न है। तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा के अंश है तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है? फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा, उनकी याद भी विनाशी हुई। अब इस बात को लोग नहीं जानते, परमात्मा भी अविनाशी है। हम उस अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान, आत्मा भी अविनाशी है। तो हम वंश ठहरे न कि अंश। अब यह चाहिए नॉलेज, अंश वंश इसकी चाहिए नॉलेज, जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य है, परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य है, बच्चे मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख नहीं होता। तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं भी आत्मा सदृश आत्मा हूं, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम हैं, इसलिए मुझे परम आत्मा अथवा परमात्मा कहते हैं। आज का अव्यक्त इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारी पर भी उपकार कर। उसके अंतर्गत बाबा कहते, मनसा सेवा करने के लिए सर्व के प्रति सदा ही श्रेष्ठ और निस्वार्थ संकल्प को, सदा पर उपकार की भावना हो, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो, उसको कहेंगे परोपकार। श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को भी श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले। अच्छा, ओम शांति।